और तुम खसारे में रहोगे। लिहाजा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बस अल्लाह ही की बंदगी करो और शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। उसकी कुदरत कामिला का हाल तो ये है कि कयामत के रोज पूरी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दस्ते रास में लिपटे हुए होंगे। पाक और बाला तर है वो उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उस रोज सूर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, किताब आमाल लाकर रख दी जाएगी, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे, लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है।

0: इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की जिंदगी में उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी नरमी कभी सख्ती, हालात बदलते रहते हैं। एक दिन हमारे हक में होता है तो दूसरा दिन हमारे मुखालिफ। जो दिन आपके हक में हो उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जो दिन आपके मुखालिफ हो उस दिन सबर का दामन हाथ से न जाने दीजिए। इसी में आफियत और भलाई है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

أهديك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل و

0: सामीन, आप सब जानते हो कि छह अंधे लोगों की कहानी, जब उनका एक हाथी से सामना हुआ था, किसी ने उनको कहा कि एक हाथी है, जरा हाथ लगाकर अपने अपने अंदाजे से बताओ कि हाथी कैसा होता है। चुनांचे वो सब हाथी की तरफ बढ़े और जिसके हिस्से में जो आया उसने हाथी की ताबीर वैसे ही की। कोई टांग पकड़ कर कहता है कि वो दरख्त के तने की तरह है, तो कोई पीठ पर हाथ रखकर कहता है कि हाथी दीवार की तरह, किसी ने दुम पकड़ ली तो कहता है रस्सी की मानिंद, किसी ने सोंड थाम ली तो कहने लगा एक बड़े सांप की तरह। यही हाल हमारे माशरे का भी है। हम किसी भी मसले का हल इल्म की रोशनी में नहीं बल्कि जहालत की तारीकी में तलाश करते हैं। अंधेरों में रहने वालों को क्या पता रोशनी की अहमियत। अरबी जबान की कहावत है इल्मा यारिफ सगर यश्वी, यानी जो बास परिंदे को नहीं पहचानता तो उसे भून कर खा लेता है। जिसके पास बास की अहमियत या कीमत का इल्म ना हो तो वो परिंदे को खाने के लिए भूनने का फैसला करेगा। ये अरबी कहावत उस शख्स के बारे में कहा जाता है जो किसी कीमती या नायाब चीज की कीमत अहमियत को नहीं जानता और इस न जानने की वजह से उसकी बेवकती या नुकसान कर बैठता है। यानी बास जो एक कीमती और जहीन परिंदा है जो शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स को उसकी हकीकत का इल्म ना हो तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है या बेवकूफ़ी से उसे भून कर खा जा सकता है। बाज परिंदे को भून कर खाने वाला बेवकूफ़ ये शख्स अपनी बिनाई के बावजूद उसी नाबीना के मंजिले में है जो चीज़ों की हकीकत अहमियत न जानते हुए उस पर हुक्म लगाता है या उसका हल तलाश करता है।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर, दिल से देसी।
5: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
6: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामिन, अक्सर अफराद सोचते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन नहीं सोचते कि हम कब खा रहे हैं। यानी खाने का सही वक्त सेहत के लिए बहुत अहम है। जैसे हम बात करें नाश्ते की, नाश्ता जो कि दिन का सबसे अहम खाना है उसे कभी भी नहीं छोड़ना, और नाश्ता

0: जो है वो जरूर कीजिए। इस तरह लंच है जो कि तवानाई के लिए जरूरी है, उसे कुछ हैवी कीजिए मगर सेहतमंद। ये देखिए कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं। डिनर जो है वो हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले हमें अपना जो डिनर है वो कर लेना है। देर से खाने से मेदे और नींद पर असर पड़ता है और उससे वजन भी ज्यादा हो जाता है। रात को देर से भारी खाना खाने से ना सिर्फ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होता है बल्कि वजन और नींद भी मुतासिर होती है। तो दिन में हमें 3 वक्त का खाना बाकायदगी से खाना चाहिए और अगर खाने के दौरान वक्त ज्यादा हो तो फिर हल्का फुल्का कोई भी स्नैक्स आप ले सकते हैं। खाने के दौरान आराम से आप खाना खाइए, यानी खाना जो है बहुत जल्दी में ना खाइए। खाने के साथ ज्यादा पानी ना पीजिए ताकि आपका जो हाजमा है वो खराब ना हो। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक खास वक्त मुकर्रर कर दीजिए ताकि वो उनकी आदत बन जाए कि किस वक्त कब और कौन सा खाना उन्हें खाना है। खाने का वक्त भी सेहत बनाता है या फिर बिगाड़ता भी है। तो याद रखिए, सही वक्त पर खाना सेहतमंद जिस्म और अच्छी नींद की अलामत है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक शहर में एक बहुत अजीम प्रोफेसर रहते थे। उनका नाम था प्रोफेसर अहमद। वो अपनी क्लास में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स देते थे और उनकी क्लास में हर स्टूडेंट पूरी तवज्जो से उनकी बात सुना करता था। लेकिन उनका एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो कुछ दिनों से चुप और उदास नजर आ रहा था। ये स्टूडेंट, जिसका नाम अली था, हमेशा अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहता था। उसके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी और परेशानी का इजहार नजर आता था। प्रोफेसर अहमद ने अली को 4 से 5 दिन तक देखा और फिर एक दिन उन्होंने सोचा, आज तो मैं इससे जरूर बात करूंगा। उन्होंने अपनी क्लास के बाद अली को अपने कैबिन में बुलाया और उससे पूछा, अली, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो बेटा? क्या बात है, सब खैर तो है? अली थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर अपनी उदासी को समझते हुए जवाब दिया, सर, मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत जल्दी बहुत कुछ सिखा दिया है। मेरे कुछ रीसेंट एक्सपीरियंसेस बहुत खतरनाक और बहुत दुख भरे हुए हैं, इसलिए मैं हमेशा उदास रहता हूँ। प्रोफेसर अहमद ने थोड़ा सोचने के बाद अपने स्टूडेंट को तसल्ली देने के लिए कहा, बेटा अली, मैं चाहता हूँ कि तुम कल शाम को मेरे घर आओ। तुम्हारे दिल में जो उदासी है, शायद हम उसका हल ढूंढ सकें। अगले दिन अली ने प्रोफेसर अहमद की दावत कबूल कर ली। शाम को जब वो प्रोफेसर अहमद के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर अहमद ने उसका इंतजार करते हुए एक कप चाय बनाई। ये चाय उन्होंने जानबूझकर थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई थी, उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली गई थी। जब अली ने चाय का पहला सिप लिया तो उसे तो वो चाय जरा समझ में ना आई। चाय पीते ही उसके मुंह का जायका खराब हो गया और उसने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा, सर, ये चाय तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी चीनी होती तो शायद मैं इसे पी पाता, शायद ये बेहतर हो जाती। प्रोफेसर अहमद मुस्कुराए और फिर कहा, अली, तुमने जो कहा उससे एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। जिंदगी भी इसी चाय की तरह है बेटा। तुम्हारे पुराने दुख भरे तजुर्बात इस चाय की कड़वाहट हैं, और जैसे तुमने चाय में चीनी डालने का कहा, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में नए और अच्छे लम्हात शामिल कर सकते हो, जो तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा मीठा कर सकते हैं। अली ने गौर से प्रोफेसर की बात सुनी और थोड़ा रुक कर फिर कहा, तो सर, इसका मतलब है कि मेरे पुराने दुख को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपने आज को बेहतर बनाकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकता हूँ। प्रोफेसर अहमद मुस्कुराए और फिर अली को जवाब दिया, बिल्कुल सही समझे। हम अपने गुजरे हुए लम्हों को बदल नहीं सकते बेटा, लेकिन हम अपनी जिंदगी में नए और

खूबसूरत लम्हे लेकर जरूर आ सकते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं जिंदगी की कड़वाहट को मीठा बनाना तुम्हारे अपने हाथ में होता है अली को ये बात बहुत गहरी तरीके से समझ आ गई थी उसने सोचा कि वो पुरानी बातों और खतरनाक तजुर्बात को अपने साथ लेकर जिंदगी के हर दिन में उदास नहीं घूमेगा अली ने फैसला किया कि वो अपने नए लम्हों में खुशी ढूंढेगा और अपने दुख को अपने साथ रहने नहीं देगा वो नई चीजें ट्राई करेगा और अपनी जिंदगी को नए रंगों से सजाएगा अली ने अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया उसने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया उसने नई हॉबीज अपनाना शुरू की और अपनी मदद से कुछ ऐसे काम किए जो उसे खुशी देते थे उसने सीखा कि अगर वो अपने पुराने दुखों के बारे में हमेशा सोचता रहेगा तो वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी नहीं पाएगा एक दिन अली प्रोफेसर के पास गया और उन्हें अपनी जिंदगी में नई तब्दीली के बारे में बताया अहमद सर आज मुझे समझ आया कि जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका पछतावा करना बिल्कुल बेकार होता है अगर हम अपने कल को अपने साथ रखेंगे तो हम अपने आज को और अपने मुस्तकबिल को दोनों को खो देंगे आज से मैंने अपनी जिंदगी में नया रंग भरना शुरू कर दिया है प्रोफेसर अहमद ने अली की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा अली तुमने जो सीखा वो बहुत जरूरी है बेटा हम अपने गुजरे हुए वक्त को बदल तो नहीं सकते जिंदगी में हर नया दिन कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है हर लम्हे में कोई ना कोई अच्छी बात छुपी होती है तो भाई अपनी खुशी उसी में ढूंढो इस बार अली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी उसने सोचा कि लाइफ में दुखों के अलावा भी बहुत कुछ है जो खुशी भी दे सकता है जब भी उसे अपने पुराने वक्त याद आते वो अपने नए लम्हों को याद करता और अपनी जिंदगी में मीठापन लाता अली ने समझ लिया था कि पुरानी गलतफहमियों और दुखों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए बल्कि हर नई सुबह एक नई शुरुआत का वक्त होती है एक दिन अली अपनी पुरानी दोस्त जैनब से मिला जैनब ने उसे देखा और कहा अली तुम तो बिल्कुल बदल गए हो तुम्हारा चेहरा और तरीका जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है क्या बात है भाई अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जैनब अब मैंने समझ लिया है कि पुरानी बातें और दुख हमें खुशी से रोकते हैं अब मैं सिर्फ नए लम्हों को अपनी जिंदगी में शामिल करता हूँ और हर नए एक नई उम्मीद के साथ जागता हूँ तो दोस्तों हमेशा ये याद रखें कि हम अपने पुराने दुखों को बदल तो नहीं सकते लेकिन हम अपनी जिंदगी में नए और खुशनुमा लम्हों को शामिल जरूर कर सकते हैं हर एक नए दिन का अपना ही रंग होता है और हर नए दिन में नई खुशी ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कमाल की इकोनॉमिक टर्म जिसका नाम है BOP। हाँ जी, BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेल, इकोनॉमिक्स की दुनिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अहम कॉन्सेप्ट है जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये टर्म उन तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को दुरुस्त करती है जो किसी भी मुल्क के रेजिडेंट्स और दूसरे मुल्कों के साथ होती है। तो चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है इस पर बात करते हैं। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है, बेसिकली एक रिकॉर्ड है जो किसी भी मुल्क की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को दुरुस्त करता है, जिसमें गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इनकम है और ट्रांसफर्स भी शामिल होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये देखा जा सके कि किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा है। BOP को बेसिकली दो मेन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो चलो पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड, इनकम और करंट ट्रांसफर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। करंट अकाउंट ये दिखाता है कि किसी मुल्क के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या हाल है। वहीं पर कैपिटल अकाउंट की बात की जाए तो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस शामिल होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। ये अकाउंट दिखाता है कि किसी मुल्क में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या जा रहा है। वेल, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अहमियत को समझना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को समझाने के लिए बड़ा जरूरी है। ये कुछ अहमियत रखता है, जैसे इकोनॉमिक हेल्थ। BOP से पता चलता है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है।

बाय द वे आप किधर जा रहे हैं? मैं तो सीधा बीओपी की तरफ ही निशाना करके बढ़ रही हूँ। अगर बात करूँ बीओपी की, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ये इस बात का इजहार करती है कि मुल्क ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इम्पोर्ट कर रहा है, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं पॉलिसी मेकिंग को भी मुतासर करती है। गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स बीओपी को देखकर इकोनॉमिक पॉलिसीज तय करते हैं। अगर बीओपी में डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को ट्रेड पॉलिसीज, करेंसी वैल्यूएशन या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने पर फोकस करना पड़ता है। वहीं पर इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी चेक होता है। बीओपी का अच्छा हाल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। अगर किसी मुल्क का बीओपी पॉजिटिव है तो इन्वेस्टर्स उस मुल्क में इन्वेस्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एनालिसिस। बीओपी से ये समझ में आता है या ये समझने में मदद मिलती है कि किसी मुल्क की ट्रेड पोजीशन कैसी है। ये देखा जा सकता है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा है या इंपोर्ट्स, और इससे ट्रेड बैलेंस का पता चलता है। वहीं पर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट बीओपी की मदद से फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फोरकास्ट करते हैं। ये देखा जा सकता है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और किस तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन से अफेक्ट हो रही है। वहीं तीसरा इम्पोर्टेंट पहलू है करेंसी वैल्यूएशन। रिया, बीओपी का असर किसी भी मुल्क की करेंसी की वैल्यू पर भी होता है। अगर किसी मुल्क का बीओपी डेफिसिट है तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए मिसाल से समझते हैं कि मान लो कि पाकिस्तान का बीओपी का जायजा लिया जाए, और अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स आपको पता चलते हैं कि 20 बिलियन डॉलर्स हैं और इम्पोर्ट्स 30 बिलियन डॉलर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है 10 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, इस सूरत में पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं या इम्पोर्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया, जैसे कि फॉरेन कंपनीज ने पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई, और इससे मान लो 5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आया, तो ये कैपिटल अकाउंट में शामिल होगा। इस तरह से अगर टोटल कैपिटल अकाउंट का सरप्लस 5 बिलियन डॉलर है तो बीओपी का टोटल डेफिसिट है 5 बिलियन डॉलर से कम हो जाएगा। ये हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट की अहमियत। रियाम, बैलेंस ऑफ पेमेंट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बीओपी का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अहमियत रखने लगा है। मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं और इस वजह से उनकी इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर किसी मुल्क का बीओपी पॉजिटिव है तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। ये उन्हें ये बताता है कि वो मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बेहतर है। इस तरह से बीओपी ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझने में भी मददगार साबित होता है। वहीं इसके कुछ अपने चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे डेटा कलेक्शन। जी हाँ, बीओपी का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है क्योंकि ये मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करता है। अगर डेटा एक्यूरेट ना हो तो बीओपी का एनालिसिस भी गलत हो सकता है, तो ये भी चैलेंज है। वहीं पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे कि रिसेशन या फिर इकोनॉमी का बूम होना, बीओपी पर असर डाल सकते हैं। इस वजह से बीओपी का हाल वक्त के साथ बदलता रहता है। वहीं पर पॉलिसी रिस्पॉन्सेज, ये भी बड़े मैटर करते हैं। अगर बीओपी में डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये एक चैलेंजिंग सवाल होता है। हर मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। वेल, जाते जाते मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अहम इकोनॉमिक टूल है जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को समझने में मददगार होता है। ये ना सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशंस को दिखाता है, बल्कि पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट को भी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस, फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक

0: की फील्ड में काम करते हैं या वो स्टूडेंट्स जो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए हम ये जान सकते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से ऑपरेट करती है और ये किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज मैं कुछ हद तक BOP समझाने में आपको कामयाब रही हूँ। वेल, आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं 666-22-107 पर। वापस आऊंगी तो एक और नई टर्म लेकर आऊंगी और उस पर बात होगी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: सजे।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, अक्सर लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ मिस्कीन यतीम पर खर्च करने का नाम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुशखबरी दी कि घर वालों पर खर्च करना भी सदका है और उसका अजर सबसे ज्यादा है। इसमें पैगाम ये है कि दीन इस्लाम खानदान को मजबूत करने और घर को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बनाने को अव्वलीन तरजीह देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो एक दीनार अल्लाह की राह में खर्च किया है और एक दीनार जिसे तुमने किसी मिस्कीन पर खर्च किया है और एक दीनार जिसे अपने घर वालों पर खर्च किया, सबसे ज्यादा अजर वाला वो है जो तुमने अपने घर वालों पर खर्च किया। सामईन किराम, इस हदीस में उस बड़ी हिकमत की तरफ इशारा है कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, फिर बाकी खैरात। घर वालों पर खर्च करना न सिर्फ सवाब है बल्कि दिलों को जोड़ने और मोहब्बत बढ़ाने का जरिया भी है। सामईन, ये थी आज की सुन्नत अहले खाना पर खर्च के हवाले से। आइए हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी में नियत को दुरुस्त करके अपने अहलो अयाल पर नेकी की नियत से खर्च करें, ताकि ये अमल हमारे लिए दुनिया में सुकून और आखिरत में अजर अजीम का सबब बने।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
4: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, जिसमें आज मैं बात करूंगा संदीप पाटिल के बारे में। संदीप पाटिल का नाम उन क्रिकेटर्स में शामिल है जो अपनी एग्रेसिव बैटिंग और डिस्ट्रक्टिव स्टाइल की वजह से जाना जाता है। 19 अगस्त 1956 को मुंबई में पैदा होने वाले संदीप पाटिल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत बहुत ही यंग एज में की थी। उनके फादर मधुसूदन पाटिल खुद एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और उन्हीं की फुटस्टेप्स पर चलते हुए संदीप ने क्रिकेट में अपना नाम बनाया। मुंबई के शिवाजी पार्क में पले बड़े और संदीप पाटिल ने बाल मोहन विद्या मंदिर और रामा नारायण रुइया कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की और अंकुश यानी अन्ना वैद्य से क्रिकेट को सीखा। लेकिन इंडियन टीम में एक रेगुलर जगह बनाने का सफर जो था ना, वो आसान नहीं था। संदीप पाटिल को अपनी पहचान बनाने में वक्त लगा और असली रिकॉग्निशन उन्हें 1979 में मिली जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में दिल्ली के खिलाफ 145 रन बनाए और अपनी टीम को मुश्किल वक्त में संभाला। लेकिन व्हाई संदीप पाटिल इज फेमस इन इंडियन क्रिकेट, हमें पता है संदीप पाटिल प्लेड फॉर इंडिया, लेकिन जिस रीजन से वो फेमस है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जब उनको टीम में सेलेक्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द 1981 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस विकेट्स कितने फास्ट होते हैं, एंड वेयर संदीप पाटिल उस दौरान ही नेवर यूज्ड टू वेयर अ हेलमेट। द फर्स्ट टेस्ट इन सिडनी, लेन पास्को वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा, उनकी एक गेंद पर संदीप पाटिल के सर पर जाके लगी और संदीप पाटिल वॉज ऑन द ग्राउंड ऑलमोस्ट, मतलब कुड हैव बीन बेड रिडन। और उनकी जो हालत थी उसको देखकर इंडियन टीम मेट्स काफी घबरा गए थे और उनके टीम के कप्तान सुनील गावस्कर वॉज रियली रियली फीलिंग वेरी पिटी ऑन संदीप पाटिल बिकॉज संदीप पाटिल वॉज फ्रॉम बॉम्बे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि हु इज गोइंग टू रिप्लेस संदीप पाटिल। संदीप पाटिल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में ही रिकवर्स एंड देखिए दिलेर की बात हम करते हैं ना, आज के डेट में आप बैट्समैन होते हैं तो आप पूरे जिस्म में नो गार्ड्स, चेस्ट गार्ड्स, थाई पैड्स, यू नो आर्म गार्ड्स, सब कुछ लेके चलते हैं। दैट टाइम विकेट्स वर सो फास्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड बॉलर्स लाइक डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, लेन पास्को, कार्ल रैकेमन, इस तरह के बॉलर्स को फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड संदीप पाटिल, यह संदीप पाटिल क्यों फेमस है यही पे बात कर रहा था मैं। प्रोबेबली सुनील गावस्कर, ही वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, एंड मोहिंदर रमन्ना टू आल्सो इंक्लूडिंग इन दिस लिस्ट ऑफ बैट्समैन, जहां पे उन्होंने इन फास्ट बॉलर्स को बिना हेलमेट के फेस किया। 64 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स रिटायर्ड हार्ट। सेकंड इनिंग्स में गावस्कर ने उनके सामने थोड़ा प्लीड किया कि प्लीज आवर इनिंग्स इज इन शैम्बल्स, यानी प्रॉब्लम है, वी नीड योर प्रेजेंस। संदीप पाटिल सोचिए जरा कि हॉस्पिटल से निकल के आते हैं एंड ही इज रिकवरिंग, एंड उसी हालत में संदीप पाटिल कम्स टू बैट इन द सेकंड इनिंग्स टू फेस पास्को, लिली एंड जेफ थॉम्सन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दैट मैच ही कुडंट सेव, बट इन द नेक्स्ट मैच इन एडिलेड 174 रन्स हेलमेट पहनकर अगेंस्ट पास्को, लिली एंड थॉम्सन, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट इनिंग्स इज ऑलवेज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स। क्या बैटिंग, क्या यू नो जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि दिस गाय वॉज इन हॉस्पिटल अ वीक अगो। सो दिस वॉज संदीप पाटिल, एंड संदीप पाटिल उसके बाद में ही हैड डॉन्ड सेवरल कलर्स लाइक यू नो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के वो चेयरमैन थे, भारतीय क्रिकेट टीम के वो कोच थे, केनिया को 2003 में सेमीफाइनल तक पहुँचाने में उनका बड़ा ही अहम रोल रहा। सो हियर गोज संदीप पाटिल, वी मस्ट वॉच हिज एक्शन, एंड अगर किसी को क्रिकेटर बनना है अगेंस्ट फास्ट बोलर्स मस्ट नोट हिज बैटिंग टेक्निक।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

सिंपल। अब दूसरा हैक है माइक्रोवेव का जादू। हाँ जनाब, सो माइक्रोवेव में कुछ भी गर्म कर रहे हो तो खाने के साथ ट्रे पर थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हो या फिर एक छोटी कटोरी में पानी रख दो। इससे खाना ड्राई नहीं होगा और हमेशा फ्रेश और टेस्टी लगेगा, तो इसे जरूर ट्राई करना। फॉर मोर लाइफ हैक

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम अपसाइक्लिंग के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है पुरानी चीजों को नया बना के उनका रीयूज करना, पुराने फर्नीचर आइटम्स को रीफर्निश करके उन्हें नए स्टाइल में कन्वर्ट करें, पुराने कपड़ों को नया डिजाइन में बदल के अपसाइकिल फैशन का हिस्सा बनाएं, ओल्ड जार्स, कैंस और बॉक्सेस को डेकोरेटिव आइटम्स या स्टोरेज कंटेनर्स में बदल सकते हैं, ओल्ड कंटेनर्स को प्लांट पॉट्स के रूप में यूज करें। अपसाइक्लिंग आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करता है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है इसलिए रूफटॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है कोई भी सामान खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्त

0: वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check. राइट गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: हाँ जी, हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं.

आप लोग खैरियत से हैं, हाल तो मुझे बताइएगा अपना, लेकिन हाँ चाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आज इस तरह की खुशी है मुझे, मुझे नहीं पता आपको भी है कि नहीं है, लेकिन जितने भी लोग ये चाह रहे थे स्पेन जीते,

0: ख्वाहिश घर आके आराम करने की होती है। मैं ये नहीं कहती कि ख्वाहिशें जो हैं वो बुरी हैं, ख्वाहिशें बहुत अच्छी हैं। दिल में ना आपकी छुपी एक छोटी सी जो ख्वाहिश है वो हर रोज़ एक नई उम्मीद पैदा करती है। कभी सितारों को छूने का ख्वाब हमें दिखाती है, तो कभी अपनों के साथ मुस्कुराने की बात करती है। ख्वाहिश ये नहीं कि सब कुछ हमें मिल जाए, बस इतना कि कभी हमारा दिल ना टूटे। जैसे आज स्पेन के जितने भी फुटबॉल फैन जितने भी स्पेन को चेयर कर रहे थे, उन सब का आज जो है वो दिन है सेलिब्रेशन वाला। तो इस पर भी बात होगी और भी बहुत सारी बात होगी, बट बिफोर दैट जैसे मैंने कहा कि आते के साथ गुड मॉर्निंग करते हैं, थोड़ा सा आपका हाल चाल पूछ लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक इंट्रैक्शन होता है, पता चलता है कितने लोग हमें सुन रहे हैं। सो डू लेट मी नो कि आप मुझे सुन रहे हो, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। नंबर है 666-22107, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए। बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं, तो वो एक्साइटमेंट आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं ये कहूँगी कि बात तो बहुत ही अच्छी है। जो स्पेन ने जो किया है वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है, और जैसा कल आपने देखा तो मैच भी एक्साइटिंग था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लास्ट मिनट क्या होने वाला है। बट हाँ, फाइनल्स में स्पेन ने जो है वो अर्जेंटीना को 1-0 से एक्स्ट्रा टाइम में हराया। एक्स्ट्रा टाइम में जाके ये मैच एकदम अपने फाइनल्स तक पहुंचा है। और हाँ, क्या कह सकते हैं, स्पेन की तरफ से जो फेरन थे उन्होंने बहुत ही कमाल का लास्ट में जो गोल किया, जिसकी वजह से स्पेन सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप टाइटल हासिल कर सका है। वहीं पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ जब मैंने देखा कि अर्जेंटीना के जो सुपर स्टार मेसी हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे थोड़े इमोशनल नज़र आए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मैच देखा, देखा तो होगा सभी ने क्योंकि फाइनल्स था तो देखना तो बनता ही था, बट हाँ अफसोस भी लग रहा था कि वो थोड़े से इमोशनल थे। आई वाज क्वाइट कीन कि चलो शायद हमारी टीम जीते, जिसके मुझे भी बहुत सॉलिड चांसेस लग रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं है। एंड एक चीज़ आपको ये भी बताऊँ कि केलियन एम्बापे ने जो है वो गोल्डन बूट जीता है, और सबसे ज़्यादा गोल स्कोर्स भी उन्होंने ही किए हैं। तो यहाँ पे एक फैन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए तौफीक जी कि आपने मैच देखा कल का?
1: देखा तो नहीं, लेकिन खुशी बहुत किया। उधर देखा था मोबाइल में, थोड़ा देखा था दोस्तों को, वो बेटे को भी वो भी देख रहा था, और इतनी ड्यूटी थे ना इसलिए लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी,
0: बहुत खुशी। तो आप मतलब चाह रहे थे कि स्पेन ही जीते?
1: बिल्कुल स्पेन में उसका बहुत टाइम, अर्जेंटाइन तो चीटिंग बोला थी ना इसलिए
0: नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ ये है कि चलिए थोड़ा सा कुछ हुआ।
1: मैं फुटबॉल प्लेयर ऐसे कहूँ ना इसलिए समझ आती है, मैं जब कपड़े में बच्चा से 6-7 साल के मैं फुटबॉल खेलता है।
0: अरे वाह, नाइस। बहुत अच्छी
1: रहते हैं, मैं आर्मी स्कूल में भी टीम में था, आर्मी में भी टीम में था, हम लोग का टीम था नजबा में फुटबॉल का टीम था।
0: नाइस,
1: अच्छा। हाँ तो उसको आइडिया होती है ना क्या क्या हो रहा है।
0: चलिए फिर तो आज आपके यहाँ जश्न होगा, आज आप पार्टी कर रहे नहीं कर रहे?
1: जा रहा हूँ पार्टी में, जा रहा हूँ। आपको मालूम है, आपको मालूम होगा।
0: ओके, सही।
1: दावत मिलती है मुझे
0: इंशाल्लाह,
1: आपको मिल
0: गया? नहीं मुझे तो नहीं, आप मुझे दिलवाइए तो मुझे मिलनी चाहिए। पता चला सच में डांट पड़ गई, जो मिली है वो भी चली गई, अब नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह इस बार मुलाकात आपसे होगी, जरूर आइएगा। प्लीज मुझे बताइएगा कि आप हैं तौफीक जी, है ना? ठीक है, पक्का।
1: पराठे लाऊं? पराठे लाऊं
0: के समोसे लाऊं? वही ना, समोसे है तो पराठे की ख्वाहिश है, पराठे हैं तो समोसे की ख्वाहिश है, ऐसे ही चलता है हमारा। लेकिन अच्छी है, मतलब ख्वाहिश होनी चाहिए, जब तक वो उम्मीद आपके अंदर पैदा करती है तब तक ख्वाहिश जो है वो अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिए। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। लव दिस। सो यहाँ पर एक शुरुआत हो चुकी है जबरदस्त तरीके से। वैसे मैं एक चीज बताऊँ, लोग स्पेन को

0: सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि वो चाह नहीं रहे थे कि अर्जेंटीना जीते. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो निकल के आएंगे, लेकिन कुछ भी कहो, फाइनल्स में जीतने के बाद बात का जो सीन है वो ये कि स्पेन में ज़बरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया. फैंस ने अपनी टीम की जो कामयाबी उसे खूब सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है. इतना ज़्यादा पिक्चर्स मैं देख रही हूँ, देखती जा रही हूँ माई गॉड. तो ओवरऑल अब फाइनली फुटबॉल का ये जो बड़ा मुकाबला था वो एंड हुआ. हालांकि इस पर और भी बात करनी है, बट या अभी के लिए, क्योंकि मेरा इतना एक्साइटमेंट था कि जाते ही मैं सबसे पहले स्पेन की बात कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे उम्मीद कम थी, बट हुआ ऐसा है. तो स्पेन जो है वो वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए हैं. अर्जेंटीना फाइनल्स में हार गए हैं. फेरिन ने जो है विनिंग गोल स्कोर किया और केलियन एम्बापे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर रहे. तो ये तो एकदम छोटी सी क्रिस्प अपडेट. वापस आऊँगी तो कुछ और भी सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी अपने दिल का हाल चाल, मतलब अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई वो सब कुछ शेयर कीजिए 777 पे. फिलहाल के छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद, कैसे हैं आप? और वापस आ चुकी हूँ मैं, मेरा नाम है नासिया और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 6:23 और समर मॉर्निंग्स आप सुन रहे हैं. बड़ा अच्छे से नोट पे आज के जो है शो की हमने शुरुआत की और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे वाले मैसेजेस भी आप लोग के आ रहे हैं, जहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि लोग जेन्युइनली चाह रहे थे कि स्पेन जीते, पर चलिए स्पेन जीता है तो जीता ही है. यहाँ पे कुछ लोग जो है वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, जिनका मानना ये था कि वो चीयर कर रहे थे अर्जेंटीना के लिए. यहाँ जैसे मैसेज है नौशाद जी का, गुड मॉर्निंग कहते हो, कहते हैं कि मैडम मैं तो मेसी का फ़ैन हूँ इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा. क्या कह सकते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो बस क्या ही बोल सकते हैं. हाँ नहीं, बट बहुत सारे लोग लेट मी से जो वाकई जेन्युइनली फैन हैं मेसी के विदाउट अ डाउट, तो उनके लिए तो हाँ थोड़ा सा डिसहार्टनिंग मोमेंट रहा. यहाँ पर मैसेज है और इनका नाम नहीं पता मुझे, लास्ट में 100 इनके नंबर है. ऑलराइट, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैम मेरे लिए तो ये था कि कोई भी जीते मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वाकई इंटरेस्ट हो सकता है, अपने अपने चॉइस, अपने इंटरेस्ट की बात है. हो सकता है आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आप किसी और स्पोर्ट में हो एंड नॉट इनटू फुटबॉल, सो मे बी फॉर दैट आप ऐसा मतलब इतना फॉलो नहीं कर रहे. अच्छा, यहाँ सलाम कहते हैं तौफीक जी, इनसे तो हमारी बात भी हुई. तौफीक जी से सुरजीत जी हैं, हमें हैप्पी वाली मंडे मॉर्निंग और मैं फुल सपोर्ट में था स्पेन के. सुरजीत जी कहते हैं कि फुल सपोर्ट स्पेन को, अलखौर से हमें सुन रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग, उम्मीद कर रही हूँ आप खैरियत से होंगे. इसके साथ हमें मैसेज है इब्राहिम जी का, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, और मेरा सपोर्ट तो स्पेन को ही था, मैं बहुत खुश हूँ. दैट्स नाइस. मैं भी कल बहुत, देखो मैं अपनी बात करूँ तो मैं शायद ये कह सकती हूँ कि मैं उतना स्पेन के सपोर्ट में नहीं थी, बट आई डोंट वांट कि अर्जेंटीना इस बार भी जीते, तो ये एक था. अब सामने कौन सी टीम बचती है, इट्स लाइक स्पेन ही बचती है, तो बस इस तरह से मैं स्पेन के साथ हो गई हूँ. बाकी तो क्या ही बोलूँ. सामी जी का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है, कुछ और भी वो टाइप कर रहे हैं तो लेट्स सी, अभी हमें पता चलेगा. इसके साथ ये है साध का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हैं एंड कहते हैं कि यस मैम मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी कि स्पेन जीता, हालाँकि मुझे लग नहीं रहा था, हम लोगों में से किसी को भी नहीं लग रहा था कि स्पेन जीतेगा, क्योंकि कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो इट वाज दैट वे कि पता नहीं स्पेन जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा, और चांसेस काफ़ी लो थे. लेकिन चलिए फाइनली तो जो वर्ल्ड कप है ना उसमें थोड़ा सा हम लोग का कॉन्फिडेंस और वो हुआ, अच्छा लगा. यहाँ पर अर्जेंटीना जीतता तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लग जाता है ना, आप भी समझ रहे हैं. वो सारी चीज़ें हम लोग बोल नहीं रहे बट वी नो दैट. अच्छा, यहाँ पर सामी जी का कहना है उनका फुल सपोर्ट जो था वो स्पेन को था. यहाँ पे वो लोग भी निकल के सामने आए जो मुझे ये बताएं कि हमारा सपोर्ट स्पेन को था या नहीं था, लेकिन हम अर्जेंटीना को नहीं चाहते थे कि जीते. ऐसा भी कोई बंदा है क्या? क्योंकि कहीं बहुत सारे लोगों के दिल में था कि कुछ हुआ है एंड ऑल दैट, तो हम नहीं चाहते कि अर्जेंटीना जीते, है ना. अच्छे भाई हैं, कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड हाँ सही, जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट यही बात है एग्जैक्टली. और शायद इसीलिए ये भी काफ़ी खुश हैं स्पेन जीतने की वजह से. तो हाँ लोग हैं, मतलब इस बात की ज़्यादा खुशी लोगों को हो रही है. यहाँ पे जैसे सामी जी का मैसेज है, और इससे ज़्यादा खुशी अर्जेंटीना के हारने पर हुई है. देखा, कुछ लोग हैं ऐसे जो सिर्फ स्पेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि अर्जेंटीना ना जीते, तो इस तरह की भी सिचुएशंस थी. अच्छा, यहाँ पे एक और मैसेज है मुजाहिद जी का, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं डाई हार्ड फैन हूँ मेसी का, मेरे लिए क्या कह सकते हैं. चलिए, हमारी जो हैं वो आपके साथ बहुत सारी गुड विशेस हैं, और मेसी के लिए आप बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो डाई हार्ड फैन हैं मेसी के, और मेसी की बात अलग है, लेकिन अर्जेंटीना फिर से जीतती बोला ऐसा दिल नहीं जा रहा था कि जीते, बस इसीलिए स्पेन को लोग जिता रहे थे. यहाँ हुसैन जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगी. इसके साथ एक और मैसेज मुझे आया है, और ये मैसेज है तौफीक जी का तो मैं पढ़ चुकी हूँ. ये वाला मैसेज है, एक मिनट, इन्होंने का नाम भी नहीं रहा, इमरान जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड मैंने कल पूरा मैच देखा, इन्होंने पूरे मैच को एंजॉय किया, एंड व्हाट इज ही सेइंग. अच्छा कहने का मतलब ये कि इमरान जी भी थोड़े डिसहार्टन थे क्योंकि वो भी मेसी के फैन थे अर्जेंटीना को जितवाना चाहते थे बट ऐसा हुआ नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, ऐसे चीज़ें होती रहती आगे पीछे होती रहती है. और भी बातें करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर भी हम आने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे. बट बिफोर दैट मौसम का हाल चाल हो जाए.
1: वेदर का हाल 107 दिनाल.
0: तो मौसम का हाल चाल क्या है चलिए उस पर बात करते हैं. और आज जो मौसम है वो बहुत अच्छा है बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे नोट पे हुई है. एकदम धूप रहने वाली है और सुबह की बात करूँ तो टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस, जो आफ्टरनूनस तक बढ़ते बढ़ते 44 उससे ज़्यादा भी हो सकता है. हवा हल्की रफ्तार से चल रही है और ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी है एंड इट्स लाइक 78%. वहीं पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा अपना ख्याल ज़रूर रखिए. निकलते वक्त थोड़ा ऐसे कपड़े पहनिए जो थोड़े से कॉटन के हों, ब्रीदेबल हों. पानी का आपको ख्याल रखना है सो दैट आप जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो. धूप में ज़्यादा देर बाहर रहने से भी परहेज़ कीजिए. सनग्लासेस हैं या फिर सनस्क्रीन है इसका भी इस्तेमाल कीजिए और बाकी तो आपकी लाइफ सेट है. मौसम तो ठीक ही है. चलिए जी मौसम की बात हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बट बिफोर दैट एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं. वापस आएंगे तो अपने टॉपिक पर भी आएंगे, उस पर बात करेंगे, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे. आप अपना हाल चाल मेरे साथ शेयर कीजिए 666-22-107 पर.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए. इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है. ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है. FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है.
1: One hits music station. Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है. जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं. ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं. ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है. गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है. ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है. ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं. आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करें. FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है.

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:34 ऑन द क्लॉक। जी हम बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश भी हैं, कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हैं, और कोई भाई हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लास्ट में नंबर है 949। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं सो आप कॉल कीजिए, नंबर है 4634377। आई रिपीट 4434377, क्योंकि 666 वाले नंबर पे अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपकी कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं लाइव। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कुछ बताना, कुछ कहना, कुछ शेयर करना, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। और चलिए हम ही कोशिश करते हैं कि हम आपको यहाँ पर इस नंबर से कनेक्ट करें। अगेन आई वुड लव टू रिपीट, नंबर है 4434377। इस नंबर पर आप हमें जो है वो कनेक्ट हो कर सकते हैं जिसे हम आपके साथ लाइव कनेक्ट हों। ऑलराइट, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो।
1: हेलो, मॉर्निंग मैम।
0: हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ?
1: मैं नेपाल का है मैम, कुमार करो।
0: कुमार जी कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: ठीक है मैम, और मैं कतर में हूँ इसलिए आपका नंबर शेयर किया है, उसमें मैं कांटेक्ट किया तो बस कल थोड़ा नहीं उठाया मैम, सॉरी मैम।
0: नहीं नहीं, आप हमको जो व्हाट्सएप पे कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हम आपको लाइव नहीं कनेक्ट कर सकते व्हाट्सएप कॉल से। सो व्हाट वी फेल्ट कि हम ये वाले नंबर पे हम कॉल्स लेते हैं। चलिए अब आपने लिख लिया है तो आगे आपसे हमारा जो है वो कनेक्शन और रब्ता बनेगा, है ना?
1: जी मैम,
0: बिल्कुल। अच्छा, आप मैच वगैरह फॉलो करते हैं? देखा कल का?
1: देखा था मैंने, बहुत अच्छा हुआ, मेरे को बहुत खुश हुआ।
0: अच्छा, आप किसके लिए, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे?
1: मैं तो स्पेन का सपोर्ट कर रहा था।
0: अरे वाह, ज्यादातर लोग स्पेन को ही कर रहे थे, कोई खास वजह स्पेन को सपोर्ट करने की? बट या आप शुरू से ही वर्ल्ड कप पे स्पेन को ही सपोर्ट कर रहे हैं?
1: वर्ल्ड कप तक जाने तक तो मैं उसी का सपोर्ट करके जा रहा था, लेकिन गेम भी थोड़ा अच्छे से खेल रहा था।
0: सही।
1: फुटबॉल देखता हूँ मैम, थोड़ा मैच में फुटबॉल अच्छा लगता है मेरे को।
0: अच्छा, चलिए नाइस, आप भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब आप क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट हो ही गए तो मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हम आपसे ही कर लेते हैं, ठीक है? कर लें क्या? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कामयाबी क्या है?
1: नहीं मैम,
0: कामयाबी, सक्सेस, जीत, आपके हिसाब से क्या है इसकी डेफिनेशन? आपको क्या लगता है कामयाबी क्या है? अच्छा, नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे कमा लिए तो ये कामयाबी है, या कामयाबी का मतलब ये है कि मुझे बहुत शोहरत मिल जाए तो कामयाबी है, या फिर कामयाबी का मतलब ये है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हो जाएं तो ये मेरे लिए कामयाबी? कुछ तो सोचा होगा। यही आपके लिए कामयाबी की बात है कि आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं,
1: क्योंकि अपना फैमिली के लिए इतना दूर में है कि हम इतना दूर में काम करना पड़ता है बस।

0: कहना चाहता है कि बस अपना फैमिली खुश रहो, बस अपना जब तक अपना जितना है तब तक अपना फैमिली खुश रहना चाहिए और अपना फैमिली को बस अच्छा होना चाहिए। अपना जो लड़का बेटा बेटी है उसको बस अपना लाइफ पूरा अच्छा देखना चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं।
1: बहुत अच्छी बात, यही असल कामयाबी कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं और कामयाब हों, मतलब अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर लें, ये आपके हिसाब से कामयाबी की डेफिनेशन। दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि हर इंसान की कामयाबी की डेफिनेशन जो है ना वो डिफरेंट है, किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है, तो हमने कहा चलिए आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या है। बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आगे भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। ओके नाइस, वेरी नाइस, आपका नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, नेक्स्ट टाइम हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है?
0: ओके, थैंक यू मैम,
1: थैंक यू जी, टेक केयर, बाय
0: बाय
1: बाय बाय। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक और कलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ? कमकम जी, कैसे हैं आप और कैसे जा रही है आपकी मॉर्निंग? चलिए सॉरी जी, माजरत, कल वैसे तो हमने बहुत सारे कॉलर्स को कनेक्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली आपसे कनेक्शन हमारा नहीं हो सका, बट कोई बात नहीं, आज हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए, अच्छा आपने मैसेज किया, अभी मैं देखती हूँ। ओके, तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कामयाबी आपके हिसाब से क्या है?
2: कामयाबी के बारे में बात करेंगे तो ऐसा एक होता है कि कुछ ऐसा भी होता है कि आदमी पैसा कमा के घर बना के बच्चे लोग अच्छे करे, इसको भी कामयाबी कहते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं है, पैसा होके भी कामयाबी नहीं होता है।
1: बहुत सही कहा,
2: आपका एक गोल होता है, जैसे अभी हम कमा रहे हैं, कामयाब होने के लिए बहुत टाइम लगेगा,
1: सही कहा आपने। कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमा के भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हैं, तो कामयाबी का जो कनेक्शन वो किसी और चीज से है, दैट्स नाइस, यानी पैसे से तो नहीं है,
2: पैसे से नहीं है। अब इंसान हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन आज के दौर में 99% बोले तो 99% बोले तो हर एक चीज में पैसा चाहिए, जो दौर आया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो हर चीज़ में चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि कामयाबी का जो पहला स्टेप है वो यही कि अपने आप में आप गोल्स अपने सेट करें, लाइफ का एक मकसद होना चाहिए और उसकी तरफ लगातार आपका कदम
2: बढ़ना चाहिए।
1: अच्छा माशाल्लाह,
2: 2016 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क है। वाओ नाइस, ये नहीं है
1: हाँ ये बात आपने देखी कितनी अच्छी है, मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनकी सारी जितनी भी नेसेसिटीज हैं जो जरूरियात हैं वो पूरी हो रही है मेरी वजह से, लिहाजा मैं कामयाब हूँ। हर छोटी प्रोग्रेस भी कामयाबी है, ये हमें याद रखना है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, काफी पॉजिटिव इंसान है आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप वैसे कल किसको जितवा रहे थे?
2: कल वैसे तो मैं जिता रहा हूँ था इस फिल्म को, मैं पूरी रात 2 बजे सो रहा
1: हूँ, वही ना
2: कल तो मैं नौ क्या बोलते हैं, कल जैसे हमारे घर में 2 तरफ के थे, तो कल एक बंदे थे जैसे बोलते नहीं इतना कॉन्फिडेंट, तो एजेंसी में जीतेगा बोल के जाके 1 मीटर पिज्जा लेके आओ, उधर से क्या बोलते हैं बिलाजू में हाथ पिज्जा है ना, पिज्जा हाथ अर्जेंटीना जीतेगा, इस में जाके पिज्जा लाओ, पिज्जा खाएंगे, मैच बैठ के देखेंगे। पिज्जा भी खलास हो गया, मैच भी खलास हो गया,
1: जल्दी जल्दी खा लेते फटाफट, उसके बाद जो जीते हारे देखा जाएगा।
2: नहीं वैसे तो सपोर्ट इसका था क्योंकि मैच में कल मैं देखा, पहले भी 1-2 बार देखा, अर्जेंटीना में थोड़ा मतलब जानबूझ के एक दूसरे को पैर में जानबूझ के मारना ऐसा करना ये हमको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं दिल से सपोर्ट नहीं था। वैसे तो मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, ज्यादा क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, ये फुटबॉल हमको समझ में नहीं आता था, ये मैं मेरा

0: फिर उससे स्टेडियम में था ये अपना कटर में जो खेला था 2022 में।
1: अच्छा, नाइस।
0: वो टाइम से मैं पूरा मैच देखा, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा, नहीं तो फुटबॉल ऐसा खेलेगा तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी फुटबॉल जिधर भी मैच हो रहा है, जैसे इधर क्लब में मैच होता है तो मैं जाता हूँ देखने।
1: तो आप जाते हैं? सही, बिल्कुल सही कहा। मेरी भी जब समझ लीजिए थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा वो यहीं से। वर्ल्ड कप जब कतर में हुआ और जब हमें शोज करने के लिए मिले तब हमने अपनी जो है ना थोड़ी सी नॉलेज
0: मैं तो उससे पहले जहन में भी नहीं था कि फुटबॉल क्या है। मैं ईरानी मार्केट में जाता था सूक वाकी में, उधर मेरा दोस्त है जिधर मैंगो फेस्टिवल के आगे एक बड़ा होटल है, नहीं हुक्का हुक्का मिलता है, तो उधर मैं जाता था तो हर हमेशा टीवी लगा होता, मैच देखते है, सब लोग हुक्का पीते है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं लगा। 22 में जब अपना काम लगा उधर
1: तब फिर
0: क्या बोलते हैं स्टेडियम में, उसके बाद में समझ में आया।
1: अब आपको अच्छा लगता है? हाँ ये तो है। हाँ। हम लोगों को भी ना कतर
0: तो
1: नहीं चाम
0: हमारा कतर से पहले नहीं देखा था किधर भी।
1: हाँ देखते नहीं थे, मतलब ऐसे पता था देखते होंगे आप भी, हमने भी ऐसे रैंडमली कभी देख लिया, लेकिन कोई बहुत इंटरेस्ट लेके देखा मैच पूरा ऐसा कुछ नहीं था जो यहाँ पे।
0: कल वाला मैच एक मिनट भी गेट नहीं डाला।
1: और आज कैसा हाल चाल है आपका, इसका मतलब नींद तो पूरी नहीं हुई है आपकी?
0: जी पूरी हुई है, फजर की नमाज पढ़ के निकला हूँ, अभी रूम में जा रहा हूँ, अभी रूम में जाके सोऊंगा।
1: गुड, वेरी नाइस, आप जाके सोइए, अब रेस्ट कीजिए, अब हो गया डन फाइनली। चलिए थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिए। ओके, वालेकुम अस्सलाम। सो दोस्तों यहाँ पर जो जिस टॉपिक पे बात चल रही है दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस, कामयाबी की डेफिनेशन आज मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे तो कामयाब हुई है, जैसे अभी हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, स्पेन कामयाब हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि अर्जेंटीना जो थी वो हार गई। ऐसे कहते हैं कहना, मतलब हारना क्या है, ठीक है जीते नहीं आज हम, ये तो हम कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हार गए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में जीत है, ये भी बड़ी बात है। हर तरफ जो है आज वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आप देखिए सुबह से सारे न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, सब हर कोई बात कर रहा है। ट्रॉफी लिफ्ट करना ही कामयाबी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए खैर यहाँ से मैं आपको रिलेट कर रही हूँ और समझाऊंगी कि एक्चुअल कामयाबी की डेफिनेशन है क्या। मेरा जो टेक है वो तो आएगा लेकिन टुवर्ड्स द एंड, बिफोर दैट आपका टेक क्या है वो मुझे बताइए 666-22-107 पर, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉलर यहाँ पर जुड़ गए। चलिए बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शुक्र है कॉल लगी और उठी, थक गया।
1: अरे चलिए, कैसे हैं शहजादा जी आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो,
1: थैंक यू सो मच। एंड मेरी तो बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत एंजॉय किया, आप तो अच्छे से वेकेशन स्पेंड की, आप बताइए कैसे हैं?
2: हां बेहतरीन, हमें भी मिली थी छुट्टियां यहां पे।
1: अच्छा,
2: हां
1: तो फिर आप गए?
2: हां गवर्नमेंट हॉलिडे,
1: अच्छा
2: टोटल अराउंड इंक्लूडिंग फ्राइडे तो 5 दिन मिली थी, इतनी तो ईद की भी नहीं मिलती, ईद की 3 दिन मिलती
1: है। सही
2: कहा आपने, फ्राइडे आ गया क्लोज में तो 4 डेज हो जाता है, तो ये तो 5 डेज हो गए हमको।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो इतना छुट्टियां मिली थी हमको। हाँ
1: सही। वैसे तो मुझे पता है आप क्रिकेट लवर हैं, बट फिर भी पूछ लेती हूँ, क्या आपने कल का मैच वैच देखा था? नहीं देखा, किस टीम को सपोर्ट कर रहे
2: हैं? मैंने वो उससे जो इंस्टाग्राम पर है ना, कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह किए ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था प्रिडिक्शन के लिए कि स्पेन, मतलब हाँ स्पेन जीतेगा।
1: अच्छा,
2: प्रिडिक्शन। हाँ तो मैंने देखते यहाँ कई जगह मैंने तो फॉरवर्ड किया था, अभी पता नहीं देखो क्या होता है, तो स्पेन तो जीत गया।
1: जीतेंगे शहजादा जी, आप डेफिनेटली जीतेंगे।
2: हाँ, मैंने प्रिडिक्शन डाला था उस तरह से, मैंने पार्टिसिपेट किया था।
1: पता है आपके लिए कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि आप पार्टिसिपेट कर लेते हो, ये सबसे बड़ी बात है, ये एक्चुअल कामयाबी है। बहुत से लोग जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये सोच के अरे हम तो कभी जीतेंगे ही नहीं, ये सोच होती है ना, और इसलिए वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते।
2: तो ये फाइनल का स्पेशली जो ना बहुत अलग अलग मतलब इधर से कतर के गवर्नमेंट के, मैं गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये अपना प्राइवेट जितने भी ये जो एक्ट करने वाले हैं और गारमेंट्स है और बड़े बड़े ज्वेलर्स है, तो उन्होंने मतलब ऐसा उन्होंने डाला था कि प्रोटेक्शन का अर्जेंटीना के एक प्लेन है
1: ऐसा सिनेरियो तो यही था।
2: हाँ माय प्रोडक्शन इज 2026 एक्सपेंड वर्ल्ड फीफा।
1: तो ये बात हुई आपकी, चलिए जबरदस्त। आप तो फिर ऐसे तो आप कामयाब हैं ही हर तरीके से, मैं कहूँगी कि आप खुश हैं, सुकून में हैं, कामयाब हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से एक्चुअल में कामयाबी की क्या डेफिनेशन है आपकी लाइफ को देखते हुए? कहाँ गए शहजादा जी, आपकी आवाज क्यों इतनी लो हो गई?
3: मेरी आवाज लो गई है?
1: अब ठीक हुई, अब आए आप थोड़े से करीब।
3: हाँ अभी मैंने फोन एकदम ही ना क्लोज कर लिया एकदम से।
1: अब बताइए।
3: हाँ जी जी, तो हर एक की अपनी अपनी मतलब एक ही अपनी स्किल है, एक अपना टैलेंट है, एक अपना फन है। तो हर एक वो इंसान एक कामयाब है ना अपने फन की, अपने टैलेंट, अपने हुनर के हिसाब से। तो जो एक बेहतरीन से बेहतर जिंदगी गुजार रहा है यहाँ की भी दुनिया में भी, और इसके अलावा भी जो हमारे जो इस्लाम के जो कल्चर है में भी पूरी तरह से मतलब अपने आप को जानने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से तबलीग जमात का से मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ उनके साथ, मैं इधर बैठ वगैरह पे जाता हूँ। तो वो अपने बात पे जोर देते कि दुनिया तो अभी है, असली कामयाबी ये है कि तुम्हें ना जन्नत पालो। तो वो इस तरह बताते हैं। हाँ मुझे असली कामयाबी हमारी है ना दीन में है, और असली कामयाबी है तो दुनिया बोले आर्जी है, ये बस ये वक्त ये सब फना होना है। लेकिन असली कामयाबी वो है कि आपको कबूल करे अल्लाह सुभान व तआला जब आप दुनिया से फारिग हो और आपको जन्नत में आपको जगह मिल जाए, तो वो आपकी असली कामयाबी वो है। तो वो इस तरह बताते तो बहरहाल दोनों इसमें ढलने की कोशिश रहती है कि मतलब आसान करे रोजमर्रा की जिंदगी, और इसके अलावा जो आखिरत वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सही राय बराबर भी सही कुछ बटोर के लेके चले जाए, तो ताकि अल्लाह का रहम आ जाए और कामयाब कर दे वहाँ पे और
1: इंशाल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह।
3: इस तरह से मेरी थिंकिंग है, इस तरह से
1: बहुत अच्छा,
3: मेरी थिंकिंग इस तरह से है। जी जी
1: बहुत अच्छा, यही एक्चुअल कामयाबी भी है देखा जाए तो। दुनियावी कामयाबी तो आपने जैसे कहा बहुत ही टेम्परेरी है, एक्चुअल कामयाबी वही है कि हम जो है अच्छे काम कर सके और कामयाब हो, दीन को अच्छे से
3: काम आ सके ना, तो ये बेहतर उसमें खुशी भी बहुत है ना।
1: हाँ इसमें बहुत खुशी है,
3: पीसफुल है ना फील करते हो।
1: बिल्कुल,
3: और
1: बिल्कुल।
3: किसी के टाइम पर है ना आप मतलब खड़े हो गए, या किसी को एंड टाइम पर लाकर मतलब दे दिया ना कि वो बेचारा मतलब मैं तो कई अपनी फ्रेंड में मतलब कैंप में ना फेस करता हूँ तो बंदा बोल नहीं पाता है, लेकिन जब देखते हैं पूछते भाई क्या बात है कैसे क्या, तो फिर वो मुंह खोलता है कि भाई बात थोड़ी सी इस तरह थी, तो अगर कुछ हो जाता तो फिर ठीक है, तो उसको उससे चीज मिल जावे ना तो बड़ा बहुत खुश होता है बहुत
1: ज्यादा।
3: जब तक आमना सामना होगा ना जब तक वो है ना सलूट मारता है, तो तबलीग वाले ये चीज बताते हैं कि आप कितने मतलब खुश हो जाते हो कि आपके टाइम पे मतलब खड़ा रहे कि आपके हेल्प कर दिया, तो जो सारी दुनिया चला रहा है जो सारी दुनिया का कायनात है उसमें आँख दिया, मुंह दिया, जबान दी और हाथ दिया, एक जिस्म दिया, एक तंदुरुस्ती, एक खूबसूरत चेहरा दिया, तो उसका किस तरह शुक्र अदा करना चाहिए।
1: सही कहा, खूबसूरत चेहरा दिया शहजादा जी आपने अपना चेहरा बड़ा नहीं, आपका दिल बहुत खूबसूरत है और चेहरा जैसा भी इंसान का दिल अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करता है।
3: तो अच्छा
1: आप तो बहुत ही इंटेलेक्ट होते चले जा रहे हैं शहजादा जी, पहले नहीं थे।
3: हमारे कॉलर भी बड़े अच्छे थे, तो जाहिद साहब कॉल करके चले गए क्या आने वाले?
1: अभी शायद नहीं, अभी तो नहीं किया, अभी आने वाले होंगे
3: जाहिद साहब। हाँ वो एक बहुत लीजेंड सिंगर है, और जो जिन्होंने अभी जो अंताक्षरी चल रहा था मैम का लास्ट लास्ट पीरियड में ना, लास्ट के आखिरी आवर में चलता था,
2: बड़ा जबरदस्त चला अंताक्षरी।

0: वो मतलब एक बेहतरीन मतलब एक्सीलेंट है ना, विनर रहे हमेशा, और उनकी आवाज क्या है, बहुत जबरदस्त आवाज है उनकी।
1: अच्छा।
0: तो आपके कभी से गेम स्टार्ट हो रहे हैं?
1: नहीं, आज गेम स्टार्ट करेंगे, कल तो खैर हम लोगों ने नहीं किया था, फर्स्ट डे था और ऐसे ही बात करते करते टाइम वो हुआ, लेकिन आज करेंगे, ठीक है?
0: हाँ, तो अंताक्षरी में तो जावेद साहब है ना, एक मतलब लेजेंड और एक बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन,
1: वो तो बहुत अच्छे एस्टैब्लिश सिंगर है, मतलब आप शायद जानते ही होंगे, बहुत ही एस्टैब्लिश सिंगर
0: हैं। अभी तक टूर्नामेंट नहीं कर पाए, किसी को भी बीट नहीं कर पाए,
1: कोई उन्हें आसानी से हरा नहीं सकता, और आवाज भी बहुत अच्छी है उनकी। बिल्कुल,
0: और भी लोग थे, रईस भाई थे, और भी कई बहुत से आए थे, मतलब लिसनर्स जो पार्टिसिपेट किए थे, तो मतलब एक प्रोग्राम जो आखिरी अपने उसको पहुंचा था ना, मुक्ति, क्या बोलते हैं उर्दू में, मुक्तिदाम, क्या बोलते हैं उसको, इक्तिदाम को जब पहुंचा था तो बड़ा ही पीसफुल और बड़ा ही खूबसूरती तरीके से, तो इंतजार रहता था। हाँ, तो अच्छा। देखो इंशाल्लाह आज तो स्टार्ट होने,
1: तो मतलब आप ये कहते हैं कि वही अंताक्षरी ही खिलाई जाए। हाँ,
0: अंताक्षरी शुरू करें, फिर आपसे जो दूसरा आपके पास जो है नया कुछ वो भी आएगा तो और मजा आएगा।
1: हम लोग के पास तो वही वाला पुराना है जो पहले हमने स्टार्टिंग में किया था, बट चलिए। हाँ, मुझे महवेश ने बताया था कि अंताक्षरी जो है वो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो यू कैन ट्राई दैट, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे भी ट्राई करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं।
0: और एक दूसरा भी था, उन्होंने एक टॉपिक दिया था, मतलब बात का बतंगड़ बनाना है, कुछ एक टाइम या ऐसी कुछ टाइम था, तो जो जितना बना सकता है उस पर कोई भी एक टॉपिक दे दिया, उसमें मतलब बात का बतंगड़ बनाते चले जाना है।
1: वाह, इसमें तो बहुत सारे लोग जीते होंगे, कौन जीता है इसमें, कौन जीता मुझे बताइए।
0: उसमें वो लिसनर ही वोट करते है ना, किसका सबसे ज्यादा परफॉर्म रहा ना अच्छा, तो वही वोट डालते है लिसनर ही, उस हिसाब से फिर आरजे से ना जो उसको डिक्लेयर करते हैं।
1: चलिए जी, बहुत ही अच्छी आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिए, और बहुत ही अच्छे इंसान है आप, दिस इज समथिंग दैट वी नो अबाउट यू, इसी तरह से ऐसे ही अच्छे इंसान बने रहिए हमेशा।
0: इंशाल्लाह, शुक्रिया,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो है कामयाबी, और कहीं ना कहीं मैंने इसको वर्ल्ड कप की जीत के साथ भी रिलेट किया है। मैं आपसे जानने की कोशिश ये कर रही हूँ कि मुझे आप बताइए, क्या कामयाबी जो है वो सिर्फ ट्रॉफी जीत लेने का नाम है, या कामयाबी की असल डेफिनेशन आपके हिसाब से कुछ और है, क्या कामयाबी बहुत सारे पैसे कमा लेने का नाम है, या फिर कामयाबी की डेफिनेशन कुछ और है, या कामयाबी शोहरत कमा लेना है, या फिर आपके हिसाब से कामयाबी की असल डेफिनेशन कुछ और है, तो क्या डेफिनेशन है, बस वो आपको बतानी है, आपकी अपनी खुद की डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये मेरे हिसाब से इज कॉल्ड कामयाबी। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेरी गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ?
2: उसामा बात कर रहा हूँ।
1: उसामा, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपका भी दिन बहुत अच्छे से जा रहा होगा। सो पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कल किस टीम के लिए चीयर कर रहे थे, किसे सपोर्ट कर रहे थे?
2: मैं इतना वैसे इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होता गया तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया।
1: अच्छा, मतलब आप ये थे कि
2: सेम वही कि अर्जेंटीना तो नहीं था, तो ऑब्वियसली सेकंड।
1: हाँ, पता है यही हाल है सभी लोगों का कि स्पेन के प्रो थे नहीं थे इससे कोई लेना देना नहीं, बट अगेंस्ट जा रहे थे अर्जेंटीना के, और उसका फायदा स्पेन को मिल रहा था कि मतलब वही थी तो उसी को सपोर्ट जा रहा है। यही मेरा यही एग्जैक्टली मेरी भी सिचुएशन थी।
2: सही,
1: कोई भी जीत जाए, मतलब आपके हिसाब से ये था, बट गुड।
2: नहीं, पहले कोई भी होता, लेकिन जब वो पता चला ना कि देखा जीते हैं कि अच्छा फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन है, तो फिर वो हुआ कि
1: स्पेन
2: कम से कम एटलीस्ट अर्जेंटीना नहीं, वो कुछ मिस हैपेंस जो नहीं होने चाहिए थे वो हुए, तो उसके बाद लोगों का काफी वो हुआ ना।
1: राइट राइट, बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बाद लोग जो डाई हार्ट फैंस थे अर्जेंटीना के, वो भी मैंने देखा कि वो भी हट गए, उन्हें भी चीज़ ठीक नहीं है, स्पेशली वो इजिप्ट वाला मैच हुआ उसके बाद से बहुत सारे लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा उस्मान जी, आज मैं पूछ ही रही हूँ कि आपके हिसाब से कामयाबी, असल कामयाबी की डेफिनेशन क्या है?
2: इसमें ना मेरा नजरिया ये कि आपकी लाइफ की स्टेजेस के हिसाब से ना आपके वो भी बदलते जाते हैं। एज अ मुस्लिम जहरी बात है, हर एक के अंदर लाइफ आफ्टर लाइफ वो कामयाबी को हर सबके वो एक एज अ मुस्लिम हमारे होती है ना।
1: बहुत सही का,
2: बिल्कुल। और बाकी अगर जहरी बात है दुनियावी चीज है, इसको भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते।
1: सही।
2: जब हम सिंगल एज में होते हैं या जब आप बचपन से स्टार्ट करें, जब आप टीन एज से भी पहले की एज में आपको लगता है कि जी आज मैंने ज्यादा खेल लिया, आज मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एंजॉय कर लिया, जी आज का मेरा यानी कि एक वो टास्क या एक दिल की वो एक हसरत या क्या एक ख्वाहिश होती है वो हमें मिल जाती थी, उसमें लगता था कि जी ये हमारी आज की कामयाबी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और वक्त के साथ साथ ना हमारा सोचने का नजरिया भी बदल जाता है ना।
1: Excellent.
2: अब फिर थोड़े से बड़े आप टीन एज में आते हैं तो आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, नया फ्रेंड सर्कल आपका, वो आपको लगता है कि शायद ये मेरी कामयाबी है, वो तो कुछ भी नहीं था जब आप छोटे थे। फिर जब आप स्टूडेंट लाइफ में एंटर होते हैं, जरी पता है टीन एज में भी आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, लेकिन आप जब हमारे सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान इंडिया में स्पेशली आफ्टर
1: हेलो
2: आपको आपकी मर्जी के फील्ड मिल जाना या आपके जो आपकी यानी कि काफी लोगों की यानी कि वो होती है कि मैंने मेरे जी ड्रीम जॉब या मेरी क्या कहते हैं ये है फॉर एग्जांपल में जी मैं पायलट बनना है, जी मुझे जियोलॉजिकल इंजीनियर बनना है या मुझे कुछ भी यानी कि फील्ड लेनी है, उसमें एडमिशन हो जाना या उसमें आपका कोई यानी कि आपको कोई अचीवमेंट मिल जाना, आपको लगता है ये भी हमारी कामयाबी है। फिर जब आप की ग्रेजुएशन या ये चीजें कंप्लीट होती हैं, फिर आपको उसके मुतालिक कोई इवन छोटी सी क्या इसको बोलते हैं इंटर्नशिप भी मिल जाना है या उसमें आपको कुछ मिल जाना, आपको लगता है फिर ये कामयाबी है। फिर आपकी जब जारी बात है मैरिड लाइफ की तरफ आप जा रहे होते हैं, आपको जारी बात है सबकी पसंद नापसंद होती है, आपको पसंद की उसका लाइफ जाना आपको लगता है ये कामयाबी है। फिर उसके बाद उस रिलेशनशिप को लेकर चलना आपको लगता है ये मेरी एक कामयाबी है, जो पहले थी वो कुछ नहीं थी।
1: सही
2: तो यानी कि ये लाइफ के साथ साथ चेंज होती रहती है, लेकिन अल्टीमेट आपको जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना तो आपके मामला जब सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से फिर एक बैलेंस लाइफ जब आती है ना, असल कामयाबी मेरे ख्याल से कि वो होती है आपकी दुनिया और दीन को दोनों को लेकर जब आप चलते हैं ना, तो बैलेंस लाइफ मेरे ख्याल से कि वो आपकी एक
1: बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट के लिए रखी थी जो आपने इनिशियली आके बोल दी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। हर फेज में हमारे लिए कामयाबी की डेफिनेशन एक अलग होती है और हर किसी का जो है वो कामयाबी अलग है, उसको नापने का तरीका भी लोगों का अलग है, उसे मेजर करने का बिल्कुल अलग तरीका है। आपके लिए जो चीज़ कामयाबी की डेफिनेशन डिफाइन करेगी हो सकता है मेरे लिए नहीं हो। तो रियल हैप्पीनेस इज कि जो छोटी छोटी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं लाइफ में, दैट इज योर रियल कामयाबी, वो है।
2: और आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं ये चीज बड़ी मैटर करती है।
1: और बेस्ट टेक अवे आपकी बात का है बैलेंस, अ गुड बैलेंस दीनों दुनिया।
2: कुछ जैसे लोग होते हैं वो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि ये हो नहीं सकता कि आपके लाइफ कोई प्रॉब्लम्स ना आए,
1: प्रॉब्लम्स ना आए। ट्रू, हर किसी की लाइफ में
2: प्रॉब्लम्स हैं। पैनिक नहीं करते उसको, इजी काम रह के कैसे उसको लेके चलते हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं।
1: ये चीजें मैटर करती हैं
2: आपके ज़हनी सुकून, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल क्या उसको कहते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी, ये बहुत मैटर करती है आज की लाइफ में। मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ भी आपकी एक
1: कामयाबी के साथ आप सुकून से हैं, आपकी फैमिली सेटल्ड है, घर वाले आपसे जो है वो मुतमईन है, तो ये इससे बड़ी कामयाबी और हो ही नहीं सकती। वेरी नाइस,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा।
2: और दूसरा ये कि एक चीज यानी जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ था ना, वो तब से मेरे यानी कि वो कहीं ना कहीं माइंड में वो कर रही होती थी, क्योंकि ये जो हम 90s वाले हैं ना, हमने ये एरा चेंज होते हुए देखा है, यानी कि मैनुअल से डिजिटलाइज होते हुए देखा हमने, यानी कि दोनों दौर देखे हैं।
1: दोनों दौर देख लिए हैं, बिल्कुल सही।
2: तो ऐसे मैंने कहा हमने जो 90s वाले है ना, हमने एग्जैक्टली ये चेंज होते हुए मॉडर्न उसमें एंटर होते हुए हमने मैनुअल से दुनिया को डिजिटलाइज होते हुए देखा है, हमने दोनों फेजेस देखे हैं। तो हम इस अब जो जब

0: वो पूरे हो रहे हैं, इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी फंड है आज के दौर में, और आप इन सेमेस्टर या इन एनुअल अगर आप एक अच्छा ट्रिप भी कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स
1: आप कामयाब है।
0: मोर देन एनफ
1: है, सही बात है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी उनके जो काम है वो पूरे नहीं हो पाते, और कुछ लोगों के पास कम पैसे हैं लेकिन अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और उनके वो काम उन कम पैसों में भी हो रहे हैं आसानी से। तो यही चीज है आपकी नियत कैसे है।
0: जी जी बिल्कुल। तो अगर ये चीजें आपकी मेरे ख्याल से हो रही है तो आई थिंक
1: आप कामयाब है फाइनली। यस, वेरी नाइस डेफिनेशन, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच उस्मान जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखें। ऑलराइट, बाय, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमारा ये टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, कुछ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। सो स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:06, यानी हम अपने शो के सेकंड आवर में दाखिल हो चुके हैं.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ 7:15 ऑन द क्लॉक। एंड यस, चलिए अब कुछ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। और बहुत ही कमाल के अपडेट जो मैं अभी देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लगा नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात तो करनी चाहिए। जिस तरह से कतर हमारा ग्रो कर रहा है हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर कोई और फील्ड, हर फील्ड में हर तरीके से जो है वो ग्रो करना अपने आप में बड़ी बात है। तो बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, और कतर का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ में बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। इससे लैब डायग्नोस्टिक और जेनेटिक टेस्टिंग की फील्ड्स में नया दौर शुरू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं पर हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने एडवांस डिजिटल सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है, जो लैब ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। ये सिस्टम लैब इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स महफूज तरीके से और फौरन डॉक्टर्स तक पहुंच जाते हैं। इससे टेस्ट रिपोर्ट का वक्त कम होता है और एक्यूरेसी और क्वालिटी में भी इजाफा होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात। और आज का दौर, जैसे हम आप जानते ही हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, और कतर का जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भी हो रहा है। आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डेटा एनालिटिक्स हो, इन सब में बहुत तेज़ी से इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथ ही देखा जाए तो जितनी भी तरह की जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज की जो क्वालिटी है, जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी है, वो भी मज़ीद बेहतर बन रही है और बढ़ रही है। सो रियली इट्स रियली अ नाइस वन। ये तो आपके साथ हमने शेयर कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी वाली न्यूज़। इसके साथ एक छोटा सा, अब क्योंकि हम अपने सेकेंड आर में दाखिल हो चुके हैं, हालांकि अभी भी इस टॉपिक को हमने जारी रखा है, आपके नज़दीक कामयाबी की असल डेफिनेशन क्या है और क्या आज आप उस डेफिनेशन के करीब हैं कि नहीं, ये एक्चुअल में हमारा सवाल है। क्योंकि हो सकता है हर इंसान ने अपने लिए कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग प्लान किया होता है, अलग तरीके से उन्होंने कामयाबी को डिफ़ाइन किया होता है उनकी लाइफ में। पता नहीं उन्होंने सोचा वक्त निकाल के कि मेरे लिए कामयाबी ये है या मेरे हिसाब से कामयाबी ये होनी चाहिए। कुछ लोगों को सुकून में ही कामयाबी नज़र आती है, कुछ लोगों को अपने घर वालों की खुशियों में जो है वो कामयाबी नज़र आती है, कुछ लोगों को जो है वो छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कर लेने में ही कामयाबी नज़र आती है। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग अक्सर कामयाबी को कभी पैसे से जोड़ देते हैं, कभी बड़ी गाड़ी से जोड़ देते हैं, कभी हमारे हिसाब से होता है कि अच्छी जॉब हो तो कामयाब है, या हमारे हिसाब से है कि भाई हम बहुत ही मशहूर हैं, शोहरत मिल रही है तो कामयाब है। जबकि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी आप देखिए ना, कितने सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर लोग बड़ी गाड़ी में भी घूम रहे हैं और शायद पैसा भी है उनके पास, शायद शोहरत भी मिल जाती है।

0: लगती है, लेकिन उनकी रियल स्टोरीज पता नहीं, there was a like a big question mark. बड़ी स्टोरी है उनकी, एक्चुअल स्टोरी के साथ जो है वो रिलेट करती भी है कि नहीं करती है ये. देखिए मैं आप क्या बताऊँ, आप खुद ही इतने समझदार लोग हैं, आप सभी को पता है. तो असल में हर इंसान की जर्नी एक दूसरे से अलग होती है, डिफरेंट होती है. सोचिए अगर किसी टाइम में कोई फुटबॉलर जो आज खेल रहा है वर्ल्ड कप में, उसे अपनी जगह बनाई और बचपन में कोई उसे कह देता कि भाई तुम तो कभी भी नहीं खेल सकते वर्ल्ड कप, और फिर वो मेहनत ही ना करता तो कभी भी नेशनल टीम तक पहुंच पाता नहीं, तो क्या वो कभी कामयाब हो पाता? नहीं. तो ज़रूरी क्या है, चाहे जो कुछ भी है आपके पास, जितना कुछ भी है, उसी में अपने लिए बेस्ट तलाश करना. That is real definition. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करते रहेंगे, but before that we are connected to one caller. चलिए इनसे बात कर लेते हैं. Hello.
1: Assalamualaikum Nazia.
0: वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं शिमोना?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हैरियत से हूँ. And how's your morning going?
1: अल्हम्दुलिल्लाह. Good. बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है. आपने तो खुद ही कामयाबी के ऊपर इतनी सारी बातें बता दी है, मुझे लगता नहीं है कि कुछ अब कामयाबी पर बचा है.
0: नहीं नहीं, आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ जरूर ऐड करेंगे.
1: नहीं, बहुत अच्छा, मतलब जिस तरीके से आपने इसको कामयाबी को एक्सप्लेन कराया है, बहुत ही अच्छी बात है, और इसी तरीके से होनी भी चाहिए. एक्चुअली दिस इज द रियल पैरामीटर ऑफ यू नो कामयाबी है क्या.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो मैं तो इसको एक्चुअली इस तरीके से देखता हूँ, मेरे लिए ना दो सर्कल्स हैं कामयाबी के.
0: अच्छा, ओके.
1: लाइक फॉर इंस्टेंस देखिए क्या होता है कि कामयाबी का जो पैमाना है वो हर उम्र में हर लाइफ के हर पेज में बदलता रहता है. एक मेरे लिए कामयाबी कुछ और हो सकती है, एक नो एक जिसने अभी किसी एक इंसान ने जॉब ज्वाइन की है उसके लिए कुछ और हो सकती है, कोई अभी पढ़ रहा है तो उसके लिए कामयाबी कोई और हो सकती है, कोई अभी अगर ग्रेड 12th में ही है तो उसके लिए कुछ और होगी, मतलब डिफरेंट फेजेस डिफरेंट पैरामीटर. मैं जो है वो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेरे लिए दो सर्कल्स हैं कामयाबी के. वो एक जो है, एक है बड़ा सर्कल और एक है छोटा सर्कल. तो छोटा सर्कल ये है कि आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, और वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब हम लोगों के यहाँ इधर खासतौर से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कामयाबी को एज सच की फिरोया नहीं जाता है लाइफ के अंदर बचपन से कि ये तुम्हें ये करना है इन जनरल, क्या मुझे ये बनना है. बहुत कमी से ही होता है कि लोग जो है इस तरीके से सोचते हो, वरना ज्यादातर होता ये है कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे खुद जो है वो हम उसमें आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं, और फिर वक्त में वक्तन जो है वो हमारे वो पैरामीटर्स जो है वो कामयाबी के चेंज होने लगते हैं.
0: सही, बिल्कुल सही.
1: तो पहला जो मेरा जो छोटा दायरा है कामयाबी का, जो पहला सर्कल है वो ये है कि भाई आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, उसमें आपने अपने लिए जो भी कुछ सोच रखा है, मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है वो अभी जॉब करने आया है तो उसको कोई प्रोजेक्ट है, उसकी कोई प्रोजेक्ट की कामयाबी हो सकती है, उससे वो बहुत खुश हो सकता है, उससे तो उसका कोई प्रमोशन हो सकता है, उससे वो बहुत उसके लिए वो कामयाबी हो सकती है कि मैं प्रमोट हो गया 2 साल के अंदर, मैंने मेहनत करी, अच्छा करा, मैं कामयाब हो गया. थैंक यू. अलग अलग
0: तरीके से.
1: लेकिन जो इसका बड़ा सर्कल है वो ये है कि हम चाहे लाइफ में कुछ भी करें, हमारा कोई भी पैरामीटर हो कामयाबी का, उसको हम एक बड़े कामयाबी के पैरामीटर से के अंदर रखना चाहिए. वो है कि जो अल्लाह ताला ने हमें जो हुदूद बताई है जिंदगी गुजारने की, वो उसके अंदर फिट होना चाहिए. आपको कोई काम मना नहीं है करने के लिए, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं आप करें उसको, और अच्छे तरीके से करें, खूब अच्छे तरीके से करें, उसके लिए बहुत मेहनत भी करें.
0: सही.
1: लेकिन जो बड़ा पैरामीटर, क्योंकि अल्टीमेट कामयाबी आपकी वही है.
0: बहुत अच्छी बात.
1: तो उसके अंदर रह के जो है वो फिर आप अपनी अपने लिए रास्ते बनाएं दुनिया के अंदर, आगे से आगे बढ़े जिस भी फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं. ये तो है ये इस तालु से, वरना जैसे आपने कहा कि असल कामयाबी ये है कि किसी को अच्छी नींद आ गई उसके लिए वही वो समझता है कि मेरे लिए यही बेस्ट कामयाबी, कुछ भी नहीं है मेरे पास, नींद मुझे बहुत बढ़िया आती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो ये है वो जी
0: असल कामयाबी मुझे लगता है कि तब है जब इंसान अपनी जिंदगी से मुतमईन हो.
1: बिल्कुल.
0: मतलब उसके दिल में सुकून हो.

0: और अपने मकसद की तरफ जो है वो ईमानदारी से बढ़ रहा है, अब जो भी उसका मकसद है, हाँ हर रोज बढ़ रहा है, तो यही
1: आप ईमानदारी से
0: मतलब आप अपने ख्वाब के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी कामयाबी है। हर रोज आप मेहनत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो ये कामयाबी है। आप अपनी हार से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ये आपकी कामयाबी है। मुश्किल वक्त में आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो आपकी कामयाबी है। बिल्कुल, सो ये कामयाबी एक्चुअल है।
1: आप रोज एक अच्छा और बेहतर इंसान बन रहे हैं, ये कामयाबी है।
0: यस, सच अ ब्यूटीफुल लाइन, बहुत अच्छा बोला आपने।
1: तो इसीलिए जो है वो हमें, वो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कामयाबी जो है वो हर लाइफ के हर फेज में, वैसे मतलब इसको हम इस तरीके से देखें तो लाइफ के डिफरेंट फेज में बदलती रहती है, लेकिन असल कामयाबी यही है कि हम जो है वो एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जो है ना कदम बढ़ाते रहे अपना, और हर रोज एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। और बाकी ये है कि भाई वो जो बड़ी कामयाबी है उसके अंडर जो है वो हमारे सारे काम होने चाहिए। हम कुछ भी करें लेकिन दरअसल हमारे, हमें ये जहन में रहना चाहिए कि असल कामयाबी यही है कि हमें आखिरत में जो है वो सबको होना है, और वहाँ के ताल्लुक से जो भी हमारे काम हो तो हम उस पैरामीटर को ध्यान में रख के जो है वो सारे काम करें। काम कोई भी करने में मनाही नहीं है, मतलब
0: सही बात,
1: जो भी सही काम हो उसको कोई भी काम करने में मनाही नहीं है। बट हाँ, लेकिन आपको एक दायरा दे दिया गया है, उस दायरे के अंदर रह के आप अपने वो सारे काम करते रहिए।
0: ट्रू, बहुत ही अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छी मिसाल भी दी इवन टू सर्कल्स की, बहुत अच्छी बात बताई। हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ आप बहुत नया ऐड करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और हमारे इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है बात करके।
1: टेक केयर,
0: यू टू टेक केयर, हैव अ गुड डे, हाफिज। तो यहाँ पे इतनी प्यारी डेफिनेशन शिमोन जी ने दी, इतने अच्छे से समझाया हमें और आपको कि कामयाबी क्या है। तो आप और हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, फिर सवाल उठता है आप और हम किस चीज़ के ना मिलने से फ्रस्ट्रेटेड हैं। सोचिए, टाइम निकालिए और सोचिए और मुझे भी बताइए, मैं भी सोचूं आपके साथ मिलके कि फिर ये जो भाग दौड़ है, जो रश है, जो एक रेस है, किस चीज़ के लिए। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं जावेद जी? एंड आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी आवाज़ की तारीफ तो हो ही रही थी, प्लस आप विनर बैक टू बैक बने वो भी मुझे पता चल गया, शहजादा सलीम जी ने बताया। बट ये तो हम हमेशा ही कहते हैं कि आपकी आवाज़ में एक बहुत कमाल का बेस है।
2: सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ नाजिया, और इस बात के लिए भी माजरत क्योंकि जब मेरे साथ लोग होते हैं तो मैं रेडियो को सुन नहीं पाता।
0: अच्छा।
2: और अभी बड़ा मुश्किल से उनको उतार के, बल्कि उतार के ही मैंने ट्यून किया, और किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना बखुद। ओके, और किसी के बारे में अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, अच्छी बात करना, ये उस बंदे की अच्छाई होती है जो अपनी जुबान मुबारक से फिक्रे अदा करता है या अल्फाजों को अदा करता है, उसकी अच्छाई है वो।
0: माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कहा। और ये तारीफ आपकी शहजादा जी करके गए, जिन्होंने मुझे बताया कि आप बैक टू बैक अंताक्षरी हो रही थी उसके आप विनर रह चुके हैं।
2: ये अंताक्षरी नहीं, ये मतलब देखिए, ये पूरा ये FM 107 ये हमारा ये एक घर है, ये पूरा हमारी ये जो पैकेज जितने भी खलकत है ये पूरा एक पैकेज, ये हमारा, ये हमारी फैमिली है, बड़ी खूबसूरत इतनी प्यारी फैमिली है और इतना खूबसूरत हमारा ताल्लुक बना है कि मैं आपको मतलब शायद जिंदगी में ये ताल्लुक अभी बना है ना, बहुत से बने हैं लेकिन ये जो यूनिक बना है ना इसकी कोई मिसाल नहीं है।
0: वाकई, और हमें भी लगता है कि आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, फैमिली ही हैं। तो बिल्कुल, जिस तरह से आपका हमारा कनेक्शन है, और अल्लाह ताला इसी तरह से आपके हमारे इस कनेक्शन को जो है वो कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, वी नो दैट यू आर एस्टैब्लिश्ड सिंगर, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, सो यू आर एक्सेलेंट ओरेटर एज वेल। आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो है कामयाबी। आपके नज़दीक कामयाबी की असल डेफिनेशन क्या है, और क्या आज आप उस डेफिनेशन के करीब हैं आपको लगता है?
2: अच्छा, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं क्योंकि कॉल फिर लंबी हो जाती है, और पहले तो ये कि मैं सिंगर अच्छा नहीं हूँ, ये लोगों ने मुझे चढ़ा दिया।
0: नहीं,
2: मैं फील करता हूँ।
0: क्यों, ऐसा क्यों? आप तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, एंड वी नो दिस, आप बहुत अच्छा गाते हैं, और ये तो खैर अब पूरा कतर जान गया है FM 107 के थ्रू, और हमेशा ही आपने मतलब इस पे तो आपको प्राउडली कहना चाहिए कि मैं एस्टैब्लिश्ड सिंगर हूँ।
2: आई टेल यू फील प्राउड, मेरे लिए फखर की बात है ये।

0: नहीं, आपको होना भी चाहिए और बहुत अच्छे सिंगर हैं और आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं।
1: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा रही बात के, मतलब शायद मुझे जितने मेरे वो शमून भाई ने या उससे पहले जो भी इस टॉपिक पे बात कर चुके होंगे, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने की होगी। शमून भाई की भी मैं अभी थोड़ा सा सुन पाया हूँ, बड़े अच्छी उन्होंने पूरी तफसीलात बताई। सवाल माशाल्लाह नाजिया बहुत अच्छा और बड़ा गहरा सवाल है।
0: गहरा सवाल है बिल्कुल।
1: अगर सिर्फ दुनियावी नजर से आप देखें तो लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी कामयाबी दौलत, शोहरत, ताकत, आला ओहदा या असर रसूख हासिल करना है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: लेकिन हकीकत यह है कि तारीख में बेशुमार लोग ऐसे भी हैं और गुजरे भी हैं और हम अभी भी देखते हैं जिनके पास सब कुछ था फिर भी वो सुकून में और ना खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: अगर इंसान को इखलाकी नुक्ते नजर से देखें तो आज के दौर में सबसे बड़ी कामयाबी जो मैं समझता हूं और जिसको हमने अचीव किया, इसीलिए हम सब एक साथ हैं क्योंकि ये कामयाबी है, इंसान अपने किरदार को मजबूत रखे।
0: वाह क्या बात है।
1: अपने जमीर के मुताबिक जिंदगी गुजारे,
0: बहुत जबरदस्त,
1: और दूसरों के लिए हमेशा फायदा मंद हो,
0: काम आ सके दूसरों के।
1: ठीक है,
0: बहुत अच्छी डेफिनेशन।
1: हाँ, और कुछ लोग जरूर हासिल कर पाते हैं लेकिन बहुत कम। अक्सर लोग दौलत या कामयाबी की दौड़ में सुकून, रिश्ते, सेहत, किरदार सबको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये हमारी कामयाबी है, बल्कि वो उनकी नाकामी होती है।
0: बिल्कुल
1: इतना ही मैं कहना चाहूंगा।
0: एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत अच्छा आपने बोला और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने दी, इसमें सारी चीजें आपने ऐड कर ली। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा काम। I'm highly highly impressed। मैंने आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग था और डायरेक्टली बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर हार्ट तो ये हम लोगों के हार्ट तक, दिल तक पहुँचा। थैंक यू सो मच।
1: और मैं एक दफा फिर FM 107 के तवस्सुत से उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूं जो पसे पर्दा याद करते हैं मोहब्बतें। और मैं यकीन कीजिए कि मैं आपको बता नहीं सकता, अपने तौफीक भाई हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद मुझे उनके मैसेजेस आए, इतना मुझे, मैं समझता हूं कि मैं दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं कि जिसको यार लोग मोहब्बत से मैसेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह,
0: माशाल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल, और हमारे जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, आई थिंक सबके साथ कहीं ना कहीं सबका एक दूसरे के साथ, हमारा तो खैर बन ही जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, बट वो कॉलर्स जो सुन रहे हैं आपको, उनका भी आपसे एक कनेक्शन बन रहा है, बिल्ड हो रहा है।
1: बहुत खूबसूरत,
0: हाँ, जो कि बहुत खूबसूरत, जिसे हमें और आपको मिलकर चेरिश करना चाहिए थ्रू आउट आवर लाइव्स। बिल्कुल,
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, बहुत शुक्रिया नाजिया,
0: जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही प्यारी सी कॉल और इतनी अच्छी प्यारी बात। इसी अच्छी प्यारी बात के साथ फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, वापस आऊँगी क्योंकि मैंडेटरी ब्रेक है, वापस आऊँगी तो अब हमारा जो है ना वो गेम का भी आगाज़ होने वाला है, थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन उसके पहले एक मैंने सेगमेंट स्टार्ट किया जो मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं हर रोज़ हम सेकेंड आवर में इसी 7:30 के आसपास एक किसी भी क्लासिक एक्टर एक्ट्रेस या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो हमें और आपको मोटिवेट कर सकती हैं उसे शेयर करेंगे। वो हमारा एक गेम सेगमेंट भी होगा, बट दैट इज़ ओनली फॉर द मैसेज। सिर्फ मैसेज पे हम उस गेम को रखेंगे जहाँ पर आपको मैं छोटी सी स्टोरी नरेट करूँगी और मैं आपसे पूछूंगी कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको उस स्टोरी को ध्यान से सुनना है और झटपट से नाम लिखकर भेजने हैं मुझे व्हाट्सएप पे 666-22-107 वाले नंबर पे। फिर किसी एक बंदे के साथ हम जो है अपने गेम का आगाज़ भी करेंगे जिन्हें डायरेक्टली हम गेम में चांस देंगे बिना किसी हासिल वसल के। तो चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: सच बोलूं तो ये बंदा जिसके बारे में मैं अब बात करने वाली हूँ, हिट तो हुआ लेकिन हिट होने के बाद।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ 7:42 ऑन द क्लॉक। और जैसे मैंने कहा कि बंदा हिट तो हुआ लेकिन हिट होने के बाद बहुत ज़्यादा हिट हुए, हिट इन द सेंस दिल इनका हर्ट भी हुआ। मतलब आप सोचिए, आप किसी के घर जाएं और आपको वेलकम किया जाए इस तरह से, ए कहाँ किधर कहाँ मुँह उठा के चले आ रहे हो, इसे कहते हैं गजब बेइज्जती। तो शुरुआत इस एक्टर की, जिसे आपको भी गेस करना है, ऐसे ही हुई। मतलब जब ये अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए पहुंचे थे तो लोगों ने इन्हें इसी तरह से ट्रीट किया था। मतलब बेइज्जती इतनी ज़्यादा कि पूछो नहीं। कहा गया कि यूपी के भैया, मेरा मतलब है इन एक्टर का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश यूपी से, तो यूपी के भैया यहाँ एक्टर बनने आए हो, तो इस तरह से इनका मजाक उड़ाया। पता है इनके लिए उस वक्त कामयाबी की डेफिनेशन क्या थी? अपनी बेइज्जती रोकना। इन्हें बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि भाई मेरी दाल नहीं गलेगी, चाहे मैं कितना भी इसको प्रेशर कर लूँ या कितना भी इसको जो है कुकर में डाल के पका लूँ, दाल मेरी जो है वो नहीं गलनी। लेकिन जहाँ आपका जो ना जुनून होता है, पैशन होता है और डेडिकेशन होता है, वहाँ आप अपने लिए खुद ब खुद कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही किया था हमारे इस एक्टर ने। तो ये सेगमेंट ऐसा होगा जहाँ पर हम इंटरेस्टिंग बातें, मोटिवेटिंग बातें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको भी काम करना है। करना यह है कि आपको गेस करना है कि आज हम किस एक्टर के बारे में या किस एक्ट्रेस के बारे में या किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उनके इंटरेस्टिंग ट्रिविया तो गारंटी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आप नाम शेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की जो कहानी है ऐसे ही शख्स की है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत अजीब डांट फटकार धुतकार से हुई। कोई भी उन्हें एक्टर मानने को तैयार ही नहीं था। अपने फर्स्ट ऑडिशन में गलती से उनके मुंह से निकल गया कि मैं एक्टर बनने आया हूँ। फिर कहते हैं कि इस सेंटेंस को उन्होंने अपनी लाइफ में वापस कभी रिपीट नहीं किया। देखो होता क्या था उस टाइम में, उस दौर में, उस 60s 70s का जो दौर था, मतलब आप समझ सकते हो 70s के दौर के एक्टर हैं, जब लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे या फिर यू नो फौज में जाने का ख्वाब देख रहे होते थे, इन्होंने एक अलग सा ख्वाब देखा। एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये भी ऐसा कुछ होता है, इस तरह का कोई सोच सकता है। बट इन्होंने इतना बड़ा सोचा अपने लिए। एक चीज़ जो पर्टिकुलरली मैं इनके साथ रिलेट कर पाती हूँ इस कि इन्होंने भी अपनी तालीम जो थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की और फिर एक्टिंग सीखने के लिए ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये समझ गए थे कि मेरी दाल तो गलनी नहीं है, लिहाजा मुझे प्रॉपर एक्टिंग ही सीख के एंट्री करनी है। फिर अपने इन्होंने जो सेंटेंस था कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहा कि मैं एक्टिंग करने आया हूँ। इस तरह से इन्होंने खुद को प्रेजेंट करना शुरू किया। शुरुआत इनकी, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डांट फटकार धुतकार से हुई, छोटे छोटे रोल्स मिलते थे और कई बार ऐसा होता था कि वो रोल्स शूट भी हो जाते थे लेकिन फिल्म से काट दिए जाते थे, हटा दिए जाते थे। लेकिन इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा, टिका रहा। कहते हैं कि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे ना ऐसा भी मेरे पास वक्त आया कि घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, कर सकते थे, फाइनेंशियल कंडीशन उन लोगों की अच्छी थी, बट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो मेरे इस प्रोफेशन के ख़िलाफ़ थे। वो ये चाहते थे कि मैं बहुत परेशान होऊंगा, तंग होगा, पैसे की किल्लत होगी तो मैं ऑटोमेटिकली वापस आ जाऊँगा। मतलब उस टाइम जब बॉम्बे कहलाता था उस टाइम में ये वहाँ पहुँचे थे और हज़ारों लोग जाते हो आप देख के एक्टर बनने का, तो इन्हें भी लगा था इनकी फैमिली को बस कुछ दिन जाएंगे, रहेंगे, परेशान होंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बंदे के साथ। 1970 और 80 के दौर में इंडियन सिनेमा में वो वक्त आया जहां पैरेलल सिनेमा बहुत तेजी से बढ़ा, मशहूर हो रहा था और यहां इनकी एक्ट एक्टिंग चमकी और ये एक एस्टैब्लिश एक्टर बने, ये तो नहीं कहूँगे कि बहुत ही पॉपुलर एक्टर बने, लेकिन एक एक अपनी पहचान बनाई। इन्होंने इस तरह के किरदार निभाए जो दिल को छू जाते थे और जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ एक गहरा कनेक्शन रखते थे। इन्होंने हर तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज अ विलन, एज अ कॉमेडियन, एज अ को एक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें। स्टेज और थिएटर तो ये करते रहे, जैसे हमेशा कहते हैं कि थिएटर जो है वो सबसे फर्स्ट माई लव है, मतलब पहली मोहब्बत है, और उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, थिएटर जारी रखा। ग्रुप स्टेजेस पर भी ये जो थे जाते रहे। सिनेमा को हर तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। इनकी मेहनत और इनके जज्बे को देखकर एक टाइम वो भी आया कि लोग वाकई इनकी एक्टिंग के इतने कायल हुए कि डायरेक्टर सेट्स पे बुलवाते थे इन्हें, अगर पता चल जाता था कि अरे जी ये वहाँ पर शूट कर रहे हैं, कि बुलाओ और पूछो कि इस डायलॉग को किस तरह से डिलीवर किया जाना चाहिए। तो एक टाइम जब इन्हें धुतकारा गया था, इनका मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था यूपी के भैया तुम एक्टिंग करोगे, तो आज वो दौर आ गया था कि इन्हें बाकायदा बुलाया जाता था, पूछा जाता था कि बताओ ऐसे कैसे इस डायलॉग को डिलीवर किया जाए। तो क्या चीज़ इनके लिए कामयाबी की बड़ी मिसाल बनी? मेहनत और डेडिकेशन, हर रोज़ छोटी छोटी प्रोग्रेस। आज अगर एक्टिंग की बात होती है तो इनका नाम, जहां उस वक्त इन्हें बेइज्जती मिली, तो आज इनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। उसकी आवाज़, उनके अंदाज, उनकी अदाकारी, उनका स्टाइल एक मिसाल बन गया है। अब बताइए

0: दोस्तों ये कौन सा एक्टर है जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, छोटी छोटी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं. अब आपको मुझे बताना है कि एक्चुअली ये किस एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे फैयाज जी ने लिख के भेजा है शाहरुख खान नहीं, और यूसुफ जी का कहना है अमिताभ बच्चन नहीं नहीं नहीं. मैंने बोला कि इनका ताल्लुक जो है वो उत्तर प्रदेश से है. चलो कुछ और थोड़े से हिंट मैं आपको देती हूँ. उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII से एक्टिंग सीखी, फिर पैलर सिनेमा के जो थे सबसे बड़े नाम बने, और थिएटर और फिल्म्स दोनों में इन्होंने लाजवाब काम किया. और एक चीज़ मैं चलो आपके लिए ऐड करती हूँ, पद्मश्री और पद्म भूषण भी इन्हें हासिल हुआ है. अब आपको मुझे बताना है कि ये किस एक्टर के बारे में बात हो रही है. मुझे पता है क्या खुशी हो रही है, एक और ही खुशी हो रही है. यूसुफ जी जो एकदम माहिर है ना, बहुत सारी मूवीज जानते हैं, एक्टर्स, उनकी जो नॉलेज है बॉलीवुड को लेकर इतनी तगड़ी है, पर यहाँ पर ये मिस कर रहे हैं. तो अच्छा भी लगता है कि कभी कभी किसी को चैलेंज आप दो, एक बड़ा सा चैलेंज मिल जाए. कादिर खान किसी ने कहा है शफी आमिर जी नहीं, ये एक्टर कादिर खान भी नहीं है. आरिफ अंसारी जी नहीं नहीं नहीं. दिलीप कुमार, सैयद फिरोज जी कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी, तो ये भी तो मैंने बोला है. देखिए ये भी तो सोचिए. अच्छा चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनकी मूवीज़ के बारे में नाम, अगर जैसे ही मैंने एक नाम लिया आप लोग खड़ाक से कर लोगे सर्च इंजन पे जाके और खड़ाक से आप बता देंगे, इसलिए मैं नाम मूवी का नहीं बता रही हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ. देखती हूँ कुछ लोग, ओ भाई कोई तो है जिसने बिल्कुल सही सही बता दिया. यहाँ इनका नाम है अहमद. अहमद जी ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर भेज दिया है, बिल्कुल सही बता दिया. अच्छा कोई और भी है जिसने बिल्कुल सही बता दिया है, वाओ हु इज ही, आफ्ताब खान जी. आफ्ताब खान जी का जवाब बिल्कुल ठीक है. अच्छा एक और बंदा भी है जावेद जी, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है. बिल्कुल आपका जवाब भी बिल्कुल सही है. और जो लोग दिलीप कुमार कह रहे हैं नहीं, दिलीप कुमार जी तो नहीं है. चलिए थोड़ा टाइम आपको मिल रहा है, सोचिए फिर मैं थोड़े से क्लू और इसमें ऐड कर दूंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी. बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर. एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गया. हेलो,
1: सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. रईस है क्या? यूपी के आप नहीं पहचान रहे?
1: अरे हम तो सोच रहे हैं कि भाई हमारे टक से निकल के चले जाए, वही तो नहीं उनकी बात कर रहे हो.
0: देखिए एक बड़ा हिंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की. यूपी के हैं फिर यहाँ.
1: अब मैं नाम नहीं, मतलब मैं इसी पे मतलब ये करूँगा. अब आप बताएं.
0: हाँ वही ना, आप मत लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? मैसेज करके बताइए.
1: हाँ क्योंकि आप ये बता देंगे तो सारा राज मतलब ये हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा ना. फिर आगे आपको और शो को थोड़ा सा आगे आगे लेके जाना है, फिर इसपे लाइव इसपे बताना. मैं जो मैंने थोड़ा इशारा किया मेरा गेस सही है.
0: मुझे लगता है जितने लोग जो यूपी से हैं वो शायद पहचान ले शायद आसानी से, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो शायद उनके लिए समझना आसान हो. बट लेट्स सी कितने लोग पहचान पाते हैं. अभी ज्यादातर लोग जो है ना वो अमिताभ बच्चन का नाम जो है ना भर भर के लिखते हैं. इलाहाबाद के तो है अमिताभ, अभी तो प्रयागराज हो गया. बट हाँ नहीं, बट वो अलीगढ़ के पढ़े नहीं है, ये भी एक है उसमें एंगल. अच्छा चलिए ये तो हम अपना पूछ ही रहे हैं जो हमारा मैसेज के थ्रू चल रहा है कॉन्टेस्ट. लेकिन उससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक था, मैं चाहूंगी रईस जी कुछ ना कुछ आप ऐड कीजिए. असल कामयाबी की डेफिनेशन.
1: असल कामयाबी की डेफिनेशन अपनी मेहनत, अपना मतलब समझ लो कि यकीन, और अपने उसके कामयाबी के सबसे बड़ा वही होता है कि आदमी को अपने मेहनत से अपने वक्त पे थोड़ा सा उसके साथ में थोड़ा सा वक्त कहाँ से कहाँ लेके जाता है उससे अपने उसको हारना नहीं चाहिए आदमी को. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपनी कामयाबी में अगर आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अगर आप घबरा के अपने उसको मतलब नहीं छोड़े तो शायद कि एक बार में कोई जरूरी नहीं कि आदमी कामयाब हो जाए.
0: सही बात है.
1: तो उसको अपना जारी रखना चाहिए और कोशिश जारी रखेगा तो अल्लाह ताला उसको जरूर फिर वो जैसे एक डायलॉग है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है. तो उसमें बंदे का कोशिश अपना पॉजिटिव अपना बना रहे. अगर आपको कोई जरूरत है उसमें उसको अगर नाकामी का तो थोड़ा सा उसको अपने

0: उस पर सर्च करना चाहिए, सीख करना चाहिए कि मतलब हाँ मेरे अंदर अगर कोई चीज चाहिए है तो उसको सुधार करे, लेकिन अपने उस पर अगर वो सही उस पर है तो डटा रहे। तो ये सबसे बड़ी ये होती है कि मतलब बंदा को अपनी कामयाबी, यही इसी सब्जेक्ट पे आप पूछ रहे हैं ना।
1: बहुत सही कहा आपने कि खुद के जितने भी वीकनेसेस है ना उस पे काम करते रहना आपकी कामयाबी है।
0: अपना काम करते रहना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि बंदा है, जैसे आप मतलब बता रही हैं कि मतलब कहा कह रहे भैया यूपी के भैया तुम कहाँ चले आए हो यहाँ पे ये करने के लिए, तो बंदे को उससे मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब यार ऐसा थोड़ी है कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। ये कोई मसला नहीं होता, यूपी हो या बिहार हो या फलाम का मतलब सिटी हो, ये कोई मैटर नहीं करता बंदे को के अंदर अगर लगना
1: है। ये तो उनको थोड़ा सा डिसहार्टेंड और डीमोटिवेट करने वाली बात थी, क्योंकि मैं इस एक्टर से मिली भी हूँ पर्सनली, तो इन्होंने जिस स्टाइल में मुझे बताया कि कैसे मेरी शुरुआत हुई थी, तो एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे उनके, कहाँ चले आ रहे हो उठा के, तो समथिंग लाइक दैट। तो उनका कहना था कि जैसे ही मैंने कहा कि मैं यूपी से, तो फिर यूपी के भैया क्या क्या बनोगे तुम, इस तरह का मजाक। तो ही वाज लाइक कि शुरू में छोटे शहर से, हाँ और ये छोटे शहर से भी है।
0: आप मुंबई में तो नहीं गई हैं, आपने मतलब कल बयान किया था।
1: जी जी मैं नहीं गई।
0: तो हम लोग तो मुंबई में रह चुके हैं हम। अच्छा, लोग अच्छा। शुरुआत अपनी स्टार्टिंग जब पढ़ाई से हम मतलब उत्तर प्रदेश से निकले, पढ़ाई से खलास करके जो भी जितना पढ़ाई करना था करके, तो सबसे पहले मुंबई का ही रुख किए थे। अच्छा। तो हम वहीं पे जाके सेटल हुए थे मतलब मैकेनिकल मतलब जॉब में, जो भी मतलब मैंने कुछ प्रोफेशन सीखने के लिए मतलब अपने आप को ये किया था, ऐसे नहीं कि मतलब आम लेबर की तरह, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई प्रोफेशन होना चाहिए किसी बंदे को कामयाबी के लिए। स्किल अगर नहीं है उसके अंदर तो ये जान लो कि फिर बंदा परेशान ही रहेगा, धक्के ही खाएगा लाइफ में, वो कामयाबी उसके लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज जो डॉक्टर हो बड़े बड़े जो, तो वो लोग बड़े परेशानी उठा के उस मकाम तक पहुंचते हैं। तो आज मतलब एक कलम उठा के और ये गुस्से तो सारे लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं उनके सामने इज्जत से। तो वो बड़े मतलब अपने अपने लाइफ को मतलब कितना ये करके फिर वहां तक पहुंचते हैं। तो ये मकसद होता है कि मतलब कोई भी स्किल सीखना ये सबसे बड़ी, और अपने बाल बच्चों को भी, ये नहीं कि मतलब यार जाएगा फला जगह पे ये करके कमा लेगा, ये करोगे तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। अगर आप उसके जिंदगी को और उसके लाइफ को अगर ये करना चाहते हो तो कोई ना कोई स्किल उसको कहीं ना कहीं से वो जरूर रोजी कमा सकता है, वो उसके अंदर अगर है, चाहे एक छोटा सिलाई कपड़े का सिलाई ही क्यों ना ले लो, कोई भी मतलब स्किल हो। तो ये जरूरी है, बंदे के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब बस यार चलो कहीं भी वो 10 लोग उसको आवाज दे के, वहीं पर देख रहा हूँ लेबरों को ना, जो हमारे कंपनियों में सब लेबर है बेचारे, उनमें सबसे ज्यादा बेचारे मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा उनकी बेइज्जती भी होती है और सबसे कम पैसे भी मिलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा गलती है कि उनको उस तरफ ये नहीं करते हैं, और अपनी खुद की भी ये रहती है कि हम सोचते हैं यार चलो इससे उसमें चलो, और खासकर ये हम लोग के उत्तर प्रदेश और ये बिहार साइड के जो लोग हैं, ये लोगों का मतलब रुझान थोड़ा सा अब तो ज्यादा सुधार आ रहा है तकरीबन, लेकिन तकरीबन ये यूपी के भैये का ये सब जो लैंग्वेज था जो आप बता रही हैं, ये बहुत आम था, बहुत ज्यादा हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता था। और मैं तो एकदम महाराष्ट्रियन के उन लोगों के एरिया में था, तो बड़ा ज्यादा मतलब ये करते थे तो थोड़ा तकलीफ लगता था, लेकिन उनके भाई वो जबान ही मतलब इस तरीके से बड़ा कमतर समझते
1: थे। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं और बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे। मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जैसे इस एक्टर ने भी अपने, जब इनसे मेरी बात हुई थी मुझे बता रहे थे कि लोग बहुत ही हेल्पफुल, बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट भी करते। इंडस्ट्री में जब ये एंट्री कर रहे थे उस वक्त इन्हें इस तरह की स्लैंग्स, इस तरह की चीजें, डेफेमेटरी वर्ड्स का सामना करना पड़ा। मतलब इनिशियली क्या होता है ना, दूसरे जो आए हुए होते हैं जो जो ऑडिशन दे रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे होते हैं बाहर आपको, तो कि भाई आप डिमोटिवेट होंगे तो आप जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनका चांस थोड़ा सा बनेगा। क्योंकि एक फिल्म के लिए इन्होंने बताया कि 1,000, 2,000, 3,000 लोग होते थे छोटे छोटे रोल के ऑडिशन के लिए, और उसके भी इतनी मारा मारी होती थी कि पूछे नहीं। तो ये भी होता है कि आप किस तरह से डिमोटिवेट कर सकते हो।
0: अभी तो थोड़ा सा हो गया कि मतलब लेडीज के उसमें अलग अलग तरीके से मतलब आप मैं कह रहा हूँ
1: जी जी जी,
0: बहुत जल्दी उनको जगह मिल जाता है। और जेंट्स है तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग और थोड़ा सा डांसिंग मानसिंग थोड़ा ये कर लिए तो उनको मौका मिल जाता है। तो ये सब अब, और पहले के हिसाब से थे बेचारे 55 साल 60 साल के होते थे और नहीं नहीं मतलब वो लगता वो माहौल ही अलग था, उस टाइम का सोच ये लगता है। तो बड़े बेचारों को बड़ा मतलब ये करना पड़ता था, बताते हैं कि मतलब उनको एक एक चीज के लिए कितना मतलब मशक्कत उठाना पड़ता था।
1: ट्रू, सही
0: तो ये सब मामला।

0: पहले में और आज में बहुत फर्क हो गया है आज के मतलब उसमें। तो उस वक्त मेरा वो कहने का मतलब नहीं था कि महाराष्ट्र के लोगों को, वो गांव जिस तरीके से मैं था तो एकदम समझ लो कि लास्ट एकदम महाराष्ट्र के एकदम जहाँ पे गांव का उनका जो असल लैंग्वेज वहीं पे वही उर्दू हिंदी जबान बोली ही नहीं जाती थी बिल्कुल, बहुत कम वहाँ पे अगर कोई हिंदी बोलने वाला होता था तो उसको भैया कह के बोलते थे मराठी में थोड़ा। तो मैं बहुत जल्दी मराठी सीख गया था तकरीबन वहाँ पे रह के, तो ये तो थोड़ा से अपना सेटल हो जाता था कि बात करके उनसे कुछ पूछना रहे कुछ तो मराठी में पूछो तो वो लोग अच्छे से जवाब देते थे उनको।
1: ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, रिस्पेक्ट मिलती है, आप जहाँ है जिस जगह है वहाँ की जो लैंग्वेज है लोकल उसको कल्चर को समझ गए आप तो आपका काम आसान हो जाता है। That's
0: nice. बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है उसको तो अपने उस पे ये करना चाहिए। मेरे मेरे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं, मराठी हिंदी पंजाबी और मतलब नेपाली अब भोजपुरी उर्दू अरबी इंग्लिश ये सब मतलब मैं अपनी जरूरत भर का सारी लैंग्वेज पे मतलब जहाँ पे जरूरत पड़े तो मैं ये कर सकता हूँ उसको अपना गुजारा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे जाके
1: क्या बात है रईस जी, आप नाम के नहीं टैलेंट के भी रईस है माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: असल मेरा रुझान इतना होता ना जिस एरिया में रहता हूँ मेरा नजरिया सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो काम से ज्यादा फिर मैं उस लैंग्वेज को वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं उस लैंग्वेज को मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ या उसको सीखूँ। और जो अपने करीब जो भुले मुले रहते हैं तो उनसे पूछता भी यार इसका मतलब क्या हुआ यार ये कैसे बोलेंगे तो ये चीजों पे यहाँ तक कभी कभी रात में मेरा नींद खुलता था ना तो वो बंदे ने क्या मतलब ये कहा था उसका मतलब क्या हुआ तो उसको दूसरे दिन मैं पता करता था कि ये बंदे ने ये कहा था असल में कहा क्या था।
1: लगन थी आपको सीखने की लगन तो है
0: होता है इसको अगर करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब तकलीफ कम उठाना पड़ेगा मेरे ख्याल से।
1: बिल्कुल
0: कामयाबी है तो वहाँ का जबान और अपनी मेहनत और वो जरूरी है कल्चर वहाँ का जो हिसाब का है वो अगर जरूरी अपने उस पर ये करके रखोगे तो आपको जल्दी कामयाब हो जाओगे मेरे ख्याल से।
1: बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, थैंक यू सो मच रईस जी, थैंक यू आपने कॉल किया।
0: इंशाल्लाह सुन रहे हैं और हमारे भाइयों को भी मौका दे और जावेद भाई की तारीफ तो बाकी माशाल्लाह मैं करते हैं हम लोगों से कभी कभी बात तो होते रहता है माशाल्लाह बड़े अच्छे थोड़ी दिन चले थे मतलब हम लोगों के ये सलीम साहब और जावेद साहब और मैं थोड़ा के मम्मी दो तीन आदमी हम लोग महवेश ने शुरू किया था तो उसमें लगे थे।
1: अच्छा,
0: हालांकि मैं तो सिंगर विंगर नहीं हूँ बस तो थोड़ा सा उसमें जोड़ के थोड़ा सा अपने उसमें थोड़ा सा शुरू अच्छे गाने के उसमें आला सलीम भाई आते थे तो वो भी थोड़ा हंसाते भी थे और थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करते थे थोड़ा अच्छा लगता था।
1: मैं सोच ही सकती हूं
0: माशाल्लाह
1: माशाल्लाह उनका सिंगर है
0: उनका आवाज बेहतरीन आवाज है और बड़े अंदाज मतलब उनका जो है बड़ा अच्छा होता है मतलब गाने का और ये करने का अच्छा लगता है सुन के।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं।
0: चलिए ठीक है, शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, शुक्रिया आपका कॉल करने का।
0: हाँ उसका ख्याल रखो, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था आपको,
1: मैं अभी देखती हूँ, आप भी देखते हो ठीक है,
0: अभी भेज रहा हूँ फिर से भेज रहा हूँ, कल भेजा तो आपने शायद रीड नहीं किया था, अभी भेज रहा हूँ,
1: अभी मैं अभी मैसेजेस भी लूंगी मैं सारे। ठीक है
0: ठीक है,
1: दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो हमें मैसेज कर रहे हैं, कुछ सही जवाब भी हमारे पास आ चुके हैं, वापस आऊंगी तो मैं जवाब भी आपके रीड करूंगी, कुछ और भी क्लू आपको दूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चलिए थोड़े से क्लू और दे देती हूँ। जहाँ लोगों ने अभी अमजद खान कहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग सही भी कह रहे हैं, अब्दुल रऊफ जी, राजेश खन्ना, नहीं अभी यहाँ पर बहुत सारे अमिताभ बच्चन लिख के भेज रहे हैं, वो जवाब सही नहीं है, वो तो ऑलरेडी आउट हो गया। तो मतलब मैं थोड़ा सा अगर इनके बारे में बताऊं, इस एक्टर की जो पहचान है वो उनकी नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग है। ये ऐसे बहुत एस्टैब्लिश, जैसे मैंने कहा बहुत पॉपुलर एक्टर नहीं है, इन्होंने कमर्शियल और आर्ट फिल्म्स जो हैं उन दोनों में अपना काम किया है, लेकिन आर्ट फिल्म से इन्हें ज़्यादा शोहरत मिली। एक मूवी इनकी थी मासूम, जिससे इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, अ वेंसडे, इससे इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, और जाने भी दो यारों। तो अब मैंने आपके सामने दो तीन मूवीज भी दी हैं, अब थोड़ा सा सोचिए। और हाँ, इनकी जो वाइफ हैं वो भी एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, और दोनों कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का एक इंटेलेक्चुअल कपल भी कहे जाते हैं। जिस तरह की भी बात होती है उस पर ये बहुत ही ओपनली अपनी राय रखते हैं। वैसे इस एक्टर ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हॉलीवुड की फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेंटलमैन में भी इन्होंने काम किया, इसीलिए इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण मिला है। आज भी इनकी जो एक्टिंग है, लाइक एक्टिंग का ये बेंचमार्क माने

जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये कहीं शूट कर रहे होते थे तो डायरेक्टर्स जो थे इन्हें बुलवाते थे और कहते कि प्लीज डायलॉग जो है कैसे डिलीवर करना आप एक्टर को बोलो। ये वो एक्टर्स जो आपके और हमारे हीरोज हैं, जो सुपरस्टार्स हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:05।

0: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 8:10 ऑन द क्लॉक, 8:10 और एक कॉलर हमारे साथ यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं. चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो.
1: हाँ जी, अलीगढ़ वाले हो. गुड मॉर्निंग.
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? कहाँ थे आप?
1: रिपोर्ट मैडम. एक्चुअली चक्कर पता क्या है, मेरी ड्यूटी थोड़ी सी लेट शुरू होती है आजकल.
0: अच्छा है भाई.
1: उसकी वजह से थोड़ा शो का सेकंड पार्ट ही सुनने को मिलता है मैडम.
0: थर्ड कही है फिर तो, लास्ट वाला अब क्या.
1: सही,
0: तब तक हम पूरी कहानी अपनी सुना चुके होते हैं, लास्ट में आ गए होते हैं.
1: मगर लास्ट में भी आके मैडम मेरे को तीनों की तीनों बातें आपकी याद है.
0: अच्छा.
1: फर्स्ट जो आपने टॉपिक छेड़ा, सेकंड जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अभी थर्ड जो आप ये जो आर्टिस्ट जी की बात कर रहे हैं.
0: आप
1: यकीन मानिए नाजिया जी, यकीन मानिए मेरे को पहले इन एक्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था.
0: अच्छा.
1: अभी जैसे आपने चर्चा छेड़ी है ना इनकी, तो मैंने सर्च किया, मेरे को नहीं पता था मैडम.
0: अच्छा.
1: मैडम यकीन मानिए इनके नाम में ही मोटिवेशन है.
0: नाम नहीं बताएंगे आप, मुझे लिखकर ही भेजेंगे.
1: नहीं बताऊंगा मैडम, नहीं बताऊंगा जी.
0: चलिए अच्छी बात है, बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं इनके नाम. नाइस. और वैसे आज इनका बर्थडे भी है, इसलिए भी मैंने इनके बारे में सोचा बात की जाए.
1: सही है मैडम. मैंने पहली बार सुना है, ना इनकी मूवी देखी है कोई, मगर अभी मैं अच्छी तरह से रिसर्च करूंगा इनके बारे में.
0: अब आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा. छोटा सा मैं एक बहुत ही अच्छा किस्सा भी बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले क्योंकि आपने बोला कि आपने टॉपिक सुन ही लिया था मेरा, तो मैं चाहूंगी कुछ ना कुछ आप ऐड कीजिए, क्योंकि आप अच्छा ऐड करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल ऐड करते हैं बात.
1: जी मैं मैडम टॉपिक से पहले इंडस्ट्री की बात करूंगा. आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे ना.
0: हाँ बताइए.
1: जब मैडम आपकी बात चल रही थी ना, तो आप यकीन मानिए मेरे सामने ना सिद्धू पाजी का किस्सा आ रहा था, सेम एज इट इज.
0: अच्छा. उनको भी ऐसे ही बोला गया था.
1: उन्होंने जब अपनी शुरुआत की थी ना, तो उन्होंने अपने गाने निकाले थे, कनाडा में फर्स्ट सॉन्ग निकाला था उन्होंने अपना.
0: अच्छा.
1: जी, तो उन्होंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, टीवी वालों से टच किया, भी मेरा गाना टीवी पे चलाओ. आप देखोगे उनका एक भी गाना आज तक टीवी पे नहीं आया जब नया रिलीज हुआ था. तो उन्होंने क्या किया, अपने आप ही अपनी कंपनी बनाई मैडम, अपने दोस्तों को साथ लेके म्यूजिक किया, खुद ही वीडियो शूट किया उन्होंने और खुद ही यूट्यूब पे पोस्ट किया.
0: सी, लोग इनिशियली उतना हेल्प नहीं करते क्योंकि बहुत ही नेक टू नेक वैसा कंपटीशन भी है, कट थ्रोट कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में.
1: बहुत ज्यादा है मैडम. जब वो फेमस हुए, फिर उसके बाद में हर कई बंदा बोलता था भी ये बंदे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मेरी अच्छी दोस्ती है. उसके बाद तो आपको पता है जब बंदा फेमस हो जाता है फिर क्या होता है.
0: सही बात है, फिर तो हर कोई तैयार है कि लाइए हम आपके साथ एसोसिएट करते हैं. बट हाँ, पहले किसने आपकी हेल्प की, इंसान को याद रह जाता है. बिल्कुल सही कहा
1: जी. और मैडम आप उनकी कामयाबी का देखिए क्या, अपना उनकी कामयाबी को अगर आप देखोगे ना मैडम, उनका जो लास्ट शो था ना, वो दुबई में था मैडम, आई थिंक मार्च में.
0: अच्छा
1: जी. अच्छा. तो आप मैडम आप सर्च भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे मैडम, जो उनका शो था ना लास्ट, उसमें इंडियन ऑडियंस से ज्यादा पाकिस्तानी पंजाबी ऑडियंस थी. प्यार देखिए मैडम लोगों का उनके लिए.
0: यही चीज है, ये प्यार असली प्यार है कि लोग जो है ना आपको जो आपने प्ले किया है कैरेक्टर उसके लिए तो पसंद करते हैं, लेकिन एज अ पर्सन भी आपके साथ जुड़े हुए पूरी तरह से. तो ये
1: मैडम एक और आप लाइव एग्जांपल देखिए, मैंने कभी भी आज तक आपको किसी

0: अच्छी सॉन्ग की रिक्वेस्ट नहीं की।
1: हाँ नहीं की आपने।
0: हमारे से ज्यादा पाकिस्तानी पंजाबी इतने अच्छा लाइक करते हैं ना मैडम उनको।
1: हाँ।
0: आप देखोगे मेजोरिटी में उनकी तरफ से ही रिक्वेस्टेज आती हैं सिद्धू पाजी के गानों।
1: सिद्धू पाजी जी जी बहुत आती है
0: जी।
1: हाँ, बहुत
0: तो लोग मैडम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, दिल से प्यार करते हैं मैडम।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल।
0: तो उनके साथ भी मैडम यही सेम सीन हुआ था स्टार्टिंग में,
1: क्योंकि इन एक्टर से मेरी मुलाकात हुई एक बार, तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि कितना मुझे हरासमेंट जो था वो इनिशियली झेलना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आज आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमने बहुत पापड़ बेले हैं। ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि हमने बड़े पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए। तो दैट्स राइट।
0: तो मैडम ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला ये इंडिया से शुरू हुआ था आपका है?
1: जी जी, इंडिया से पहले इनिशियली मैं वहां पे करती थी काम। तो लेकिन अच्छा लगता
0: अच्छा
1: है जब लोग इस तरह की अपनी बातें बताते हैं, अपने ऑब्स्टिकल्स की, अपनी हार्डशिप्स को शेयर करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आप भी मोटिवेट होते हैं, आपको लगता है कि अरे ये सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ में भी हैं, फिर आप रिलेट भी करते हो, फिर लगता है ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ, है ना। तो ये आपको मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल सही कहा।
0: बस नाजिया जी वही बात है ना, मैं अभी फिर दोबारा कहूंगा, अगर आपके सामने कोई बैठ जाए ना इंटरव्यू के लिए तो आपको मैडम स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास होती है स्क्रिप्ट।
0: बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, होती है, बट ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चंस निकलते हैं ना बंदे के दिमाग से मैडम,
1: वो एक्सपीरियंस
0: भी है।
1: नहीं अब मैं वो कर रही हूँ तो शायद आप करते रहेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आपके भी ऑटोमेटिकली निकलेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें मेरा कोई कमाल है, क्योंकि अब इतने टाइम से कर रही हूँ तो थोड़ा सा यूज्ड टू हूँ, बस यही बात है।
0: ठीक है जी,
1: वरना आप यू आर लाइक। चलिए जी, आप हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक लाइन तो कुछ ना कुछ जरूर मुझे बताइए कि आपके लिए असल कामयाबी क्या है।
0: मैडम कामयाबी की मेरे हिसाब से जो असल पहचान है ना मैडम, वो अपने फर्जों के प्रति लॉयल होना है मैडम, वफादार।
1: क्या बात है, जो आपकी रिस्पांसिबिलिटीज है ना पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं, चाहे एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ एम्प्लॉई, एज अ ब्रदर, ये कह रहे हैं, एज अ फ्रेंड, ये जितने भी आप हैं
0: मैडम। एक्चुअली मेरे जैसा बंदा पता क्या करता है, देखो मेरे जैसा बंदा हक जमाता है वाइफ के ऊपर भी, मैं घर पे जाऊं वो मेरे को खाना बना के दे, पानी दे, उसके पीछे मैडम मेरे भी तो फर्ज है ना कुछ। अगर मैं अकेला हक ही जमाता रहूंगा उस पे तो मैडम वो अच्छी बात नहीं है ना।
1: सही बात।
0: अगर मैं अपने फर्जों के प्रति वफादार हूँ किसी भी फील्ड में मैडम, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप स्टूडियो में बैठे हो, कहीं भी आप अपने फर्जों के प्रति मैडम वफादार हो ना, आपकी जिंदगी बहुत आसान निकलेगी मैडम।
1: बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी लाइन कही, और आई थिंक ये बेस्ट कामयाबी किसी भी इंसान की हो सकती है कि वो अपने आप के लिए लॉयल रहे और दूसरों के लिए रहे, अपनी रिस्पांसिबिलिटीज अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं सारी, ये असल कामयाबी है, क्योंकि सुकून है आपके पास ना, और सुकून में ही कामयाबी है। तो यही
0: देखो नाजिया जी, आप अपने आप से फेयर हो ना मैडम, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, टेंशन नहीं होगी। चलो जो जॉब की वजह से स्ट्रेस होता है वो तो अलग चीज है।
1: हाँ वो तो है,
0: जो बेवजह स्ट्रेस है वो आपको जिंदगी में नहीं होगा मैडम।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी लाइन आपकी, जबरदस्त। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हमें आपसे सीखने के लिए मिलता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा आप टॉपिक पे हमारे ज़रूर जुड़े। हालांकि अभी टाइम तो नहीं रहा था, बट फिर भी मुझे लगा कि आप कुछ ना कुछ अच्छा ऐड कर ही देंगे, जो कि आपने किया भी। सो थैंक यू सो मच। अब हम समझ गए कि आप 8 बजे से फ्री होते हैं, तो चलिए थोड़ा सा टाइम रखा करेंगे हम आपके लिए कि आप आएँ और हमारे साथ जुड़ें और कुछ ना कुछ टॉपिक पर ज़रूर बात करें। थैंक यू सो मच।
0: लास्ट में नाजिया जी मैं यही दुआ करूँगा आपकी ये जो डिसेंट एनर्जी है ना, ये ऐसे ही बरकरार रहे।
1: चलिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। तो यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं लिसनर्स हमारे कि सच्ची पूछिए नहीं। अच्छा आज अब जो मैं आपको जिस एक्टर को कह रही होगी ना, गेस कीजिए, बहुत सारे लोगों ने सही गेस कर लिया है, मेरे मुँह से निकलते निकलते नाम बचा, थैंक गॉड। हाँ अब्दुल रऊफ जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आरिफ अंसारी जी ने सही जवाब दे दिया, फैयाज जी का जवाब शाहरुख खान तो नहीं, हाँ ये शायद हमने पहले ले लिया था, एंड उनका सीरियल है मिर्जा गालिब. जी जी अहमद जी बिल्कुल सही कहा, ये क्लू भी आप लोगों के लिए. फाइनली यूसुफ जी का जवाब बिल्कुल सही है. मैं सोच ही रही थी कि यूसुफ जी कैसे नहीं पहचान पाए. यहाँ पे आरिफ जी ने शत्रुघ्न सिन्हा लिखा, फिर इन्होंने सही जवाब आरिफ अंसारी जी ने भी भेज दिया हमें, और एकदम सही जवाब है असलम अली जी का. और भी बहुत सारे सही सही जवाब आने शुरू हो गए हैं. एंड आफ्ताब खान जी ने सही बताया है, अब्दुल रऊफ जी ने बिल्कुल सही कर लिया, सैयद फिरोज जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, और ये नतू राम जी हैं. रवि कृष्ण नहीं, ये नहीं है एक्टर रवि कृष्ण नहीं है, आज इनका बर्थडे भी है वैसे, मैं आपको बताऊं. अच्छा रईस खान जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है. एंड सलाम, इट्स नाइस टू लिसन यू इन द दिन, अच्छा जाता है. ओ थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ये प्यारा सा मैसेज भेजा है कयूम पारकर जी ने, बहुत शुक्रिया कयूम जी, थैंक यू. और हम चाहते हैं कि हमेशा आपका दिन, आपकी इवनिंग्स बेस्ट और एकदम बेस्ट हो. ये सही वाला जवाब मुझे भेजा है मुबाशिर फरहान जी ने, राइट. शकील अली आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक है, यहाँ जसविंदर जी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे जवाब सही भेजा है, इनका नाम यहाँ पर नहीं है, शायद अहमद है लास्ट में शायद, और ये अपडेट मोहम्मद इब्राहिम जी. मैं तो खुद इतनी अजीब सी शर्मिंदा हूँ, काकी होती तो चुल्लू भर पानी उनसे मांगती. अच्छा यहाँ है अनुपम खेर, नो अब्दुल फैजल जी अनुपम खेर नहीं है. और क्या जवाब, बिल्कुल सही जवाब इनका भी है, इन भाई का नाम चेक कर लेते, अहमद, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया. और भी मेरे पास जवाब आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी आपके साथ अपडेट भी शेयर करती हूँ. तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो एक्टर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उनका आज बर्थडे भी है, इसके साथ इन्होंने सरफरोश मूवी में एक्टर जो हैं आमिर खान के साथ काम किया था. बड़ा कमाल का इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. जैसा आप लोग जानते हैं आमिर इज़ लाइक मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ठीक है, हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए. तो ये परफेक्शन की जो उनकी गंदी आदत, उनकी अच्छी वाली जो आदत है, वो इस तरह की है कि वो अपने डायलॉग्स को भी इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, उसको ठीक करते रहते हैं, दुरुस्त करते हैं. साथ ही जो दूसरे एक्टर्स होते हैं उनके लिए भी उनको भी टिप देते रहते हैं कि जी इसको ऐसे कर लो डिलीवर, इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका ये टोका कि कहो या जो भी है वो चलता रहता है. मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते बताते रहते हैं. तो एक डायलॉग था जहाँ पर इस एक्टर को ये डिलीवरी देनी थी, डायलॉग उनको बोलना था. अच्छा जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया तो मतलब खुद भी उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, और साथ ही आमिर खान क्योंकि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर मज़ा नहीं आया, उनको सर बोलते हैं. अच्छा सर नाम की उनकी एक मूवी भी आई थी, अच्छा ये भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है. तो उन्होंने कहा नहीं सर मज़ा नहीं आया. वैसे आमिर ऐसे हैं सबको ज़्यादातर नाम से बुलाते हैं, लेकिन ये ऐसे एक्टर हैं जिनको वो सर कह के ही हमेशा बुलाते हैं, कहेंगे सर मज़ा नहीं आया. तो हुआ कि फिर कैसे, फिर मतलब आमिर ने एक करके दिखाया स्टाइल, फिर जो था डायरेक्टर उसने थोड़ा सा बताया, तो ये एक्टर जो थे इन्होंने बोला कि नहीं मज़ा नहीं आया, आप दोनों के करने में मज़ा नहीं आया. एंड दे लाइक एकदम उनका मुँह खुला का खुला रह गया कि अच्छा फिर. तो यहाँ पर इस एक्टर ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि यहाँ पर जो आप डायलॉग बुलवाने की कोशिश करवा रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो ये इमोशन है, जो ये सीन है, इसे मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन से पूरा करूँ. अब डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि आप बिना बोले ये डायलॉग जो है वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से कैसे डिलीवर करोगे, कैसे ऑडियंस को समझ में आएगा. देन ही वाज लाइक मुझे आप टाइम दीजिए, मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही इस सीन को कंप्लीट करूँगा. और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. इस कमाल के एक्टर ने, इस आर्टिस्ट ने अपने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन से इस सेंटेंस को रिप्लेस किया, और जिस तरह का उन्होंने जो प्रोजेक्शन था, जिस तरह का उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह की उनकी वाइब थी, वाज अमेजिंग. 3-4-5 कैमराज लगे थे शूट करने के लिए कि हर छोटे छोटे डिटेल वाले एक्सप्रेशंस को इनके कैप्चर किया जाए. और वहाँ पर आप सोचिए कितना टफ होता है कि बिना बोले डायलॉग आप बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो तो अगला तो समझ ही रहा है, बट आप बोल नहीं रहे हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज से आप बता दे रहे हो, एक्सप्लेन कर देते हो किसी को कि आप ये कहना चाहते हो. एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू एक्टिंग. ये कैलिबर सिर्फ और सिर्फ इसी एक्टर का है. तो चलिए थोड़ी देर के लिए और हम रखते हैं सस्पेंस, और बस मुझे लगता है कि छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत ही छोटे मोटे मुन्ने से ब्रेक के बाद, जब मैं वापस आऊँगी तो फटाक से मैं इस एक्टर का नाम बता दूंगी और इनका एक गाना भी चलाऊंगी. अगर आपका कोई फेवरेट है वो भी चलाइएगा, फिर हम अपना T30 वाला गेम भी स्टार्ट करेंगे. जो जितने लोगों ने सही जवाब दिए उनमें से किसी एक को रैंडम कॉल लगाएंगे, उनके साथ गेम स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट,

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी।

गाइस वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 8:30 ऑन द क्लॉक. और अब मैं फाइनली बता ही देती हूं कि किस एक्टर के बारे में बात हो रही है. बट बिफोर दैट कुछ और लोगों ने भी सही सही यहां पे जवाब दिए हैं. जैसे ये जवाब है नवाब जी का एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट. और ये जवाब है कैसर जी शत्रुघ्न सिन्हा. इज नॉट द राइट आंसर कैसर जी. अब मैं आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में बात हो रही है. एंड इरफान खान जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है. रईस खान गाना चला दीजिए. ठीक है चलाते हैं. अच्छा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है सैयद खादिम हुसैन जी का. आज जिस एक्टर के बारे में मैंने बात की है एक और देख लेती हूँ. गुड मॉर्निंग कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज. बहुत ही प्यारा सा मैसेज है. कैसर जी का मैसेज है. नफीस जी का मैसेज है. वेरी गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. अच्छा ये जिस एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं इज वन एंड ओनली नसीरुद्दीन शाह जी. तो आप में से जितने सारे लोगों ने सही सही जवाब दिया क्या बात है. तालियां आप सभी के लिए. बहुत ही अच्छा आपने समझा. और ये इस तरह के मैंने कहा ना बहुत पॉपुलर एक्टर नहीं है बट इन लोग की स्टोरीज जो हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है. कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी जैसे शाहरुख खान की इट्सेल्फ बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. ही इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम लाइट फ्रॉम द वेरी हम्बल बैकग्राउंड आप जानते ही हैं. लेकिन कुछ लोगों का कोई गॉडफादर नहीं होता इंडस्ट्री में. उन्हें अपने आप को एस्टैब्लिश करना होता है. एंड सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि इनकी फैमिली वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ अ फैमिली जहाँ पर यू नो बॉलीवुड एंड ऑल दैट उतना वो लोग अच्छा नहीं उतना उस तरह से यू नो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जाए इस फील्ड में. तो बस इनकी एक स्ट्रगल अपने आप से थी. जैसे इन्होंने मुझे बताया कि खुद को एक तो समझाना कि क्या मैं वाकई आई एम कन्विंस्ड थॉरली कि मुझे जाना है इस फील्ड में. फिर अपने पेरेंट्स को समझाना. फिर और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कन्विंस करना. और सबसे कट के बच के कितनी कितनी ज़्यादा इन्होंने इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे. और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके फादर इनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने पूरी तरह से इनको जो था वो छोड़ रखा था. दे वर लाइक कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे कुछ नहीं करोगे पैसे ज़ाया कर रहे हो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो एंड वापस इवेंचुअली तुम वापस ही आओगे और फिर शायद तुम्हारा वक्त निकल गया होगा. तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे खुद को कन्विंस करना था कि नहीं 100% मैं करूँगा. तो कितनी सारी बैटल चल रही होती है विद इन है ना. कई बार किसी चीज़ के लिए आप कोई फैसला करते हैं कोई आपको ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो आपकी अपनी खुद से जंग चल रही होती है. फिर आपको खुद से भी अपने आप को समझाना है वो जंग भी जीतना है. फिर बाहर की जो जंग है वो तो है ही उसे भी आपको जीतना है. तो इस तरह से मेहनत से डेडिकेशन से अपने फर्म बिलीव से आप जीतते हैं. यही असली कामयाबी है कि हार के बाद हार नहीं माननी है. हार के बाद हार नहीं माननी है और हार तक पहुंचना है कि आपके गले में हार पड़े वहां तक आपको पहुंचना है. उसके लिए लगे रहना है मेहनत करते रहना है. दैट्स द ट्रू लेसन. और मेरी कोशिश रहती है कि हम आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें किसी ना किसी तरह से. चलिए तो बस अब यहाँ पर हमने इस टॉपिक को कंक्लूड किया. बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिए हैं तो ज़बरदस्त बात. और आज क्योंकि इनका बर्थडे भी है तो जितने लोग जिनके सही जवाब हैं उनके गाने भी अगर कोई आप चाहते हैं कि नसीरुद्दीन शाह जी का पर्टिकुलरली ये सॉन्ग आपको सुनना है तो आप मुझे भेज दीजिए उस गाने का नाम लिखकर मूवी का नाम लिखकर तो हम वो डेफिनेटली प्ले करेंगे. हालांकि मैं भी ढूंढ रही थी कोई अपबीट नंबर मुझे मिल जाए क्योंकि अभी मॉर्निंग्स में ना हमें पर्टिकुलरली थोड़ा सा अपबीट ही चलाने होते हैं. तो बस एक ये है कहानी. रईस जी ने कहा है तिरछी टोपी वाले. चलिए ये चला देते हैं हम आपके लिए क्योंकि आपका जवाब भी बिल्कुल सही था. तो अब हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड T30. ठीक है तो हमारा जो T30 वाला गेम है उसमें मैं आपको गाना सुनाऊंगी. गाना सुन के आपको मैक्सिमम स्कोर करना है. ठीक है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो. मैक्सिमम इन द सेंस लाइक आप उस गाने के बारे में बता सकते हैं कि ये इस सिंगर ने गाया है साथ में फीमेल सिंगर ये हैं. फिर आप उस मूवी का उस गाने की मूवी का नाम बता सकते हो मुझे. फिर आप उस मूवी में कौन एक्टर और एक्ट्रेस थी वो बता सकते हो. कौन से जो थे वो को एक्टर्स थे उनके नाम बता सकते हो. विलेन कौन था उसका नाम बता सकते हैं. या कोई भी चीज़ जितना भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते किस ईयर में वो रिलीज हुई अगर आपको पता है हैट्स ऑफ तो वो आप बता सकते हैं. डायरेक्टर है उनका नाम बता सकते हैं. तो दैट्स हाउ आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो 30 seconds में. ये है आपके लिए चैलेंज. इट्स अ ओपन चैलेंज. लेट्स सी कितने लोग जो हैं वो कनेक्ट होते हैं मेरे साथ जुड़ते हैं और इस गेम को इस चैलेंज को पिक करते हैं. तो मैंने आपको गेम क्लियर कर दिया. गेम हमारा यही है कि आपको एक गाना सुनाया जाएगा आराम से सुनिए. फिर आपके पास जो है अगर आप
30 सेकंड्स के बाद आपको लगता है कि नहीं इस गाने के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो आप मुझे बोल सकते हो नेक्स्ट, तो मैं फिर दूसरा आपके लिए प्ले करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम आप जितना स्कोर कर सकते हैं वो जो सबसे ज़्यादा करेगा वो उस दिन का चैंपियन बनेगा। तो बस आपको तैयार हो जाना है, मुझे हाय हेलो लिखकर भेजिए। इफ़ इन केस आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको कॉल करूँगी, और अगर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन द नंबर इज 4434377। वापस आएंगे इस गेम को स्टार्ट करेंगे, फिलहाल के लिए सचे टंडन की आवाज में सचे टंडन की आवाज में माया मेनू एंजॉय कीजिए एंड स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: राइट गाइस, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 8:39 ऑन द क्लॉक. और यहां पर जैसे हमें रिक्वेस्ट आई है कि कोई गाना आप नसीरुद्दीन शाह जी का ज़रूर चला दीजिए, तो चलिए ज़रूर चला देते हैं. और यहां पर रईस खान जी ने गाने की पर्टिकुलरली फरमाइश की थी, वो विश्वात्मा मूवी से नहीं था, त्रिदेव मूवी से था. तो त्रिदेव मूवी का ही ये गाना जो आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है, तिरछी टोपी वाले, तो वो मैं थोड़ी देर प्ले करती हूँ आप लोगों के लिए. आप इन्जॉय कीजिए इस गाने को और वापस आएंगे तो हम आपके साथ 3:30 वाला गेम खेलेंगे, जहाँ पर एक गाना आपको सुनाया जाएगा और उस गाने से जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं, लाइक 5-6, फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा, तो 30 सेकेंड्स में आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो. तो चैम्पियंस जितने भी हैं वो ज़रा अपना हाथ खड़ा करें. अगर स्टेयरिंग पे है तो प्लीज़ नहीं, तो बस आपको जो है वो मुझे हाय हेलो लेकर भेजना है 666-22107 पर. हम आपको खुद कॉल मिलाएंगे और फिर आपके साथ ये गेम खेलेंगे. बट बिफोर दैट,
1: से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे

हाँ जी, यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं जहाँ पे सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. अब्दुल्ला जी, थैंक यू सो मच. अगर मेरे पास टाइम रहा तो जरूर मैं आपके लिए सॉन्ग प्ले करूंगी. बट एक चीज मैं आपको बताऊँ, आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स जो है उसके लिए एक शो है. पर्टिकुलरली 4 बजे से स्टार्ट होता है फजील का शो, द रिक्वेस्ट शो. वहाँ पर भी आप जो है वो पार्टिसिपेट जरूर कीजिए. जी यहाँ पे का सफर जी का मैसेज है और सलाम कहते हैं, एंजॉय करिए मेरे शो को. थैंक यू सो मच.

0: राइट गाइस, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ. और आप, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मुझे गाना भी जल्दी से जो था यहीं पे फेड आउट करना पड़ा फॉर द रीज़न. और मैं चाहती हूँ कि एक बार गेम का आगाज़ हो जाए फाइनली. तो आपके पास 30 seconds है एक्जैक्टली और मैं गाना आप लोगों के लिए प्ले करूँगी. मैक्सिमम आप जितना स्कोर कर सकते हो कर सकते हैं. हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर चैम्पियन जुड़ गए हैं, यूसुफ जी, यूसुफ खान जी. हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: मैंने कहा हमारे साथ चैंपियन हो और फिर वो जुड़े नहीं तो कैसे हो सकता है. क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब भी दिया है. मुझे उम्मीद है कि आज के इस गेम में आप बहुत अच्छा ठीक ठाक वाला स्कोर करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए गाना प्ले करूंगी. आपको जो है वो मूवी का नाम बता सकते हैं, डायरेक्टर बता सकते हैं, एक्टर्स बता सकते हैं, सिंगर्स बता सकते हैं, मूवी किसी ईयर में रिलीज वो बता सकते हैं, कोई भी आपको लगता है या जितना भी आपको आ रहा है, फिर नेक्स्ट भी आप बोल सकते हैं मुझे. ठीक है?
1: जी जी, समझ गया.
0: चलिए, ओके, ग्रेट. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.

0: सही,
1: अनिल कपूर है और काजोल है, अनु मलिक है,
0: सही
1: सिंगर उदित नारायण है,
0: सही
1: अनुराधा पौडवाल है सिंगर, अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ उनका, अभी मेल सिंगर के बाद
0: नहीं दूसरी है,
1: okay,
0: वो
1: next,
0: दूसरा
1: next. आपने सारा है, नसीरुद्दीन शाह है,
0: बिल्कुल
1: आपकी लगनी होती
0: राय,
1: पूजा भट्ट
0: राय,
1: महेश भट्ट
0: राय,
1: अनु मलिक
0: राय,
1: अनुराधा पौडवाल.
0: फिर से सुनिए ध्यान से आवाज,
1: राइट,
0: बिल्कुल सही. एंड नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अप हुआ है, क्या आप सोच सकते हैं आपने कितना स्कोर किया होगा?
1: पता नहीं, मैंने
0: टेन टेन स्कोर किया है आपने, क्या बात है भाई, दो गानों में इतनी सारी चीजें आपको बता दी, और ये गाना भी आप पहचाने, मूवी भी पहचाने, सारी आपने स्टार कास्ट पूरी बता दी, क्या बात है, अमेजिंग. दो गानों में आपने 10 का स्कोर किया, और आई थिंक अभी तक का शायद हाईएस्ट रहे.
1: नहीं नहीं नहीं, आएंगे,
0: आ जाएंगे लोग.
1: नहीं नहीं, चैंपियन है बहुत
0: अच्छा. ओके, लेट्स सी, बट थैंक यू सो मच.
1: इंशाल्लाह,
0: लेट्स सी. बट कुछ ही लोग हैं जितना अच्छा इतना टाइट स्कोर करके जाते हैं, इतना हाइट वाला स्कोर करके जाते हैं. सो बहुत अच्छा खेला, वेरी वेल प्लेड, थैंक यू सो मच, हैव अ फैंटास्टिक मॉर्निंग.
1: थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर तो हो गया है कि गेम क्या है. मैं आपके लिए गाने प्ले कर रही हूँ, जितने मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते गाना सुन के, ये आपके हाथ में है, ठीक है. तो बस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये गेम खेलना है, तो ज़रूर हमें हाय हेलो लिखकर भेजिए, और हम आपके लिए गाना जो है वो मतलब ये गेम आपके साथ खेलेंगे. आप मुझे हाय लिखकर भेज सकते हैं, हेलो लिखकर भेज सकते हैं, फिर इन केस आप मुझे कॉल नहीं कर पा रहे तो मैं आपको कॉल कर लूँगी. बस ये गेम हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, तो जितनी जल्दी आप मुझे कॉल कर लेंगे उतना अच्छा है. बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आते हैं, तो फिर ये गेम जारी रहेगा.

0: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूँ नाजी आपके साथ. 8:51 on the clock. कुछ लोग जो हैं जिनको जिनसे भी हम कनेक्ट हो रहे हैं उनको ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि गेम से डर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आज हमने देखिए कामयाबी की बात की. आज हमने इतना ज़्यादा आपको हाईली मोटिवेट किया. इसीलिए किया था कि आप गेम खेल सकें. बट लास्ट में आप लोग जो है डर के कह रहे हैं कि नहीं हम पार्टिसिपेट हम नहीं जीत पाएंगे. अरे जीतना थोड़ी मायने रखता है. इम्पॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना. ये इम्पॉर्टेंट ही बात है. अच्छा चलिए ये इम्पॉर्टेंट बात के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो मैं जल्दी से बता दूँ बिफोर दैट मैं भूल ही जाऊँ. तो यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कतर सेंट्रल बैंक यानी QCB ने नए नंबर्स के मुताबिक मई 2026 में कतर में डिजिटल पेमेंट्स और कैश कैशलेस ट्रांजेक्शन्स में ज़बरदस्त इजाफा दिखा है. यहाँ पर कार्ड पेमेंट्स की टोटल वैल्यू जो है वो कतरी रियाल 24.4 बिलियन तक पहुँच चुकी है जबकि कार्ड ट्रांजेक्शन्स की तादाद 72.3 मिलियन रिकॉर्ड हुई है. ये दिखाता है कि लोग और बिजनेसेस अब ज़्यादा जो हैं वो डिजिटल पेमेंट मैथड ही इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं POS पेमेंट्स यानी पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स शॉप और मॉल्स में कार्ड से पेमेंट करना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है. ऑनलाइन शॉपिंग भी आपको पता है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की तादाद भी जो है वो 9.4 मिलियन से बढ़कर 12.6 मिलियन तक पहुंच चुकी है. तो इस तरह से अब लोग जो हैं वो कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और कार्ड पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है. तो यहाँ पर ये अपडेट और इसी के साथ एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए. चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. आरिफ जी हमारे साथ राइट.
1: कैसे काम कर रहा था फोन नहीं निकाल पाया मैं.
0: मैंने कहा अब आपके साथ गेम हो क्योंकि आपने भी सही सही जवाब दिए. जितने भी हमारे लोग जिन्होंने सही सही जवाब दिए उन सबको हम कॉल्स ला रहे हैं उनके साथ गेम खेलेंगे. तो आप तैयार हैं? 30 सेकंड्स में 10 से ज्यादा स्कोर करना है आपको. नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं
0: का अरे बहुत अच्छा खेलेंगे. सुनिए तो क्या पता आप कई सारी चीजें बताई थे एक ही गाने को सुन के. तो ट्राई कीजिए ठीक है.
1: गाने का मेन ऑप्शन
0: नहीं गाना सारे मैंने वही 90s वाले रखे और पॉपुलर रखे जिससे कि आप डेफिनेटली आप उन्हें पहचान लेंगे. ठीक है
1: ओके ओके
0: ट्राई कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट.

0: बात होता है अब कौन कौन अक्षय नहीं है
1: नेक्स्ट
0: अच्छा नेक्स्ट चलिए ये गाना पहचानिए

0: मेरे से ना हो पाएगा ये
1: ना हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा जो भी है. चलिए कोई नहीं, फिर हम कुछ और ही गेम सोचते हैं. और आप लोग इनफैक्ट अब आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, गेम तो हमें कोई ना कोई रखना ही है. तो आप लोग कल सोच लीजिए आराम से और मुझे बताइए कि कौन से वाले गेम के साथ आप जाना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि अंताक्षरी हो, आप चाहते हैं कि ये वाला गेम चले, या फिर आपको लगता है कि कोई और, तो डू लेट मी नो. ठीक है, फिर हम उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कल. बट थैंक यू सो मच, आई लव द स्पिरिट कि आप आए, आप जुड़े और आपने पार्टिसिपेट किया. थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, लाफिज. लाफिज दोस्तों, बाहर से मुझे भरपूर इशारा है कि निकल लीजिए आप, और मेरा वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का स्वादी के साथ. इंशाल्लाह कल वापस मिलूंगी .6 बजे इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, जब बात करेंगे यूनिस अली के बारे में, जी हाँ, यूनिस अली 43 ईयर ओल्ड कतरी फुटबॉल कोच हैं और मुल्क के कामयाब तरीन मकामी टैक्टिशियंस में शुमार किए जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी अल अरबी फुटबॉल क्लब के साथ आई जब उन्होंने 2023 में अमीर कप जीत कर क्लब का तकरीबन 30 साल का टाइटल ड्रॉट ख़त्म कर दिया। 2021 से 2024 के दरमियान अल अरबी क्लब की कोचिंग करते हुए उन्होंने टीम को 2023 का अमीर कप और 2024 का कतरी अमीरती सुपर कप जितवाया, जबकि 2022-2023 सीज़न के लिए उन्हें QFA यानी कतर फुटबॉल एसोसिएशन का बेस्ट कोच का अवार्ड से भी नवाजा गया। बाद में यूनुस अली ने अल अहली की कोचिंग 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर संभाली और AFC चैम्पियंस लीग में टीम को शानदार परफॉर्मेंस दिलाई, जहां उन्होंने अपने ग्रुप में टॉप मकाम हासिल किया। 2024-2025 सीज़न में उन्होंने अर्रयान जैसे कतरी जायंट्स की भी कोचिंग की और अपनी टैक्टिकल सोच का मुजाहरा किया। दोस्तों, मैनेजमेंट में आने से पहले यूनुस अली एक नुमाया सेंट्रल मिडफील्डर थे। उन्हें गार्डियोला का टाइटल भी दिया गया क्योंकि उन्होंने अल अहली में मशहूर खिलाड़ी, मशहूर कोच पेप गार्डियोला के साथ खेला। अपने प्लेइंग करियर के दौरान उन्होंने अल अहली, अर्रयान और सलाल की नुमाइंदगी की और कतर की कौमी फुटबॉल टीम के लिए भी खेलकर अपना नाम रोशन किया। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम और उन गिजाओं की जो हमारी बोन्स को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैल्शियम जिस्म का एक नहायत अहम जुज्व है। हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जखीरा होता है। अगर खुराक से मुनासिब मकदार में कैल्शियम ना मिले तो जिस्म अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए फिर हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिससे फिर हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों, नौजवानों और हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और बुज़ुर्ग अफराद को ख़ास तौर पर कैल्शियम की मुनासिब मकदार की ज़रूरत होती है। आइए आज हम जानते हैं कि कैल्शियम किन गिज़ाओं से हासिल किया जा सकता है। दूध और दूध से बनी अशिया जैसे दही, पनीर, लबन कैल्शियम के बेहतरीन ज़राए हैं। रोज़ाना उनका इस्तेमाल बोन्स की मजबूती में मदद देता है। सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि पालक है, ब्रोकली है और साग भी कैल्शियम फराहम करती हैं। इनमें और भी बहुत से मुफीद ग़िज़ाई अज़ा भी मौजूद होते हैं जो मजबूत सेहत के लिए फ़ायदा मंद हैं। इसी तरह एलमंड्स, तिल और जो दूसरे बीज हैं वो कैल्शियम के अच्छे ज़राए हैं। इसी तरह चने, दालें और लोबिया जैसी ग़िज़ाएँ भी बोन्स को सेहतमंद रखती हैं। फिश, ख़ास तौर पर वो फिश जिसकी जो नरम हड्डियाँ भी खाई जा सकती हैं, कैल्शियम और वाइटामिन डी दोनों फराहम करती हैं। वाइटामिन डी के बगैर जिस्म कैल्शियम को मौसर तरीके से जज्ब नहीं कर सकता, इसलिए मुनासिब धूप लेना और वाइटामिन डी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादा नमक, फास्ट फूड, मीठे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बोन्स की सेहत पर मनफी असर डाल सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम कीजिए। इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की ग़िज़ा में शुरू ही से दूध, दही, फल, सब्जियां और दीगर सेहतमंद ग़िज़ाएँ शामिल करें ताकि उनकी जो बोन्स हैं वो मजबूत बन सकें। याद रखिए, मजबूत बोन्स के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि जो बैलेंस डाइट है, वाइटामिन डी है और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी भी बेहद ज़रूरी है। तो सेहतमंद ग़िज़ा अपनाइए, अपनी बोन्स को मजबूत बनाइए और एक एक्टिव जिंदगी गुजारिए।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया FM 107 से एंड वेलकम टू दिस शो कॉल्ड खतर बिजनेस 360। यस, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। वेल दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कतर के तेजी से बढ़ते हुए रियल स्टेट बिजनेस के बारे में। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं, मिस्टर रौनक सिंह, जो UPO रियल स्टेट के सेल्स डायरेक्टर हैं। 10 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है, जिसमें रियल स्टेट सेल्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन है। वेल, देखा जाए तो आपके काम का फोकस जो है वो कैपिटल को सही जगह इन्वेस्ट करने, बेहतर रिटर्न्स हासिल करने और लॉन्ग टर्म एसेट ग्रोथ पर है। मैं कह सकती हूँ क्लाइंट पोर्टफोलियोज को एक डिसिप्लिन्ड और परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रोच के साथ मैनेज करने का भी हुनर रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कतर में प्रॉपर्टी मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड कतर बिजनेस 360 को।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: सो वी वुड लव टू वेलकम मिस्टर रौनक सिंह ऑन FM 107। हेलो एंड वेलकम ऑन FM 107। हाउ आर यू डूइंग?
4: Very well, thank you for having me.
3: Pleasure to have you. And Mr. Ronak, let's start with the current situation. With all the global uncertainties and you know the kind of unrest, how is the property market performing in Qatar today?
4: Yes, of course. I mean, there's no denying that there's been a lot of uncertainties here around. But nevertheless, Qatar's property market has remained relatively quite stable. Mm-hmm. So, see, we have to understand that real estate is generally considered as a long-term asset.
3: Right.
4: So, whatever is happening now is a very short-term effect. So, as a long-term asset, we can see that the current rentals, ROIs are still remaining very stable in this market. And also, we have to look at the way Qatar's government has tackled the situation on the ground. I'm sure if you can see that we have, throughout this entire month and the month before, we have been very safe.
3: Yeah, right.
4: True. So if you see it from that perspective, it's just a lot of news in the air where you feel there's...

0: हैं, लेकिन हर टाइप का अपना मार्केट है और अपनी डिमांड है। वहीं पर रेजिडेंशियल आप समझते हैं कि फैमिलीज के लिए ज्यादा है, प्रोफेशनल्स के लिए उतना नहीं होती। वहीं कमर्शियल जो है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए ज्यादा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए रियल स्टेट को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो है एक टेंजिबल एसेट है, यानी आपके पास एक फिजिकल चीज होती है। स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो के मुताबिक देखा जाए तो रियल स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसमें रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यू अक्सर बढ़ भी जाती है। इसके अलावा रेंटल इनकम का एक रेगुलर इनकम का एक सोर्स भी आपको मिल रहा होता है, तो इसीलिए अब कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। वहीं लीजिंग की बात करें तो लीजिंग का मतलब है कि प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। जब कोई इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी खरीदता है और उसे उस टेनेंट को रेंट पे देता है तो उसे हर महीने फिक्स्ड इनकम मिल रही होती है। इसका बहुत बड़ा फायदा है। वहीं पे कतर में टेनेंट्स की डिमांड भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ ज्यादातर प्रोफेशनल्स, फैमिलीज और कंपनीज टेनेंट होते हैं, जैसे हमारे गेस्ट ने बताया। रेंटल प्राइसेस अक्सर चेंज होती रहती हैं और इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। लोकेशंस हैं, फैसिलिटीज हैं, मार्केट डिमांड है, कभी इकोनॉमिक सिचुएशंस भी हैं। लेकिन प्राइम लोकेशंस पर जैसे सिटी सेंटर है या वाटर फ्रंट एरिया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमेशा जो है वो रहती ही है कहीं ना कहीं डिमांड में। वहीं पर हमने अपने गेस्ट से ROI एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी बात की, जिस पर उन्होंने हमें समझाया कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पर देते हैं और आपको साल भर में अच्छा रिटर्न मिलता है तो देखिए ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। हर इन्वेस्टर को परचेज करना चाहिए और इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो रेंट पे देकर आप ठीक ठाक तरीके से कमाई कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ दोस्तों कि आज के इंटरव्यू से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और रियल स्टेट बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग और एक रिलायबल सेक्टर है जो लोगों को ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए इस वादे के साथ कि नए एपिसोड में एक और नए बिजनेस को हम आएंगे, डिस्कस करेंगे और आपके साथ सारी इनसाइट्स शेयर करेंगे। वेल, फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 11:01 और टाइम हो चला है सफा के साथ एंजॉय करने का, यानी के सन एंड साउंड ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: तो भाई आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। साथियों तो रेडी हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में रेडी होकर आ जाओ, आ जाओ, गोभी दिया फूल लो, खुशबू लगा के आ जाओ। तो भाई साथियों आप सभी को खुश आमदीद, मैं हूँ सफा। और भाई आज का दिन क्या हो गया, मंडे शंडे हो गया है क्या? वो जो ब्लू वाला मंडे होता है वो वाला आया है कि रेड वाला मंडे आया है? आपके हिस्से में कौन सा वाला आया है, रेड वाला, ब्लू वाला, येलो वाला, ऑरेंज वाला, कौन सा आज का मंडे कौन सा है? अच्छा चलो आज जो है ना, जरा मैसेज करके बताओ कि अगर आपके मंडे को कलर दिया जाए तो वो कौन सा कलर होगा। मेरा तो कौन सा वाला चल रहा है, मेरा तो मंडे हमेशा ही ब्लू ही रहता है, पता नहीं क्यों। वैसे ब्लू को अगर तशबीह दी जाए ना तो ब्लू के बारे में कहा जाता है बड़ा ठंडा कलर है, गर्मी के मौसम में बड़ा ठंडा मंडे चल रहा है मेरा। तो भाई साथियों पहले घंटे में तो हम आपको बता देते हैं, देखें जैसे वो डॉक्टर जो है ना वो प्रोसीजर से पहले बता देते ना कि देखें ये मामला होगा, तो वैसे हम आपको प्रोसीजर बता देते हैं। देखें 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपसे सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, ये मैसेजेस, ये कॉलें शॉलें करेंगे, ठीक है। 12 बजे के बाद हम अपना बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे, क्या कहते हो, अच्छी स्कीम है ना? ठीक है, ओके, पॉलिसी अच्छी है, ले लो। तो भाई पॉलिसी का तो पता नहीं, लेकिन आपको ये बता दूं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो के हैं FM 107 कतर, और आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपके कॉल और मैसेजेस के बगैर तो ये शो चलने वाला नहीं है, इंटरैक्टिव शो है। तो साथियों को भी दिया फुल्लो मैसेज का नंबर लिख लो, जिनको याद नहीं हुआ अभी तक वो लिख लो, अगर कोई मेरी तरह गजनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी याद हो ही गया नंबर 666-22107। तो 666-22107 पे मैसेज करना है, अटेंडेंस लगवाओ पहले तो कि कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पता होना चाहिए ना हमें कि कहाँ कहाँ से सुन रहा है, कहाँ कहाँ से यूँ टेलीकास्ट अच्छा अच्छा चल रहा है। और भाई दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, किसने मना किया भाई। 4434377 इज़ द नंबर, 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल। और जब इतनी सारी बातचीत कर ही रहे हैं, गर्मा गर्म बातचीत परोसी जा रही है कोई भी फूलों, तो क्यों ना गर्मा गर्म मौसम के बारे में भी बातचीत हो जाए। देखें आज का जो टेम्परेचर है ना, हाईएस्ट जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस तक, वैसे तो डेली यही हाल चल रहा है लेकिन आज का बता रही हूँ अभी का, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हाईएस्ट जाएगा 44 तक और लोएस्ट गुंजाइश है जाने की, यानी कि शाम तक मेरे ख्याल से होते 35 तक तो आ ही जाएगा, 35-36 ऐसा चलेगा, ठीक है भाई। तो अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी हमारे ऊपर आज करम कर गई है क्योंकि सिर्फ 18% है, कल ज़्यादा थी भाई, कल कितनी याद पड़ रहा है मुझे, समथिंग 30s में थी, हाँ आज 18% है ह्यूमिडिटी, आज बनिस्बत कल के कम है। और अगर देख

kommer till ena porten, lägger in kisafa, bara står ni inte vali. Så att det ska gå klart, jag kommer inte att råka. तो भाई ऐसे सवालों से गुरेज करें और आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते वक्त आपको ये बताती चलूं, देख कुछ लोगों को ना हर जगह पर ना कंप्लेन करने की याद होती है. अरे देखो आप कतर में बैठे हुए हो, अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करो ना. अब क्या हर दफ़ा ऑफिस में बैठे हुए घड़ी देख रहे होते हो और ये सोच रहे होते हो कि हाय हाय दिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हाय हाय गर्मी ख़त्म क्यों नहीं हो रही. चलो इस गर्मी और दिन से रिलेटेड ना आपको कुछ मज़े की बात बता देती हूँ, ठीक है. देखिए आज की खबर ये है कि ये जो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं बार बार घड़ी देख रहे हैं, मेरी तरह मैं भी ये काम करती हूँ, हर 5 मिनट बाद मुँह घड़ी की तरफ घुमाती हूँ. अभी कितने बज रहे हैं, 11:06 हो गए हैं, ठीक है ओके भाई. तो ये जो काम हम कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वाकई में ऐसा होता है और ख़ासतौर पर गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई दिन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा बाबू, ना ना फूलो दिन ख़त्म नहीं हो रहा. और वाकई में एक दिन ऐसा आता है गर्मियों के दिनों में जब वाकई में दिन ख़त्म नहीं हो रहा होता. ऐसा नहीं कि हमें ऐसा लग रहा होता कि दिन ख़त्म नहीं हो रहा, दिन वाकई में ख़त्म नहीं हो रहा होता. अच्छा लेकिन ज़रा सोचिए, देखें आपको एक बात बताती हूँ. अगर आपको ये पता चले कि दुनिया में लिटरली एक दिन ऐसा होता है जहाँ पर वाकई में बहुत ज़्यादा दिन लंबा हो जाता है. जी हाँ है एक दिन ऐसा है. इसको कहा जाता है समर सोल्स्टिस का दिन. और यानी कि इसको कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि जब वो सबसे लंबा तरीन दिन होता है. ये वो दिन होता है जब हमारे सूरज चाचू ना, जैसे हम फ्राइडे को अलार्म ऑफ करके सोते हैं ना, सूरज चाचू अपना अलार्म बंद कर देते हैं वापस जाने वाला. जो अलार्म लगाते हैं ना कि भाई अब जाने का टाइम हो गया है, नहीं नहीं नहीं, सूरज चाचू इस दिन अपना अलार्म ऑफ कर देते हैं और ये फुल एनर्जी मोड में होते हैं. लगता है जैसे इन्होंने ना अपना अलार्म बंद कर दिया और खो गए कहीं, मतलब इन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती, खूब मतलब वेकेशन मनाने आए होते हैं उस दिन. लेकिन अगर आपको अपना दिन लंबा लगता है ना, तो ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि नॉर्थ पोल पे रहते हैं. भाई मैं सोचती हूँ नॉर्थ पोल पे ऐसे लोग भी रहते हैं, ये नॉर्थ पोल या जिन लोगों को उर्दू बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है तो उनके बारे में कहा जाए, कुतुब शुमाली में रहते हैं जो लोग, उनके बारे में ज़रा सोचें. वहाँ ना कुतुब शुमाली में नॉर्थ पोल की साइड पर, वहाँ पर समर सोल्स्टिस का एक दिन जो होता है ना, वो सूरज चाचू वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे की. मैं मुहावरतन नहीं कह रही, मैं असल में बोल रही हूँ ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकें. यानी कि इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्ती साइंस है. यानी कि आप अगर रात के 2 बजे भी कर्टन खोल कर देखेंगे ना, तो आपको दोपहर के 2 बजे का टाइम नज़र आएगा. ऐसा होता है वहाँ पर, अल्टीमेट स्विच होता है वहाँ पर 24 घंटे का. अब इसके पीछे ना साइंस का एक खेल है. और सबसे आपको बात बताती हूँ, इसकी एक लॉजिक बता देती हूँ. हमारी जो ज़मीन है ना वो थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है, वो सीधी खड़ी नहीं होती. स्टूडेंट जैसे असेंबली में खड़े होते हैं वैसे तो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती, थोड़ी सी टिल्ट ही रहती है. हमारी ज़मीन सीधी खड़ी नहीं होती, जैसे स्कूल की लाइन में असेंबली में आपको और मुझे खड़ा किया जाता था, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ी सी टिल्ट होती है. थोड़ी सी मतलब यूँ कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशन आपको चाहिए तो आपको बता दूँ 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है हमारी ज़मीन. साइंस याद आई, जो 8वीं 9वीं जमात में पढ़ी थी याद आई, वो जो टिल्ट ज्योमेट्री में बनाते हैं 23.5 वाला डिग्री का, ठीक है, ऐसे हमारी जो है ना ज़मीन टिल्ट होती है. अब होता ये है कि जून के महीने में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दिन आता है जब ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ना ज़्यादा झुक जाता है. उसकी वजह से होता क्या है भाई, इलाके में यही होता है कि दिन जो है ना वो जिस इलाके में वो टिल्ट आ रहा होता है वो इलाका दिन वहाँ पे लंबा हो जाता है. यानी सूरज की रोशनी का जो स्केड्यूल होता है वो ऐसा होता है कि भाई आप सुबह जल्दी हाजिर हो जाएं और रात को देर से जाएं. मतलब कभी वो अनवांटेड मेहमान देखे हैं आपने, हाँ वो जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, खासतौर पर हमारे रिश्तेदारों में से एक होते हैं, सुबह सवेरे उठ कर आ जाते हैं और रात को देर तक पड़े रहते हैं हमारे घर के अंदर, बिल्कुल वैसा ही वाला हाल होता है सूरज चाचू का. तो भाई नॉर्थ पोल का ये हाल होता है क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी टॉप की साइड से ना, वो नॉर्थ पोल का अगर बोला जाए क्योंकि नॉर्थ पोल बिल्कुल ज़मीन के टॉप पर है, तो भाई और उसका जो है ना वो जब सूरज का वक्त होता है तो सूरज जब निकलता है तो वो कुछ ऐसे एंगल में निकलता है कि टॉप पे होने की वजह से वहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है. सोचिए ज़रा

रात के 12 बज रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं और बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसे दोपहर की कड़कती पड़कती दोपहर की 2 बजे की धूप हो, तो भाई शुक्र करो नॉर्थ पोल पे नहीं रह रहे, कतर में रह रहे हो। कभी थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है टिल्ट की वजह से, अभी ये टिल्ट थोड़ा सा और घूमेगा, मौसम चेंज होगा, अभी देखना कैसे कब अगस्त, हाँ अगस्त के बाद से मौसम देखना कैसा घूमना फिरना शुरू होता है मौसम का। तो भाई इन शॉर्ट इतना टिल्ट शिल्ट 23 जो है ना का एंगल 23.5 का एंगल डिग्री एंगल बनाने का बताने का आपको मतलब मकसद ये था कि जो कंप्लेन करते रहते हो ना हाय गर्मी हाय गर्मी हाय कतर में गर्मी, शुक्र करो ये गर्मी चली जाती है कुछ टाइम बाद। कुछ इलाके ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर 24 घंटे 6 महीने सूरज रहता है, 6 महीने बैठोगे 6 महीने सूरज में, तो भाई शुक्र अदा करो, खाओ पियो मजे करो एंजॉय करो और हमें कॉल करो 4434377 पर। तो भाई इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ये शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जो हैं जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे दिन भी मिलता है वहाँ पे रात भी मिलती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सुबह के टाइम हाँ हो जाती है 45-50 तक गर्मी, कोई बात नहीं, शाम के टाइम तो टेम्परेचर नीचे आ ही जाता है ना, नॉर्मल है नॉर्मल है, शुक्र करो। तो भाई इसी एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको याद दिला दें कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर मैसेज कर सकते हैं, बताएं भाई कौन कौन कहाँ कहाँ सुन रहा है, धड़ाधड़ मैसेज आ गए। मैं अपनी 23.5 डिग्री एंगल बनाने में मसरूफ थी और इतने सारे मैसेजेस, हाँ नॉर्वे, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे सही बोला, कौन है किसने बोला है, एहतराम खान ने, वाह नॉलेज वाले बच्चे हैं नॉलेज वाले बच्चे, देखा मेरी क्लास में सारे नॉलेज वाले बच्चे आते हैं चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड मॉर्निंग सफा जी कैसी हैं आप, होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड, दिल से देसी, मोहम्मद यूसुफ खान, हैप्पी मंडे मॉर्निंग सफा जी, मेरा ग्रीन मंडे है ठंडा, मोहम्मद यूसुफ खान ग्रीन वाला, ग्रीन वाला तो अच्छा, ग्रीन कलर सुनते के साथ आपके दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में तो आता है कि भाई हरियाली इको, क्या आता है मुझे तो नेचर याद आती है ग्रीन कलर, ब्लू कलर सुनकर ऐसा लगता है ठंडा ठंडा ऐसे बर्फ वाली फीलिंग आती है। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, और हैं शेख इरफान कह रहे हैं ब्लू वाला क्योंकि चश्मा ब्लू पहना हुआ है ना। अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, हाँ देखो ब्लू वाला मंडे इसलिए नजर आ रहा है इनको भी, किसको कौन है शेख इरफान, शेख इरफान को ब्लू वाला मंडे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इन्होंने चश्मा ब्लू पहना हुआ है, मेरा चश्मा कौन से कलर, हाय हाय फिर तो मुझे तो ऐसे काला काला नजर आना चाहिए मंडे क्योंकि मेरे तो चश्मे काले हैं। किस किस ने कौन से कलर का चश्मा पहना हुआ है, वैसे अगर सनग्लासेस के बारे में बात की जाए तो सनग्लासेस आपको कौन से कलर के पसंद है, अब मुझे ना मुझे ब्लैक वाले सनग्लासेस बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने गलती से ले लिए पता है, मुझे ज़बरदस्ती दिला दिए गए हैं, मेरी अगर चॉइस पूछी जाए तो मुझे डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन कलर के जो होते हैं ना सनग्लासेस वो बड़े पसंद हैं, उनके शेड्स चॉकलेट ब्राउन बेस्ट, और ब्लैक वाले तो पहनकर ऐसा लगता है वो मूवी याद आ जाती है, लगता है बारिश होने वाली है ब्लैक वाली मूवी। अच्छा भाई साथियों आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और आज के मुद्दे पर आते हैं, ठीक है आज का हमारा मुद्दा जो है उसके पर हम आएंगे, लेकिन सोचिए एक ब्रेक ले लिया जाए, एक काम करते हैं ब्रेक के उस पार आपको मुद्दा मिलेगा, ठीक है आपने करना ये है कि हैंग ऑन, ओके एक गाना सुनते हैं मजे का, ओए होए भाई मेरा फेवरेट गाना लगाया हुआ है, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी है गोभी दिया फूलों, दे दी है दिल चीज दे दी है, वैसे दिल दिल को इतनी मतलब चीज तो नहीं है ये, लेकिन गाना अच्छा है, गाना अच्छा है, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स दिल चीज तुझे दे दी, तो गोभी दिया फूलों गाना सुनो एंजॉय करो गाने को, और फिर गाने के उस पार जो है ना हम कहते हैं दरिया के उस पार, दरिया के उस पार आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे मुद्दे पर, मुद्दे पर आएंगे डायरेक्ट, ठीक है वेदर शेदर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, 11:15 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड FM 107, एंजॉय द सॉन्ग, ब्रेक के बाद मिलते हैं दिल से देसी।

0: पर इस गाने ने बहुत सारे लोगों के राज फाश किए हैं, बहुत सारे अंदर की दिल फेंक क्वालिटीज बताई हैं दूसरों को। प्यार होता कई बार है, ये तो है देसी लोगों का मसला। बहुत दिल फेंक है भाई, बहुत दिल फेंक।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: भाई अगर दिल फेंक होने के बारे में बात की जाए तो लगता है पूरा शो ही चला जाएगा। छोड़ो, जाने दो, इसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो साथियों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107। और भाई आज हम आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। वैसे बताती चलूं कि मैसेज के लिए नंबर है 666-22107, 666-22107 मैसेज का नंबर है। और अगर आप अपनी आवाज़, हमें खूबसूरत सी आवाज़, अच्छी सी आवाज़ अपनी सुनाना चाह रहे हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, 443-443-77 इज द नंबर। और आरिफ भाई लस्सी दिखाते हुए, ठीक है भाई, बहुत ही मीठी लस्सी पीते हुए गर्मियों के दिनों में चलें, हाइड्रेटेड रहें, अल्लाह ताला आपको नसीब करे अच्छी सी, आपके पेट में दर्द ना हो। अच्छा भाई आते हैं मुद्दे पर। देखो हम जना टाइम ज़ाया नहीं करते, सफ़ा कहाँ निकल जाती हो तुम भी। हाँ भाई मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई आज का मुद्दा एक ऐसा सवाल है जो शायद आपकी आदत भी हमें थोड़ी बहुत बता दे, आपकी अंदरूनी जो खासियतें हैं ना वो हमें, हम पे नुमाया कर दे। ज़रा सोचिए अगर ज़िंदगी ने आपको एक नया अपडेट दिया, ठीक है, जैसे वो मोबाइल की ऐप्स होती है ना, अपडेट्स आती हैं उसके अंदर, वैसे जिंदगी आपको मौका देती है आप अपने आप को अपडेट कर लें, ठीक है। तो आप उस अपडेट में क्या ऑप्शन चूज करेंगे? आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको हर जगह ये मौका मिले कि आप 45 मिनट पहले चले जाएं, भाई पहुंच जाएं पहले, ठीक है, चाहे मीटिंग हो, चाहे पार्टी हो, चाहे इंटरव्यू, चाहे डिनर हो, कुछ भी हो, 45 मिनट पहले पहुंच जाओ भाई, बस मतलब फिट फाट होगा ना, पहुंच जाओ। मतलब ये कि आप इतनी जल्दी पहुंच जाएं कि अगर आप डिनर पे जा रहे हैं ना तो बेचारा वेटर भी आपको चुप करके देखे कि भाई अभी तो हमने टेबल वेबल नहीं सेट नहीं की, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। या मेहमानों के पास जाना होता है कहीं डिनर पे, किसी फैमिली के पास जाना है तो अगले सोच रहे हो कि भाई हमारा तो तैयार होने का टाइम था, अभी इतनी जल्दी कहाँ से आ गए ये आदम के। होता है कुछ लोगों को आदत होती है 45 मिनट 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो भाई आप उन लोगों में से हैं जो 40-45 मिनट पहले पहुंच जाना पसंद करेंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है लेट लतीफ। लेट लतीफ ये कि आपको 10 से 20 मिनट लेट पहुंचे आप हर जगह जहां पे भी जाएं, 10 से 20 मिनट आप लेट पहुंचे, लेकिन उसके साथ ट्विस्ट ये है क्योंकि आप लेट लतीफ आ रहे हैं तो भाई आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा क्रिएटिव होकर काम। देखो जब गलती करते हो ना तो क्रिएटिव होना पड़ता है, यानी कि आपको हर दफा नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। और आज आपने मुझे मैसेज करके या कॉल करके अगर आप ये चूज करते हैं कि आप लेट पहुंचेंगे तो आपने मुझे एक बहाना बताना है, नया मुझे क्रिस्पी करारा नया बहाना बताना है कि लेट पहुंचने का रीजन क्या दोगे। जैसे कुछ होता है ना, लोग कहते हैं भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अलार्म नहीं बजा, या बस निकलते हुए कोई जरूरी काम आ गया तो वापस पलट गया। कुछ क्रिएटिव बताओ ना, कुछ क्रिएटिव, मार्केट में कुछ नया लेकर आओ, एक दूसरे की मदद करो। कुछ कर रहे हो तो गलत करो, तो फिर एक दूसरे की मदद करो, कुछ नए बहाने ढूंढो, नए बहाने बताओ लोगों को। तो आप अगर उन लोगों में से हैं जो 10-20 मिनट लेट पहुंचते हैं तो आपने मुझे एक नया बहाना बताना है, या आप मेरी तरह हैं। अच्छा मेरा मामला पता है क्या, मुझे एयरपोर्ट शेयरपोर्ट भी जाना होता है ना, तो एयरपोर्ट वाले कहते हैं भाई 2 घंटे पहले आ जाना। मैं 2 घंटे पहले नहीं, मैं 4 घंटे पहले जाना पसंद करती हूँ। अब नहीं पूछना क्यों, मुझे नहीं पता, कुछ डिफॉल्ट कुछ खबान है अंदर से। कहीं भी जाओ ना तो मुझे, मतलब किसी की शादी में जाओ ना, मैं कहती हूँ एक घंटा आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, कुछ अंदर से मिजानिया दुरुस्त नहीं है मेरा। तो अक्सर औकात ऐसा होता है, देर तो हो नहीं रही लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि मुझे देर हो गई है। अब भाई एयरपोर्ट पहुंचने में आपने 2 घंटा पहले पहुंचना होता है, मुझे 4 घंटे पहले पहुंचना है। भाई मेरे साथ एक दो दफा लिटरली ऐसा हुआ है कि मुझे इतनी एंजाइटी हुई कि मुझे 4 घंटे पहले पहुंचना है, इतनी एंजाइटी कि भाई मैंने जोराबे अलग अलग रंग के पहने और मैं भागी हूं, और ऐसे भागी हूं कि जैसे कोई फायर अलार्म बज गया हो। तो आपके साथ ऐसा होता है? आप ऐसे हैं क्या कि आपको हर चीज अलाइंड होकर, आप मतलब जाना आपने अगले दिन है लेकिन उसकी फुल फ्लैश आपने एक दिन पहले तैयारी करके रख ली और आपके दिमाग में ये चल रहा है फोकस कि आप 45 मिनट पहले या 40 मिनट पहले या 4 घंटे पहले पहुंच जाएंगे जगह पर, और वो इतना इतनी तो कोई आपको आदत है कि आपने अपने जुराबे भी उल्टे सीधे पहन ली हो भाई, होता है आपके साथ ऐसा? आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 इज द नंबर, 4434377 इज द नंबर, और बताएं भाई अपना मामला शेयर करें कि आप किस टाइप में से हैं भाई। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो बताओ कौन सा वाला अपडेट चूज करोगे, 45 मिनट अर्ली का या 20 मिनट लेट का? और अगर 20 मिनट लेट पर आ रहे हो तो कोई नया बहाना ही बता दो, क्या पता मेरी मदद हो जाए। चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज।

0: भाई कॉल का सिस्टम शुरू हो गया है तो कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: तो क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आरिफ भाई हैं?
1: नहीं, मैं आज पहली दफा कॉल कर रहा हूँ।
2: अरे मिलती जुलती आवाज वाले, वेलकम वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? अच्छा नाम तो बता दें पहले।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम उमर है।
0: उमर भाई कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। उमर भाई ये बताएं अपना नाम लिखते कैसे हैं, ओ एम ए आर या ओ एम ई आर?
1: मैं यू से लिखता हूँ, यू एम ए आर।
0: मतलब इन्होंने थर्ड ही ऑप्शन निकाल लिया जिंदगी का। मैं एक ऑप्शन दे रही थी, दूसरा ऑप्शन दे, इन्होंने कहा जाओ मुझे दोनों नहीं चाहिए, मैं यू से लिखूंगा। यू एम ए आर
1: जी, यू एम ए आर।
0: यू एम ए आर ठीक है। अच्छा मैं हमेशा ओ आता है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या है, उसामा नाम सुनती तो भी ओ आता
1: है। लिखते हैं कुछ लोग उमर में ए आई भी डाल देते हैं उमर की जगह, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है।
0: चलें कोई बात नहीं, नाम नाम है, हमें पता चल गया आपका नाम उमर है। तो उमर भाई ये बताएं क्रिस्पी क्रंची गर्मी कैसी चल रही है?
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा है, मैं सबसे गाड़ी में हूँ बट बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: एक काम करें हाँ एक काम करते हैं ठीक है। वो जो गाड़ी का बोनट है ना, गाड़ी का बोनट, हाँ अगर आप गाड़ी कहीं धूप में खड़ी करते हैं ना तो उसके ऊपर रखिएगा एक पापड़ जो अभी तला हुआ ना हो। देखिए मैं तेल बचाने की बात कर रही हूँ। देखिए तेल बच जाएगा तेल, उसके ऊपर रखिएगा कच्चा पापड़ और 5-10 मिनट के अंदर कमाल देखिएगा, जादू पका हुआ मिलेगा वो। तो भाई हाइड्रेटेड रहें, पानी शानी पीते रहें। ये बताएं कि आप कैसे टाइप के लोगों को पसंद करते हैं और खुद कैसे टाइप के हैं, जो पहले आते हैं 45 मिनट पहले पहुंच जाएं या
1: तो
0: सच सच बताना
1: सुना।
0: लाई डिटेक्टर है हमारे पास।
1: ऑन टाइम जाने पे ही पसंद करूंगा, क्योंकि ऑन टाइम ये है कि जो जिसके पास आप जा रहे हैं वो भी तंग ना हो, या वो आप ये कंप्लेन ना करे कि आप लेट हो रहे हो या आप जल्दी क्यों आ गए। बट हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है या लेट या जल्दी।
0: हाँ अभी मैं ही तो बोलने वाली थी,
1: 20 मिनट लेट वाला।
0: अरे भाई क्यों?
1: उसके लिए मैं आपको क्रिएटिव बहाना बताऊंगा ना।
0: बताए।
1: तो मैं अगर 20 मिनट लेट गया मैं बहाना लगाऊंगा, यार देखो बात ऐसी है कि यार मुझे ना एक गरीब आदमी मिल गया था रास्ते में, ठीक है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए रुक गया था, क्योंकि एक यारी के स्वाब का काम है ना, वो गुस्सा भी नहीं करेंगे और
0: चुप हो जाएंगे। और ये अच्छा है, दिस इज गुड। अच्छा अगर किसी ने अपने रिश्ते वगैरह के लिए जाना हो ना, होता है ना रिश्ते वगैरह के लिए जाते हैं, मिलने जुलने जाते हैं, आपस में गैदरिंग होती है, तो उसके अंदर ये बहाना बड़ा फिट बैठेगा, इंप्रेशन पड़ेगा, इंप्रेशन
1: आपके नंबर भी बनेंगे, वो कहेंगे यार लड़का कितना था,
0: कितना कितना कितना कितना अच्छा बच्चा है, देखो कितना ख्याल करता है। नाइस नाइस, अरे वाह। और अगर रिश्तेदारों में बैठे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना, वो हाई एंड है, बड़ा बड़ा बड़ा तो कोई सखी बच्चा है। क्या ट्रेनिंग दी है माँ बाप ने, वाह क्या ट्रेनिंग दी है, नाइस। अरे ये क्रिएटिव आइडिया है, इसके पर कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे ये
1: आप कह सकते हैं यार मुझे ना नजर आया था, क्या कहते हैं, एक ना बुढ़िया खड़ी थी सिग्नल के उस पार, उनको नजर नहीं आ रहा तो मैंने पहले गाड़ी साइड में लगाई, फिर उनको
0: इतना लंबा
1: कराया तो फिर मैं वापस आया, तब तक सिग्नल बंद था यार, बस इस वजह से।
0: नहीं ये ओवर हो जाएगा, ये ओवर हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आज के दौर में। ये बहुत इसमें पकड़ जाओगे भाई। देखो हमें जो है ना काम करना है ना, तो हमने फुल ऑन लेवल हाई लेवल पे रख के करना है, मतलब एग्जीक्यूशन करना है ना हमने झूठ का, तो हमने उसको एक्सपर्ट लेवल पे करना है, एक्सपर्ट लेवल पे रख के कोई गलती ना पकड़े। अभी बुढ़िया वाला सीन जो है ना, बुढ़िया वाला सीन यहाँ नहीं होगा ना, एक्सपर्ट लेवल पे एक्सपर्ट। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस गेम में पहले एक्सपर्ट चल रहे हो। चल रहे हो।
1: मैं आपके वो सुनता रहता हूँ, मैंने मुझे किसी दोस्त ने रेकमेंड किया था, तो मैंने कहा यार सुन गया, कसम से बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रोग्राम करती हैं या उसके बाद भी, हम यानी कि हमारा काम ही इस तरह का है, वो टाइम जो है ना, टाइम ऐसा फील होता है कि डिप्रेशन में हो आप, टाइम आप कट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा कहीं।
0: देखिए ये जो सूरज चाचू है ना, हम बेशक ऑफिस के अंदर बैठे हुए, हमें भी ये ऐसा ही महसूस कराता है कि ये वक्त क्यों नहीं गुजर रहा, ये वक्त क्यों नहीं गुजर रहा।
1: यही बात है।
0: चलिए अल्लाह ताला सबकी रोजी रोटी बरकरार रखे, बस फोकस करेंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहाने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बहाने फोन करके बताते रहा करें। अच्छा और फिर आपसे जो ना ऑफ एयर भी पूछेंगे ऑफिस के बहाने, ठीक है? अभी नहीं, सबको बच जाएगा। ओके चले जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहाना बड़ा अच्छा है, वैसे बहाना अच्छा है, कोई बोल ना पाएगा, इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। नाइस नाइस। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
0: अरे मार्केट में ये बहाना, अच्छा मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया। हाँ ये होता है कि अगर कोई अच्छाई करो भी तो उसको छुपा दो, लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए अच्छाई को हाईलाइट कर दो तो हाँ चलेगा चलेगा। नाइस नाइस, इंप्रेशन का इंप्रेशन और बहाने का बहाना, मतलब हाँ सही है। मैं प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव, देखा ऐसे क्रिएटिव लोग चाहिए मुझे मार्केट में, जो एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट लेवल तक जाते हैं हम, और किस चीज में अब वो एक अलग बात है। अच्छा भाई हमारे साथ कौन है, और मैसेज में मैसेज में हमारे साथ जुड़े हैं खादर, खादर अब्दुल हादी, क्या कह रहे हैं? आई विल प्रेफर टू बी अर्ली, रीजन टू नो द एग्जैक्ट सिचुएशन। अच्छा, लेट लतीफ़ विल गेट अ निकनेम। भाई लेट लतीफ़ आ गए, इट विल लुक ऑकवर्ड इफ़ ऑल इज असेंबल्ड एंड एवरी वन विल लुक अम्यूसिंग। अच्छा ये कहना ये चाह रहे, देखिए बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो जाती है ना, गोभी दें फुल्लों एड्डी अंग्रेजी झाड़ोगे तो मैं तो देखो मैं आयल्स नहीं करने वाली यहाँ पर, सो हम उर्दू में एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो पहली बात तो ये जो लेट पहुंचता है ना उसको दिए जाते हैं नाम, लकब दिए जाते हैं उसे, लेट लतीफ़ तो ये तो वो, आ गए बड़े लोग, तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग हो जाता है, और हर कोई जब सब बैठे होते हैं तो आपको मुड़ मुड़ कर हर कोई देख रहा होता है। अच्छा ये होता है, जैसे ही आप चार लोगों की दावत में जाओ ना, तो जैसे ही आप लेट पहुँचो ना, 5 से 10 मिनट भी लेट पहुँचोगे ना और सब आ गए होंगे अगर इत्तेफाक से, वैसे वो लोग भी जिंदगी भर लेट ही पहुँचे होंगे लेकिन इत्तेफाक से उस दिन वो पहले आ गए, तो मुड़ मुड़ के आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया। अरे भाई 5-10 मिनट ही तो वेट करना, तुम लोगों ने क्या हो गया, केड़ी तो कोई कोई बवाल मच गया। अच्छा मैं बता क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बड़े कॉलर ऊपर करके मैं कहती हूँ, जब अगर अगर कभी मैं लेट पहुँचूँ तो मैं कहती हूँ भाई इकबाल हमेशा देर से आता है, तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अपनी देखो अपनी जो है ना वो एक लेवल बना रहता है, इकबाल हमेशा देर से आता है। तो भाई आप क्या क्या बहाने करते हैं ज़रा बताएं क्रिएटिव होकर। हमारे पास और मैसेज में कौन है, मैसेज में आ गए हैं मोहम्मद अदील, कह रहे हैं लेट पहुंचने का बहाना आ रहा था रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया। भाई ये तो बच्चों वाली हो गई, ये तो बच्चों वाली, ये तो हम स्कूल में बोलते थे, ये तो हम छोटे थे तब बोलते थे। ये तो बच्चों वाली हो गई, नहीं नहीं बड़ों वाला बहाना बताओ ना, बड़ों वाला। तो भाई अच्छा अच्छा एक दफ़ा बताऊँ, एक दफ़ा क्या हुआ, लिटरली लिटरली लिटरली, अब मेरा ये मामला है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोलूं तो मेरे साथ वो हकीकत में हो जाता है। एक दफ़ा लिटरली ऐसा हुआ कि मुझे एक दावत पे जाना था, दावत पे क्या थी, एक इनविटेशन था और एक बहुत बड़ा और अच्छा खासा इनविटेशन था भाई, बहुत मतलब वो जो एक इनविटेशन होता है वो था अच्छा वाला, रिजर्व्ड वाला। हुआ ये कि मैं निकलने में मुझे देर हो गई, मैंने अगलों को कहा कि मेरी चाबी, गाड़ी की चाबी मेरी गाड़ी में लॉक हो गई है तो मैं पहुंच रही हूँ, मुझे हाफ एन आवर लगेगा। असल में मैं वो इनविटेशन भूल गई थी, तो मैंने कहा हाफ एन आवर लगेगा, मेरी गाड़ी की चाबी गाड़ी में लॉक हो गई है। अच्छा इत्तफाक ये हुआ कि मैंने तो झूठ बोल दिया, ओ भाई इत्तफाक ये हुआ, तैयार शैयार होके मैं निकली, पता चला गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, गाड़ी की चाबी कहाँ है भाई, 45 मिनट गुजर गए गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। पता चला मैंने ये हरकत की जो मैं पहले गाड़ी मैंने जब पार्क की थी, ग्रॉसरी निकाली थी गाड़ी की डिग्गी के अंदर से, ट्रंक के अंदर से मैंने गाड़ी की चाबी गाड़ी के ट्रंक के अंदर रखी, सौदा निकाला उसके अंदर से और ट्रंक बंद कर दिया और गाड़ी उसी के साथ लॉक हो गई, मेरी गाड़ी सुभान अल्लाह माशाल्लाह से उसके वो लॉक हो गई। और वो झूठ मुझे इतना महंगा पड़ा था ना, इतनी एम्बैरेसमेंट और खर्चा पड़ा था ना मुझे कि तौबा तौबा तौबा तौबा, मैं झूठ बोलती नहीं इसी डर से, इसी डर से मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने बोला मेरी गाड़ी की चाबी मेरी गाड़ी में लॉक हो गई और वो वाकई में लॉक हो गई। हुआ किसी के साथ ऐसा? मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं गजनी हूँ, मैं चीजें यहाँ वहां भूल जाती हूँ और मैं अपनी गाड़ी की चाबी और मजे की बात है मोबाइल भी, गाड़ी की चाबी और मोबाइल समेत मैंने ट्रंक के अंदर डाल दिया सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस कभी गुरूर नहीं किया। तो भाई अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ मामला हुए तो जरूर मुझे बताएं। 45 मिनट पहले पहुंचना पसंद करेंगे जगह पर के 10 से 20 मिनट लेट पहुंचना पसंद करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं 6622107 पर। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए एक काम करूंगी, छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी, सुन रहे हैं आप सन एंड साउंड विद सफा। और भाई क्या गाना है, वाह क्या गाना है, वाह क्या गाना है। भाई थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करो, मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं अपना वॉल्यूम ऊपर करती हूँ, मेरा वॉल्यूम मैं नीचे करती हूँ, फेडर ऑन करती हूँ गाने का। सुनते रहे एफएम 107।

0: को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीज्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड दिल से देसी। और भाई हमारा वापसी तो हो गई है, आप जितने लोग अब सुन रहे थे, जितने लोग कॉल कर रहे थे, उनकी वापसी कब होगी ये नहीं पता। तो भाई साथियों, हमारा मुद्दा ब्रेक पर जाने से पहले ये चल रहा था कि जरा ये बताएं कि आपको अगर जिंदगी में सॉफ्टवेयर अपडेट हो आपका और आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि भाई बताओ आपने कहीं पहुंचना है, अब सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, एयरपोर्ट पहुंचना है, पार्टी पहुंचना है, बर्थडे पार्टी पहुंचना है, शादी में पहुंचना है, दोस्त के घर पहुंचना है, मैच देखने पहुंचना है, मैच के बारे में बात करेंगे वैसे, लेकिन जहां भी पहुंचना है आप जाओगे 45 मिनट पहले, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाओगे 20 मिनट बाद में, क्योंकि आप तो हो ही लेट लतीफ, क्या आपको देखकर लोग ये समझ जाते हैं कि ऑलरेडी 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं? क्या आपका नाम पार्टीज में लेट लतीफ रखा जाता है? क्या आप उन पर्सनालिटीज में से एक हो? जरा बताओ मुझे मैसेज करके या कॉल करके कि भाई आप क्या चूज करोगे। 6662107 इज द नंबर टू मैसेज एंड 4434377 इज द नंबर टू कॉल। और साथियों मैच के बारे में बात करें तो क्या ही बात करें, क्या कहते हो मैच के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए? ये बताओ शहजादों, गोविंदियां फुल्लों, किस किसने देखा था कल रात को मैच? मैंने देखा था रात को, सुबह को 3 बजे तक मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। हाल ये था आपकी बहन का, खुशी के मारे नींद ना आई थी मुझे। वैसे एक कॉलर से बात कर लेते हैं, देखते हैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, कैसे सफा बहन?
3: बिल्कुल ऐसे जैसे कल थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा में राजी।
4: अच्छा
3: कौन है हमारे साथ?
4: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
3: मुदस्सिर भाई, कौन से वाले मुदस्सिर भाई, वो सांपों वाले के दूसरे वाले?
4: नहीं, दूसरे वाले, सांपों वाले
3: नहीं। अच्छा कल मुदस्सिर भाई बताए, इतवा किया था कि आपके फौरन बाद एक और मुदस्सिर भाई ने कॉल की थी, वो जिनके बारे में सांपों वाली बातें हो रही थी ना, तो उन्होंने भी साथ ही कॉल की थी। तो बड़ा अच्छा सा एक इत्तफाक था। ये बताएं कि आज का दिन आपका कैसे गुजर रहा है? मंडे कौन से वाले कलर का, मंडे को कलर देंगे तो कौन सा कलर देंगे?
4: मंडे को देंगे तो व्हाइट देंगे।
3: व्हाइट देंगे, क्यों?
4: क्योंकि मुझे व्हाइट पसंद है।
3: अरे वाह, मतलब ये कि मंडे हो या संडे, बस white सब कुछ पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई बात, ये ऐसी वाली, देखें ऐसे वाले लोग चाहिए हमें मार्केट में ज्यादा, ऐसे लोग कंपनी में बैठना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा भाई ये बताएं मुदस्सिर भाई कि अगर आपको बोला जाए कि मुदस्सिर भाई जरा हिसाब किताब करते हैं, ये बताएं कि आप इवेंट्स में लेट पहुंचते हैं कि जल्दी पहुंचते हैं?
4: जी मैं जल्दी पहुंचता हूँ।
3: कितना जल्दी?
4: लेट तो तकरीबन 10-15 मिनट पहले
3: पहुंचता हूँ। 10-15 मिनट पहले पहुंचते हैं, मतलब आप वो हैं जिसको देखकर लोगों को एहसास हो जाता है हाँ भाई पार्टी शुरू हो गई है।
4: लेकिन एक बार मैं लेट हो गया था, इत्तेफाकन जो चूट मैंने बोला था फिर वही मेरे साथ हो गया था।
3: ये होता है ना, ये होता है ना, होता है ना, मैं कहती हूँ मेरे साथ होता है।
4: मैं दोस्त मुझे फोन किया कि तुम किधर रह गए, किधर रह गए, मैंने कहा उसको कि मेरा पीछे का दो टायर पंचर है, दो टायर का बोला था।
3: ओ भाई,
4: तो जब मैं गाड़ी के पास आ गया तो दो टायर पंचर थे।
3: ओ भाई, किसने सुन ली थी ये बात? दोस्त तो ना आया था वहां से।
4: इतना गर्मी था, सख्त गर्मी था, दिन को 12-20 बज रहे थे, टायर चेंज करो। वो टायर वाला नहीं आ रहा था, वो बोल रहे थे अभी गर्मी में नहीं आ सकता है भाई।
3: ओ भाई, ओ भाई, ये एक झूठ की सजा,
4: एक झूठ की सजा,
3: गर्मी में नीचे लेट कर जमीन पर टायर चेंज किए। ओए होए होए,
4: तो बेहतर है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो होगा सच बोलो।
3: ये बात देखिए, मुझे अच्छा, मैं मेरा मामला ये था कि मेरे पास तो फोन भी नहीं था फोन करने को, झूठ तो बोल दिया क्योंकि मेरा तो फोन भी गाड़ी में रह गया था।
4: अच्छा, तुम्हारा गाड़ी में फोन भी था और चाबी भी हो गया।
3: और जो मतलब मेरे पास दो फोन है ना, तो वो एक फोन जो जिसके अंदर बैलेंस चैलेंस होता है ना, सब कुछ होता है, वो माल मवाद वाला फोन, वो सारा का सारा गाड़ी के अंदर लॉक। और जिस जो फोन मेरे किसी काम का नहीं, मैं सर पे लेकर बैठी हुई हूँ उसको, कि अभी शायद मुझे कोई कॉल करेगा, अभी शायद मुझे कोई कॉल करेगा। उस टाइम पर ना कोई मामला ऐसा था कि घर शिफ्टिंग हुई थी, क्या हुआ था, तो इंटरनेट भी नहीं लगा हुआ था घर के अंदर, तो इंटरनेट भी नहीं था मेरे पास, मतलब कोई रबते के लिए कोई था ही ना। बस ये एक चीज रह गई थी कि पड़ोसी से फोन लूं और पड़ोसी से बोलूं भाई जरा मुझे कॉल करने दो, मेरी गाड़ी आकर कोई खोल दे।
4: तो जाना चाहिए था ना पड़ोसी, जाना चाहिए था, फोन लेना चाहिए था।
3: जब आप नए नए शिफ्ट होते हैं ना किसी जगह पर, तो पड़ोसियों से भी ताल्लुक आपके पता नहीं होता सामने कौन निकल है।
4: नंबर याद है आप ना,
3: किस किस का नंबर,
4: वो आपको किसी को जब फोन करते हो,
3: वो एक आधा नंबर तो याद है, एक आधा नंबर याद है। अच्छा, एक जमाना था हमें नंबर भी याद होते थे, अब तो किसी के नंबर भी याद नहीं होते।
4: माशाल्लाह, एक नंबर तो याद है,
3: इमरजेंसी नंबर एक याद है।
4: अच्छा अच्छा, असल में मुझे कतर में कोई भी नंबर मुझे याद नहीं है, पाकिस्तान में भी तक मुझे नंबर याद है।
3: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
4: तकरीबन 30-40 नंबर अभी तक मुझे याद है, लेकिन इधर कतर में नंबर याद नहीं होता
3: भाई। कोई एक इमरजेंसी नंबर तो याद कर लो, कोई एक तो ऐसा नंबर याद कर लो।
4: याद नहीं है, एक भी याद नहीं।
3: वेरी गुड, चल रही है ये मोबाइल, ये सब मोबाइल जैसे हो रहा है।
4: हाँ, सब मोबाइल जैसे, तो फिर भी तुम तो हमसे अच्छी हो, एक नंबर से याद है ना,
3: एक नंबर याद है इमरजेंसी का। अच्छा, तो फिर भाई आप पहुंचेंगे पहले?
4: पहले हम पहुंचते 10-15 मिनट पहले।
3: क्या करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे?
4: नहीं बोर हो जाएंगे ना, तो आप कतर में कौन सी जगह पे बोरेंगे?
3: हाँ, ये भी एक बात है,
4: किधर भी जाओगे तो बोरिंग तो मैं नहीं मिलेंगे।
3: अरे भाई, आपको मुदस्सिर भाई क्रिएटिव अप्लाई करना था, क्रिएटिव आपको कहना था मैं अपनी कंपनी एंजॉय करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ, मैं अपनी कंपनी एंजॉय करता हूँ।
4: ये टार्स टावर नहीं है?
3: हाँ,
4: टावर,
3: हाँ,
4: वहाँ पे हमारा अफ्तारी था।
3: सही,
4: हमारा एक कजन ने हमको इधर इनवाइट किया था, वहाँ पे मेरा एक काम भी था, तो मैं 4 बजे से उधर ही था, कुछ काम के लिए गया था।
3: सही,
4: तो मैं कहा कि काम में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो अफ्तारी के लिए 2-3 मिनट रहेगा तो मैं पहुंच जाएगा।
3: सही,
4: तो वो आधा घंटे में काम खत्म हो गया, तो फिर मैं उधर ही था, तो उधर ही था, उधर बोरने का कोई मिलता नहीं कि तुम बोर हो जाओगे।
3: हाँ, वहाँ पर बोर नहीं होता, वहाँ पे इधर उधर घूम फिर लेता है।
4: और कतर में से बहुत से जगह है ना कि बोर नहीं हो जाता है आदमी।
3: मुझे एयरपोर्ट जल्दी जाना पसंद है, एयरपोर्ट
4: में तो लाजिम जल्दी जाना पसंद है ना
3: भाई। एयरपोर्ट क्या शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है भाई, क्या शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है, खूबसूरत तरीके।
4: एयरपोर्ट में तो जल्दी जाओगे, थोड़ा एयरपोर्ट भी घूमेंगे, कॉफी पियोगे, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, तो
3: वो एयरपोर्ट की अलग अलग मुख्तलिफ साइड्स भी बनी हुई है ना, तो बहुत बड़ी अच्छी
4: एयरपोर्ट एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा बना है ना।
3: हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये मुदस्सिर भाई कि हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं ना, कुछ अरसा जब हमें गुजर जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें ना बड़ी नॉर्मल सी हैं, जो हमें देखने को मिल रही हैं, जो हम लोग जहाँ पे घूम फिर रहे हैं, ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन जब आप बाहर दुनिया में जाके दूसरे मुल्क और घूमते हो ना, तो आप कहते हो नहीं भाई, कतर कतर है, कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, कतर का मजा अपना है।
4: मैं आपका पहले भी शो सुन रहा था, आपने बोला था ना कि आप कनाडा गई थी, अमेरिका गई थी?
3: यूएस गई थी, अमेरिका गई थी।
4: अच्छा, अमेरिका गई थी। आप बोल रहे थे ना कि कतर में जो है ना वो इधर नहीं है। मेरा भतीजा है, वो भी कनाडा में रहता है।
3: सही,
4: अभी वो वेकेशन पे आया है।
3: सही सही,
4: तो वो भी इधर बड़ा हो गया, अभी उधर पढ़ने के लिए गया है।
3: सही सही,
4: वो बोलते है कि यहाँ पे जो है ना वो तुमको वहाँ पे नहीं मिलता है। सही है वहाँ पे, यानी कि सर्दी का अलग मौसम, गर्मी का अलग है, टेम्परेचर ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटी है जो है
3: वो कतर कतर है भाई। कतर आधी दुनिया घूम लो, मैं
4: उसने दो मैच और दो मैच भी उधर वहाँ पे उसने देखा था।
3: हाँ।
4: उसने बोला कि जो कतर ने किया था ना वर्ल्ड कप,
3: हाँ,
4: वो दुनिया में कोई मुल्क भी नहीं कर सकता।
3: मैंने कहा ना, मैंने कहा शायद जापान या वो कोरिया वगैरह की साइड पर या ऐसे चाइना वगैरह कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई किसी और ने जस्टिफिकेशन जस्टिफाइड नहीं है। कतर की जैसा नहीं कर सकता कोई भाई, बहुत बहुत आला भाई,
4: बहुत आला, बहुत जबरदस्त किया।
3: अच्छा ये बताएं कल किसको सपोर्ट कर रहे थे?
4: मैं तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था तो बस हार गए।
3: मैंने पूरा मैच देखा, अर्जेंटीना ने जो ड्रामा किया ना, जो ड्रामा किया अर्जेंटीना ने, खुदा का खौफ करें जो ड्रामा किया है। जरा सी उनको लग जा रही थी ना, जरा सा टच भी हो जा रहा था तो ऐसे रो रहे थे ऐसे बच्चा कोई रो रहा हो। इतना ड्रामा किया ना, लेकिन मैच
4: अच्छा। बात सुनो, मेरे साथ दोनों फाइनल में क्या हो गया था, इस फाइनल पे मेरा काम था, मैं ड्यूटी पे था, और जो कतर में वर्ल्ड कप था वो फिर सारे मैच मैंने देखा था। बाद मैच मैंने स्टेडियम में देखे थे, बाद मैच बिदा फिन जोन में मुझे देखा था। तो फाइनल के मैच में मुझे मैं एक मैच भी नहीं छोड़ा था 2022 में।
3: सही।
4: फाइनल के मैच में मैं इतना फंस गया था ट्रैफिक में कि एक मिनट भी मैच नहीं देखा है।
3: ओए होए, पूरे मैच देखे, फाइनल
4: नहीं देखा। देखा ना, पीछे वाला देखा था।
3: अच्छा कतर की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत बहुत तबाही थी, बहुत बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत।
4: आप कह रहे हो ना कि जापान या चीन वाला ऐसा करेंगे ना, वो भी नामुमकिन है, नहीं कर सकता है।
3: नहीं, उनके पास ना, उनके पास ये है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत
4: वो है जो कतर ने जो किया है ना वो कोई भी मुल्क नहीं कर सकता।
3: यही तो बात बोल रही, वो कोई कर नहीं सकता। अगर कोई करे तो वो कोई इक्का दुक्का मुल्क शायद कर जाए, लेकिन बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त।
4: कतर जो भी इवेंट होता है, कतर में जो भी इवेंट होता है, ये तो बहुत बड़ा इवेंट था,
3: शानदार,
4: क्योंकि ये दुनिया का तो बड़ा इवेंट होता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप। कतर में जो भी इवेंट होता है वो लोग इसी तरह करता है ना कि दुनिया हैरान हो जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई ये बताएं कि अब तो है ना हमारा टाइम होने लगा है ये बॉलीवुड ट्रिविया का, 2-3 मिनट में टाइम होगा।
4: आप ऐसा करो ना सफर जी, ये बॉलीवुड का ट्रेन अभी चेंज करवा दो।
3: बॉलीवुड का ट्रेन, चलिए अगले हफ्ते से ट्रेन चेंज करते हैं, क्या कहते हैं?
4: चेंज करें, इससे हम बोर हो गया ये बॉलीवुड।
3: तो अभी तो पार्टी शुरू हुई
4: इसके बारे में।
3: अच्छा आपको क्या, मुझे चले आपसे सजेशन लेते हैं ऑन एयर, आपको क्या खेलना पसंद है?
4: नहीं जो
3: लूडो खेलेंगे, स्नेक्स एंड लैडर्स, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलेंगे। अच्छा गेम कौन सी, ऑन एयर कौन सी गेम खेलेंगे?
4: कैरम बोर्ड,
3: ऑन एयर कैरम बोर्ड खेलेंगे। सही है, मैं बस अभी मैं ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करने वाली हूँ, आपने कह दिया मुदस्सिर भाई, अब बस कल से यही होगा, कैरम बोर्ड खेलेंगे।
4: चलो ठीक है, सही है।
3: चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज,
4: अल्लाह हाफिज।
3: तो भाई आज का तो कोटा जो है ना वो चल रहा है बॉलीवुड ट्रिविया का ही, तो अभी थोड़ी देर में हम बॉलीवुड ट्रिविया खेलना शुरू करेंगे। आपको सुनाऊंगी मैं कुछ सॉन्ग्स के हुक्स, कुछ लिरिक्स, और आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा सॉन्ग है। क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। एक कॉल मुझे आ रही है, मैं कॉल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले बस ये एक मिनट नहीं, डेढ़ मिनट का जिंगल होता है ना ये भाई, ये बजाना पड़ता है भाई, ये तो भाई देखो ये टाइम क्लॉक सेट हो जाती है। दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट, यूं गई यूं आई, पक्का पक्का, पिंकी प्रॉमिस। गोविंदा बोल लो, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: अस्सलामुअलैकुम साथियों, गोविंदा भुल्लो, वेलकम बैक। इस वक्त टाइम चेक में आपको बता दूं कि 12:01 हो रहे हैं और अब हो चला है हमारा टाइम बॉलीवुड ट्रिविया का। दो तीन मैसेजेस पढ़ती जाती हूं जल्दी जल्दी से। मोहम्मद यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं, मैं यूजली 5-10 पहले पहुंचता हूं ऑफिस को, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कभी कभार लेट हो जाता हूं मगर मैनेजर को सच सच बता देता हूँ, ये बिफोर उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ, मुझे जो भी रीज़न है वो बता देता हूँ, सच सच बता देते हैं, ही एक्सेप्ट ही परमिट्स। लेट होकर जानबूझ कर गलत बताना अच्छी बात नहीं है, आई वुड से हिम जेन्युइन रीजंस, बेटर टू चूज़ टू रीच पहले। मैम ठीक है, कह रहे हैं मैं पहले जाना चाहूँगा, अगर कोई वहाँ है तो गपशप कर लूँगा, पहले जाना चाहेंगे। गुड गुड गुड गुड गुड। और हमारे साथ कौन है, जावेद खान है। जावेद भाई, अजान तो सही टाइम पर ही चली थी भाई, आज अजान हमारी कितनी थी, 11:41 पर थी अजान, तो सही चली थी अजान, तो सही की थी हमने। अच्छा भाई, खादर भाई क्या कह रहे हैं, सफारी लेट इज बेस्ट रीचर्स फॉर टेलिंग मैक्सिमम लाइज एंड स्टोरी। लेट जो होता है ना वो देखो, क्रिएटिव चल रहे, क्रिएटिव देखते हैं। कॉल पे हमारे साथ कौन है, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ।
2: हुसैन भाई कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुशम खुश हूँ। मैंने आपसे कहा था CR7 भी जाएगी और अभी कौन सी दूसरी टीम थी, पीपी कौन सी थी,
2: नॉर्वे नॉर्वे सॉरी नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे
3: नॉर्वे की दोनों गई।
2: देखिए रात गई बात गई, अब मसला ये है, मामला यहाँ पर आकर हुआ कि खुशी इस बात की नहीं कि कौन ले गया, खुशी इस बात की कि अर्जेंटीना नहीं लेकर गया।
3: अगर मैं इंडिया में होता ना तो मैं तो लड़ी फटाकों की फोड़ देता, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया अर्जेंटीना को हारते हुए।
2: अच्छा, मैच मैच मैच देखा था आपने?
3: जी मैच मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने आधी मैच देखी, उसके बाद मुझे ना काम आ गया तो मैं चला गया।
2: भाई मैंने पूरा मैच देखा था, मैंने मैच पूरा देखा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा अब होगा 36 का आंकड़ा, टाइम तो खत्म हो गया, अब होगा 15-15 मिनट का यहाँ 15 मिनट वहाँ, मैंने कहा लंबा मैच खींचा है भाई, अब ये रात को 3 बजे तक मैच चलेगा और ज्यादा डबल चलेगा मैच। लेकिन
3: मैच बहुत स्लो चल रहा था इस वजह से, और फिर मुझे कुछ काम की वजह से मैच चला गया तो मैं नहीं देख पाया।
2: मैच शुरू शुरू में वाकई में फर्स्ट हाफ में मैच बहुत स्लो चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद हमेशा ये होता है,
3: मतलब फाइनल की वाइब नहीं आ रही।
2: हाँ एग्जैक्टली। अच्छा बनिस्बत इसके ना कि जो फाइनल वाला मैच था ना, वो जो थर्ड प्लेस वाला मैच था ना, वो भाई वो तबाही गया है मैच, वो जिस जिसने देखा है ना वो बहुत अच्छा मैच गया थर्ड प्लेस। मैंने कहा अभी ये जो है थर्ड प्लेस के लिए ऐसे खेल रहे, इनको फाइनल में आना चाहिए था।
3: मुझे बहुत मजा आया, CR7 अर्जेंटीना हो, वाह भाई साहब, अब मैं बता नहीं, मैं इजहार नहीं कर सकता।
2: चले CR7 ना पहुंचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रखे कोई बात नहीं।
3: दिल पे पत्थर ही रख ले,
2: दिल पे पूरा सॉलिड, पूरा पत्थर रखा है मैंने सॉलिड वाला। लेकिन द गुड थिंग इज
3: समुंदर में नहीं जाइएगा,
2: मैं कहूंगी कि समुंदर में नहीं डूबना, नहीं भाई। लेकिन स्पेन ने अच्छा खेला आखिर में, जो गोल किया ना स्पेन ने, इट वाज गुड गुड गुड, उन्होंने बता दिया कि फुटबॉल जो है ना उनकी रगों में दौड़ता है, फुटबॉल है अच्छा था, मैच अच्छा था। तो भाई ये बताएं कि मैच के बारे में तो बात कर ली, ये बताएं कि लेट होना पसंद करेंगे जल्दी जाना पसंद करेंगे?
3: मेरा मामला ऐसा है कि मैं एक जगह छोड़ के बाकी सब जगह जल्दी जाना पसंद करता हूँ, 10-15 पहले।
2: बताने के लायक है जगह, एक जगह छोड़कर
3: जगह है

0: उसको जला दो बस।
1: ये अच्छा है, गुड। एनीवेज तो वो लोग कहते हैं ना, कौन सा तुम मुझे अपनी जेब से भर के दे रहे हो, तो तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम छोटे लोग, ये छोटे लोग, ये छोटे लोग।
0: मैं लेट आ रहा हूँ, कि मैं लेट हूँ, मैं तुमसे थोड़ी सैलरी ले रहा
1: हूँ। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा कुछ लोग होते हैं ऐसे ऑफिस में, बड़े अनोइंग लोग होते हैं कुछ ऐसे, आपकी हर आने जाने पे खबर रखते हैं वो।
0: लेकिन मैं रोज ट्राई करता हूँ कि मैं टाइम पे पहुंच सकूं, मैं इसके लिए भी मतलब इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ।
1: कोशिश कर रहा हूँ, इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चले कोशिश करते रहे। वैसे
0: इसके लिए दुआ भी मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कामयाबी मत देना।
1: नहीं अल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपको कामयाबी अता करे, आपको मेहनती बनाए, मेहनती मेहनती बने, हक हलाल की कमाने वाला बनाए,
0: लेकिन उसमें कामयाब ना करे आप ही।
1: देखिए कामयाब इंसान का ना एक प्रॉब्लम होता है, ऑफिस में हर किसी की नजर उसके ऊपर होती है, तो बस अल्लाह ताला इतना रख कि मेरे पर किसी की नजर ना हो, मेरे आने जाने में कोई नजर रखे। अच्छा ये बताएं, बॉलीवुड ट्रिविया के लिए रेडी हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए भाई आज देखते हैं कि आप क्या कमाल करते हैं, ठीक है? डन है। तो भाई आपको दिया जाएगा एक मिनट, और एक मिनट के अंदर अंदर आपने करना ये है कि आपने हमें मैक्सिमम गाने बताने। हमारे पास जो बेस्ट प्लेयर है ना वो यूसुफ भाई हैं। यूसुफ भाई अगर सुन रहे हैं ना
0: तो
1: भाई वो बेस्ट प्लेयर है।
0: लग रहा है कि उन्होंने शरबत बनाई है, उसको पी ली है बस,
1: भूल गए
0: गाने रहते हुए भाई साहब कर क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा है।
1: चले आपके साथ खेलते हैं आज, क्या पता आपका लग जाए, ठीक है? और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। नहीं ये नहीं, कबीर भाई रुक जाओ कहाँ आ गए कबीर भाई आप। अच्छा चलो भाई ये वाला गाना ठीक है। ओके गुड गुड, नॉट बैड नॉट बैड, ये वाला गाना
0: कैसे मुझे तुम मिल गई,
1: ठीक है। ओके ये वाला गाना
0: होले होले से हवा लगती
1: है। ओए भाई ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा ये वाला कौन सा है?
0: ये किसका है साया?
1: ये मार ही डाला। हाय मार ही डाला, मार ही डाला, मार ही डाला। अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला।
2: मोहब्बत भी करके देखी क्या पाया वो कैसे।
0: ये मूवी का नाम?
1: मूवी का नहीं, गाने का नाम। सलमान खान, ओए होए होए, जैकलिन फर्नांडिस, ओ माय गॉड। अब की बात चले भाई कोई बात नहीं, 4-10 स्कोर तो कर लेता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तालियां तो बजा दें हम, ये तालियां वाले जो है ना बड़े लेट चलते हैं भाई। तालियां तालियां तालियां, गुड गुड। आज के अभी तक के टॉप स्कोरर हैं आप। सिर्फ अभी तक
0: यूसुफ भाई बाकी है उनकी। हाँ
1: अभी यूसुफ भाई ने एक दफा मेरे ख्याल से 4 का स्कोर किया है, पिछले से पिछले हफ्ते किया था। इस हफ्ते का स्कोर अभी कल का यूसुफ भाई का था 3 का, तो देखें अब देखते हैं कौन करता है कितना स्कोर। चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज।
1: तो भाई साथियों अगर आप भी हमारे साथ गेम में शामिल होना चाह रहे हैं जरूर जरूर जरूर, और आप क्या कर सकते हैं कि हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 इज द नंबर टू कॉल। और हमारे पास कौन है? वालेकुम अस्सलाम, आई वाज ऑन माय वे टू मेक अ डिलीवरी, द मैनेजर टोल्ड मी टू कॉल द कस्टमर एंड टेल हिम द टायर वाज पंचर्ड, जस्ट लाइक दैट माय कार टायर गॉट पंचर्ड आफ्टर डिनर। ये होता है ना, ये कौन है हमारे साथ मैसेज में? मैसेज रहमत भाई ने मैसेज किया कि भाई इन्होंने जो है मैसेज किया है कि ये एक दफ़ा डिलीवरी करने जा रहे थे, तो मैसेज जो मैनेजर था उसने कहा कि कस्टमर कॉल करके बोलो तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तुम थोड़ा लेट हो गए हो, तो बस 10 मिनट बाद इनका वाकई में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ये होता है भाई, ये अल्लाह ताला दिखाता है कि भाई झूठ बोलना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। और इंसान कभी कभी मैं तो वाकई ऐसा कोई मुझे डर लगा है, मैं झूठ नहीं बोलती भी उसके बाद, भाई अल्लाह माफ़ करे। चलो भाई देखते हैं एक और कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी कौन है हमारे साथ?
3: फलक।
1: फलक भाई, अरे फलक भाई मैसेज से निकल कर।
3: हाँ जी।
1: फलक भाई, फलक का नाम

0: फलक का मतलब मेरे ख्याल से आसमान होता है, है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अरे वाह, आज आसमान जमीन पे कैसे? Oh my God, ये कैसे हुआ? फलक भाई आपको ये सुनने को मिला है कितनी दफा, आज आसमान जमीन पे कैसे?
1: बस ये तो अल्लाह के काम है।
0: आपने बस कभी गुरूर नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
1: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह,
0: ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कैसा चल रहा है भाई मामला, आज का दिन, दिन का कलर कौन सा चल रहा है?
1: गर्मी तो जान ही नहीं छूट रही।
0: आएगा आएगा, अभी देखें, गर्मी की कदर तभी होगी, नहीं सॉरी सॉरी, सर्दी की कदर तभी होगी जब गर्मी आएगी।
1: जब गर्मी आएगी, हाँ। इंसान तो एक हाल में भी खुश नहीं है ना, जब सर्दी आती है तो कहते हैं कि बहुत सर्दी है, हाँ। जब गर्मी आती है तो कहते हैं बहुत गर्मी है।
0: मेरे जैसे लोग जो है ना, वो इस मौसम में भी कनाडा वाली जैकेट पहन के घूमते हैं, तो मेरे वाला हाल तो छोड़ ही दे। मैं तो हर चीज में खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि 45 मिनट पहले जाना पसंद करेंगे या 20 मिनट बाद?
1: मैं तो अभी जब पाकिस्तान में जब था तो आखिर में सब लोगों ने मुझे पहचान लिया था कि यार बस ये लेट आने वाला है। ऑफिस में भी था तो आखिर में ऑफिस वाले लड़के जो थे वो अक्सर घर पर ही आ जाते मुझे उठाने के लिए।
0: सही
1: यार। यार चलो ऑफिस में जाने काम है, तो मैं अक्सर जाता लेट हूँ मगर झूठ नहीं बोलता, साफ बोल देता हूँ कि यार बस लेट हो गया हूँ, बस
0: देखो देखो मैं ऐसा ही हूँ, दोस्त बनना तो बनो, मैंने कहा आप कह देते होंगे मैं ऐसा ही हूँ, दोस्त बनना तो बनो, नहीं तो चलो वो कर लो पूरा रास्ता पूरा दरवाजा, ऐसा ही हूँ मैं किसी के लिए नहीं बदलता।
1: जी जी
0: चले खैर है, झूठ नहीं बोलने का, बस झूठ नहीं बोलने का,
1: झूठ नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा भाई ये बताएं कि बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे हमारे साथ?
1: चलो ट्राई कर लेंगे,
0: ट्राई कर लेंगे। चले भाई आपके साथ ट्राई करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आपको दिया जाएगा एक मिनट, एक मिनट के अंदर अंदर आपने ट्राई करना है कि आप अच्छे से हमें सॉन्ग बता सकें। अब इजी, मुझे क्या पता कौन सा इजी लग रहा है आपको, कौन सा मुश्किल लग रहा है, चले ट्राई करते हैं, ठीक है? 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, एंड ये रहा आपका पहला गाना। बहुत मशहूर गाना है भाई। अरे भाई वाह, गुड हो गया। अच्छा ये वाला, ये वाला।

0: चले टाइम भी खत्म हो गया हमारे पास, बट गुड गुड गुड गुड, हमारे पास भाई ने स्कोर किया है 3 का, मतलब सेकंड पोजीशन पर चल रहे हैं भाई। वेरी गुड भाई, गुड है, गुड है, नाइस। आज प्लेयर आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में, गुड गुड। चलिए फलक भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा,
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: तो भाई अगर किसी ने अपना लक आजमाना है तो जरूर आजमाए। मुझे एक भाई का मैसेज आया था, कहते मेरा लक जो है ना वो चल जाए, तो अब रुकें जरा इनको कॉल करके देखते हैं। तो भाई अगर आप भी प्ले करना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, तो जरूर हमें आप जो है वो चाहे तो मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। और बस ये भाई उठा लें, मुझे नहीं बताए भाई कौन है, शाफी भाई मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम शाफी भाई, कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप?
0: अरे वाह, मैंने शाफी भाई का ही नंबर मिला है।
2: जी जी,
0: बहुत बुरी हूँ मैं नंबर मिलाने में, पता नहीं मेरे चश्मे काम नहीं करते कि क्या, जब नंबर मिलाती हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले पता है क्या हरकत की है, मैंने किसी और के मोबाइल पर किसी और को बैलेंस भेज दिया,

0: अपना नंबर ही याद नहीं था मुझे. नहीं देखिए, नहीं नहीं, मेरा मसला पता है क्या है? मेरा मसला है अगर मुझे पर्टिकुलरली कोई एक काम करना हो ना, अब किसको अपना नंबर याद नहीं होता भाई, किसको नंबर अपना याद नहीं होता. मुझे मैंने पता नहीं किस गुमान में अपना नंबर डायल किया है और वो उसके ऊपर बैलेंस भेज दिया है अच्छा खासा, और फिर मुझे शर्म आया इतने कि मैं
1: बैंक में, मुझे लग रहा बैंक में ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए आपने नंबर पे भेज दिया.
0: अच्छा ये मेरे साथ हो चुका है. मेरा पाकिस्तान वाला नंबर भी है ना, वो एक होता है ना सिम को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आप नंबर अपने मोबाइल को रिचार्ज करवा लेते हो नंबर को. तो मैंने एक दफा इतना, मुझे करनी थी कोई रोमिंग वाली कॉल, और भाई रोमिंग कॉल के लिए आपको अच्छा खासा बैलेंस चाहिए, आपको 2,000-3,000 रुपए चाहिए. मैंने कावर किसको भेज दिया भाई, वो मुझे आज तक उसका दुख नहीं जाता. 3 साल पहले मैंने हरकत की थी, उस दिन के बाद से फिर मैंने कहा भाई मैं पोस्ट पेड पे अच्छी, मैं प्रीपेड पे नहीं चल सकती.
1: अच्छा इत्तेफाकन मैं भी कल गया था पोस्टपेड से प्रीपेड कराने.
0: वेरी गुड.
1: पता चला कि बट पोस्टपेड ही बेटर है प्रीपेड से.
0: मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब रंदे, हम खसारा हैं बस, मेरी जिंदगी का खसारा पूछते हो. मैंने ये हरकतें की हैं. अच्छा भाई ये बताएं शाफी भाई कि गेम खेलने की रेडी हैं?
1: जी बिल्कुल, करते हैं अपना भी लक,
0: अपना लक ट्राई करते हैं. चलिए भाई ये वाला बताइएगा. नहीं नहीं पहले मैं टाइमर सेट कर लूं जल्दी से. अच्छा जब तक मैं टाइमर सेट करूं ये तो बताएं आप लेट लतीफ लोगों में से हैं कि पहले सबसे पहले जाने वालों में से?
1: मैं लेट ही हूँ, एक 5-10 मिनट हमेशा.
0: मतलब आपको जिंदगी में ऑप्शन मिल रहा है कि आप जल्दी जा सकें तब भी नहीं?
1: जल्दी हाँ, अगर वक्त है सब कुछ है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए उतना वक्त है, काम वाम सब हो गया तो फिर.
0: मतलब अगर लाइफ आपको ऑप्शन दे रही है कि 45 मिनट पहले जाओ या अपनी मर्जी से 20 मिनट बाद में जाओ तो क्या करेंगे?
1: 45 मिनट चले ही जाएंगे.
0: अरे गुड हो गया, गुड हो गया. कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे. चलिए भाई आपके साथ गेम शुरू करते हैं. आपका जो टाइम है वो स्टार्ट करें तो कहाँ से करें? हाँ जी रुक जाएं भाई, यहाँ से कर लेते हैं. ये वाला नहीं, ये वाला इजी हो जाएगा.
1: मुझे गाना पहचानना है ना, मुझे
0: हाँ गाने का नाम, आपने मुझे गाने का नाम बताना है. ठीक है
1: ठीक है
0: चलें. ये रहा ओके भैया आपका गाना. मेरा टाइमर कहाँ गया? चले मैं 1-2-3 स्टार्ट किया हमने. ये रहा गाना आपका. कौन सा
1: ये था? जाने दिल को मेरे.
0: नहीं ना, अरे मैं बता रही हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार दूंगी अगर ये गाना नहीं बजाना तो. नहीं नहीं ऐसा ना करें. देखिए फिर से सुने भाई ये. अच्छा चले कैसे बताया जाए आपको, कैसे बताया जाए, सुपर हिट मूवी भाई. मेरे भाई DDLJ का गाना नहीं है ये, कुछ कुछ होता है का गाना है. शुक्र है कुछ तो याद आया, कुछ तो याद आया हमें. 1 मिनट के अंदर एक गाना तो याद आया हमें.
1: कुछ हुआ नहीं ना.
0: देखो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे कुछ कुछ नहीं हुआ. चले एक एक एक एक एक पॉइंट तो बनता है आपका, एक पॉइंट तो बनता है भाई. शाफी भाई को अफसोस हो रहा है. देखो शाहरुख खान की जगह मैं तो था नहीं तो मैं क्यों ही याद रखूं. मैं होता तो मैं फिर भी याद रख लेता, लेकिन शाहरुख खान की जगह मैं तो था नहीं. सीधी सी बात है ना भाई, हमारे साथ हुआ नहीं तो हम क्यों किसी का मामला याद रखें. चलो रास्ता ना वो. चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मे बी नेक्स्ट टाइम कल ट्राई कीजिएगा फिर से. ठीक है ओके अल्लाह हाफिज. शाफी भाई सही, शाफी कहते भाई देखो मैं 3-13 में, मेरे साथ हुआ नहीं तो मैं क्यों याद रहूँ. कुछ कुछ होता है कि सब कुछ होता है कि किसको क्या कुछ होता है. तो भाई साथियों अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें. आपको किसी ने मना किया? किसी ने मना नहीं किया. अगर कोई मना कर रहा है तो मुझे बता दें, सब हल है हमारे पास सबके लिए. अच्छा भाई

0: हमारे पास मैसेजेस कुछ पड़े हैं पेंडिंग, वो मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. आई वॉन्ट टू प्ले द गेम. चलें. अरे भाई कॉल आ गई, मैं कॉल लगाने लगी थी लेकिन मुझे पहले ही कॉल आ गई. मेरे भाई शहजाद सलीम भाई, मैं आपको कॉल करती हूँ, रुकें. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जी, कैसी लगी कल की मैच?
0: इसे देखे, ये होता है कलेजे को ठंड पड़ना. ये मैच नहीं था. देखिए मैच जो ना शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बच्चे ना पार्क में वो घूमने फिरने आए होते ना, ये दो टीमें पार्क में सिर्फ घूमने फिरने आई हैं. मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो मैच वो पहले वाला था, वो जो थर्ड पोजीशन के लिए खेला था. कम से कम हम कुर्सियों से चिपके हुए तो थे. वो मैच धमाकेदार मैच था, अच्छे खासे गोल हुए थे उसके अंदर. तो मैंने कहा
1: कल की भी धमाकेदार था, कल का
0: एक गोल ही भारी पड़ गया भाई, एक गोल भारी पड़ गया.
1: एक ही गोल लेके वो लोग पूरा मालूम है नौटंकी भी कर रहा था. तो देखो क्या कर रहा था
0: वो लोग. तो बच्चों की तरह ना. अच्छा अर्जेंटीना की टीम का ये मसला चल रहा था कि अर्जेंटीना की टीम बहुत ज्यादा, मैंने कहा इनके साथ ना वो सऊदी की टीम को खिलाना चाहिए था इस स्टेज पर. मजा आ रहा था ऐसे को तैसे लग रहा था.
1: सऊदी का तो अलग बात थी रे कतर का.
0: जो सऊदी के मैच हुए थे जब 2022 में हुए थे मैचेस सऊदी के यहाँ पर वर्ल्ड कप के, तो भाई क्या तो मजे का, मतलब आपको मजा आए देखकर पता चल रहा था.
1: उधर ही था उस दिन, मालूम है कितना यानी बहुत अच्छा था.
0: तो मैं चाह रही थी कि काश के ऐसा होता कि इनका मैच ना उनके साथ हो जाता, वो ऐसे को तैसा टकरा जाता.
1: सही बात
0: लेकिन लेकिन एंड टाइम पे जो गोल हुआ ना, बस अच्छा हुआ. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ भाई,
1: जो हुआ अच्छा हुआ. लेकिन हमारी बात साथ निकली.
0: मिठाई बांटेंगे
1: हाँ मुश्किल है.
0: अच्छा ये बताए मिठाई का खर्चा कौन भरेगा, मैं क्या आप?
1: नहीं मैं कर रहा
0: हूँ, मुश्किल है. वो जो ना वो गलती है, वो गलती है, गलती बाय मिस्टेक हो गया. देखिए मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई.
1: मुश्किल नहीं, वो पाकिस्तान वाले मुश्किल नहीं, भला हो गया थोड़ा अच्छा है किसी का भला हो गया.
0: मैं अच्छा, मैं अपने दिल को पता है कैसे तसल्ली, जब मैं कोई गलती कर लेती हूँ ना ऐसी वाली, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, पैसा तो पैसा होता है, ठीक है. तो वो किसी की जेब से भी जाए, वो एक रियाल तो एक रियाल भी होता है. तो मैं अपनी आपको पता है क्या तसल्ली देती हूँ, मैं कहती हूँ हाय पता नहीं किस बेचारे को बहुत ज्यादा जरूरत होगी. तो किसी बेचारे को ना बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा जरूरत होगी किसी को, तो अल्लाह मैंने उसे दे दिया, अल्लाह ताला ने उसको दिलवा दिया. ये अल्लाह ताला की रजा है. मैं अपने आपको तसल्ली देती हूँ,
1: कुछ भी नहीं होता.
0: मैं अपने आपको ऐसे ऐसे कहती हूँ, हाँ क्या पता क्या पता. चलिए अच्छा ये बताएं कि आपको अगर जिंदगी मौका दे कि आपने कहीं पे 45 मिनट पहले पहुंचना हो तो 45 मिनट पहले पहुंचेंगे या 20 मिनट बाद में पहुंचेंगे?
1: नहीं मैं वो 45 मिनट है, 50 मिनट पहले पहुंचूं.
0: लो ये कह रहे हैं कि मैं 45 मिनट क्यों, मैं पूरा दिन एक दिन पहले पहुंच जाता हूं. कहो तो एक दिन पहले पहुंच जाता हूं.
1: अगर जिंदगी ने ऐसा मौका दिया जरूर.
0: तो आपको जो ना लोग दावत पे बुलाने से भी घबराते होंगे, कहीं एक दिन पहले पहुंच जाएगा ये. एक दिन बाद ही दावत देना.
1: सही बात है, शादी के दावत में कोई भी दावत नहीं देता
0: ना. ये वो खास तौर पे जब आप पाकिस्तान से,
1: पाकिस्तान से
0: ना, पाकिस्तान से ना, तो नहीं मुझे एक्सेंट से आपको पता चला था कराची से होंगे.
1: हाँ
0: और मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है आप लियारी से होंगे. अरे भाई पहचान लिया.
1: मालूम है लियारी में पप्पू रामन, मालूम है.
0: अच्छा मेरा जो है ना कभी लियारी जाना नहीं हुआ, उस साइड में जाना नहीं हुआ मेरा. लेकिन मैंने लोगों से नहीं मेरे यहाँ पर भी इतने दोस्त हैं जो लियारी से उनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे तमीजदार लोग हैं वो. मैंने जो उनसे उनके पास तस्वीरें वगैरह देखी ना लियारी की, तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा वो साफ सुथरा नजर आया भाई, वो मुझे सजा हुआ नजर आया मुझे लियारी. उल्टा
1: लियारी तो बहुत अच्छी जगह से लेके थोड़ा अभी गुंडागरी ऐसा से थोड़ा अभी यानी समझो लोग हाउस कर पा रहे.
0: तो वो भाई सबका अपना अपना होता है, जिसके जिसके नसीब में जैसे लोग मिले। खैर तो अब हम एक काम करते हैं कि आप मुझे बताएं,
1: जी बोलो
0: कि आप मुझे बताएं कि हमारे साथ बॉलीवुड का गेम खेलेंगे।
1: बॉलीवुड का,
0: बॉलीवुड गाना पहचानना है, गाने का नाम, गाने का नाम, ठीक है?
1: आपके लिए आचार मुश्किल नहीं।
0: चलें, ये आपको एक मिनट मिलेगा, एक मिनट के अंदर ज्यादा ज्यादा गाने पहचानने हैं। आपने चार गाने ऑलरेडी लोग मैक्सिमम पहचान चुके, आप कोशिश करें इससे ज्यादा नंबर करने का, ठीक है?
1: पाकिस्तान का ड्रामा बोलता था तो मैं बता सकता था,
0: ये वाले पहचान जाएंगे आप।
1: चल
0: जी, 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब ये वाला गाना रुक जाए भाई, ये वाला गाना पहचान के बताइएगा हमें कि ये वाला कौन सा है।
1: जी बोले इंशाल्लाह।

0: हाथी का खंडाला ऐसा कुछ है।
1: ये वही है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना। अब दूसरा वाला गाना, ठीक है, दूसरा वाला गाना, दूसरा वाला गाना, ये वाला पहचाना।

0: शाहरुख खान का गाना है, शाहरुख खान का सिक्स पैक दिखा दे।
1: कर गई कैसी जादू गरी, नींद न को से छीन ली है, दिल में बेचैनी
0: है। इतना सुपर हिट गाना गया था इसका, ओम शांति ओम का गाना है ये। भाई टाइम तो ओवर हो गया भाई, समझाऊं मैं अब किस किस को? चले चले भाई, आपने एक का स्कोर किया, नॉट बैड नॉट बैड,
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: चले भाई नेक्स्ट टाइम प्ले करेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
2: दुआ करो बस मेरे लिए सबके लिए, दुआ करो
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपने जमान में रखे, अल्लाह हाफिज।
2: किधर मिलेगा, मैं आपको मिठाई ही देगा रखा
0: हूं, मुलाकात हो रही जिंदगी में इंशाल्लाह, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह जिंदगी, अल्लाह
0: हाफिज
2: अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह। तो भाई साथियों, अगर आप भी हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं तो जरूर खेलें, आपको किसने मना किया है? अरे ये क्या हुआ, मुझे वाकई में चश्मे का नंबर चेंज कराने की जरूरत पड़ गई, सामने पड़ा मोबाइल नजर ना आ रहा मुझे। चलें एक काम करते हैं, शहजादे भाई को कॉल कर लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, बस ये कॉल उठा लें हमारी, ये एक मेहरबानी होगी इनकी। देखते हैं ये कॉल आ रही है कि कॉल मैं कर रही हूँ, हाँ मैं कॉल कर रही हूँ। कॉल करने की आदत नहीं है ना हमें, देखिए हम वो 90s वाले बच्चे हैं जो 90s में रहना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा भाई देखते हैं, हमारे साथ कॉल उठा ली, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।
0: शहजादे भाई आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपकी कॉल उठा ली, आपने कॉल लगाए भले उठाते हैं क्या, नहीं मैं क्यों नहीं उठाऊंगा, मैं तो बस
0: इंतजार में बैठा हूँ। अच्छा मुझे एक क्यूरियोसिटी है, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे
3: जी।
0: बच्चों को माएं प्यार से बुलाती है ना, हाय मेरा शहजादा बेटा, हाय मेरा ये, हाय मेरा पपलू डपलू, कुछ बच्चों को बुलाती ना, आपकी अम्मी आपको प्यार से क्या बुलाती थी?
3: मेरी अम्मी तो मेरे को सलीम ही बोलती थी ज्यादा।
0: अच्छा आपका नाम शहजादा सलीम है या आपका नाम सलीम है?
3: मेरा नाम एक्चुअली मेरा नाम है नाम मोहम्मद सलीम है, तो मेरे को ये निक नेम है ना शहजादे
0: अच्छा।
3: का ये निक मिला हुआ है, और वो भी किसने दिया है पता है?
0: किसने?
3: वो भी किसने दिया है? फरजाना बाजी ने दिया है।
0: तो भाई आप तो वायरल हो गए फिर तो, शहजादा सलीम।
3: वो जब शाम को प्रोग्राम करते थे ना, तो मैंने जब कॉल किया था, इंट्रोडक्शन किया था,
0: सही,
3: तो हाँ तो उन्होंने बोले शहजादे
0: सलीम नाम से, हाँ सलीम से। अच्छा उनको बड़ा लिटरेचर का भी उनको बड़ा शौक है ना, तो उनको वो एकदम सलीम सलीम। अरे वाह,
3: हाँ ये मेरे को विरासत में मिला है 107 की तरफ से।
0: आपने तो दिल पे ले लिया ये नाम आपने कहा मेरी रगों में शामिल है अब ये नाम, मैं मुझे हर कोई शहजादा सलीम करके बुलाए।
3: हाँ जी जी जी,
0: बाद अब बा मुलाहिजा।
3: हाँ बिल्कुल, तो वो और फिर मोहल्ले में तो सब बोलते ही थे वहाँ पे इंडिया में, बॉम्बे में ना, मोहल्ले में वो खाला वगैरह पड़ोसी रहते ना,
0: सही,
3: तो वही कुछ ड्रेसिंग वगैरह मार के निकलो जब बैचुलर टाइम पे, तो फिर वो ही वो बोलते थे, ताने मारते थे, हाँ शहजादे कहाँ चले आज, तो ऐसे तो निक नेम पड़ भी गया। तो और ऐसी कुछ था वहाँ पे इवेंट्स कुछ था ऐसे ही, तो उसमें माइक पे बंदे ने जाके सीधा डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दिया, शहजादा सलीम जहाँ कहीं भी
0: बाद अब बामुलाइजा होशियार
3: तो फिर वो पड़ ही गया। हाँ जब से तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मतलब
0: तब से चल रहा है।
3: हाँ जब से चल ही रहा है,
0: गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया। चलिए मैं एक और चीज चलाते हैं, और वो है बॉलीवुड ट्रिविया, और देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं आज।
3: जी जी,
0: ये देख लें, आज हमारे पास यूसुफ भाई ने कॉल नहीं की है, लेकिन हुसैन भाई ने 4 का स्कोर कर दिया, फलक भाई ने भी 3 का स्कोर किया है, आज हमारे पास अच्छे अच्छे प्लेयर होकर गए।
3: अच्छा
0: चले भाई, आप एक काम करें कि आपको रूल बता देती हूँ, आपने करना ये है कि आपने, आपको दिया जाएगा 1 मिनट का टाइम, और आपने 1 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम गानों के नाम बताने मुझे, ठीक है?
3: ओके ओके
0: ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।

0: गाने का नाम है अपना एक
1: मेरी, हाँ मेरी हसीना अजनबी या मेरी ऐसे ही है
0: गाने का नाम। ओम शांति ओम का गाना है बहुत। शाहरुख खान ने सिक्स पैक दिखाए थे अपने
1: पास, पास,
0: पास नहीं होता ना हमारे पास, ये तो एक मसला है। मैं ये अब किस किस को दिल में मेरे है, दिल में मेरे है कुछ तो है दिल में, अब तो पूरा गाना बता दिया मैंने, दिल में मेरे है कहाँ फंसा, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, इतना इतना ओम शांति ओम के इतने मजे मजे के गाने थे।
1: हाँ नहीं मैं थोड़ा सा कमी देखता ना बॉलीवुड, नई नए जमाने की, पुराने जमाने की होती तो बात अलग थी, पुराने जमाने की ज्यादा देखता हूँ मैं।
0: अब मैं क्या 1947 के गाने लगाऊं भाई, बाकी सब क्या करेंगे। अच्छा अब क्या करें तो फिर ये मतलब क्या हो गया, ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ।
1: मुगले आजम के जमाने के लगाओ जरा।
0: चले कल कल आपके लिए मुगले आजम के जमाने के लगाते हैं, ठीक है। कल रेडी रहिएगा फिर, आपके लिए मैं स्पेशली वो 80s के गाने लगाऊंगी फिर। आपका कोड अलग से होगा फिर, याद रखिए फिर पहचानने पड़ेंगे आपको।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: चले ठीक है, चले फिर कल ट्राई करेंगे।
1: वो एक करना भी चाहिए ना, आ, आ, आ, आ, हमेशा 90s भी नहीं ना, थोड़ा और पीछे भी जाना चाहिए।
0: और पीछे कल चले आपके सजेशन पे कल 80s में चलेंगे, ठीक है।
1: हाँ जी
0: चले भाई, आज के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कह रहे हैं 80s के गाने लगाओ, क्या कहते हैं कुछ सजेशन दें बाकी सब जो सुन रहे हैं। कल 80s का दौर चलाएं क्या, 80s के दौर, भाई मुझे बहुत सारे गाने याद हैं, ओल्ड इज गोल्ड 80s के बहुत सारे, बहुत वाकई में एक बात तो है 80s के गाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा ये कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है ये, इट्स मोबीन, इट्स के इड्स ITX। अच्छा ये एक्स जो लिखते थे हम एक जमाने, मैंने बहुत ही हरकतें की हैं तो मैं आपको टोंट नहीं मार रही, अपने आप को भी, कैसा कूल और फैंसी लगता था ना एस की जगह पे एक्स लिखना, लगता था ना, मुझे अब नहीं लगता। अच्छा भाई हमारे साथ तो अब ऐसा हो रहा है कि हम सच बोलें तो झूठ कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको पता है कि हम बहाने ही बनाने, ओके ठीक है जाना होता है, हमने रोज़ लेट जाना होता। अच्छा कह रहे हैं अब तो कंपनी वालों को भी फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी वाले भी आदी हो गए, हमने इतने झूठ बोले कि कंपनी वाले ही आदी हो गए, कहते बस काम पे पहुंच जाओ। चलो भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं शाहनवाज बोल रहा हूँ।
0: शाहनवाज भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलने के लिए रेडी हैं?
2: जी खेल सकते हैं।
0: खेल सकते हैं तो भाई आपका क्या कहना है, 80s के गाने चलाए जाएं क्या, आज नहीं किसी और दिन? आपको पसंद है 80s के गाने?
2: इसके गाने तो पसंद है।
0: बॉलीवुड ट्रिविया भी 80s खेला जा सकता है, चलें ये भी एक सजेशन है, लेकिन अभी के लिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते

0: हैं, देखिए आपको दिया जाएगा कितना, आपको दिया जाएगा एक मिनट का टाइम. हमारे पास मैक्सिमम आज का स्कोर है 4 का, तो देखते हैं एक मिनट के अंदर आप कितना स्कोर कर लेते हैं. ओके
1: ओके
0: भाई. भाई ये वाला गाना बता दो, तीन कॉलर से पूछ चुकी हूँ पिछले, कोई नहीं बता रहा, ये वाला आप बता दो. ठीक है
1: ओके देखते हैं.

0: हाँ शाहरुख खान का गाना है
1: नीलम परी
0: नहीं इसका गाना है
2: वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी
0: डिस्को से रिलेटेड है डिस्को से
2: दिल में बेचैनियां मरी
0: हाँ चले मैंने एक हिंट दे दिया कोई बात नहीं क्योंकि इसको कोई सॉर्ट ना कर पा रहा था ये एक और गाना

0: के नाचूंगी बताएं बड़ी
1: हम दिल दे चुके सनम में
0: है अरे भाई हम दिल दे चुके सनम वाला नहीं है मिक्सअप कर रहे हैं टाइम ओवर हो गया मिक्सअप हो गया चले मूवी का नाम मैं आपको बता दूं देवदास मूवी थी
1: देवदास
0: का गाना है ये लेकिन कौन सा वाला है ये हमें नहीं पता तो चले कोई बात नहीं आप कल फिर से ट्राई कीजिएगा फिर से हाई स्कोर करने की कोशिश करेंगे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज तो भाई गोभी दया फुल्लो आ जाओ खुशबू लगा के 4434377 इज द नंबर टू कॉल और ये हमें एक कॉल आ रही है इनसे गुफ्तगु कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या कौन बात कर रहा है आरिफ भाई हैं हाँ जी आरिफ भाई अच्छा आरिफ भाई आपकी आज उमर भाई की कॉल आई थी पहली कॉल उमर भाई की थी उनकी आवाज आपकी जैसी लग रही थी क्यों व्हाई आपने अपना वॉइस बॉक्स उनको क्या रेंट में दिया था
2: हमारी आवाजें इतनी फेमस
0: है ओए होए होए होए बस कभी गुरूर नहीं किया अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को आपसे सीख रहा हूँ वाह देखो जरा उस्ताद भी किसको बनाया है क्या ही तो कुछ सीखेंगे फिर तो आप जिंदगी में उस्ताद ऐसा बस बस आप अपने उस्ताद का नाम ना लीजिए कहीं पे नहीं तो लोग आपके पे यकीन करना छोड़ देंगे
2: नहीं मैं फखर से कहूंगा कि मेरी उस्ताद
0: जैसे मैं फखर से कहती हूँ मेरा उस्ताद कबीर भाई हैं तो मुझे वो फिर भी लगता है स्टैंडर्ड का बस चलता है वो कबीर भाई उस्ताद है हाँ भाई उस्ताद है लेकिन अगर आपने मेरा नाम ले लिया ना कहीं तो लोग वहीं से पलट जाएंगे ऐसे उस्ताद तुम ही को मुबारक हो अच्छा भाई अरे भाई ये बताएं कि दिन कैसा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह चलिए काम करते हैं बॉलीवुड ट्रिविया खेलते हैं दिन को आगे बढ़ाते हैं ठीक है हाँ ना ट्राई तो करेंगे भाई कॉल किया तो ट्राई तो करेंगे कौन सा कुछ
2: मैं उसे तोड़ूंगा या वो मुझे तोड़ेगा
0: देखिए ना मेरी जेब से कुछ जा रहा ना आपकी जेब से कुछ जा रहा खेलने में क्या ही बनता है तो चले खेलते हैं एक मिनट के लिए तो खेलना है ना
2: चलिए कचरा काम
0: देखो एक मिनट के लिए कचरा करने आए ये देखो ये वो बच्चे होते हैं ना वो जो सारा सच उगल देते हैं भाई इतना भी सच नहीं बोलना था चलो भाई आगे बढ़ो चलिए भाई आपको ये गाना सुनाते हैं पहचाने ये गाना इस गाने का टाइटल क्या है ठीक है आतिफ असलम होए होए हाँ गाना तो गाना कौन सा है नाम बताएं

0: टूटा अरे भाई गा भी रहे साथ साथ अरे वाह भाई वाह अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला अभिषेक बच्चन
1: फिर भी मालूम
0: है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या नहीं ऐश्वर्या राय तो नहीं थी कौन सी हीरोइन थी इसके इसकी हीरोइन मुझे दिमाग में आ रही है और नाम मुंह पर नहीं आ रहा लेकिन एक दफा फिर सुने सुने कोशिश करें

0: नहीं याद आ रहा, चले कोई नहीं। आपने अपने राइमिंग पार्टनर के साथ आतिफ असलम का गाना आरिफ भाई ने पहचान लिया, एक गाना तो बनता था
1: वो
0: पहचान लिया भाई, गुड हो गया भाई, आपके लिए तालियां बजा दी जाए।
1: किस चीज का मालूम है?
0: किस चीज का?
1: उदित जी और कुमार सानू जी लाइन से आएंगे और मैं धड़ धड़ बोलूंगा।
0: हाय हाय हाय, डाडे तो कोई बड़े फैन सी, डाडे तो कोई बड़े फैन सी। अच्छा, उनका भी एक एरा गुजरा है, उनका एक बहुत बहुत लेजेंडरी एरा गुजरा है,
1: क्या ही बताएं,
0: उनका एक लेजेंडरी, और उन्होंने गाने बहुत अच्छे अच्छे उनका, मैंने कहा ना एक एरा गुजरा है उनका। तो भाई गुड गुड, हाँ, ये बात तो है। चलिए भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलेंगे, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जिनका आप गाने जब सुनते हो ना, तो आप सिंगर की आवाज़ की वजह से सुनते हो, या आपके फेवरेट सिंगर होते हैं तो उसकी वजह से सुनते हो, ये है, ये होता है। अगर कोई अच्छा गाना भी आपके फेवरेट सिंगर ने गा लिया ना, तो आपको डबल ट्रिपल अच्छा लगने लगता है। तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: जी कैसे हैं आप, फिर से हाजिर हो गए हम। हुसैन भाई है ना? हुसैन भाई है, हाँ हुसैन भाई।
2: दादी अम्मा की दुआ है।
0: दादी अम्मा की दुआ है। देखें, आज से मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हूँ मैं दादी अम्मा। जो दो बाल बचे थे वो आज सफेद हो चुकी। तो भाई ये बताएं कि हमारे साथ गेम खेलेंगे बॉलीवुड ट्रिविया।
2: जिंदगी तो गेम खेल रही है।
0: चले एक गेम आप भी खेल ही ले, जिंदगी तो खेलती रहेगी। खेलते कूदते जाएंगे, खेलते कूदते। चले आपको गाना सुनाते हैं, आपकी उदासी दूर करते हैं, ठीक है?
2: ठीक है, गाना सुना उदासी।
0: ये वाला बताएं, ये वाला गाना कौन सा है? ठीक है, ये वाला गाना बताएं। नम नम नम नम नम नम, आमिर खान ने गाया था।
2: आमिर खान का
0: तो है। खंडाला क्या? खंडाला आदि क्या खंडाला। ओके चलें, अब आपको दूसरा वाला गाना सुनाते हैं। ये बताएं ये वाला कौन सा गाना है, ठीक है?

0: ये अक्सर औकात ये जो गाने का टाइटल है ना वो मैं अपने लिए बोलती हूँ.
1: दादी अम्मा में फिर पर
0: दादी अम्मा नहीं है ना. बताएं बताएं. नहीं नहीं आया कुछ दिमाग में. चले टाइम अप हो गया. शाहरुख खान का इतना मजे का गाना था. चले एक का स्कोर तो किया हमने. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. तालियां तालियां. गुड गुड गुड एफर्ट गुड एफर्ट. नॉट बैड नॉट बैड. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. चले भाई हुसैन भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखे.
1: दादी अम्मा हुसैन भाई मैं नहीं हूँ.
0: हुसैन भाई नहीं फिर कौन से वाले भाई हैं. फिर कौन से वाले हैं भाई. हुसैन भाई नहीं चले गए. नाम बताए बगैर चले गए. हुसैन भाई मुझे तो हुसैन भाई लगे आवाज से. हुसैन भाई बोलते मुझे दादी अम्मा और कौन बोलता. अरे भाई ये मुझे मतलब ये क्या हो रहा है. ये मैसेज वाले नंबर पे कॉल क्यों करते हो. और मैंने उठा भी ली मजे से. मैंने उठा भी ली मजे से. अच्छा मुझे किसी ने मैसेज भेजा है. किसने. यूसुफ भाई ने भेजा है. जसफा जी मैं इंशाल्लाह कल कॉल करूंगा. दूसरे चैंपियंस को भी मौका मिलना चाहिए. अरे वाह वाह इसे कहते हैं चीता. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम जी. ठीक है.
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाएं कौन बात कर रहा है.
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन बाद आई हैं. पहचानना कहाँ पड़ेगा आपको.
0: देखें मैं अपने आप को ऑफिशियली गजनी डिक्लेयर कर चुकी हूँ तो मुझसे तो कोई गिला कर ही नहीं सकता ना. मुझसे कोई गिला कर नहीं सकता ना फिर. तो मतलब समझ जाए. मतलब
2: अदील बात कह रहा हूँ.
0: अदील भाई कैसे हैं. ठीक ठाक हैं
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया. आप सुनाएं.
0: अच्छा 4-5 दिन बाद मैं आई हूँ कि 4-5 दिन बाद आप आए हैं.
2: आप आए हैं जनाब.
0: अच्छा हाँ मैं तो हाँ अरे हाँ मैं तो भूल ही गई. मेरा ना वो आपने मूवी देखी है. वो मूवी थी नीमो. नीमो करके फिश होती है एक. उसके अंदर एक और दूसरी फिश होती है. उसका नाम होता है डॉर्सी. मेरा डॉर्सी वाला हाल है. मैं हर 5 सेकंड बाद मेरी याददाश्त का ये मामला होता है कि वो गुम हो जाती है. फुक गुम.
2: अच्छी बात है. इतना कुछ याद भी नहीं रखना चाहिए ना.
0: ये हमारे देखिए अब गहरी बात हो जाएगी अगर की जाए तो बात बहुत दूर निकल जाएगी. बैठेंगे किसी दिन बातचीत करेंगे इसके बारे में.
2: जी जी
0: तो अभी तो फिलहाल एक काम करते हैं. गेम खेलते हैं.
2: चलें गेम खेलते हैं.
0: चलें आपने
2: पूछना नहीं है अभी. हाँ
0: हाँ ये बताएं. हाँ हाँ ये तो ये भी पूछना था ना. अभी जब टाइमर सेट करते तो आपसे भी पूछते ना. चलें पहले आप ये बता दें कि आपको अगर 45 मिनट पहले का टाइम दिया जाए तो 45 मिनट पहले पहुंचेंगे या 20 मिनट लेट पहुंचेंगे.
2: देखिए मैं तो ऑफिसली जो है ना वो अगर किसी शादी पे या किसी पार्टी पे जाना हो ना
0: लेट जाना
2: तो मेरा यही होता है कि मैं सबसे एंड पे जाऊं. के सबसे एंड पे जाऊं क्योंकि वो सबकी नजर फिर होती है कि आ रहे हैं आ रहे हैं.
0: नहीं मेरा पता है क्या मामला. ये मुझे वो सीन याद आता है. शकुरे रोटी खुल गई है. वो आवाज 9 बजे के बाद ही आती है.
2: रोटी खोल दे आ गया.
0: हाँ वो शकुरे रोटी खुल गई है. तो वो वाली आवाज 9 बजे के बाद आती है या 8 बजे के बाद आती है. तो हम कहते हैं भाई थोड़ा देर से जाएंगे.
2: नहीं नहीं वैसे तो जो है ना वो पहले ही पहुंचना चाहिए ताकि किसी को इंतजार ना कराना
0: हाँ,
2: पड़े.
0: बिल्कुल
2: ठीक है. अगर किसी ने बुलाया तो टाइम से बंदा जाए.
0: देखिए एथिक्स जो होते हैं ना वो एथिक्स होने चाहिए बंदे के अंदर इतने तो. लेकिन हम क्या करें हम देसी लोग हैं. हम मजबूर हैं. हम बहुत कोशिश करते हैं. अच्छा मजे की बात ये जब एक तो होता है ना अकेले इंसान ने जाना हो ठीक है फिर आता है पूरा खानदान टब्बर तैयार होकर जब आपके साथ जा रहा हो. हमेशा हर घर में एक बच्चा तो ऐसा जरूर होता है जिसका बींडा बाजा बजा हुआ होता है. एक पीस ऐसा होता है जो कभी रेडी नहीं होता. एक का प्रॉब्लम ये होता है कि उसके जुराबे नहीं मिल रहे होते. तो वो तो कहानी कुछ और है. और एक हमेशा ऐसा होता है जो सबसे पहले तैयार होकर बैठा होता है और एन निकलने के टाइम पर उसके कपड़े खराब हो जाते हैं.
2: वो जब आपने बात की ना तैयार होकर बैठा. अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वाले साहब को.
0: आमीन.
2: वो कहीं कहना होता था ना वो ना आधा घंटा पहले ही ना तैयार होके बैठ जाते थे कुर्सी पे ना. पर ना ऐसे मोटे पे रख के ना बैठ जाते थे, चलो जी अब जल्दी तैयार हो जाओ अगर आपने आना ठीक है, नहीं तो जहाँ जाना है ना उन्होंने उस घर में जाके पहले बैठ जाना।
0: अच्छा एक मजे की बात है,
2: मैं तो आ गया हूँ और बच्चे आ रहे हैं पीछे।
0: हाँ, अच्छा एक मजे की बात है, ये जो हमारे वालिद वालदा वाली जो जनरेशन है ना,
2: जी जी
0: बड़ी पंचुअल जनरेशन थी भाई, बहुत पंचुअल, जोक सपाट बहुत पंचुअल जनरेशन थी वो थी। मतलब अब हम जो है ना, हम उनके हम लाजमी इतने ऐसा पेड़ हो वैसा फल भी हो, लेकिन उनकी जनरेशन बड़ी इस टाइमिंग के मामले में बड़ी अच्छी थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी काम है ना उन्होंने टाइम पे ही करना है। हाँ। टाइम की कदर होती थी पहले ना,
0: वर्ड वर्ड उनका उनका जो कहते हैं ना वो उनका जो बात बोल देते थे ना तो वो दी उसको दी। पूरा करते थे, भाई हम पहुंच जाएंगे, आप टेंशन नहीं ले, हम इतने बजे पहुंच जाएंगे, और वो पहुंच जाते थे। चलिए भाई अब मुझे लग रहा है सीरियस मोड पे बात जा रही है, तो सीरियस मोड पे बात नहीं करेंगे। देखिए पर्सनालिटी को सूट नहीं करता ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और एक मिनट का टाइमर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक मिनट में आपसे देखते हैं आपको कितने गाने आते
2: हैं।
0: देखिए ये तो जो आता जाएगा वो चलता जाएगा, ये वाला मामला चल रहा है, ठीक है। वन टू थ्री और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, और आपका गाना रहा ये।

0: सलमान खान का गाना है।
1: हाँ गिटार लेकर पकड़ा हुआ सलमान खान ने वो। तेरी जान तुझे है पाना
0: आ जाने जाना।
1: अरे भाई वाह वाह वाह वाह, बस बस जज्बाती नहीं होते, जज्बाती नहीं होते, बस बेटा बस बस बस वैसे वाला।

0: करते हो जरा?
1: यही है बिल्कुल नहीं था।
0: गाने का नाम है ये क्या हो रहा है मजे ले रहे हैं ये, मतलब ये मजा हाँ जी था ये था, ये क्या हो रहा
1: है?
0: चलें भाई, ये तो मतलब नहीं, नॉट बैड। दो का स्कोर तो आपने किया, दो का स्कोर तो किया।
1: नहीं नहीं, तीन पूरे किए हैं।
0: नहीं कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा, चीटिंग, ये सफ़ेद झूठ
1: है ना।
0: हाँ जी,
1: तो सॉरी, शाहरुख खान और काजल का ना ये।
0: मुझे शाहरुख खान और काजल थोड़ी चाहिए थे, मुझे तो गाने का नाम चाहिए था।
1: मैंने बताया तो ना गाने का नाम आपको।
0: गाने का नाम क्या आपने बताया? ये गाने का नाम है, ये तो पूरा मिसरा हो गया गाने का। मिसरा बता गाने का नाम है, ये क्या हो रहा भाई? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये चले चले, आप आखिरी कॉलर हैं तो आपके पर शो खत्म करना ही है। मैंने तो गाने का नाम बताती हूँ, लड़की बड़ी अनजानी है।
1: सपना है, सच है, कहानी है।
0: हाँ जी जी हाँ,
1: चले
0: जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: चले बहुत शुक्रिया जी, ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह
0: हाफिज। तो भाई साथियों, मेरा भी आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम आ गया है। मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, जाते जाते वो पढ़ना चाहूंगी। कहाँ गए मैसेजेस भाई? सॉन्ग लड़की बड़ी अनजानी, हाँ मोहम्मद यूसुफ ने बता दिया, रहा ना गया। अच्छा भाई, कॉल वाला नंबर क्या है? देर हो गई लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप कल कॉल कर सकते हैं। जिनकी कॉल रह गई है, 443-443-77 नंबर है कॉल करने का। अब कॉल बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल रिसीव होंगी। 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल। और अगर आप चाहें तो मैं आपको लिख कर भी भेज सकती हूँ, 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल। जी हाँ, कौन है? मैं जीत गया। कौन जीता? फलक भाई आपने 3 का स्कोर किया था, हुसैन भाई ने 4 का स्कोर किया है। हाँ वैसे सेकंड रनर अप आप ही हैं, देखें कोई मसले की बात नहीं है, दिल छोटा ना कीजिएगा। अच्छा नसीम भाई मुझे दादी अम्मा कहते हैं, मैं नसीम भाई को और हुसैन भाई को राइम कर दिया आपस में, सॉरी नसीम भाई। अच्छा भाई, सॉन्ग इज डोला रे डोला। अरे वाह, शहजाद सलीम अभी भी खेल रहे हैं, डोला रे डोला। तौफीक भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वाकरा से। तौफीक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, एंड पर आए हैं आप, अफसोस हुआ लेकिन आ गए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, हाल वाल आपसे हो गया। और भाई मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से इस नोट पर कि इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और भाई कोशिश ये करें कि उन इंसानों में से बने जो एथिकल हो, मजाक अपनी साइड पर। हाँ हमें दिल करता है कि ऑफिस के अलावा जहाँ पे भी जाएं जल्दी चले जाएं, कोई मसले की बात नहीं, ऑफिस हमेशा देर से आए, पता नहीं क्यों ऐसा दिल करता है। लेकिन जिन लोगों को अपने जॉब से प्यार होता है वो तो भाई 45 मिनट के या 2-2 घंटे भी, मैंने लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं मिसाल हैं कि 2-2 घंटे भी पहले पहुँचे हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदगी में कुछ करने को नहीं होता। लेकिन अगर एथिकल होकर बात देखी जाए तो अगर कोई दावत है, अगर आपको किसी ने प्यार से इनवाइट किया है या कोई एक्सपायर ऐसा मामला है तो कोशिश करें कि आप ऑन टाइम पहुंचें। 10-20 मिनट अगर पहले चले भी जाएं तो कोई मामले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ 45 मिनट पहले ना पहुंच जाना भाई, अगलों के पता चले, अगले कहेंगे भाई हमने तो अभी चाय रखनी थी, आप तो पहले ही आ गए। तो किसी के ऊपर ना बोझ बनना चाहिए, ना लेट लतीफ़ होना चाहिए कि रात के 10 बज रहे हैं और आपका खाने पर इंतज़ार हो रहा है। हमारे कबीर भाई ये हरकत करते हैं। कबीर भाई अगर आप सुन रहे हैं ना तो आपको टॉन्ट मारा जा रहा है कि कबीर भाई आप जो है ना बड़ा लेट आते हैं। कबीर भाई को कभी गलती से खाने पे नहीं बुलाइएगा ना, कभी नहीं, नो नो नो नो नो, क्योंकि अगर आप उन्हें 9 बजे बुला रहे हैं ना तो वो रात को 11 बजे आएंगे। लेकिन भाई हैं अपने तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, भाइयों के लिए तो बहनें कुछ भी करती हैं, कोई मसला नहीं। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं, पेट पे पत्थर बांध लेते हैं हम अपने, जब हम कबीर भाई को बुलाते हैं तो हम दोपहर का खाना डबल खाते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमें रात के खाने के लिए इंतज़ार करना है। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ऐसे इंसान बने जो लोगों के दिल का सुकून बने और जिसको बुलाने में, जिसको इनविटेशन देने में लोगों को हिच

चाहट ना हो, दो घंटे पहले तीन दिन जाके पहले नहीं बैठ जाना लोगों के घरों पर. इसी नोट के साथ भाई कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट. सुनते रहें FM 107 दिल से देसी. और भाई कहाँ गया आहिस्ता आहिस्ता ये वाला गाना आ रहा है. आय हाय हाय हाय हाय हाय हाय ये अच्छा है. ये वाला चला देती हूँ जाते जाते. तो भाई चलो जी मैं जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता. चलो जी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं. बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं कल, मुलाकात होती है. सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, खुशामदीद आप सबको विमेन इन स्पोर्ट्स में. ये वो प्रोग्राम है जहां हम सिर्फ स्कोरबोर्ड और स्टेडियम की रोशनी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि उन कहानियों तक जाते हैं जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कल्चर को शेप करती हैं, या कह लें कि रीशेप कर रही हैं, जहां हर गोल, हर विक्ट्री और हर परफॉर्मेंस के पीछे एक जर्नी होती है जो हिम्मत, स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई होती है भाई. अच्छा, आज का हमारा एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर बहुत गहरा राबता रखता है विमेन इन स्पोर्ट्स की दुनिया से, क्योंकि भाई आज हम बात करने लगे हैं स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट के उस इंटरसेक्शन की, जहां एथलेटिसिज्म सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं रह जाता, बल्कि यूं समझ लें कि कहानी बन जाता है, जहां हर मूव एक एक्सप्रेशन होती है और हर मूवमेंट एक नैरेटिव क्रिएट करती है जो ऑडियंस के दिल में उतर सी जाती है भाई, क्योंकि वो ऐसी है, एंटरटेनमेंट के साथ भरी हुई. ये वो दुनिया है जहां स्ट्रेंथ सिर्फ मसल की नहीं होती, ना ना ना ना, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी होती है, जो परफॉर्मर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है. और भाई इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट फिगर को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, जिसने रीडिफाइन किया है कि विमेन हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस स्पेस में किस तरह रिप्रेजेंट हो सकती हैं. भाई ये वो दुनिया है जहां स्ट्रेंथ सिर्फ मसल की नहीं होती, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी होता है, जो परफॉर्मर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है भाई. और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट फिगर को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, जिसने रीडिफाइन किया है कि विमेन हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस स्पेसेस में किस तरह रिप्रेजेंट हो सकती हैं. तो साथियों, हम बात कर रहे हैं रिया रिफ्ले की, एक प्रोफेशनल रेसलर जिन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी प्रेजेंस से ये साबित किया कि विमेन सिर्फ पार्टिसिपेशन तक महदूद नहीं होती, बल्कि डोमिनेंस और अथॉरिटी का भी सिंबल हो सकती हैं. अच्छा, इन्होंने बड़ा मेंटेन किया भाई, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स. उनकी एंट्री रिंग में सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि एक स्टेटमेंट होती है, जहां कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और कंट्रोल एक साथ नजर आते हैं. और ये चीज ना यंग गर्ल्स के लिए एक पावरफुल मैसेज बन जाता है भाई, कि स्ट्रेंथ और फेमिनिटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. अच्छा, आज के जमाने में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिर्फ कंपटीशन नहीं रहे ना, ये सोशल चेंज के प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, जहां जेंडर नॉर्म्स रीशेप हो रहे हैं और सोसाइटी का परसेप्शन ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है. अच्छा, जब कोई लड़की किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है ना, या विक्ट्री हासिल करती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीत रही होती, ना ना ना ना, बल्कि अपने घर, अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी के लिए एक नया नैरेटिव लिख रही होती है, जहां प्राइड और रिकॉग्निशन टैंजिबल फॉर्म में सामने आते हैं. ये वो मोमेंट होता है जहां चेंज थ्योरी से निकलकर रियलिटी बन जाता है. देखिए, जब एक लड़की मेडल जीतकर या स्टेट रिप्रेजेंट करके ये साबित करती है ना कि शी कैन स्टैंड इक्वल, कंपीट इक्वल एंड शाइन इक्वल, इसी तरह रिया रिफ्ले जैसी पर्सनालिटीज ग्लोबल स्टेज पर ये प्रूव करती हैं कि विमेन हाई प्रेशर, हाई परफॉर्मेंस एनवायरमेंट्स और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकती, बल्कि थ्राइव भी कर सकती हैं. और उनकी सक्सेस यंग गर्ल्स के लिए इंस्पायरेशन का एक लाइव एग्जांपल बन जाती है भाई, जो उन्हें स्पोर्ट करियर परस्यू करने की हिम्मत देती है. अच्छा, जब हम इन टूर्नामेंट्स और परफॉर्मेंसेस को देखते हैं ना, तो जाकर ये समझ में आता है कि भाई ये सिर्फ फिजिकल गेम्स नहीं है, बल्कि माइंडसेट का गेम है, जहां डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मेंटल टफनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. देखिए, हर मैच, हर अपीयरेंस और हर परफॉर्मेंस एक स्टोरी होती है, जो ऑडियंस को ये फील करवाती है कि पावर सिर्फ विनिंग में नहीं, बल्कि पार्टिसिपेटिंग में भी होती है भाई. अच्छा, पता है आज के दौर का मामला क्या है? आजकल के दौर में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का गैप कम हो रहा है, और एक नई हाइब्रिड कल्चर डेवलप हो रही है जहां गर्ल्स अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्टेडियम तक महदूद नहीं है बल्कि घरों, स्कूल्स और कम्युनिटीज तक इनका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जहां पेरेंट्स अब अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं खुद, क्योंकि अब सक्सेस विजिबल है भाई, रिलेटेबल है और अचीवेबल लगती है। साथियों, रिया रिफ्ली जैसी एथलीट इस विजिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाती हैं, जहां हर मूव एक मैसेज देती है कि विमेन स्ट्रांग भी हो सकती हैं, फियरलेस भी हो सकती हैं और लीडरशिप भी शो कर सकती हैं। तो अगर आप आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, तो जरा सोचिए आप अपने दिमाग से कि जब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बन जाता है ना और परफॉर्मेंस पावर बन जाती है, तो सोसाइटी किस तरह इवॉल्व होती है।

विमेन के प्रस्पेक्टिव से, जहां स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और करेज एक नई कहानी लिख रहे हैं। अच्छा, एज अ कतर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अगर बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कतर ने पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ एक्सपेंड नहीं किया बल्कि डाइवर्सिफाई किया है, जहां ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और विमेन फोकस्ड एथलेटिक प्रोग्राम्स को भी एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है। देखें, रेसलिंग जो एक फिजिकली डिमांडिंग और मेंटली इंटेंस स्पोर्ट है ना, अब कतर के यूथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में विमेन का रोल एग्रेसिवली ज्यादा विजिबल होता जा रहा है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है साथियों, जहां स्कूल्स, एकेडमीज और नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स मिलकर ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां लड़कियों को सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा बल्कि उन्हें ट्रेन्ड एथलीट्स बनने का स्ट्रक्चर्ड पाथवे भी दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करें ना, तो कतर में स्कूल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के अंदर गर्ल्स की इन्वॉल्वमेंट पिछले 5 से 7 सालों में नोटिसेबली इंक्रीज शो कर रही है, जहां फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में लड़कियों की पार्टिसिपेशन रेट कुछ इंस्टीट्यूशंस में 30 से बढ़कर 55% यानी 55% तक रिपोर्ट की गई है, स्पेशली फिटनेस ट्रेनिंग और एथलेटिक बेस्ड मॉड्यूल्स में। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है बल्कि माइंडसेट शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करती है। साथियों, रेसलिंग और कॉम्बैट बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अब कुछ प्राइवेट अकेडमीज और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जहां फोकस सिर्फ चैंपियनशिप का नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, बॉडी कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्ड पर भी होता है। देखिए, नेशनल लेवल पर कतर की स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी विजन 2030 के फ्रेमवर्क के अंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, जहां विमेन एथलीट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथवेज डेवलप किए जा रहे हैं ताकि ग्रास रूट्स लेवल से लेकर इलीट कॉम्पिटिशन्स तक सेफली और प्रोफेशनली प्रोग्रेस की जा सके। अच्छा, रेसलिंग जैसा जो स्पोर्ट है ना, वो कतर में अभी इमर्जिंग स्टेट पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है, खास तौर पर उन ट्रेनिंग एनवायरमेंट्स में जहां गर्ल्स को स्ट्रेंथ बेस्ड कंडीशनिंग, एगिलिटी ड्रिल्स और सेल्फ डिफेंस ओरिएंटेड एथलेटिक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एम्पावरमेंट टूल बन रहा है भाई, जहां यंग गर्ल्स अपनी फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर रही हैं। अच्छा, दोहा और सराउंडिंग एरिया में ना कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन इस बात का सबूत है कि सोसाइटी ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रही है कि विमेन सिर्फ रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हाई इंटेंसिटी और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म कर सकती हैं। कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में लड़कियों के लिए डेडिकेटेड स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जहां पार्टिसिपेशन रेट हर साल इंक्रीज हो रहा है और ट्रेनर्स रिपोर्ट करते हैं कि यंग गर्ल्स में कॉन्फिडेंस लेवल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रहा है। जब वो स्ट्रक्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सपोजर लेती हैं ना, तो भाई उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथियों, ग्लोबल ट्रेंड को अगर हम कतर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स पिछले डेकेड में 40% से ज्यादा इंक्रीज हुई है, इंटरनेशनली वो भी, और कतर इस ट्रेंड को अपने लोकलाइज स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अडेप्ट कर रहा है। अच्छा, रेसलिंग जहां ट्रेडिशनली मेल डोमिनेंस ज्यादा था ना, अब स्लोली इंक्लूसिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, ये चेंज सिर्फ पॉलिसी लेवल पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी विजिबल है, जहां पेरेंट्स और स्कूल्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले जहां गर्ल्स के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता था ना, अब वहां स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जहां गर्ल्स सेफली ट्रेन कर सकती हैं। साथियों, कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन और रिलेटेड यूथ डेवलपमेंट बॉडीज का फोकस सिर्फ मेडल्स और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशन बेस को वाइडन कर रहा है, जहां गर्ल्स को अर्ली एज से स्पोर्ट्स एक्सपोजर दिया जा रहा है। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि रेसलिंग और सिमिलर स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि डिसिप्लिन,
पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करते हैं, जो यंग गर्ल्स के लिए उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक

की रोल प्ले करते हैं. यही वजह है कि स्कूल्स में स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के जरिए गर्ल्स को ग्रेजुअली हायर इंटेंसिटी स्पोर्ट्स की तरफ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जहां उनका प्रोग्रेशन मॉनिटर्ड और सपोर्टेड होता है. अच्छा, अगर हम इंस्पायरेशनल एंगल से बात करें ना, अगर इसको इंस्पायरेशनल एंगल से समझने की कोशिश करें, तो कतर में अब एक नई जनरेशन ग्रो कर रही है जो स्पोर्ट्स को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि करियर ऑप्शन के तौर पर भी देख रही है. देखिए, रेसलिंग जैसा स्पोर्ट उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां वो अपनी स्ट्रेंथ को नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी और अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकती हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, नो, बल्कि सोशल परसेप्शन को भी चेंज कर रहा है, जहां कम्युनिटी अब स्लोली एक्सेप्ट कर रही है कि विमेन भी फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकती हैं. और यही वो पॉइंट है जहां हम समझते हैं कि मॉडर्न स्पोर्ट्स में इन्फ्लुएंस सिर्फ मेडल से मेजर नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट, प्रेजेंस और स्टोरी टेलिंग से होता है. देखिए, जब एक लड़की रेसलिंग मैट पर स्टेप अप करती है ना, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं खेल रही होती बल्कि एक नैरेटिव चैलेंज कर रही होती है, एक परसेप्शन ब्रेक कर रही होती है और एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड कर रही होती है. कतर में ये जर्नी अब इनिशियल स्टेज से इवॉल्व होकर ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है, जहां अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और बैरियर्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम हर कहानी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि फील करते हैं.

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी स्टोरी ऑफ द वीक की तरफ, जहां हम सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं सुनते बल्कि एक ऐसे सफर को समझने की कोशिश करते हैं जो स्ट्रगल, आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल इम्पैक्ट से भरा हुआ है। अच्छा, आज का फोकस है एक ऐसी फीमेल एथलीट जिन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई बल्कि उस पूरे नैरेटिव को रीडिफाइन कर दिया जहां वुमेन स्ट्रेंथ को पहले लिमिटेड समझा जाता था और लिमिटेड रखा जाता था। हम बात कर रहे हैं रिया रिफ्ली की, एक ऐसी परफॉर्मर जिनकी जर्नी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है जहां एक यंग एथलीट के तौर पर उनका एक्सपोजर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग और कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट से होता है। उनका अर्ली बैकग्राउंड ही ये सिग्नल देता था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्पोर्ट्स करियर नहीं होगा बल्कि एक ऐसा पाथवे होगा जहां फिजिकल डोमिनेंस और परफॉर्मेंस की कहानी एक साथ चलेगी। साथियों, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करते हुए रिया रिफ्ली ने अर्ली एज से ही स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स और एथलेटिक कंडीशनिंग में इंटरेस्ट शो किया। उनका नेचुरल इंक्लिनेशन सिर्फ स्पीड या एगिलिटी तक लिमिटेड नहीं था बल्कि पावर, एंड्योरेंस और बॉडी कंट्रोल पर फोकस था। ये वो फाउंडेशन था जहां से उनका फ्यूचर शेप होना शुरू हुआ था। अच्छा, नॉर्मल स्पोर्ट्स ट्रेजेक्टरी से हटकर उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग का रुख किया जो एक ऐसी फील्ड है जहां स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का फ्यूजन होता है। यहां सिर्फ जीतना या हारना मैटर नहीं करता बल्कि कैरेक्टर, प्रेजेंस, टाइमिंग और ऑडियंस कनेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं होता बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस आर्ट है जहां एथलीट को अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी प्रेजेंट करना होता है। रिया रिफ्ली ने जब इस दुनिया में एंट्री ली तो उनका इम्पैक्ट इमीडिएटली नोटिसेबल था। उनकी फिजिकल प्रेजेंस, उनका फियरलेस एटीट्यूड और उनकी डोमिनेंट एनर्जी ने एक यूनिक आइडेंटिटी दी उनको, लेकिन इस आइडेंटिटी तक पहुंचना आसान नहीं था। नेवर, जैसा हर इलीट एथलीट को फेस करना पड़ता है, उन्हें भी इंटेंस कंपटीशन, शदीद ट्रेनिंग स्केड्यूल्स और कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रेशर का सामना करना पड़ा। अच्छा, रेसलिंग इंडस्ट्री में ना हर परफॉर्मर को अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन रिंग स्किल और ऑडियंस एंगेजमेंट पर कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। ये

0: ऐसा एनवायरनमेंट है जहां हर मैच एक ऑडिशन होता है और हर अपीयरेंस एक इवैल्यूएशन। रियर एफले के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बल्कि मेंटली कंसिस्टेंट भी रहना था। देखें, कंटिन्यूस ट्रैवल, हाई इंटेंसिटी मैचेस और ग्लोबल ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस ने उनकी जर्नी को और भी डिमांडिंग बना दिया था। यही उनकी स्ट्रेंथ भी डिफाइन हुई। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बल्कि उसी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करें तो उन्होंने काम किया WWE में। WWE जैसी ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फीमेल परफॉर्मर्स का रिप्रेजेंटेशन पिछले डेकेड्स में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। आज विमेन मैचेस सिर्फ अंडरकार्ड तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मेन इवेंट स्लॉट्स तक पहुंच चुके हैं। रिया रेफले उन एलीट परफॉर्मर्स में शामिल हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल्स जीते हैं और ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की है। उनका WWE विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विन एक मेजर माइलस्टोन था जो उन्हें टॉप टियर फीमेल एथलीट्स की लिस्ट में इंक्लूड करता है। अच्छा, रिया रेफले की जो हम कहते हैं ना राइज सिर्फ टाइटल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उनका रियल इम्पैक्ट विजिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन में है। उन्होंने ये नैरेटिव चेंज किया कि भाई औरतें विमेन रेसलिंग सिर्फ टेक्निकल या सपोर्टिव रोल नहीं है बल्कि मेन अट्रैक्शन भी हो सकता है। उनकी इन रिंग स्टाइल एग्रेसिव, पावरफुल और हाईली कंट्रोल्ड है जो उन्हें क्राउड में इंस्टेंटली डिस्टिंग्विश कर देती है। ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक मॉडर्न एथलेटिक आइकन बना जाता है जहां स्ट्रेंथ और एंटरटेनमेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उनकी जर्नी में एक डीप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। देखिए, रेसलिंग जैसी दुनिया में हर एथलीट को अपनी इमोशनल रेजिलियंस को स्ट्रांग रखना होता है क्योंकि प्रेशर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी होता है। हर परफॉर्मेंस के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और हर सक्सेस के बाद नए स्टैंडर्ड सेट होते हैं। रिया रेफले ने इस प्रेशर को सिर्फ हैंडल नहीं किया बल्कि इसे अपनी मोटिवेशन बनाया। उनका माइंडसेट ये रिफ्लेक्ट करता है कि फेलियर एक एंड नहीं बल्कि एवोल्यूशन का पार्ट है। अच्छा, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में ना ऑडियंस कनेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिया रेफले इस एस्पेक्ट में भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। उनकी ऑथेंटिसिटी उन्हें क्राउड से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। वो आर्टिफिशियल पर्सोना क्रिएट नहीं करती बल्कि अपनी रियल कॉन्फिडेंस और नेचुरल डोमिनेंस को रिंग में लेकर आती हैं। इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ विंस की वजह से नहीं बल्कि उनकी प्रेजेंस की वजह से भी है। अच्छा, आज हम अगर बॉर्डर पर्सपेक्टिव से देखें ना तो रिया रेफले का करियर एक लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जो वुमेन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में हो रहा है अभी। आज फीमेल एथलीट सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स तक के लिए लिमिटेड नहीं रह गई हैं बल्कि हेडलाइन इवेंट सेंटर बन रही हैं। ये शिफ्ट सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर नहीं है बल्कि कल्चरल लेवल पर भी विजिबल है। लोग अब विमेन स्ट्रेंथ को एक स्पेक्टिकल के तौर पर नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ग्लोबल रेसलिंग प्लेटफॉर्म्स पर खातीन का होना ये प्रूव करता है कि ऑडियंस प्रेफरेंस इन्वॉल्व हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स अब सिर्फ एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन बन चुकी हैं। रिया रेफले इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक लिविंग एग्जांपल हैं जिन्होंने अपनी करियर से ये साबित किया है कि डोमिनेंस जेंडर से डिफाइन नहीं होती बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और माइंडसेट से डिफाइन होती है। उनकी अचीवमेंट्स में मल्टीपल चैंपियनशिप रीजन्स हैं, आप कह लें कि हाई प्रोफाइल मैचेस और ग्लोबल रिकॉग्निशन शामिल हैं जो उन्हें इलीट कैटेगरी में प्लेस करती हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट शायद ये है कि उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है कि विमेन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में किसी लेवल तक भी जा सकती हैं। अच्छा, अगर हम इमोशनल और इंस्पिरेशनल एंगल से देखें ना तो रिया रेफले की स्टोरी हर उस यंग गर्ल के लिए एक मैसेज है जो स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस फील्ड में अपनी जगह बनाना चाहती है। उनकी जर्नी ये बताती है कि चैलेंजेस तो आते जाते रहते हैं लेकिन आइडेंटिटी स्ट्रांग हो तो हर बैरियर ब्रेक किया जा सकता है। और इसी पॉइंट पर हम ये समझते हैं कि मॉडर्न एथलीट सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं होते बल्कि एक कहानी भी होते हैं जो अपनी जर्नी से सोसाइटी को नए पर्सपेक्टिव्स देते हैं। रिया रेफले ने ये प्रूव किया है कि स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होती है। तो साथियों, अगर हम रिया रेफले की जर्नी को सिर्फ एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट स्टोरी समझकर देखें ना, तो हम इसकी असल गहराई को मिस कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे माइंडसेट की जर्नी है जो हर उस इंसान के लिए लेसन रखती है जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जगह और अपनी आवाज दुनिया में बनाना चाहता है। बियॉन्ड द गेम में अगर हम देखें तो बियॉन्ड द गेम का मतलब यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स से आगे जाना नहीं बल्कि ये समझना है कि हर एथलीट, हर परफॉर्मर और हर अचीवर के पीछे एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल स्टोरी होती है जो उन्हें डिफाइन करती है। रिया रेफले की जर्नी हमें सबसे पहले और सबसे जो पावरफुल मैसेज है वो ये देती है कि कॉन्फिडेंस, वो हमें कॉन्फिडेंस देती है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ रिंग में या स्टेज पर नहीं होता बल्कि उस लम्हे से शुरू होता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। रिया रेफले ने दुनिया को ये बता दिया कि कॉन्फिडेंस किसी से परमिशन लेकर नहीं मिलता बल्कि ये अपनी प्रेजेंस से बिल्ड होता है। जब वो रिंग में एंटर करती है ना, तो वो सिर्फ एक रेसलर नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट ये होता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं अपनी जगह खुद बनाती हूँ। अच्छा, ये माइंडसेट हर यंग एथलीट के लिए एक लेसन है कि दुनिया से अप्रूवल लेने से पहले सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिसिप्लिन है इसमें। लेकिन रिया रेफले का करियर हमें ये समझाता है कि टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना, असल जर्नी डिसिप्लिन से शुरू होती है। साथियों, रेसलिंग जैसे फिजिकल डिमांडिंग दुनिया में हर दिन का रूटीन, हर ट्रेनिंग सेशन और हर परफॉर्मेंस लिटरली एक टेस्ट होता है। ये सिर्फ मसल का गेम नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी का गेम है। उनकी फिटनेस, उनकी एड्योरेंस और उनका परफॉर्मेंस कंट्रोल, ये सब इस बात का सबूत है कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती भाई, इसके लिए काम करना पड़ता है, बल्कि रिपीटेटिव डिसिप्लिन का रिजल्ट होती है। जब हम उन्हें परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ पावर नजर आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे जो हजारों आवर्स की ट्रेनिंग होती है ना, पेन मैनेजमेंट होती है, मेंटल कंडीशन होती है, वो किसी को नजर नहीं आती। साथियों, तीसरा एंगल है पब्लिक विजिबिलिटी का। अच्छा, आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में विजिबिलिटी सिर्फ एक आप कह लें कि फेम नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंस है। रिया रेफले ने वुमेन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को ग्लोबल लेवल पर एक नई विजिबिलिटी दी है, जहां वुमेन सिर्फ बैकग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रही होती बल्कि मेन इवेंट पर्सनालिटीज बन चुकी हैं। उनकी प्रेजेंस ने ये नैरेटिव चेंज कर दिया है कि स्ट्रेंथ सिर्फ मेल एथलीट्स की मोनोपोली होती है, ना, ऐसा नहीं है। आज दुनिया के हर कोने में यंग गर्ल्स उन्हें देखकर ये सोचती हैं कि भाई कि वो भी एक दिन उस स्टेज पर हो सकती हैं। ये विजिबिलिटी एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो मीडिया स्क्रीन्स के थ्रू सोशली सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज कर रही है। अच्छा, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी रिया रेफले की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीडरशिप सिर्फ टाइटल नहीं होती साथियों, ये सिर्फ टाइटल लेकर नहीं आती बल्कि इम्पैक्ट से आती है। उनका स्टाइल, उनकी कंसिस्टेंसी और उनका फियरलेस होना उन्हें एक नेचुरल लीडर के तौर पर परफॉर्म करने पर मजबूर कर देता है। वो सिर्फ अपने मैचेस नहीं खेल रही होती बल्कि एक एग्जाम्पल सेट कर रही होती हैं कि कैसे प्रेशर्ड सिचुएशंस में काम रहना चाहिए, काम रहकर डोमिनेंस मेंटेन की जा सकती है। ये लीडरशिप उन्हें उन एथलीट से अलग करती है जो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। अच्छा, हेल्थ और स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट भी उनकी स्टोरी में रीडिफाइन होता है। देखें, ट्रेडिशनली स्ट्रेंथ को सिर्फ फिजिकल पावर समझा जाता है, लेकिन रिया रेफले ने इस डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया। भाई देखें, आज स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ वेट उठाना नहीं होता बल्कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है, अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करना होता है। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में आप कह लें कि इंजरी रिस्क जो होता है ना, फटीग हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया, आप कह लें कि कॉन्स्टेंट रहती हैं ये चीज़ें, ये प्रेशर कॉन्स्टेंट रहते हैं फिजिकली भी और इमोशनली भी, लेकिन उनका एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर ये शो करता है कि रियल स्ट्रेंथ बैलेंस में होती है, एक्सट्रीमिटी में नहीं होती। अच्छा, रिस्पेक्ट एक और पावरफुल आउटकम है जो उनकी जर्नी से सामने आता है। देखिए, रिस्पेक्ट सिर्फ जीत से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और इम्पैक्ट से मिलती है। रिया रेफले ने अपनी परफॉर्मेंस से ग्लोबल ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न किया है। वो हर मैच में सिर्फ ओपोनेंट से नहीं लड़ती बल्कि एक्सपेक्टेशंस, स्टीरियोटाइप्स और लिमिटेशंस से भी लड़ती हैं। और जब एक एथलीट ने इन सब को ओवरकम करना स्टार्ट कर लिया होता है ना, तो भाई वो सिर्फ चैंपियन नहीं रहता, वो सिंबल बन जाता है। अगर हम और ज़्यादा गहराई में जाकर बात करें तो रिया रेफले की जर्नी एक फिलोसॉफिकल मैसेज देती है। मॉडर्न स्पोर्ट अब सिर्फ फिजिकल कॉम्पिटिशन नहीं रहा, ये कहानी बन गया है, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ हर एथलीट अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। रिंग, एरीना या स्टेज सिर्फ एक स्पेस नहीं है बल्कि एक कैनवस बन चुके हैं जहाँ ह्यूमन एम्बिशंस, स्ट्रगल्स और एम्बिशंस पेंट होते हैं। रिया रेफले इस कैनवास पर एक बोल्ड पेंट की तरह नजर आती हैं, जहां हर मूव एक मैसेज देती है। साथियों, ये समझना जरूरी है कि आज के दौर में स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और कल्चर का इंटरसेक्शन बन चुकी है। देखिए, रिया रेफले जैसे एथलीट इस इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं जहां स्ट्रेंथ को रीडिफाइन किया जा रहा है और जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया जा रहा है। उनकी जर्नी ये बताती है कि मॉडर्न एथलीट सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंसर भी होती हैं जो सोसाइटी की परसेप्शन को चेंज करती हैं या रीशेप करती हैं। और यहाँ हम एक और रियल थॉट के साथ एक रियलाइजेशन तक पहुँचते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ टाइटल्स या चैम्पियनशिप नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट होता है। रिया रेफले का इम्पैक्ट सिर्फ रेसलिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उन्होंने ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में विमेन रोल को रीडिफाइन किया है। ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है क्योंकि ये माइंडसेट चेंज करता है और माइंडसेट चेंज होना ही असली रेवोल्यूशन होता है। साथियों, आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विमेन इन स्पोर्ट्स के अगले एपिसोड में जहां हम दुनिया के और भी पावरफुल स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जहां विमेन अपनी आइडेंटिटी, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी स्ट्रगल के जरिए स्पोर्ट्स को रीडिफाइन कर रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए सफा को दीजिए इजाजत। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम एफ एम 107 कतर। याद रखिए कि हर अरीना एक कहानी सुनाता है और हर कहानी के अंदर चेंज की ताकत होती है। इसी नोट के साथ सुनते रहिए एफ एम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक,
2: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: सो यस माय देसी ऑडियंस, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर, और एस्केप रूम की शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? आई नो अभी टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा राइज हो गए थे कि बाप रे बाप, जैसे मैं आई स्टूडियो में तो एकदम ना पसीना पसीना थी, है ना, थोड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन अभी आज का जो एस्केप रूम चैलेंज है, वहाँ पर क्या आज आपके पसीने छूटने वाले हैं? वेल, दैट्स गोना बी अ क्वेश्चन, क्योंकि आज यहाँ ठंडक भी बहुत है और पानी भी बहुत है। मतलब कौन सा पानी है? बारिश का पानी। यस, सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद आज का एस्केप रूम का चैलेंज आपके सामने आने वाला है। एंड लेट मी गेस कि आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, क्या आज के एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं या फिर पानी में फंस जाते हैं। जो भी होगा पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपने क्या करना है, अभी जस्ट लोजन अप होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे पानी हो, चाहे करक हो, कॉफ़ी हो, जो भी आप इंजॉय करना चाहते हैं, जो भी आप खाना पीना चाहते हैं जिससे आपको एनर्जी मिले, जस्ट डू दैट, क्योंकि आगे दिमाग बहुत दौड़ाना पड़ेगा। फिलहाल 6622107, 6622107 इज आर नंबर, इस नंबर को याद कर लीजिए क्योंकि इसी के जरिए आपकी मेरी बात कंटिन्यूसली चलने वाली है। और फिलहाल गुरु रंधावा जी आ गए आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पर ले जाने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A4 अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A4 अमिता, और अब बारी है एस्केप रूम के आज के चैलेंज की। और जनाब, आज आपके लिए जो चैलेंज है वो एक राइजिंग टाइड जैसे एपिसोड का चैलेंज है, यानी कि माहौल थोड़ा सा ठंडा है, काफ़ी एडवेंचरस है, मतलब आपने इमेजिन नहीं किया होगा ये वो है। तो आज की सिचुएशन है कि आप शहर की पुरानी लाइब्रेरी के सबसे आखिर में, यानी कि बेसमेंट में हैं, वहाँ भी बहुत खूबसूरत किताबें हैं और आप पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। आज आप पढ़ाकू हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अब पूरी तरह से सीन बदलने वाला है। आप इन पुरानी लाइब्रेरी की, इस पुरानी लाइब्रेरी की खूबसूरत किताबों को इंजॉय कर रहे हैं एंड सडनली ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, थंडर स्टॉर्म, उफ, तेज़ बारिश आप सुन रहे हैं और आप बड़े नॉर्मल हैं कि भाई चलो बारिश हो गई, कुछ मौसम बदल गया, हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस जगह पर आप हैं उससे कुछ दूरी पर एक बांध है, एक डैम है जो टूट गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे फ्लड में फंस जाएंगे, पानी आते आते थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ जगह पर सेफ्टी है, कुछ जगह पर नहीं है, कुछ जगहें डूब रही हैं, ओके। तो अब पानी जो है वो हर जगह फैलना शुरू हो गया है एंड सडनली यू फेल्ट कि आपके पैरों के नीचे धीरे धीरे पानी भरना शुरू हुआ है, बर्फ जैसा पानी तेज़ी से अब कमरे के अंदर भर रहा है एंड यू आर शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। पहले आपके टखनों तक था, एंकल्स तक, और अब घुटनों तक आ गया है, अब स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है। सीढ़ियों की तरफ आपकी नज़र जा रही है और आप देख

रहे हैं कि किताबें धीरे धीरे करके गिर रही हैं, सीढ़ियों को ब्लॉक कर रही हैं। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, छत पर बना वो छोटा सा ट्रैप डोर। लेकिन जनाब वो दरवाज़ा बंद है, उसे खोलने के लिए आपको 3 क्लूज सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? पानी का बहाव अब तेजी से बढ़ते जा रहा है, लाइब्रेरी की भारी वुडन टेबल्स अब कश्तियों की तरह तैरने लगी हैं। पहला लॉक खोलने के लिए आपका ये क्लू है, अब ध्यान से सुनिए। जब कोई चीज़ पानी की सतह पर रहती है और नीचे नहीं डूबती, ओके? जब कोई चीज़ पानी की सतह यानी कि सरफेस पर रहती है और नीचे नहीं डूबती तो उसे क्या कहते हैं? जैसे एक पत्ता हो या कोई रबर की चीज़ हो या एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा हो, पानी के ऊपर रहता है तो क्या कहते हैं, वो शब्द क्या है? कम ऑन, जल्दी से मुझे टेक्स्ट कीजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए और इस पहले लेवल को पार कीजिए, क्योंकि पानी अभी भरना शुरू हुआ है, कब आपकी गर्दन तक पहुंच जाए पता है, बाहर निकलना है। सो कम ऑन, थिंक थिंक थिंक। क्लू नंबर 1 इज, जब कोई चीज पानी की सतह पर रहती है और नीचे नहीं डूबती तो उसे क्या कहते हैं? जैसे एक पत्ता हो या लकड़ी का टुकड़ा हो या रबर, लाइक जो पानी के ऊपर रहता है, हाँ डूबता नहीं है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, वो एक शब्द क्या है? सोचिए और जवाब दीजिए 666-22107 पर, एंड लेट मी सी कि पहला लेवल आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, थोड़ी लंबी गहरी सांस लीजिए और सोचिए जवाब क्या है और शेयर कीजिए, ठीक है? म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. तो जनाब आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है. आज हम फंसे हुए हैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में. हाँ जी, वहाँ गए थे किताबें पढ़ने के लिए क्योंकि बड़ी शानदार किताबें हैं, लेकिन ज़ोर से तूफ़ान आया और बारिश शुरू हो गई. ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमारे लिए हो गया और दूर कहीं जो डैम था वो टूट गया. अब ऐसे होने से पानी जो है धीरे धीरे कर उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर आप हैं. ठीक है, आपके पैरों तक पानी आ चुका है, घुटनों तक पानी भर चुका है एंड आपको यहाँ से बच के निकलना है. सो आपको तीन क्लूज सॉल्व करने हैं, तीन लेवल्स पार करने. तो पहला क्लू आपके लिए था कि जब कोई चीज़ पानी की सतह पर रहती है और नीचे नहीं डूबती तो उसे क्या कहते हैं. जैसे एक पत्ता हो या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो या फिर रबर हो, मतलब ऊपर ही रहती है पानी की सतह पर, क्या मतलब वो शब्द क्या है, वो वर्ड क्या है. ये सबसे पहले क्लू का सॉल्व करने का सवाल है. तो हमारे लिसनर्स ने हमें जवाब दिया है. किसी ने लिखा है बोट, किसी ने लिखा है बुयंसी, किसी ने लिखा है फ्लोट, फ्लोटिंग, तैरना. ओके, तो जिन्होंने भी लिखा है फ्लोट, फ्लोटिंग, तैरना, दैट्स द राइट आंसर. भाई जोरदार तालियां आपके लिए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. तो अपनी पीठ को थपथपा लीजिए. देखिए लेवल्स पार करना बहुत ज़रूरी है और क्लू नंबर वन आपने सॉल्व कर लिया है. तो जिन्होंने सॉल्व किए हैं उनके नाम, सबसे पहले जिन्होंने हमें जवाब दिए उनके नाम है आतिफ, राशिद, फैज़ान, मोहम्मद यूसुफ खान, रमेश, और कौन है, और कौन है, देखिए नाम लिखना भूल जाते हैं हमारे लिसनर्स, मोहम्मद मुशीर आलम. ओके, और ये जनाब है राहुल. वेरी गुड, आप सभी ने सही जवाब देकर ये जो पहला पड़ाव था ये पार कर लिया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. ओके, तो जब आपने सही जवाब दिया तो क्या हुआ, एक बोल्ट खुल गया लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि पानी अब भरते जा रहा है. अब आपकी कमर तक पानी आ चुका है और ये पानी अब धीरे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा. अब इस सैलाब से बचने के लिए क्या करना है, क्लू नंबर टू की तरफ बढ़ना है. ज़मीन भी थोड़ी थोड़ी फट रही है. हाँ, तो आपको बताना है कि उस कुदरती आफत को क्या कहते हैं जब पैरों के नीचे की ज़मीन हिलती है और बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लग जाती हैं, शेक करने लग जाती हैं. बताएं वो उस कुदरती आफत का नाम क्या है. 666-22-107, 666-22-107 पर आप मुझे जवाब दे सकते हैं, अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग क्लू नंबर टू सॉल्व करके इस लेवल टू से बाहर निकल पाते हैं. हमें पार करना बहुत ज़रूरी है वरना हम इस लाइब्रेरी के बेसमेंट में डूब जाएंगे. आई डोंट थिंक कि ये आप चाहते हैं, है ना. तो दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए कि क्या जवाब हो सकता है क्लू नंबर टू का. आई रिपीट अगेन, उस कुदरती आफत को क्या कहते हैं जब पैरों के नीचे की ज़मीन हिलती है और बड़ी बड़ी इमारतें भी हिलने लगती हैं. ओके, थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर. और फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक, सो लेट्स एंजॉय द म्यूजिक.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बजा रही है 2:03।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
3: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है, वेलकम वंस अगेन ऑन FM 107। तो क्या हो रहा है आज के एस्केप रूम की सिचुएशन में? भाई देखो, आप एक पुरानी लाइब्रेरी में गए कुछ किताबों को पढ़ने के लिए, उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। ज़ोरदार बारिश हुई, दूर कहीं एक बांध टूट गया, पानी हर जगह भरने लगा, कुछ जगहें सेफ हैं कुछ जगहें अनसेफ हैं और आप एक्चुअली फंसे हुए हैं लाइब्रेरी के बेसमेंट में। पानी कमरे में भरना शुरू हो चुका है, कमर तक पानी आ चुका है, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। हमें 3 क्लू सॉल्व करके यहाँ से बाहर निकलना है। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था तैरना। और जब आपने ये सही जवाब दिया तो एक बोल्ट भी खुल गया। उसके बाद दूसरा क्लू आपको मिला कि उस कुदरती आफत को क्या कहते हैं जब पैरों के नीचे की ज़मीन हिलती है और बड़ी बड़ी इमारतें भी शेक होने लगती हैं। वेल, काफ़ी लोगों ने हमें जवाब देने की कोशिश की है। कुछ ने लिखा है भूकंप, कुछ ने लिखा है अर्थक्वेक, कुछ ने लिखा है जलजला, किसी ने वॉल्केनो लिखा है। ओके, सो लेट मी टेल यू, सही जवाब है अर्थक्वेक, भूकंप और जलजला। सो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं वो इस वक्त अपनी पीठ को थपथपाएंगे कि कमाल किया है, ठीक है, यू रियली डिड अ गुड जॉब। और दूसरा जो पड़ाव है वो आपने पार कर लिया है। आइए जानते हैं कौन कौन है जिन्होंने जल्दी जल्दी हमें सही जवाब दिए। आतिफ है, राशिद है, फैज़ान तो है ही साथ में, और कौन कौन है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब देने की कोशिश की है, रमेश ने भी हमें सही जवाब दिया है, तौकीर अहमद ने भी हमें सही जवाब दिया, हिशाम ने भी सही जवाब दिया है। ये जनाब कौन है, इनकी प्रोफाइल में नीतू लिखा है, राम नीतू भाई। देखिए, जवाब अपना नाम ज़रूर लिखा करें क्योंकि कई बार आपके नाम आपकी प्रोफाइल्स में भी क्लियर नहीं होते हैं। कायूम पार्कर, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। और कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब दिया है, और ये ज़रा नाम हम पढ़ते जाएंगे, कामरान अली ने भी सही जवाब दिया है और कादिर अब्दुल हादी ने भी सही जवाब दिया है। ये जनाब कौन है, मोहम्मद मुशीर आलम ने भी सही जवाब दिया है और खलील साहब ने भी सही जवाब दिया है। मलिक नंबर से भी नॉन स्टॉप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है। भाई देखिए, व्हाट्सएप पर हम कॉल नहीं उठा सकते हैं, ये हम हर बार अपने शोज़ के ज़रिए आप तक ये बात पहुंचाते हैं, तो इसका प्लीज़ ख्याल रखें। व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेजेस ही आप दे सकते हैं। सो यस, हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने सही जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। वेल, माहौल काफ़ी संगीन होते जा रहा है, अब पानी ऊपर तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वेल, अब क्या किया जाए, कहाँ बच के निकला जाए, अब हमारे सीने तक पानी आ चुका है, अब एक प्रकार से आप तैरना शुरू कर चुके हैं, अब आपका हाथ उस ट्रैप डोर के हैंडल पर तो है जो हमारा आखिरी एग्जिट का रास्ता है, लेकिन समहाउ वो जाम है और खुल नहीं रहा है। अब इसकी आखिरी चाबी क्या है, क्लू नंबर 3 को सॉल्व करना, क्योंकि जैसे ही आप क्लू नंबर 3 सॉल्व करोगे आपको मौका मिल जाएगा कि आप यहाँ से एग्जिट कर लें। तो चलिए, क्लू नंबर 3 आपके लिए ये रहा। पूरे विश्व में, या यूँ कहें पूरे वर्ल्ड में, जब कोई समुंदर

करें ताकि आप इस मौत के कुएं से बाहर निकल सकें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही भरा हुआ है। कुछ देर में अगर ये ट्रैप डोर नहीं खुला तो ये पानी सीलिंग तक पहुंच जाएगा और हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो इससे पहले कि ये सिचुएशन आए, हमें बाहर निकलना है। क्लू नंबर 3 एक बार फिर से आपके लिए मैं दोहराऊंगी कि पूरे विश्व में जब कोई समुंदर या किसी बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो मदद मांगने के लिए वो कौन से 3 अक्षर हैं, 3 वर्ड्स, 3 अल्फाबेट्स एक्चुअली हम बोल सकते हैं, उसे बताएं, उसका यूनिवर्सल कोड क्या है, वो यूनिवर्सल कोड क्या है जिसका मतलब होता है हमें बचाओ। जल्दी से जवाब दें 666-22-107 पर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और अभी के लिए मूड को थोड़ा लाइट करना जरूरी है, तो बेहतरीन म्यूजिक अगर हो तो बात ही कुछ और है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखे।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो जनाब कैसा लग रहा है आज एस्केप रूम की इस सिचुएशन में कैद होके? वेल आई नो कि आप आज की सिचुएशन में बुक लवर हैं एंड आप एक पुरानी सी लाइब्रेरी में गए हैं किताबों को एंजॉय करने के लिए, बट समहाउ सिचुएशंस पूरी तरह से बदल गई हैं। बेसमेंट में आप इत्मीनान से बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, बट सडनली तेज़ बारिश की वजह से, एक बांध के टूटने की वजह से बहुत कुछ हो गया। पानी धीरे धीरे बेसमेंट तक पहुँचा, भरना शुरू हुआ आपके पैरों तक, आपके घुटनों तक, फिर आपकी कमर, फिर छाती, एकदम पानी भर चुका है। आप तैर रहे हैं, पानी की आवाज़ आपको थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान भी कर रही है कि अरे अगर ये पानी एकदम से हमारे सर पर आ गया, हम तैर नहीं पाए, सांस नहीं ले पाए तो क्या होगा? वेल, यहाँ पर तीन सवाल और तीन सवाल के सही जवाब ही आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो पहले क्लू को आपने सॉल्व किया, सही जवाब था तैरना। दूसरे क्लू को आपने सॉल्व किया, सही जवाब था अर्थक्वेक। अब इसके बाद आप अभी जो लास्ट डोर है, जो ट्रैप डोर है छत का एक छोटा सा, उस हैंडल में आपका हाथ है लेकिन वो खुल नहीं रहा है बिकॉज वो जाम है। और अब वो खुलेगा जब आप क्लू नंबर 3 का सही जवाब देंगे। आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन, व्हाट्सएप स्क्रीन, कि हमारे लिसनर्स नॉन स्टॉप जवाब दे रहे हैं लेकिन कुछ शायद कन्फ्यूज हैं, सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्लू नंबर 3 आपके लिए फिर से दोहराया जा रहा है, ध्यान से सुने कि पूरे वर्ल्ड में जब कोई समुंदर में या किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है या फंसा होता है तो मदद मांगने के लिए वो कौन सा 3 अक्षर या 3 लेटर का यूनिवर्सल कोड इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है हमें बचाओ। कम ऑन, इस यूनिवर्सल कोड के 3 लेटर्स आपको मैसेज करने हैं अपने नाम के साथ 666-22-107 पर, 666-22-107। एंड लेट मी सी आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। बस हमारी थोड़ा सा वक्त बचा है, ये जो पानी भर रहा है लाइब्रेरी के बेसमेंट में ये हमारे सर के ऊपर तक आ सकता है और एक बार सीलिंग तक पानी पहुंच गया तो खेल ख़त्म। हमें इस मौके से बचना है तो जल्दी से जवाब दीजिए। पूरे वर्ल्ड में जब कोई कहीं फंस जाता है, किसी बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो मदद मांगने के लिए वो कौन से 3 लेटर का यूनिवर्सल कोड इस्तेमाल करता है, उस 3 लेटर कोड को लिख कर 666-22-107 पर अपने नाम के साथ भेजिए। और अभी लंबी गहरी सांस लीजिए क्योंकि यही म्यूजिकल ब्रेक है और उसके बाद पता चलेगा कि आप में से आज कितने लोग एस्केप कर पा रहे हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देश।
1: Yes, my survivors, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और भाई आज हम एस्केप रूम की एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से हमें बच के निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी अब सर के ऊपर भी जा सकता है। तो आज हम एक लाइब्रेरी के बेसमेंट में एंजॉय कर रहे थे अपनी किताबों को एंड सडनली पानी भरना शुरू हुआ क्योंकि बाहर का मौसम बदला, थंडर स्टॉर्म हुआ, तेज बारिश हुई, बांध टूटा एंड देयर सो मच दैट हैपेंड। अब हमने क्लूज सॉल्व करने थे, पहले क्लू का सही जवाब तैरना, दूसरे क्लू का सही जवाब अर्थक्वेक या भूकंप, तीसरा क्लू हमारे सामने आया और वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में जब कोई समुंदर में या बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो मदद मांगने के लिए वो कौन से तीन अक्षर या थ्री लेटर का यूनिवर्सल कोड जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है हमें बचाओ। तो ये आपको मुझे बताना है। हमारे लिसनर्स कोई लिख रहा है हेल्प मी, कोई लिख रहा है मेडे मेडे, कोई लिख रहा है बचाओ बचाओ। वेल, ये सारे जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली तब होती हैं जब इंसान मुसीबत में होता है, लेकिन यूनिवर्सल कोड जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड दैट इज़ द स्टैंडर्ड, और वो है SOS। यस, और जिन्होंने भी ये लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है और मुबारक, आज आपने एस्केप रूम के तीसरे पड़ाव को पार किया, ये आखिरी पड़ाव भी था और आज इस सिचुएशन से आप सबने एस्केप कर लिया। तो जिन्होंने ये जवाब दिया है भाई अपनी पीठ को थपथपाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए इनके नाम एक एक करके गिनते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान है, फैज़ान है, राशिद हैं, आतिफ हैं, यहाँ पर मोहम्मद हनीफ हैं, जुनैद हैं और कौन है भाई आज, और रियाज हैं और है और है, इनके नाम देखने पड़ेंगे, कयूम साहब हैं, जुनैद अख्तर हैं। वेरी गुड, तो ये हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए। कादर अब्दुल हादी भी है, वेरी नाइस। तो आपने जिस तरह से सही जवाब दिए उससे ये हुआ कि जो ट्रैप डोर था उसे आपने ज़ोर से धक्का मारा एंड क्योंकि आपने सही जवाब दिया है वो ट्रैप डोर खुल गया है और आप अब सीधा छत पर हैं और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। आज जनाब जो जान है वो आपकी बाल बाल बची है। जैसे कहा जाता है ना कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो बस हौसला बुलंद होना चाहिए तो हर सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, और इसी बात पर अब एक ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस देना पड़ेगा हमारे आज के सर्वाइवर को। तो आज लकी विनर कौन है जिन्होंने लगातार सही जवाब सबसे पहले दिए और आज लकी हो गए हैं, तो उनका नाम है आतिफ। हाँ भाई, जोरदार तालियां आतिफ जी के लिए, बहुत सारी मुबारकबाद आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के आप लकी विनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यूँ बने रहने के लिए आप सभी का। और हमारे जो लिसनर्स जो नॉन स्टॉप हमारे साथ बने रहते हैं भाई, देखिए एस्केप रूम का सही मज़ा तभी है जब आपका साथ हमारे साथ है, और आप हैं तभी इस शो की शान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी तहे दिल से जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। और अब वक्त हो गया मेरे जाने का, तो एफएम 107 के आप सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने आर जमीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। वेल, आज तो आपने इस जलजले से अपने आप को बचाया, इस पानी से, एक्चुअली इस फ्लडिंग सिचुएशन से अपने आप को बचाया। अब कल क्या होने वाला है? आप में से कितने लोग मेले पसंद करते हैं, फेयर्स पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो कल की सिचुएशन बड़ी कमाल की होने वाली है, मिस मत कीजिएगा दोपहर 1:30 बजे। और अब जाने से पहले कहना तो बनता है हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107, जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो एनवायरमेंट को बड़े इम्पैक्ट देती हैं। आज का टॉपिक है साथियों DIY रीयूजेबल बैग्स, यानी खुद से बनाए गए रीयूजेबल बैग्स जो हम शॉपिंग, स्कूल, ट्रैवलिंग या डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। साथियों प्लास्टिक बैग्स का टाइम जल्दी, इजी और फ्री होता है, लेकिन उनका एनवायरमेंट कॉस्ट बहुत लंबा और हैवी होता है। देखें, इको स्विच हमें ये सिखाता है कि थोड़े से एफर्ट से आप लॉन्ग टर्म में प्लैनेट को सेफ बना सकते हैं। जरा सोचिए, आप सुपरमार्केट गए और बिलिंग पर जो काउंटर होता है बिलिंग का, वहां पर कैशियर आपसे पूछती है या पूछते हैं कि भाई बैग चाहिए आपको, और आप ऑटोमेटिकली बोल देते हैं हाँ। देखिए, वो देखने में तो आपको एक छोटा सा प्लास्टिक बैग लगता है, लेकिन अगर आप उसे यूज करते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, फिर वो या तो फिर डस्टबिन में चला जाता है या किसी ड्रॉअर में आप उसे डालकर भूल जाते हैं। अब इको स्विच एंगल से अगर इसे देखा जाए तो सिर्फ एक प्लास्टिक बैग बनने में पेट्रोलियम यूज होता है और उसे डिग्रेड होने में 20 से 200 साल तक लग सकते हैं। मतलब एक 10 मिनट का कन्वीनियंस 100 साल का प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, दुनिया भर में हर मिनट लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं। सिर्फ एक प्लास्टिक बैग को बनाने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है ना, वो होती है तकरीबन 60 वॉट बल्ब को 10 से 15 मिनट चलाने के बराबर। ग्लोबली सिर्फ 1 से 3% प्लास्टिक बैग्स ही रिसाइकल होते हैं साथियों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स को खाना समझकर इंजेस्ट कर लेते हैं, जो उनकी डेथ का मेन रीजन बन जाती है। अब आप पूछेंगे कि सफा, हाउ इको स्विच हेल्प्स इन दिस थिंग? तो देखें, DIY बैग्स इज इक्वल टू जीरो वेस्ट सॉल्यूशन। देखिए भाई, इको स्विच का आइडिया यहाँ बहुत सिंपल है। अगर हम रीयूजेबल बैग्स खुद बना लें या यूज करें तो हम डायरेक्ट प्लास्टिक डिपेंडेंसी रिड्यूस कर देते हैं। DIY बैग्स का

0: ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कस्टमाइज भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। एक कॉटन रियूजेबल बैग अपनी लाइफ टाइम में 500 से ज्यादा प्लास्टिक बैग रिप्लेस कर सकता है, मतलब एक छोटा सा बैग एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बर्डन कम कर सकता है। जरा सोचिए ना साथियों, आपके घर में एक पुरानी जीन्स या टी शर्ट है जो अब आप नहीं पहनते। इको स्विच अप्रोच कहती है कि उसे आप फेंकने के बजाय उसे रीयूज कर लेना। उसे क्या करें, उसके टोटे टोटे काट कर आप उससे एक बहुत ही प्यारा सा बैग बना सकते हैं। अब वो कपड़ा जो वेस्ट में जाने वाला था वो एक यूजफुल इको प्रोडक्ट बन चुका है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी चीजों को सेकेंड लाइफ दे देते हैं बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इसी के साथ अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए वो भी मैं आपको दे देती हूँ। पहली तो ये कि हमेशा अपना रियूजेबल बैग कैरी करें, स्पेशली व्हेन गोइंग आउट। दूसरा ये कि कार या बैग में एक एक्स्ट्रा फोल्डेबल बैग रखें, जस्ट इन केस यूज के लिए अपने आप रख सकते हैं। तीसरी चीज ये कि प्लास्टिक बैग्स को पोलाइटली रिफ्यूज कर दें। मैं भी अक्सर ये कहती हूँ, मुझसे जब दुकानदार पूछते हैं, बकाला में पूछते हैं, छोटी मोटी चीजें लेते हैं तो वो पूछते हैं, अच्छा भाई आपको शॉपर चाहिए? मैं कहती हूँ नहीं नहीं, शॉपर नहीं चाहिए, क्योंकि वो शॉपर मुझे पता है कि मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने एक से दो आइटम लिया, मैं हाथ में उसको उठाकर जा सकती हूँ। चौथा, घर में DIY बैग मेकिंग एक्टिविटी फैमिली के साथ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइट वेट कॉटन या जूट मटेरियल प्रेफर करें क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथियों, इको स्विच का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि हम सिर्फ कंज्यूमर्स ना रहें बल्कि क्रिएटर्स भी बने। जब हम खुद रियूजेबल बैग्स बनाते हैं तो हम सिर्फ वेस्ट रिड्यूस नहीं कर रहे होते बल्कि अवेयरनेस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। स्टडीज ये शो करती हैं कि जो लोग DIY इको हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंगेजमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है साथियों कि प्लास्टिक बैग जो हम रिफ्यूज करते हैं या रिप्लेस करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए एक छोटी सी विक्ट्री होती है। DIY रियूजेबल बैग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है कि हम अपनी चॉइसेस से प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई, अगली बार जब आप शॉपिंग के लिए निकलें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर याद रखें। Can I carry my own bag instead? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर बैग सिर्फ कैरिंग आइटम नहीं होता बल्कि एक ग्रीन कमिटमेंट होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे वादा निभाने की अहमियत के बारे में। वादा निभाना एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान की पहचान होती है। जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो असल में हम उसका भरोसा हासिल करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने वादों को पूरा करना चाहिए। वादा खिलाफी ना सिर्फ दूसरों को डिसअपॉइंट करती है बल्कि इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाती है। अक्सर लोग छोटी बातों को आम समझकर वादे तोड़ देते हैं, लेकिन असल में हर वादा अहमियत रखता है। जो शख्स अपने वादे निभाता है उस पर लोग भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। आज का मतलब यह है कि सिर्फ वही वादा करें जो आप निभा सकते हैं, और जो वादा कर लिया है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
4: आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है वर्चुअल दुनिया की इकोनॉमी या द मेटावर्स इकोनॉमी। मेटावर्स एक ऐसे डिजिटल दुनिया है जहाँ लोग वर्चुअल स्पेसेस में इंटरैक्ट करते हैं, काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं और अपनी लाइफ का एक हिस्सा गुजारते हैं। ये सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है और बन चुका है, जहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मेटावर्स, पहले तो मैं आपको बताऊं कि है क्या। मेटावर्स बेसिकली इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल है। यहाँ लोग अवतार्स के थ्रू एंटर करते हैं जो इनका डिजिटल वर्जन होता है। ये अवतार्स मीटिंग्स अटेंड करता है, शॉपिंग करता है और सोशल इवेंट्स का हिस्सा भी बनता है। जैसे आज हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फ्यूचर में हम 3D वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करेंगे जहां सब कुछ रियल जैसा लगेगा। डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी यहां से निकल के आता है। अब देखिए, मेटावर्स में एक पूरी वर्किंग इकोनॉमी, इसका मतलब है लोग वहां जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वर्चुअल शॉप्स जहां डिजिटल क्लोथ्स या फिर आइटम्स बिकते हैं, रियल स्टेट जहां लोग वर्चुअल लैंड खरीदते हैं और बेचते भी हैं और पैसे कमाते हैं। वहीं गेमिंग इकोनॉमी, प्लेयर्स रिवॉर्ड्स कितना कमा रहे हैं इसके बारे में तो आपको पता ही है। लोग डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल कॉइन्स यूज करते हैं जो रियल मनी से कनेक्टेड है। अब इसमें वर्चुअल जॉब्स और करियर ऑप्शंस भी होंगे। जी हाँ, मेटावर्स में नई टाइप्स की जॉब्स क्रिएट होंगी जिसमें वर्चुअल डिजाइनर्स हैं, लोग अवतार्स के लिए क्लोथ्स डिजाइन कर रहे हैं भाई। वहीं पर गेम डेवलपर्स जो कि वर्चुअल वर्ल्ड और एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। वहीं बात की जाए डिजिटल आर्किटेक्ट्स की, वर्चुअल बिल्डिंग्स, सिटीज, ये सब कुछ डिजाइन किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं डिजिटल आर्किटेक्ट के अलावा इवेंट मैनेजर्स की, तो ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। टीचर्स, जी हाँ, वर्चुअल क्लासरूम में टीचर्स टीच कर रहे हैं। ये जॉब्स रियल दुनिया की जॉब्स की तरह इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं और फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगी। जी हाँ, वर्चुअल आइडेंटिटी, डिजिटल पहचान भी बनाई जा रही है। मेटावर्स में हर इंसान का एक उसकी अपनी डिजिटल आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी उसका अवतार, उसका प्रोफाइल और उसकी रेपुटेशन है। लोग अपनी आइडेंटिटी कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना लुक चेंज करना, अपनी पर्सनालिटी दिखाना, अपने स्किल्स रिप्रेजेंट करना। कुछ लोग अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा कर कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी बना रहे हैं। इस पर काम जारी है। वही अगर मैं बात करूँ बिजनेस और ट्रेड की, तो बिल्कुल मेटावर्स जो है यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस

0: और लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं. कैसे? ये मैं कल आपको बताती हूँ. जब कल वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे. किस तरह से बिजनेस और ट्रेडिंग का काम यहाँ चल रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे लिए समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें भी तो फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करना है, इन चीज़ों को जानना है, समझना है, जिससे हम भी इन्हें अडॉप्ट करके इनसे फ़ायदा उठा सकें. तो चलिए, आज के लिए तो मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लूँगी. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: पहले मिलता है,
1: बोल मिल गया। उधर से कभी डिक्लाइन आता है, इधर अप्रूवल?
0: हाँ, उधर डिक्लाइन आता है, फिर मम्मा, उधर अप्रूवल मिलता है।
1: अच्छा, अरे वाह, ये प्रोसेस तो फॉलो कर रहा है, अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा देव, since you're 15 years old, काफी ज्यादा तुम्हारा पीयर प्रेशर भी होता होगा। How many of your friends are on social media? Most of them?
0: Yeah, most of them.
1: Are you on social media?
0: Yes.
1: Okay, are you active on social media?
0: Yes.
1: अरे क्या बात है यार, तो क्या देव को रुकना पड़ता है सोशल मीडिया से, या फिर यार लाइक?
2: नहीं नहीं, रुकने का सवाल
1: ही नहीं पैदा होता
2: है।
1: मैंने
0: मना किया था उसको फोन या कंप्यूटर देने के लिए। बाद में दिलीप जो चाहते थे, नहीं, उन लोग को एक्सपोजर देना चाहिए, हमें फ्रीडम देके देखना चाहिए कि कितना लेवल तक जाएंगे वो लोग, तो हमने वैसे दे दिया था उन लोगों को फुल फ्रीडम।
1: अच्छा, ओके।
0: फिर दिलीप जो है आईटी बंदा है।
1: ओके।
0: फिर वो ट्रैक तो रखते थे कि बेटा क्या कर रहा है। फिर एक टाइम था जब उन्हें लिमिट क्रॉस किया, तो उनको कंट्रोल भी किया उन्होंने।
1: ओके, तो दिलीप साहब इज द रिस्क टेकर है ना, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम बैठ के। वेरी नाइस दिलीप सर। पर एक एक सवाल उठता है दिलीप भाई, बहुत बार ये पूछा जाता है कि वुड यू बी कंफर्टेबल इन एडिंग देम ऑन योर सोशल मीडिया? आप वैसे सोशल मीडिया पे हैं?
2: हाँ, नहीं।
1: तो क्या आप ऐड करते हैं, मतलब आर दे ऑन योर प्रोफाइल या नहीं? छोड़ रखता
2: है।
1: अरे वाह देव, डर लगता है पापा फॉलो करते हैं तो?
0: नहीं,
1: कोई ऐसा कुछ वो नहीं है डर?
0: नहीं, नहीं, वो बस क्लोज फ्रेंड्स में नहीं है बस।
1: वेरी गुड, देव के साथ यहाँ पे। हाँ तो देव, ये बताओ तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन बहुत अलग है यू नो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और तुम्हारे तो पापा खुद आईटी में हैं, तो एक ऐसा कुछ नहीं कि तुम नया सिखा दो इन्हें, ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग एल्स। लाइक हैव यू टॉट हिम एनीथिंग फ्रॉम योर जनरेशन, लाइक सम मूवीज और प्रॉब्ली थिंग्स, कोई टर्मिनोलॉजी कुछ सिखाने की कोशिश करी पापा को या मम्मी को?
0: मम्मी को सिखाया।
1: मम्मी को सिखाया?
0: हाँ।
1: क्या सिखाया मम्मी को रिसेंटली? कुछ सिखाया?
0: हाँ, इटालियन ब्रेन रॉट।
1: अरे क्या वाह,
2: I try to learn something from them, because the whatever the new generation words, no?
1: Nah,
2: the short forms and all.
1: Haan.
2: I learn from them only.
1: TTYL to seekh gaye honge aap. अच्छा, ओके। पल्लवी मैम, आपने क्या क्या, आप कैसे टैकल करती हैं घर में जो है, आपके जो जो ऑब्वियसली हस्बैंड है वो खुद आईटी सेक्टर में, सो एवरीबॉडी इज लाइक प्लेइंग विद टेक्नोलॉजी अराउंड यू, आर यू लाइक क्लोज टू टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया?
0: नहीं, जब दो लोग टेक्नोलॉजी के पास में, तो मैं थोड़ा दूरी हूँ।
1: अच्छा, आप दूरी है।
0: मगर हाँ, मैं सोशल लाइफ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं इंस्टा सब फॉलो करती हूँ।
1: अच्छा,
0: और हम पूरा फैमिली अपना सबको फॉलो कर लेते हैं।
1: हाँ, कभी पोस्ट करने से लगता है ये ना consciously you're like there, क्या है मैं, क्या am I posting, what am I writing, है ना, कभी बार लगता होगा ना, यही रहता है। और कुछ कई कई बार होता है कि kids are not really comfortable letting their parents, which is like, do you think it's fine? क्या कहते हो तुम इस पर?
0: My opinion, sure.
1: If so,
0: if you feel that your parents should not be added, you okay?
1: Okay तो है, लेकिन बनाओगे कैसे? There is, how can you say no? मैं नहीं करूँगा ऐड, वो नहीं हो सकता ना?
0: Yeah, but you can try talking to them and see, like if you want personal space in your social life, you can ask for it.
1: Oh, okay. And आप दोनों ने कितनी कोशिश करी to influence him towards some kind of occupation in future, कि you can be this and that, you know, people try कि घर पे लोग करते ना कि अगर इंजीनियर बना तो this shape them in a way कि ये इस तरफ जाए।
2: I mostly date them, like anyway, it's after them like what they want to be become.
1: अच्छा, okay.
2: So कभी I never force them to do so and so line and all.
1: हाँ, कभी ऐसा कुछ नहीं?
2: ऐसा कुछ नहीं है, I always give the freedom to them to choose their path.
1: Okay, and Pallavi ma'am, have you tried like you, आपको कुछ है ऐसा कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ये बने, ऐसा कुछ रहा शुरुआत?
0: वैसा कुछ हमने बच्चों को नहीं बताया ऐसा कुछ करना है करके, वो अपने अच्छों के ऊपर डिपेंडेंट है क्या कर
1: रहे हैं। That's very nice.
0: और वही जो भी है, मैं बस अच्छा इंसान बनूं।
1: Oh, well,
0: we expect.
2: Yeah, that's right. It should be a good citizen.
1: Good citizen पहले, उसके बाद बाकी चीजें रिसीव होंगी। देव, क्या बनने का चाहते हो वैसे when you grow up? कुछ सोचा?
0: Yes, I want to be a pilot.
1: You want to be a pilot?
0: Yeah.
1: अरे बहुत बढ़िया यार, माँबाप के लिए free ticket हो जाएगा। क्या बात है, very nice. पल्लवी मैम, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, लोग कहते हैं कि ये it's not like

0: सेइंग कि फेमिनिस्ट हो या ना हो वाली बात नहीं है, मगर आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है सबको एक साथ बांध के रखने की. सो हाउ डू यू डू दैट, लाइक सबको एक जगह बिठा के ये सब खाना खाएं एक साथ, सब एक साथ रहें, व्हाट इज योर फॉर्मूला और फंडा, व्हाट डू यू डू?
1: फॉर्मूला जो है, मैं मैंगलोर से हूँ, थोड़ा सा मैं तो प्रॉपर नॉनवेज खाने वाली बंदी.
0: ओके.
1: तो मेरे बच्चे भी वही फॉलो करते हैं.
0: ओके.
1: प्रॉब्लम एक ही बंदा है, मेरा हस्बैंड.
2: अरे
1: इसको वेज चाहिए.
2: अच्छा ऐसा है क्या?
1: क्या?
2: तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, व्हाट डू यू डू इट? अलग बनाना पड़ता है इनके लिए खाना?
1: अलग तो या एक तो बना लेती हूँ, कभी कभी क्या करती हूँ मैं तो नॉनवेज बना लेती हूँ, सैलेड बना के कुकुम्बर सैलेड देती हूँ, यही वेज ही चाहिए तो खा लो.
3: It's high time, but I'm manageable for it.
1: But he's adjustable. He
3: could. Okay, you
1: know. Yeah.
2: क्या क्या प्लान है आपको अब्रॉड भेजने का? कुछ सीन है कभी फ्यूचर में सोचा है कि if he is willing to study outside?
3: No, I prefer to be in India.
2: अच्छा, you prefer to be in India?
3: India.
2: Okay.
3: Even if he has any ambitions, he can proceed.
2: तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है?
3: कुछ मसला नहीं.
2: अरे very nice, very nice. That's very sorted. Do you miss your bachelor life? आज आप खुल के बताइए.
3: Bachelor life वहाँ का taste तो अलग है. Oh, it is different. अलग है.
2: आपसे पूछने वाला था इस बारे में, जो होता है ना इट्स ऑपोजिट एट टाइम्स, जहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है, बट यहाँ पे ऐसा है कि तुम जाते क्यों नहीं हुआ?
1: ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उनको फैमिली चाहिए, सब लोग साथ में जाए, और मैं जो थोड़ा फ्री हूँ अपना स्पेस चाहिए, मैं मेरे फ्रेंड्स के
2: साथ. सोशल वर्ल्ड है मतलब कहीं लगे.
1: यस,
2: वेरी वेरी नाइस. अच्छा मैम, आपकी क्या क्या एडवाइस है जेन ज़ीज़ को, क्या कहना चाहेंगे आप? What is your advice to Gen Z's basically? आपके लड़के के एज के जितने बच्चे हैं, because I can see him is very very down to earth and sweet and he knows his limits and everything, which is really really nice. But क्या आपका क्या है in general, because they are more emotional, है ना? सब कुछ express कर देना है through stories or through anything. What is your opinion, ma'am? क्या कहना चाहेंगे आप?
1: In general, compared to other kids, मैं वही बोल रही, मेरा बच्चा तो बहुत बेहतर है उसे.
2: वेरी नाइस.
1: और ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, और हम जो बोलते हैं वो सुनता है, और कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जो हमें बोलना है, तो हम कैसे भी पता लगा लेते, वही सोशल मीडिया से ही पता लगता है. अभी किडों की रेडियो फीलिंग्स जो होता है ना, सोशल मीडिया में एक्सप्रेस कर लेते, अब उसके थ्रू हमें समझ में आता कि उसके अंदर कुछ है जो ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस विद अस.
2: ए भाई, तुम संभल के पोस्ट किया करो. हां,
1: तो हम क्या करते हैं उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं. So, कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है इस चीज से, या कुछ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, देन उस टाइम पे हम लोग फ्री ओपनली बात करते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेता है उसका क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है. सो देन वी एंटायरली वील कम टू द सॉल्यूशन, इधर हमसे अगर हमसे हो सकता है तो सॉल्यूशन दे सकते हैं, नहीं तो हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते.
2: हाँ, वेरी नाइस. तो कभी आप कमेंटिंग वगैरह करते हैं मम्मी पापा कभी फोटोज पे या फिर स्टोरीज पे? डू दे कमेंट?
4: Well, when I post, I usually like photography.
2: Ajo, you love photography?
4: Yeah.
2: Very nice, yeah.
4: Yeah, so...
1: Both of them are into photography. Deep also is his part-time passion.
4: He's a wildlife photographer.
2: Are nice, sir. So, you have your talent passed on.
3: Yeah, actually, see, that's the one which kids has to follow, that kind of thing, some kind of hobbies.
2: Uh-huh.
3: So that they won't, their mind will not be diverted to something.
2: Very nice. Yeah, nice, nice. True.
3: They will not have any negative thoughts or anything.
2: Ah, right.
3: So rather than being with a photographer or any kind of like other hobbies like a dance, singing or something like that.
2: Ah, very nice sir. Very nice sir. आप सबसे अच्छी बात है कि you're open about it. ये बहुत अच्छी बात है दिलीप.
1: Yeah, मगर problem ये क्या ना कि वो सिर्फ animals, wildlife का photo लेते हैं, हमारे photo नहीं लेते.
2: अरे अरे सर, यहाँ आप चूक रहे हैं. ये ना ये दुनिया की expectation है सर. Wildlife photographer तो हमारी क्यों नहीं
3: करते? Because it's like I need a natural faces. I don't want any artificial.
2: Pose नहीं पसंद है ना?
3: No.
2: I'm with you sir, no problem.
3: Even मेरा Instagram आप चेक करेगा तो you'll see only the animals.
2: I will see it right now sir. After this interview I'm going directly on your Instagram. मैं पक्का जाने वाला हूँ. अच्छा ये तुम photography अच्छी करते हो तो are you not trying to pursue it? बस hobby की तरह चलता रहेगा.
4: Hobby, just a small hobby.
2: और focus है बिल्कुल, जहाज ही उड़ाना है मुझे.
4: Yeah, I want.
3: बस लगे रहना है बस इसका, he should not leave the touch.
2: हाँ वो लगे रहना है तुम्हें everything, like movies से कहानी शुरू हो जाती है कई मरतबा, you know बच्चे कोशिश करते हैं कुछ और जानने का, कुछ देखते हो like stuff which is related to planes and all, कुछ देखा है सर?
4: Yes, I like defense.

0: planes, like fighter planes and commercial jets. Yeah, they're pretty fun.
1: बस ये focus रहना क्योंकि साथ में photography रखना और मम्मी की photo खींचे करो यार. ये पॉइंट आपने सही कहा सर, ये होगा कि इनको तो अच्छी और अच्छी की जिंदगी, आ क्यों नहीं रही है वो बात.
2: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर. Only on FM 107.
1: दिलीप भाई, आप इतने सारे after you know स्कूल जाते हैं और पेरेंट्स सबकी मुलाकात होती होगी है ना, काफी कुछ जानने को मिलता होगा, तो ये जो सर्कल बन जाता है, have you made a circle जहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं, just because your kid is there, तो आपको जाना मिलना होता ही है.
3: हमारे पास फैमिली फ्रेंड्स हैं.
1: Yeah.
3: Friends with them. Not through kids. Not through kids actually.
1: But do you have friends through kids? Because of course, इनके दोस्त हैं तो ऐसा है.
3: नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई.
1: Okay.
3: We know them. That's it. But ऐसा closeness
1: है.
4: नहीं. वो एक Gen Z का एक minus point होता है. उन लोगों को parents को introduce नहीं करवाते हो.
1: हाँ. Oh, they wire.
4: Very dangerous. See.
3: They keep us a little distance.
1: अच्छा ऐसा भी है विद देव. Why do you think so? ऐसा है?
4: I share a lot of things to my friends and if they blabber something in front of my parents, I'm
1: हो गया भी रहेगा हो गया हो. अच्छा ओके. अच्छा जैसे एक मेन टॉपिक है जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में है ना, यू वुड आल्सो नो दिस, स्लीप ओवर का कभी टॉपिक घर पे आया है?
4: Yes.
3: Yes.
1: आया है.
4: बचपन में गया हुआ है देव स्लीप ओवर में.
1: अच्छा.
4: कभी उसका फ्रेंड्स हमारे घर तो आए नहीं.
1: ए, वैसा क्यों है? प्लीज एक्सप्लेन. पांच नंबर का सवाल है. व्हाई?
4: आई एम नॉट श्योर. लाइक फॉर मी आई डोंट थिंक आई हैव इनफ टू एंटरटेन देम मच फॉर एन एंटायर नाइट.
1: अच्छा.
4: या
1: तो तुम्हें ऐसा क्यों? अच्छा तुम जब गए होगे तो व्हाट डिड यू डू, मतलब क्या किया?
4: Well, उधर we played. We actually most of the time we were playing. We were just roaming around and making jokes. And then other half was like we were on consoles.
1: अच्छा okay.
4: Yeah.
1: तो तुम अपने घर भी बुला सकते हो भाई, ऐसी क्या दिक्कत है? कभी
4: last step? Yeah, pitch करने वाला. Yeah. Problem क्या है? हम थोड़ा early bed वाले लोग हैं, जल्दी सो जाते हैं. तो शायद उन लोग का फ्रेंड्स को नहीं हो सकता है.
1: It's most of them are
4: and they live in villa, so like the parents will sleep down and we'll be making noise up.
1: अच्छा, that easier.
4: Yeah, that's easy.
1: Oh.
3: And another one is that their expectation is that when it's come and sit with the playing in the video games and.
1: हाँ.
3: So वो तो मेरे घर पे नहीं है.
1: अच्छा.
3: नहीं, I have not provided that video games facility.
1: उसकी जिद करी है वैसे? उसे दाद चुकी है उसकी?
4: हाँ, बचपन में था.
3: बचपन में था actually. So I control that. That's the one actually I did. I controlled with them.
1: अच्छा, बस वो चीज़ आपने ना कर रखी है. उसका reason क्या है सर? आप क्या reason मानते हैं उसका?
3: नहीं actually
4: वही तो था, out of control.
3: हाँ, out of control.
4: पढ़ाई में.
3: पढ़ाई में और ज्यादा मतलब उसमें they are not getting any benefit actually. The thing is that they are more attracted to the some sort of fictional things which will not give any benefits to their life.
1: Like जैसे कुछ games होते हैं जो cognitive abilities you know they also develop.
3: There are but they're very limited. But
1: okay.
3: What was the game you were playing? Roadblocks. Yeah, Roadblocks. It's one of the many countries are it's banning that game.
1: Ha ha ha. That is.
4: That's awesome.
3: Yeah, but
1: अभी भी पिच जा रही है.
3: And the country didn't recently. I did it very early stage.
1: Country से पहले पापा ने कर लिया वैसा. Oh, the count. अच्छा क्या क्या पसंद है मम्मी का बनाया हुआ सबसे फेवरेट फूड?
3: बिरयानी.
1: Oh, no. एक सेकंड भी नहीं लिया उसने पूछने के लिए. Is it that good?
4: I like it.
1: पल्लवी मैम, हमें कब खिला रही हैं आप?
4: जब भी आ जाओ कभी भी.
1: डन हो गया फिर. ये तो कमाल की बात हो गई.
4: थ्री टाइम्स भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और
1: डिनर. क्या बात है.
4: You give me one big plate of biryani, I'll finish it.
1: Arey, mashallah, very nice, very nice. ये तुम्हारी diet inshallah बनी रहे, ऐसी तुम रहो, खुश रहो. देव, PTM जब होती है तो क्या सर में चलता है, nervousness होती है?
4: होता है?
1: डर लगता? You remember a PTM wherein you know situations were like up and down and you were like, अरे क्या करूँगा मैं यहाँ पे?
4: Actually, recently in the recent PTM, I was worried that the teachers would say something bad about me. But then they were like pretty chill. Yeah.
1: अच्छी बात है, बच गए.
4: Yes. Suspect तो वही कर रहे थे कि चीज़ें कुछ बोलेगी तो
1: आप expect कर रही थी. Sometimes you just want to run away ना, कि यार मुझसे मत बात करो मेरी बात.

0: बारे में बात मत करो। अब पहले मैम, हाउ डू यू टेक पीटीएम्स? क्या पहले से प्रिपेयर रहते हैं, क्या रहता है दिमाग में?
1: हाँ, प्रिपेयर तो रहते हैं। हम सोचते हैं बच्चे के बारे में कुछ बुरा ही सुनने होगा, मगर जब टीचर से वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताती है तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, ये मेरा ही बेटा है।
0: क्या बात है देव, क्या वाह, क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या बताया देव का? वैसे
1: वो बोलते हैं कि हाँ, ये शांत बच्चा है, सुनता है, सब कुछ करता है, उसमें जो जो बोलते हैं सब कुछ कर लेता है।
2: अच्छा,
1: थोड़ा फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बात हो जाती है,
2: कभी कभी डिस्ट्रैक्शन
1: रहता।
0: ठीक है सर, उतना तो चलता है, मतलब
2: रहने तो कोई बात नहीं
0: है, रहना चाहिए,
2: रहना
0: वो तो चाहिए, मतलब दोस्ती बड़ी जरूरी है कुछ हमेशा। एंड नेक्स्ट मेरा पॉइंट भी ये था कि कई मर्तबा मैं देखता हूँ बच्चे जो होते इतने शांत हो जाते हैं, सो साइलेंट, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, क्योंकि उन पे बाउंडेशन हद से ज्यादा है। अब उन्हें आप कहते रहिए दे आर वेरी नाइस, वेरी यू नो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, पर फिर आगे जाके उनके दोस्तों से तो कोई लाइफ नहीं है। Right? Do you agree on this?
2: Yeah, I agree completely. Agree on it. Kids should be independent. They should be able to face any challenges.
0: Yeah.
2: अगर इनका life में अगर failure नहीं हुआ, तो कभी life में अगर failure जब बनता है, तो they will not be able to come back.
0: Of course.
2: So failure should happen. Like.
0: Of course.
2: So failure से they can be success.
0: हर चीज़ perfect भी अच्छी नहीं लगती ना। थोड़ा imperfection भी पड़ा जरूरी होता है।
2: Imperfection रहना जरूरी।
0: But you know, पापा की advice लेना, because it's a very major advice.
2: Yeah.
0: You might as well fail in things in life, and I personally, professionally, but वही चीज होना जरूरी भी है। It is important. It will push you forward.
2: Yes.
0: And ये सिर्फ बात नहीं है, it's a common factor हम सबकी life में हो चुका है। And आगे जाके ये होगा। Nobody will tell you कि नहीं failure तो नहीं होगा। वो तो होगा। But then you should be mentally prepared for it. दोस्ती बना के रखना भाई। तुम्हारा दोस्त है ना, कहना तो टीचर को रिलैक्स, कोई सी भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, तो आपकी फेवरेट मूवीज क्या है? What do you watch, like, आपका जॉनरा क्या है?
2: I like true stories.
0: अच्छा, true stories. क्योंकि आप केरला से हैं, right?
2: Yes.
0: मलयाली मूवीज आर फैंटास्टिक, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। मिस्ट्री थ्रिलर्स आर नेक्स्ट लेवल, मुझे लगता है उसका मैच ही नहीं है, अनपैरेलल है। मैंने रिसेंटली ब्रह्म युगम और ये सब देखी थी, तो मुझे लगा कि बाप रे क्या बन रहा है, क्या सिनेमा बन रहा है। तो आप क्या मिस्ट्री थ्रिलर्स हॉरर क्या पसंद करते हैं?
2: ये थ्रिलर्स एंड ट्रू स्टोरीज, थ्रिलर्स, डिटेक्टिव्स,
0: ओके,
2: ऑल दोस आई लाइक,
0: ट्रू क्राइम थिंग्स,
2: क्राइम काइंड ऑफ थिंग्स।
0: अच्छा, ओके। पल्लवी मैम, आपको क्या पसंद है?
1: मैं तो रोमांटिक मूवीज देखती
0: हूं। ये क्लैश होता है बस?
2: नहीं नहीं, अरे भाई, आई हैव गिवन फुल फ्रीडम टू यार।
0: तो कभी साथ में बैठना हो, देखो ये अच्छी चीज,
2: रोमांटिक मूवी साथ में बैठ के देखने में मुझे कुछ इतराज नहीं है। आई आल्सो एंजॉय रोमांटिक मूवी, द मून इन It will help us to create a mood also.
0: ठीक, so very nice sir. क्या बात है? Dev, do you watch their genre sometimes? या फिर अपना खुद के चल रहा है तुम्हारा?
3: वो भी है, and I personally like feel good and sci-fi movies.
0: You like sci-fi movies? Okay, मतलब thrillers कुछ ऐसा? Yeah.
3: Thrillers भी है, sometimes horror.
0: Sometimes horror?
3: Yeah.
2: It just like
3: mood.
2: I don't like horrors, no.
0: You don't like it or you're scared of it?
2: No, I don't like horror movies at all.
0: You don't like it at all? Aray,
1: boy. I like horror movies, me and they watch horror.
3: Yeah.
0: Very nice. Mummy saath hai toh phir koi kya kar sakta hai? Right. Recently kuch dekha ho, batana chahoge tumko. Recently, have you seen anything?
3: Recently, we watched one movie, Loka.
0: Fantastic reviews, yeah.
3: It's really
0: doing great. मुझे देखनी बाकी, but I've seen the reviews and everything, तो इंशाल्लाह देखने का मौका मिलेगा। सर, any advice to your own generation, to like आप देखते होंगे आपके दोस्तों के, उनके भी बच्चे हैं, not everybody can be in line with parenting, right? तो आपकी क्या एडवाइस है टू योर ओन जनरेशन और न्यू पेरेंट्स हु विल बी यू नो एक नए उसमें आएंगे?
2: Be like as a friends with the kids. Okay, so in this current generation, that's the only way to control. Or else, if you try to apply some kind of restrictions, maybe the Gen Z kids, maybe
0: they'll find a way.
2: They'll go far away from us. So only way that to be friends with them and try to give the pros and cons.
0: Yes.
2: And instead of saying that when you do this, rather than that, you can say that when if you do this, this
0: will happen. This is a course. Yep, in detail, in depth knowledge jo hai us cheez ki wo deni badi zaruri hai. Pallavi mein, what is your take on this?
1: Main to good cop aur bad cop mein se ek karti hu. मैं हमेशा बैड कॉप की रोल प्ले करती हूँ।
0: अच्छा, ओ
1: इसीलिए हमेशा देव इसलिए बोल रहे हैं पापा अच्छा है।
0: नहीं, पर अच्छी बात है, मम्मी इज लाइक द बैकबोन है, पापा भी एग्री करेंगे। मम्मी ने सबके जो मेंटल हेल्थ है उसको संभाल रखा है।
1: हाँ, मगर इंटरनली हम, मैं और मेरा हस्बैंड तो डिसाइड कर ही लेते कि कौन बैड।
0: अच्छा, अंदर से डिसाइड।
1: हाँ, किसी ने किसी को तो पता चलेगा क्या हो रहा है घर पे.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा इस पे, बच्चों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बस से भेजना स्कूल आप प्रेफर करते हैं, यू ड्रॉप हिम ऑफ, हाउ डज इट बाय बस? But do you, would you want them to drop you? Yeah,
3: no.
0: And that is what I was looking for.
3: No, I like bus because you have friends in your bus. It's pretty fun.
1: That, I like, have, yeah.
2: That's what it is. Even when I was small, like...
0: Bus hi pasand thi na.
2: Even I was not going in bus also. Because I walked.
1: That's sweet.
2: Yeah, 20-25 minutes walking distance from my home to school. So we go by some group of people.
0: मुझे लगता है ऐसी ऐसी प्रिविलेज है जो देनी नहीं चाहिए खुद ड्रॉप करने वाले.
3: आई
0: थिंक वो जो बस में जो दोस्त बनते हैं समटाइम्स वो आपकी क्लासरूम के भी नहीं होते, घरों से दोस्ती बड़ी अच्छी जाती
3: है.
0: And you share a lot of stories जो आगे जाके तुम्हारे काम आएंगी.
2: Yes, that's what it is.
0: है ना, that's what.
2: Friends के साथ they can learn so many things.
0: Yeah, so many things. Which school would not taught them or वो आप
2: इन parents और even हम भी इन लोगों से सिखा नहीं सकते.
1: Yes, good or bad दोनों सीख सकते हैं, मगर it's depend on the person to select which.
0: और आप हर चीज control भी नहीं कर सकते. You can't say कि तुम बड़ा अच्छी ही सीख पाओगे. It is not necessarily.
2: They should know bad also.
0: They should know it. Yes.
2: And only thing is where to apply the good and that realization should be there.
0: Yeah, of course. वो तो आ जाएगा सर. And I think आपका बेटा समझदार दिख भी रहा है. वो हो सकता है टीचर बोलती हो साइलेंट है but he knows his stuff. So I can clearly sense that. So I wish you all the best, bro. And I can sense that bro in you. मुझे पता आगे जाके लड़का आग लगाएगा.
2: भाई जो आपको bro लगे.
0: नहीं बिल्कुल yeah. I can sense it.
1: मम्मी पापा ब्रो ब्रो ही हुए.
0: हाँ आप तो मम्मी पापा को ब्रो करने चलते रहे.
3: I call them bro sometimes.
0: तुम आज के जनरेशन में बच गए. हेले ना बहुत पिटाई
1: हो. अरे आप सकते हैं मैं बोलता मैं तुम्हारे ब्रो नहीं हूँ.
2: इवन 8 साल के बेटे भी मेरे को आगे वो ब्रो बोलते हैं.
0: किस्मत अच्छी सर इनकी, बहुत अच्छी किस्मत है माशाल्लाह. नहीं बट आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों से दोस्ती करना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ से बड़ा आसान होता है. तो उनमें से जिनसे आगे जाके दोस्ती बनाई जा सकती है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट देव डेफिनेटली. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंटरव्यू का, लास्टली पूछना चाहूंगा.
2: या वेरी नाइस. इट्स वेरी बट आई कैन से दैट बट इट्स अ वेरी वैल्यूड डिस्कशन व्हाट वी हैड. सो एनीवे आई गॉट टू नो दैट व्हेन समथिंग मोर अबाउट माय सन एंड ही आल्सो गॉट समथिंग. Of course, yeah.
0: Of course.
2: So, and it's anyway, जो सुनने वाला उन लोग को भी.
0: Of course.
2: So, it's going to be some
0: कुछ points. मिल जाता है.
2: कुछ ना कुछ मिल जाते हैं.
0: Yes. पल्लवी आप क्या कहेंगे? How was your experience so far?
1: मुझे तो मजा आया है. मक्करम पहले तो tension था क्या होगा इधर आने के बाद. Now it's like आपने तो बहुत chill करवा दिया हमें. So I'm very happy about it.
0: Oh, my pleasure, bro. Likewise. Dev, lastly, bro.
3: Yes.
0: Oh, how has your experience been?
3: It's my first time being in radio and it's pretty fun experience. Like new atmosphere. I've never seen this, like how it works. It's pretty fun to know how it all works. Yeah.
0: कुछ कोई शार्ट आउट देना चाहोगे तुम्हारे दोस्तों को? सब शार्ट आउट आई नो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे बट मेजरली दो तीन.
3: That will be unfair then.
0: मुझे इतनी बातें करी है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा दैट यू होल्डिंग बैक एनीथिंग. एंड एज अ पेरेंट यू आर डूइंग अ जॉब फैंटास्टिक. मैं कोई नहीं होता जज करने वाला बट आई कैन स्टिल सेंस दैट वो जो चीज सुनने मेरा मन करता है सुनने का वो आपने सब बोली है. एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. I wish you all the best. Thank you so much. We all are signing off. अपना ख्याल रखिए. अब बेहद बेहद जरूरी है. अस्सलाम.
4: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107, Time Check. Time Check.
1: हाँ जी, उठाओ लाल पेन और बताओ कि कौन से गानों पर आप आज टिक लगाकर भेजने वाले हो कि कौन से गाने प्ले होने चाहिए शो में, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। एफएम 107 के स्टूडियो के घड़ी में एग्जैक्ट वो टाइम हो गया जब आप अपनी मर्जी के गाने सुन सकते हैं। 4:01।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगले दिन जो हम गाने प्ले करने वाले या जो थीम होने वाली है उसको पहले से ही बता दे, ताकि ये हो जाए कि यार अगला आदमी ना 2-3 गानों की लिस्ट बना ले, या फिर क्योंकि वैसे तो होता ये है कि हर एक बंदे की एक गाने की रिक्वेस्ट मैं प्ले कर सकता हूँ, तो वही एक गाने एटलीस्ट अगर आप 2 या 3 गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपने 3 लिख दिए तो 3 में से जो अच्छा हो वो प्ले कर दिया, है नहीं? तो वो वाला हिसाब भी बिल्कुल सही है। वैसे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का FM 107 पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फजील। 4 से 5 ये शो आप सुनते हैं और शो का नाम है द रिक्वेस्ट शो। जो नए हैं उनके लिए बता दें, इसमें होता ये है, सिंपल सा काम है कि आप अपने मर्जी के गाने सुन सकते हैं, लेकिन दिल दिया गल्ला छोड़ के। एक भाई हैं, वो रोज आते हैं, उनने सोच लिया है कि इस आदमी से एक दिन दिल दिया गल्ला तो प्ले करवाऊंगा। वेल, वैसे मैं वो गाना ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ जिस दिन थीम थोड़ी ओपन होती है, कॉम्पोजिशन वाले गाने होते हैं अच्छे वाले, या फिर अच्छे लिरिसिस्ट जो होते हैं उनके गाने अगर यू नो प्ले करने हैं, तो वो गाना तो ऑलरेडी मैं प्ले कर चुका हूँ। लेकिन आज की थीम क्या है? कल मिका सिंह की थी, ऐसे ऐसे गाने लोगों ने सुने हैं भाई, दिल खुश हो गया है, और आज भी आपका दिल खुश हो जाएगा, ये मेरे ऊपर गारंटी छोड़ दो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि जिस सिंगर का आज थीम है, तो ये तो पता चल गया कि आज भी सिंगर, जिस सिंगर का आज का थीम

0: टीम मैं लेकर आया हूँ, वो सिंगर भी मिक्का जैसे हैं और कह सकते हैं एक स्टेप आगे हैं और लाजवाब हैं। उनके दिए हुए गाने बाजाब सदाबहार जैसे होते हैं ना, वो वाले हैं। अब सदाबहार सुन के ये 90s में मत चले जाना तुम कि अरे 90s वाला जल्दी से लिख देता हूँ, नहीं रुको रुको जरा सबर करो, मतलब तुम तो अभी से अपनी मार्च शुरू कर दी हो भाई, थोड़ा रुको। मैं आपको बता देता हूँ कि आज की थीम क्या है। आज की थीम है सिंगर सुखविंदर सिंह के गाने। तो सुखविंदर के गाने आज हम यहाँ प्ले करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने दिए हैं और जो उनका गाने का तरीका है वो हल्का फुल्का नहीं है, वो हल्के गाने नहीं गाते, हल्के इन अ सेंस वो रोमांटिक टाइप्स, बहुत स्लो वर्जन नहीं है ना, तो वो ऐसे गाने गाते हैं कि अगर आपने स्लो लिखा है तो वो तो गाएंगे नहीं, मना कर देते हैं। वैसे ये भी होता है ना कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो गाने के लिरिक्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उनका टेक्सचर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन किस तरह का होगा, उस गाने को फिल्म के किस मूड पर सेट किया गया, उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक डायरेक्टर फिर ढूंढता है सिंगर को। तो इस हिसाब से ही सुखविंदर को ढूंढा जाता है। तो सुखविंदर हाई नोट पर गाने वाले आदमी है, तो हाई नोट पे गाने वाला आदमी जिसका कॉम्पोजिशन अच्छा हो, जो अपने पूरे जी जान से गाए, आवाज से गाए और ऐसा हिट गाना दे कि आपका दिल खुश हो जाए, वो है सुखविंदर। तो सुखविंदर के पास म्यूजिक डायरेक्टर तभी जाते हैं। तो सुखविंदर के जितने भी गाने हैं आज आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-222-107-6-6-6-2-2-1-0-7, रिक्वेस्ट करिए, मैं तैयार।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, Only on FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, तो तैयार बैठा हुआ, मेरी उंगलियां जो है बहुत तेजी से ऐसे फड़फड़ा रही हैं कीबोर्ड पर लिखते हुए कि सुखविंदर मैं यहाँ पर लिख दूं और वो गाने आ जाए जो आप डिमांड कर रहे हैं। वेल, सबसे पहले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अजमत खान की तरफ से, अजमत खान भाई गुड आफ्टरनून। और ये जो मैसेज है अगला किस भाई का है, खलील पारचा, इनका कहना है सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक यार, गाना नाज़िया हुसैन का कोई अच्छा सुनाओ। खलील पारचा, देखो खलील साहब आप कल आए नहीं थे, मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफिस में एक रूम है जिस रूम का नाम है कोड़ा रूम, वहाँ कोड़े बरसते हैं और इस बात पे कोड़े बरस जाएंगे अगर मैं नियम कानून से नहीं चला। तो नियम आज का, कानून आज का ये है कि सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर के गाए हुए गाने प्ले होंगे, ठीक है। बाहर जल्लाद खड़ा और चाबी लेकर खड़ा है कोड़े रूम की, ठीक है, वो तुरंत ऐसा चाबी निकाल देता कि मैं जा रहा हूँ, फिर कोड़ा रूम में आ जाना तुम अगर अपनी मर्जी का गाना प्ले कर दिया तुमने तो। इसलिए माजरत के साथ खलील भाई थोड़ा समझा करें, कुछ कुछ होता है। हेलो, माय नेम इज कौसर खान, प्ले पश्तो सॉन्ग। नहीं प्ले कर रहे उधर से चाबी निकाल लेते ना, नहीं प्ले करेंगे, वो बस लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ। जल्लाद को समझ नहीं आता ना भाई, जल्लाद का ये होता है भाई चलो आज की दिहाड़ी मिलेगी, आज की दिहाड़ी उनका तो मस्त हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज सॉन्ग चल छैया छैया और लगन लगी, ये दोनों गाने अच्छे हैं। यूसुफ भाई ने रिक्वेस्ट किया सलाम करने के बाद, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे इवनिंग, ठीक है। तो ये गाना अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर ये मिल जाएगा तो ये सबसे पहले अपन गाना प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी लोगों के मैसेज। रमेश ने कहा है जय हो मूवी स्लम, ठीक है, ये मिलेनियर गाना, सॉरी मूवी का स्लम डॉग मिलेन, ये गाना अपन प्ले करेंगे, लेकिन रमेश भाई और लोगों के मैसेज अपन पढ़ ले तो उम्मीद है कि ये गाना अपने को मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई साहब, 4:06 PM हो रहा है, AM नहीं, वो अलग बात है कि हो सकता है आप सोकर उठे हो, भाई सबका अपना अपना टाइम होता है, अरबाज खान अभी सोकर उठे तो ठीक है, कहते हैं बहुत दिनों बाद है इसलिए इन्होंने करा, ये क्या बात है बहुत दिनों बाद, रात में उठोगे तो क्या सलाम की जगह और कुछ कर लोगे क्या भाई, मतलब ऑब्वियसली गुड इवनिंग हो रहा है, थोड़ा सा देख के समझ के कोई भी अच्छा गाना लगा दो। बिल्कुल अजमत खान आप बिल्कुल परफेक्ट जगह हैं, फिर अगर ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी अच्छा गाना लगा दो तो आप सुखविंदर का बहुत ही लाजवाब गाना सुनेंगे। आप रुकें जरा, सबर करें आप, देखें फिर खादिम भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम मेरा भाई, कयामत प्लीज, ये देखो इतना अधूरा इन्होंने लिखा मैं क्या समझूं, कयामत प्लीज। अब कयामत से फजील भाई के ऊपर है कि फजील भाई समझ लें, अब मैंने यहाँ पर कयामत लिखे, कयामत सिटी है, अब यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है कयामत सिटी थ्रेट 2003, कयामत ही कयामत, कयामत से कयामत तक, ये सब आ

तो इन्फॉर्मेशन दो मेरा भाई, शोरमा लगाए कौन सा? और फिर खाने के बाद अमा जूसी नहीं है यार बे, सर सर आपने बताया नहीं था सर, जूसी आपने पहले बताया नहीं था, और चिकन वाला अलग तुमने दे दिया। अरे सर आपने बताया नहीं था सर, प्लीज ठीक है प्लीज, हर जगह कोड़ा रूम होता फिर देख लो। नसीम भाई कहते हैं अपने मन से लगाओ, बस नसीम भाई आप भी बिल्कुल परफेक्ट जगह हैं, थोड़ा सबर देखिए आपको मिल जाएगा। 10 दिन बाद सर आप आए हैं, 10 दिन बाद, वैसे पहली लाइन में मैं समझ गया था 10 दिन बाद आए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। अरबाज भाई ये बात मुझे पसंद है कि 10 दिन बाद आए हो तुम, 10 दिन बाद, ये भी अलग है। जब आपको किसी को डांटना हो ना तो एक ही सेंटेंस को दो बार बोलो तब समझ में आता कि हाँ डांट, ऐसा सिंपल बोलते हैं 10 दिन बाद आए आप तो समझ नहीं आ रहा, 10 दिन बाद आए आप 10 दिन बाद तब लग रहा है डांट रहा है। सॉरी मेरा भाई, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि 10 दिन बाद आया हूँ मैं। अजय देवगन सॉन्ग देखो अभी, देखो अजय देवगन की थीम नहीं है मेरा भाई। फिर उसके बाद नसीम कहते हैं रिक्वेस्ट बंद कर दो, और कुछ तो नहीं क्यों भाई, मेरे गले पे छुरी चला रहे हो, ताले की तरफ भाग रहा है वो जो कोड़े वाला आदमी है, ठीक है आप तो बच जाएंगे हम सुझ जाएंगे। रईस खान का मैसेज है, त्रिदेव मूवी का नाम है गेम के लिए तो, अच्छा ये सुबह का है मैसेज, चक दे ओ चक दे इंडिया, ये कौन सा गाना है, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे ये वाला गाना, ओके सुखविंदर, ए सुखविंदर ये वाला गाना आपने गाया है ना, चक दे इंडिया कुछ करिए, हाँ ठीक है ये वाला गाना अपने पास है, थोड़ा पेट्रियोटिक है ये गाना, अपन प्ले कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो रिक्वेस्ट थी वो यूसुफ भाई की थी, चल छैया छैया, तो यूसुफ भाई ने किया है तो पक्का सही किया होगा। ये वाली बात है कि फल अब यार नाम ले लेंगे तो मैं ही सुत जाऊंगा, कि फलाने ने किया है मास्टर स्ट्रोक ही होगा। क्या है अपने बातों से अपने लफ्जों से बाज नहीं आता मैं, चल छैया छैया छैया गाना मैं देख लेता हूँ यार, एक तो स्पेलिंग भी ढूंढना बड़ा एक मेहनत का काम है, इसमें भी एक सैलरी अलग से बढ़कर मिलनी चाहिए, कह रहे आपने स्पेलिंग सही सर्च कर लिया, अरे अरे चल छैया छैया कहाँ है भाई, छैया छैया ही लिख दूँ क्या, किस मूवी का था ये, जब आप पहचान कौन खेलते हैं ना तो ऐसा दिमाग कम हो जाता है चलना। वैसे ही यहाँ पर है, अब छैया नाम से ना ही आ रहा भाई, मैं क्या करूँ बताओ, छैया ही डाल देता हूँ मैं सिर्फ, चल हटा के, अरे बड़ा मेहनत का काम है मेरा भैया, ओके छैया छैया दिल से 6 मिनट का गाना है, सुखविंदर ने गाया है तो ये गाना आ रहा, अगर नहीं आ रहा होता ना इस बार छैया लिख कर तो फिर मैं दूसरे गाने पर बढ़ जाता। फिलहाल एक ये गाना मिल गया है, और रमेश भाई का स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना, ठीक है मैं ये भी ढूंढ लेता हूँ, लगातार ही प्ले कर देंगे ना भाई, झंझड़ी गम, ये जय हो कहा है, किसने गाया है, AR रहमान और सुखविंदर ने गाया है, चलो तो ये दो गाने आप लोगों के लिए बैक टू बैक मैं प्ले कर रहा हूँ। तीसरा गाना है चक दे इंडिया कुछ करिए, ठीक है कुछ करिए कुछ करिए, ये गाना किसने कर रहा है रिक्वेस्ट चक दे इंडिया वाला, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा शबर करेंगे, रईस भाई ने कहा था चक दे ओ चक दे इंडिया, ठीक है तो ये तीन गाने बैक टू बैक FM 107 पे आपके लिए, बाकी सुखविंदर सिंह के जो गाने आपके दिमाग में अटके हुए हैं आज निकलवा दो भाई, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107, ठीक है 6-6-6-2-2-107, और सिर्फ सुखविंदर के गाने प्लीज, जब जब मैं सुखविंदर का नाम लेता हूं तो वो कोड़े वाले भैया चाबी जो है कोड़े रूम की जेब में रख लेते हैं। सुंदर FM 107 दिल से देसी।

0: सुखविंदर की आवाज सलीम मर्चेंट के साथ में एफएम 107 पे गाना चक दे इंडिया। वेल कभी कभार रॉन्ग टाइमिंग होती है ना, अगर कोई रॉन्ग टाइमिंग हो सकती है तो वो यही है। क्यों? क्योंकि कल 2-1 से ओडीआई मैच इंडिया हार गई है भाई, और जिस भाई ने ये रिक्वेस्ट की है अब वही देखे भाई। तो मेरे पास तो रिक्वेस्ट है, अपन प्ले कर देते। तो ये है कि आपको देखना भी पड़ेगा ना कि कब आप कैसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत पुराने ज़माने के भी गाने ना हो, बहुत आगे के ज़माने की भी ना हो, और फिर ऐसे भी ना हो यार कि मतलब ऐसा है कि चक दे इंडिया गाना प्ले हुआ और फिर इंडिया मैच हार गई। चलो अच्छा वो फाइनल नहीं था, मतलब कि ऐसा T20 ODI वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, वरना तो मैं प्ले भी नहीं करता था। फिलहाल 4:29 हमारे स्टूडियो की घड़ी में FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। बाकी जो 3 गाने आ रहे हैं वो इतने लाजवाब हैं कि मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा इन तीनों को जिन्होंने ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। एक से बढ़कर एक सॉन्ग है, सुनना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं, ऑब्वियसली मेरा काम ही यही है सुनाना। वेल इन गानों को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों गानों में से एक गाना थोड़ा सा पुराना जरूर है, 1999 का है, लेकिन वो गाना इतना गजब का है कि मेरी प्लेलिस्ट में वो अगेन, एक बार कहा था ना कुछ गाने ऐसे होते हैं कि आप टॉप 10 में रखते हैं, तो और अगर कुछ गाने ऐसे होते हैं कि आपको टॉप 10 में से एक गाना निकालना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे गाने हैं वो आपको इंक्लूड करना है ना, तो ये वही गाना है, ताल मूवी का गाना जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने, अलका याग्निक ने, कॉल्ड ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, ओए ओए ओए। ये गाना मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगर मेरा प्लेलिस्ट है कोई और उसमें ये गाना नहीं है और मुझे कोई गाना हटाना होगा तो मैं 10वें नंबर का गाना हटा दूंगा और ये गाना जरूर डालूंगा। बहुत ही उम्दा ये गाना है, इसे सुनकर दिल खुश हो जाता है। किसने कहा है इस गाने को सुनने के लिए? इनका नाम है अबू सिद्रा। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले किया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। और इसके लिरिसिस्ट हैं आनंद बख्शी, सिंगर हैं सुखविंदर, अलका, म्यूजिक डायरेक्टर हैं AR रहमान। ताल मूवी का ये सॉन्ग है, बिल्कुल प्ले करेंगे। उसके बाद सुखविंदर का एक और गाना है अलका के साथ, वो है कयामत कयामत, जो कुछ देर पहले भाई कह रहे थे वो थोड़ी डिटेल के साथ आए। उन्होंने कहा नहीं कि यार अगर फजील भाई डिटेल मांग रहे तो डिटेल तो देनी चाहिए। अब उन्होंने जो डिटेल लिखी है और वो आपको मैं बता दूं, रतुम इनका नाम है, कहा है कयामत कयामत इज़ फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी दीवाने, है थोड़ी डिटेल में आए भाई, ठीक है 2000 की ये मूवी थी दीवाने। अब यहाँ से मुझे समझ में आता है कि ठीक है ये गाना अपन प्ले कर सकते हैं, वरना सिर्फ लिखा था कयामत, ऐसे 100 गाने हमारे पास आ जाते हैं कयामत से तो अपन किधर भागेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। बाकी एक और रिक्वेस्ट है और ये है दर्द डिस्को, एजाज अहमद की रिक्वेस्ट पे है। सो दर्द डिस्को जो है वो दूसरे नंबर पे है, और फिर ये जो कयामत रिक्वेस्ट की है ये रिक्वेस्ट तीसरे नंबर पे आ गई है रतुम भाई की, और सबसे पहली रमता जोगी है जिसे रिक्वेस्ट किया है अबू सिद्रा ने। तो इन तीन गानों को एंजॉय करें FM 107 पे, बाकी की रिक्वेस्ट और बाकी की मैसेज पे भी आ जाते हैं। लिखा है डोंट वरी यार, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ हार जीत लगी रहती है, लेकिन तब जब इस तरह का यू नो सीरीज हो रहा हो, ये फाइनल में अपने को बर्दाश्त नहीं है, फाइनल नहीं हारना है। फिर ये मैसेज है कब आओगे है, ये आधी लाइन है, उसके बाद कोई मूवी कोई गाना है कब आओगे हो सकता है। एक भाई ने कहा है सैड सॉन्ग लगा दो, भाई प्लीज़ यार सैड सॉन्ग तो प्लीज़ यार अरबाज भाई इससे मैं दूर ही रहता हूँ। नसीम भाई कहते हैं फज्जूमिया वाला गाना लगा दो, ये कोई बात है? सलाम लिखा है हिशाम भाई ने, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साहिल हेयर, सुखविंदर सिंह का सॉन्ग तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, ये भी गाना अच्छा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, ये थोड़ा लेकिन देर में प्ले होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 गाने जो हैं ऑलरेडी हमारा लाइनअप बन चुका है, तो इस गाने पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इन 3 गानों को एंजॉय करें FM 107 पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये 3 गाने दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

hồi hộp.

आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: सुखविंदर और अलका याग्निक की आवाज में कयामत, ये गाना FM 107 पे, और सच में कयामत है आपकी रिक्वेस्ट। ये सुनकर, ऐसे गाने सुनकर दिल जो है वो पूरी तरह से खुश हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब शुरुआत हुई है दिन की। है
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, अभी भी इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे। 4:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त आ गया पहचान कौन गेम खेलने का, और इस बार जो गाने हैं वो ऑब्वियसली सुखविंदर की थीम है, तो सुखविंदर के ही गाने मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं और आपको पहचानना है गाने का नाम क्या है। सो सबसे पहले आपको बता दें जो नए लोग हैं उनके लिए कि गाना कैसे यहाँ पर प्ले किया जाता है। पहचान कौन में गाने में से बीट से कहीं से भी लिरिक्स में चुरा लेता हूँ, यहाँ पर लाकर रख लेता हूँ, उसे मैं प्ले करता हूँ और आपको गेस करना होता है कि असल में गाने का नाम या गाने का हुक क्या है, ये आपको बताना होता है। उसके अलावा क्योंकि मैंने बता दिया है सुखविंदर की थीम है तो सुखविंदर के ही सिर्फ गाने होंगे। ऐसे ही कभी म्यूजिक होता है, कभी इंस्ट्रूमेंटल, कभी लिरिसिस्ट का नाम मैं बता देता हूँ, कभी लिरिक्स होते हैं, तो ऐसे काट के अपन यहाँ पर रख लेते हैं। So, सबसे पहला गाना मैं प्ले करने वाला हूं और फिर आपको बताना है नाम, और व्हाट्सअप करना है 666-22107 पे। सबसे पहला गाना जो आ रहा है वो आज का पहचान कौन का है गाना।

बस अब आपको बताना है गाने का नाम क्या है। असल में ये वाला पहला वाला है जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन बाकी में भी आपके लिए आसान रहेगा। सो आपको बताना है 666-22-107 पे। हुसैन भाई का मैसेज है, चल धूम चक, नहीं ये गाना नहीं है, सॉरी नहीं समझ में आया, ये कहना है यूसुफ भाई का। ठीक है, दानिश ने गुड आफ्टरनून फजील भाई, अरे आज की थीम क्या है, अरे बहुत

4:34 पे आजाद भाई बहुत लेट नहीं हो गए? लग रहा है आज ऑफिस से थोड़ी आजादी लेट में मिली नहीं? ये भाई मेरे साथ भी यही है, मेरे नाम में भी सिर्फ आजाद होता अगर मैं आजाद होता तो। ऑफिस से आजादी तो अपने टाइम पे ही मिलेगी भाई। बिल्कुल सही पहचाना है इन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है किस भाई का है? नहीं भाई ये भी नहीं है। हुसैन साहब म्यूजिक थोड़ा वैसा वैसा लग रहा है, इन्होंने कहा है वो गाना है हाथी जैसी चाल ऐसा ये वाली नहीं। एक बार फिर से सुनिए क्या

सुकंदर और स्माइल ने गाया ये गाना और बिल्कुल सही पहचाना है दानिश आजाद ने. वेल इसे अभी नहीं बताऊंगा कि गाने का नाम क्या है, कुछ देर में आपको जब हुक सुनने को मिलेगा तब आप परेशान हो जाएगा, अरे ये था यार ये वाला कैसे नहीं पहचान पाए हम. होता है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गानों में बीच में ऐसे लिरिक्स जो हैं वो आ जाते हैं. वेल आज जो दूसरे नंबर का पहचान कौन का गाना है वो पहचानिए और 100% आप इसे पहचान जाएंगे. अब ये वाला तो पहचान जाएंगे. बाकी जो पहला गाना मैंने प्ले किया था उसके जवाब थोड़े देर में ही आए लेकिन लोगों के सही जवाब आने लग गए हैं वैसे. तो अभी दूसरे गाने पर रहते हैं फिर हम पहले पे आएंगे दोबारा से, ठीक है. किसने बताया है, दानिश ने बिल्कुल सही बताया है और रमेश ने गलत बताया है, हुसैन ने सही बताया है, फिर यूसुफ भाई ने इस गाने को दूसरे वाले को सही बताया है, फिर ये किसका मैसेज है, हाँ ये रमेश भाई का ये, ठीक है. तो ये गाना ऑल दो कई लोगों ने सही बताया है और हिशाम भाई टाइपिंग तो कर रहे हैं सलाम लिखने के बाद, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब आएगा मुझे तो पूरी उम्मीद है क्योंकि पहला वाला सॉन्ग भी इन्होंने सही पहचाना है. ठीक है बिल्कुल सही है, एक बार फिर से म्यूजिक सुनिए. बताइए ये गाने का नाम क्या है. वेल अगर आपके दिमाग में है तो अब्दुल अजीज ने बिल्कुल टाइप करना तो शुरू कर दिया है, देखते हैं ये बता पाते हैं या नहीं. ऑल दो मुझे लगता है बता लेंगे. 509 सैयद ने बिल्कुल सही बताया है, सैयद ने एक्चुअली दोनों गाने बिल्कुल सही बताए हैं और साथ ही अब्दुल अजीज ने भी दोनों गाने अभी तक सही बताए हैं. बहुत ही उम्दा, क्या खेल का मुजाहरा किया है, मजेदार. तो ये गाना एक्चुअली में है ये हाँ जी, तो बिल्कुल सही पहचाना ना आपने, ये गाना दूसरे नंबर का था ये गाना. और तीसरे नंबर का जो गाना है वो अब आपको पहचानना है, बड़ा ही आसान है ये भी, मुझे लगता है 100 के 100 लोग 100% इसे आप पहचान पाएंगे. बस इतने में पता चल जाएगा मुझे लगता है लोगों को, क्या लगता है बताइए इस गाने का नाम क्या है. अगेन सबसे पहले दानिश आजाद ने आज का ये कॉन्टेस्ट एक्चुअली में जीत लिया है, बहुत ही उम्दा. हुसैन साहब ने गलत जवाब दिया है, कैंची, ये कैसा गाना, ये गाना है भी, एग्जिस्ट करता है. अब्दुल अजीज ने भी बिल्कुल ये कॉन्टेस्ट जीत लिया, 3 के 3 सही जवाब हैं. हिशाम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तीनों जवाब सही दिए हैं, पहला भी इन्होंने सही जवाब दिया था, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा भी सही जवाब दिया है. शाहरुख खान की मूवी का है बिल्लू लिखा हुआ है, नहीं मेरा भाई शाहरुख खान की मूवी का ये बात बिल्कुल सही है लेकिन बिल्लू नहीं. और कोई एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. हाँ आपका भी जवाब सही है, थोड़ा मतलब दूर निकल गए लेकिन आपने यू टर्न लेके वापस आ गए, ठीक है ये वाला बिल्कुल सही है. फिर आज़ाद कह रहे हैं यही वाला गाना प्ले भी कर दो, मैं देखता हूँ अभी ये गाना प्ले कर दिया जाएगा उम्मीद है. गाने का नाम बताइए और अगर आपने बता लिया है तो बिल्कुल सही बताया क्योंकि गाने का नाम है बिल्कुल सुखविंदर का गाया हुआ ये गाना FM 107 पे, बिल्कुल लोगों ने सही पहचाना है. एंड नाउ द फर्स्ट वन, जो सबसे पहला गाना था क्या था वो.

0: एक्चुअली में इस गाने का नाम है ये
1: जो है अलबेला वाला जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला
0: वो किसना है वो किसना है। ये गाना बहुत बार आपने सुना होगा लेकिन बीच की वर्डिंग्स कई बार हम भूल जाते हैं या याद नहीं रहती है, हो जाता है कभी कभार, क्योंकि उसका हुक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप बीच की लाइन पे एक्चुअली में इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो ये गाना कई लोगों ने सही पहचाना, जिसमें हिशाम है, अब्दुल अज़ीज़ हैं, फिर उसके बाद आज़ाद हैं, फिर सैयद भाई ने भी बिल्कुल सही पहचाना था। क्या बात है यार, बहुत ही उम्दा आपने घेरा। लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट ये गाना भी, लेकिन 11वें नंबर पर रखूँगा। वो किसना इतना भी अच्छा नहीं कि मैं रमता जोगी हटा दूँ। ये गाना बहुत ही उम्दा है। वेल, अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। 4:55 हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त आ गया है गाना प्ले करने का आपके लिए और यहाँ से अलविदा कहने का। जाते जाते सुखविंदर का ही एक गाना लगा कर जा रहा हूँ जो अच्छा खासा चला था, और ये है मूवी, कौन सी मूवी का, रईस मूवी का ट्रैक है आई गेस, कॉल्ड उड़ी उड़ी जाए। बहुत ही उम्दा ये गाना, और एक रिक्वेस्ट भी आ ही गई है तो मैंने कहा क्यों नहीं। दानिश आज़ाद थोड़ी लेट में इन्होंने ज्वाइन किया था, रिक्वेस्ट नहीं किया था। दानिश आज़ाद की रिक्वेस्ट पे सुखविंदर का ये गाना कॉल्ड उड़ी उड़ी जाए। रईस मूवी 2017 में आई थी, इसी का ट्रैक है, गाया सुखविंदर ने। और फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे समर स्पोर्ट्स में, ऐसी स्पोर्ट्स की कई बातों के साथ जो हमारे दिन को बनाएगी, स्पोर्ट्स के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाएगी। और फिर शाम 4 बजे इसी शो में जिसका नाम द रिक्वेस्ट शो। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अरे भाई साहब जगह दिए, थोड़ा थोड़ी जगह देना भाई साहब। अरे हेलो, आपसे कह रहा हूँ, गाड़ी में वॉल्यूम बढ़ा लेना, बड़े साहब आ रहे हो, जगह दो यार। आइए सर, आइए आइए, प्लीज आइए।

0: भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है भाई। 5:03 हो लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब हाजिर हैं हम, और आपकी भी हाजिरी लग जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएंगे। तो हमारे व्हाट्सएप के दोहरे मैसेज कर दो, 666-22107 नंबर है, बहुत इजी। मैं स्लो मोशन में बता देता हूं, 666-22107। रेट ऑफ स्पीच हाई होने की वजह से कॉल सेंटर से एक बार मैं फायर हो चुका हूं, तो इसलिए मुझे सबक मिल गया है, नंबर धीरे बोलता हूं। अच्छा आजकल क्या हो गया ना कि बहुत अकलमंदी वाले शोज और डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देख ली जिंदगी में, तो मैंने कहा मैं अपने साथ कुछ अलग करूंगा। मैंने चीप थ्रिल्स के लिए लॉकअप देखना शुरू किया भाई। जज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत मन कर रहा था ऐसा कुछ देखूं मैं, क्योंकि मेरे आसपास कोई गॉसिप करता ही नहीं है। कमाल हो गया यार, कोई कहीं तो लड़ाई झगड़ा दिखे आदमी। अब मैं दिल्ली में तो हूँ नहीं, तो कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता। तो मैंने कहा चलो ऐसा शो ढूंढते हैं जहाँ पे लोग झगड़ रहे हों। बड़े मजे आ रहे भाई मुझे। अलग ही चीप थ्रिल चल रहे। बाकी आप आ जाइए 666-22107 पे, आपके मैसेज आ जाएंगे तो भाई सब थोड़ा और माहौल सेट हो जाएगा। सादिक भाई कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को शाबाशी देनी चाहिए। भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका, सादिक भाई को हमारा प्रेम, बहुत सारा प्यार भाई को। भाई आप भी डीपी चेंज नहीं कर रहे, आप भी मेरी तरह हो गए हैं सादिक भाई। हम लोग के डीपी भी चेंज ना करने का कोई प्रण लिया है, क्या चक्कर है ये? उस्मान भाई, उस्मान मोहम्मद भाई, वालेकुम अस्सलाम। इनके बाद वालेकुम अस्सलाम, ये मोहम्मद भाई ने मैसेज किया है। मोहम्मद भाई के बाद मैसेज आया है, कैसे हो सर, आपको बहुत दिन हो गए, आपसे बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम कायरी मौलाना कबीर साहब। बहुत दिनों बाद भाई, बहुत बहुत बहुत टाइम बाद आप आए हैं अरबाज भाई। मैं तो आ रहा था भाई, और आग का ही मुझे लगा कि एंट्री दबंग एंट्री ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फलक भाई, बहुत सारा प्यार, वालेकुम अस्सलाम। और फलक भाई की बात किन्होंने मैसेज किया है, थैंक गॉड आज पता चला कि बेस्ट अर्ज आया। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, ये ऐसे आप डेली बेस्ट बोलते रहोगे ना मुबीन भाई, आप अलग ही बूस्ट दे रहे हो मेरे ईगो, मजाक करो। थैंक यू सो मच यार इस मोहब्बत के लिए मुबीन भाई, कि आपने मुझे बेस्ट बोला, इससे बढ़कर कुछ नहीं है भाई। थैंक यू भाई। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, सैयद खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। और क्या कह रही हैं, अब टकलाया मोटापा आ गया है इसलिए चेंज नहीं हो रही। सादिक भाई कह रहे हैं डीपी इसलिए इस मारे चेंज नहीं हो रही भाई कि मोटापा आ गया थोड़ा सा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कतई मैं पिकाचू हो रहा हूँ भाई, पोकेमोन हो रहा हूँ कतई मैं। वो विकसित रूप देखें पोकेमोन के, पहले पिकाचू था फिर रायचू हो गया, मैं रायचू हो गया हूँ भाई। पर मैं डीपी को चेंज फिर भी कर रहा हूँ, हिम्मत कीजिए, करने दो जज ने सादिक भाई। और क्या मैसेज है, सलाम वालेकुम सलाम के भाई, देन गुड इवनिंग ब्रो, अब्दुल नवीद साहब प्रेजेंट लगा रहे हैं, जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, देन मैसेज है सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मोहम्मद मुशीर आलम भाई, आपका रैप सॉन्ग पूरा कर दो। अरे वो प्रोमो था ना इसलिए मेरा भाई, प्रोमो के लिहाज से छोटा बनाना पड़ा, मजबूरी भाई, नहीं तो मैं तो पूरी एल्बम बना दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या नाम है आपका, रहूप नाम है आपका। और कह रहा मैं कह रहा हूँ सर अगर आप छुट्टियों पर चले गए तो हमारा क्या होगा फिर, यहाँ तो 10 दिन की छुट्टी, इतनी मूड ऑफ था भाई। मैं जाऊँगा छुट्टी पहली में, इत्तला कर दूँ, मैं जाऊँगा नवम्बर में लास्ट में, तैयार रहना उस टाइम पर भाई। अगर मुझे तो क्या है, मुझे तो किसी ने बहुत क्या मना किया है डीपी चेंज, अरे खादिम भाई को किसी ने बहुत सख्ती से मना किया है डीपी ना चेंज करने के लिए। मेरा भाई शर्मा रहा है, बैठे बैठे वही मान कह रहा है, सही बताऊं मैं बाकियों को भी सुनता हूं बोर होता हूं पर अलग ही फीलिंग्स है भाई। मुबीन भाई आपको बहुत सारा प्यार इस मोहब्बत के लिए। भाई के लिए 2 प्लेट छोले भटूरे भाई, कैसे वाले खाओगे ज़्यादा तेल वाले? एक वैसे अरे इतना भाई की आवाज़ नहीं सुनते मज़ा, क्या भाई की आवाज़ सुनते मज़ा नहीं लगता एफएम पर। बहुत सारा प्यार मुशीर भाई को, क्या आज मेरा कोई बर्थडे बर्थडे है क्या भाई? इतना प्यार वैसे भाई, कल दिल खुश हो गया हमारा। हाँ भाई कल जो स्पेन ने किया है भाई, सही मौके पे मैं स्पेन की साइड हो गया था, बढ़िया किया मैंने अपने लिए भी, कम से कम समाज में मेरी जगह तो रहेगी अभी। तो स्पेन ने कल जो किया है मज़ा आ गया भाई, मजा आ गई। सैयद मुनव्वर साहब वालेकुम अस्सलाम प्रेजेंट लगा दिए उन्होंने, तो आपको तो इस शो का फॉर्मेट पता ही है, 11:02 के बाद मिलेंगे शाम के अधिकार के बाद इंशाल्लाह, फिर मैसेजेस और कॉल। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है उसके बारे में बात करनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस नहीं, सीरियस तो बात में करता ही नहीं है, जिंदगी वैसी सीरियस चल रही है हम सबकी, क्या एक और ऊपर से बोझ डाल दूँ मैं तो। मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं होगी भाई, बस सीधी सीधी बात होगी। बाकी बात रही कहानी की, कहानी बहुत बढ़िया है, एक नंबर कहानी है, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे पिक्चर की तरह लगे कि मैं सुनाऊं और आप समझ रहे हैं, आप मैं सुना के आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएगा, दैट विल कम लेटर ऑन। सो जाने का ही नहीं, आप सुनो अरे बेस्ट जगह पर हो आप, मैं तो खुद एफएम 107 ही सुनता हूँ। हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर। الله لا إله إلا هو الحي القيوم

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

0: भाई साहब अच्छा वो कह रहे हैं उमेश भाई, कह रहा मैं सर नहीं बोल रहा था, वो तो मैं टीचर को इमिटेट कर रहा था, मतलब स्टूडेंट को कि प्रेजेंट लगा रहा था। ठीक है फिर तो, ठीक है भाई बहुत बढ़िया है फिर तो, चंगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, आज जो है ना मैं उस कहानी सुनाने से पहले एक मैं रेडिट पोस्ट पढ़ा था, और कतर का ही पोस्ट था वो, तो उसमें क्या था, उसमें एक नॉट रियली अ कॉम्पिटिशन, आपने देखा म्यूजिक बंद करके बात करता हूँ, तो जो डिलीवरी एप्स होती हैं फूड डिलीवरी एप्स, उसमें भी एक ऑप्शन होता है टिप देने का, और वही ऑप्शन होता है कैब्स में भी, है ना। आपने देखा कि जो जितने भी कैब्स हैं उनमें भी एक ऑप्शन होता है ऐप पे टिप देने का, तो उसमें ये था कि टिप जो है वो कैब ड्राइवर्स को शायद मिलती ही नहीं है। ये मैं जानना चाहता हूँ, ये मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ कि टिप्स वगैरह मिलती हैं आप लोगों, जितने भी मेरे कैब वाले भाई सुन रहे हैं जो पूरे कतर में लोगों को घुमा रहे हैं, इधर से उधर छोड़ रहे हैं, और जो डिलीवरीज कर रहे हैं इस, मैं क्या करूँ उस मौसम का भाई। मैं तो बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से है आप कितना भी कवर कर लें कुछ भी कर लें गर्मी तो लगनी है आपको। बट आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, टिप वगैरह मिलती है यहाँ पे, लोग करते हैं टिप? स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो लोग कैब्स वगैरह चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी टिप का ऑप्शन होता है, बट आई डोंट नो कि यूज़ क्या है, यूज़ होता है, आता है यूज़ में कि क्या टिप वगैरह का सीन कैसा है। देखो रेस्टोरेंट में जाना और वहाँ पे 2 रियाल 3 रियाल दे देना इज़ अ वेरी गुड हैबिट, करने भी चाहिए, पर मैं जानना चाहता हूँ स्पेशली ये जो ऐप्स के जरिए टिप्स का सिस्टम होता है, यूज़ भी कर रहे हैं देसी लोग नहीं कर रहे हैं? आई एम प्रीटी श्योर जो लोग दे भी रहे होंगे वो अंग्रेज होंगे या बाहर के होंगे, हमारे वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे? मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, मैं कुछ जज नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है, मैं ओपिनियन बनाना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक मैसेज आया आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी। भाई जी मैं तो यहाँ तो सीखी थी वो, एक मैसेज आया है श्याम साहब वालेकुम अस्सलाम, यस लिख रहे हैं श्याम साहब, यस मतलब किस चीज़ के लिए लिखा आपने? भाई जी ऑल डूइंग वेल, भाई जी सब बढ़िया। इकरम हसन साहब ने मैसेज किया है, अच्छा अरबाज मैंने कोई मैसेज क्या कह रहे हैं कि नहीं सर ठीक तो आता है, ख़ास तौर पर जो इंडिया से होते हैं सब लोग वहाँ इंडिया के लोग देते हैं, क्या ऐप में भी देते हैं, ऐसे ऐसे कैसे देते हैं, समझा नहीं मैं क्या, मैं बिल्कुल नहीं समझा। एक मैसेज है, झूठ नहीं बोलूँगा बट हमें नहीं मिलती, सब कंपनी खा जाती, वो मुझे नहीं पता। देखो पर क्या होता है, मतलब डू यू गेट अ नोटिफिकेशन, जैसे मान लो मैंने आपका फला फला नाम है, ठीक है मैंने आप आए, मुझे पता लग रहा है मेरी ऐप पे कि आप आ रहे हैं और डिलीवरी करने के लिए आपको लाया गया है, सो इफ़ आई डू अ टिप 5 रियाल की फॉर एग्जाम्पल, तो हो रहा है मतलब पहुंच रहा है, क्योंकि डिलीवरी ऐप से मैंने देखा जो डेटा है उस पर तो बहुत मिल रहा है लोगों को, पर जो कैब वाली ऐप है उसमें भी सिस्टम है भाई, कोई यूज कर रहा है उसे नहीं कर रहा है? आई रियली वॉन्ट टू नो। अविश भाई कह रहे हैं हम कैश दे देते हैं, लास्ट वीक ट्राई किया था थ्रू ऐप बट पता नहीं उसको मिला कि नहीं, दैट इज माई क्वेश्चन, दैट इज माई क्वेश्चन। एक मैसेज है ऐप्स पर शो होती है, मिलती है टिप्स ऐप्स पर शो होती है, सो आपके पास जो ऐप होती है उस पर शो होती है, यही कहना चाह रहे हैं आप? अरे मैं भाई मैं अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को मुझे लपेट ले इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या अलहमदुल्ला, पर हमें क्या हमें मिल जाती कंपनी हमारी टिप यूज़ नहीं करती, डिलीवरी बॉय बात कर रहा हूँ मोहम्मद कलीम, मोहम्मद कलीम भाई बकरा से थैंक यू सो मच। वन टाइम इन अ वीक किस बात के लिए लिखा है आपने? वन टाइम इन अ वीक You get it, yeah, you don't get it. एक मैसेज सलाम कबीर भाई, send me the story. खलील पराचा, सर मैंने टिप दिया है 3 रियाल रेली, इंक्लूड द मैसेज, कौन सा केड़ा मैसेज इंक्लूड करना है, एक क्या लिखा है उन्होंने, क्या लिखा, अच्छा क्या उम्मे जायद की तरफ से आपको बहुत सलाम कभी भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम उनको भी। अलीना ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अलीना, हाउ आर यू स्वीटहार्ट, और कैसा चल रहा है सब कुछ, अभी छुट्टियां चल रही हैं अभी तो। लिखा है अलीना ने, आई एम गोइंग टू मैंगो फेस्टिवल, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? अलीना आज की कहानी ना बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक है, तो मैं जिस जर्नी पर ले जाने वाला हूँ इट इज़ काइंड ऑफ सिनेमा, प्योर सिनेमा, मैं भेजूंगा, डोंट वरी, यू विल गेट द स्टोरी इवेंचुअली। हाँ तो मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने जो डेटा चेक किया उसमें था कि टिप्स जो होती हैं वो डिलीवरी जो ऐप्स हैं स्पेशली, अगर आप फूड डिलीवरी करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं तो उस पर लोग फिर भी चूज़ कर लेते हैं 5, 10, 15 रियाल, मेरे ख्याल में यही फॉर्मेट है ना, और यही सेम फॉर्मेट कैब्स पे भी है, बट आई डोंट थिंक मतलब कि एज अ यूज़र जो हमारे कैब वाले भाई हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता ही नहीं होता, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें था कि नहीं होता है, लोग कह रहे थे इसमें कि भाई चलो डिलीवरी वाला सिस्टम तो है कि उसमें बहुत सारी ऐप्स में नाम नहीं ले सकता कि उनको उसमें हो जाता है, लेकिन कैब वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एक मैसेज है, टिप लेके टिप के लिए
1: टिप के लिए क्यों, हाउ पॉसिबल कि टिप ना दें कतर में, बट नहीं मिलती बहुत कम। खैर इतना मसला नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए है बस। हाँ मैं मतलब अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू नो। मेरा भाई एक मैसेज है, हीरो साहब का वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मैं बढ़िया, जो मेरा तिरन सा मैं बढ़िया। और कह रहे हैं आपको भी टिप मिलती है भाई, काश मिलती। मैं तो भाई बहुत खुश होता, पर कई मरतबा क्या होता ना, पहले हम जब शो वगैरह होस्ट किया करते थे बाहर स्टेज पे, तो कोई खुश हो गया तो उसने दे दिए नोट वगैरह, तो बात दूसरी है, वरना ऐसे नहीं। एक वैसे टिप्स दो बार मिले हैं। अच्छा मिले हैं आपको टिप्स, भाई बेहतरीन। फिर तो क्या गाड़ी चलाई होगी आपने, अभी यूसुफ भाई फाइव स्टार लेके चल रहे हो माशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है। यूसुफ भाई कह रहे हैं किसी डिलीवरी भाई सही बता सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कतर में शायद प्रॉपरली मिलती होगी, लेकिन हमारी कंट्रीज में शायद प्रॉपरली नहीं है। हमारी कंट्रीज में जो क्या भाई टिप नहीं मिलती, वहाँ पे मजाक मिलता है, मजाक। जॉब ही नहीं करनी पर जे तो फाइंड आउट, क्या जॉब ही ना करनी पर, मैं नहीं समझा इस भाई क्या हो गया इस सवाल, मुझसे कोडिंग लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं भाई। मैं नहीं समझ पाया इस भाई, प्लीज एक्सप्लेन। पांच नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। और एक भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं एक, अच्छा उन्होंने कंपनी का नाम लिखा, ये एक कैब ड्राइवर है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ दिनों पहले ही टिप मिली थी और वो भी ऐप के जरिए। मुझे टिप देने वाले बंदे का नाम भी मैं, अच्छा चलो आई वोंट रिवील द नेम, ये बता रहे हैं कि इन्हें तकरीबन 50 रियाल टिप मिली आपको भाई। क्या कौन सी सुविधाएँ दे रहे थे गाड़ी में, क्या मतलब क्या सर लाइज एसी चल रहा था गाड़ी में कि क्या कंबल उम्बल दे, क्या क्या चल रहा था भाई। एक मैसेज है, फ्लाई किया था इसलिए मिला, अच्छा इसलिए मिला जल्दी पहुंचाने के लिए उस सुबह। आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट। और वॉइस नोट भेजा है तो वॉइस नोट में अभी कुछ देर में सुनूंगा। एक मैसेज है, कैब बुक करनी पड़ती जब ज़रूरत होती है तो मियाँ को बुला लेते हैं। बहुत बढ़िया बहन, शानदार सितारा बहन, शानदार बेचारा। तो ठीक है, पति को भी टिप मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ मैं पतियों के हक में हूँ, हमें एक एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए, पतियों को मिलनी चाहिए, टिप दो हमें भाई, हम भी डिजर्व करते हैं टिप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की कहानी किस बारे में है, क्या किसी नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई कहानी? नहीं भाई, आज की कहानी क्या है, स्लो बर्न है, समझ रहे हैं, बहुत ही स्लो आगे जाएगी कहानी, तो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको फील आता चलेगा। एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम कबीर पाजी, की हाल चाल है
1: तुहाडा? वधिया वधिया वधिया, दसो किव्या वीरे, क्या चल रहा है?
2: बढ़िया भाई, आज तो बहुत टाइम के बाद बात हो रही है आपके लिए।
1: हां भाई, बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 10 दिन तो हो लिए भाई।
2: 10 दिन हो लिए भाई।
1: हां तो भाई,
2: 10
1: दिन तो हो लिए, आराम से, बीच में गैप भी था ना इसलिए।
2: जी जी बिल्कुल।
1: हां तो भाई बताओ, क्या क्या क्या कहना चाहेंगे टिप को लेके, क्या कहना है आपका?
2: पहले आपने गैप की बात की ना कबीर भाई, यकीन मानिए यार कबीर भाई, यहाँ पे जो एफएम रेडियो स्टेशन चलते हैं ना, उनकी असली वैल्यू का इन दिनों में ही पता चला है मुझे।
1: अच्छा क्या बात करो यार।
2: यार इतना सूनापन था ना कबीर भाई, यकीन मानिए, ये जो एक वीक का टाइम था ना, चलो वो टाइम तो था ही ऐसा, मगर वो इतना सूनापन का टाइम था ना भाई, रियली जैसी कोविड में पता चली थी ना वैल्यू कुछ चीजों की, वैसे ही एफएम की वैल्यू इन दिन पता चली है। हाँ यार, इसके बिना गुजारा नहीं है, अगर दोहा में आपने रहना है, चलानी है, आप जुड़े हुए हो तो सच्ची भाई।
1: क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि एक्चुअली में जिस हिसाब से स्पेशली हमारा सेशन भी है, तो बातचीत भी अच्छी खासी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना दिया कॉन्टेस्ट बात हो गई, जैसे बातचीत आमतौर पर होती है वैसी बातचीत होती है, तो ये मैं भी मिस कर रहा था, तो ये आपकी साइड से तो है ही, हमारी साइड से भी बहुत ज्यादा है भाई, मैंने भी बहुत मिस किया सच में
2: कबीर भाई। बातचीत सिर्फ आपके स्टेशन पे ही होती है, ऑन एयर और खुली बातचीत, वो किसी और पे नहीं होती है। मैंने पूरा एक वीक दुबई वाला स्टेशन सुना है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आती थी, मगर जो मजा 107 एफएम में है ना भाई, खुला अखाड़ा, वो कहीं भी नहीं है।
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। और ये इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, टिप्स वगैरह पे वगैरह?
2: टिप तो कबीर भाई, मेरा दोस्त है काला पाजी, वो भी चलाता है यहाँ पे कैब, अच्छा, वो आपको अच्छी तरह से

0: आते हैं।
1: अच्छा,
0: टिप तो मिलती है कबीर भाई, बराबर मिलती है, जो एक बार रिफ्लेक्ट होगी ना सिस्टम में जी, वो तो मिलती ही मिलती है कबीर।
1: तो आपको पता लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा कंपनी के उस पे जा रही, पर यू आल्सो गेट
0: बिल्कुल कबीर भाई उपे एक मिनट एक सेकंड पूरा रिकॉर्ड है ना, वो सॉफ्टवेयर है, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है वो, तो जिससे बंदा लॉगिन है उस पे, ऐसे तो लॉगिन हो नहीं सकता। पूरी पीसीसी पूरा सिस्टम होके फिर वो ऐप ऑन होती है।
1: हाँ, फिर बढ़िया है, फिर बढ़िया। मैं ये जानना चाहता था कि क्या होता है कि ऐप्स के थ्रू हमें तो दिखाता है, सो आई डोंट नो कि दूसरी साइड पे उनको पता लगता है नहीं पता लगता है, या सीधा कंपनी के पास नोटिफिकेशन जाता है, हाउ डज इट वर्क। तो मैकेनिज्म में जानना चाह रहा था, तो अभी
0: ये मैकेनिज्म सेम है कबीर भाई।
1: ओके ओके,
0: फिर मैं ऐप का नाम ही लूंगा, चाहे इंडिया से कैब बुक कीजिए, चाहे यूएस से, चाहे कतर से,
1: वो तो
0: सिस्टम और वो ऐप हर जगह पे ही चलती है और सिस्टम भी सेम ही है उसका।
1: हाँ, फिर ठीक है, देन स्कूल बहुत बढ़िया है। तो और क्या किया आपने फिर 7 दिन, मतलब रेडियो तो सुन नहीं रहे थे, तो क्या कर क्या रहे थे, क्या चल रहा था?
0: अभी थोड़ी सी बात और कर लूं कबीर भाई, आपके वहाँ पे दिल्ली में बहुत कल्चर है यार टिप का।
1: हमारे यहाँ सारे कल्चर है भाई, हमारा कोई कल्चर नहीं है, सब जगह से सब कुछ मिला हुआ है हमारे यहाँ।
0: ये तो बात है, उससे बड़ी बात पता क्या है, सबसे ज्यादा टिप पता किन गाड़ियों में मिलती है, जो एयरपोर्ट पे चलती हैं गाड़ियाँ,
1: उनके तो मजे हैं भाई, खजाना है खजाना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का खजाना है खजाना, जो लोग वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं।
0: आप यकीन मानिए कबीर भाई, मैं भी चंडीगढ़ में चलाता था, कैब चलाता था चंडीगढ़ में, मैंने काफी टाइम चलाई है कोविड पहले भी और कोविड के बाद भी। तो वहाँ पे सुबह सुबह जब एयरपोर्ट की राइड आती थी ना, तो भाई दिल खुश हो जाता था कबीर भाई।
1: वो तो भाई है ही, वो पूरा मामला ही ऐसा है वहाँ का, और स्पेशली दिल्ली के साथ क्या है ना, बीच में एक बैरियर सा आता है जहाँ से आगे कैब जा नहीं सकती, तो वहाँ से आगे जाने वाली जो कैब्स हैं वो तो एक्स्ट्रा चार्ज करती है, वो तो मतलब ऐसा लगता है कि बस अभी सोने का से बिस्किट देना पड़ेगा आगे जाने के लिए, तो अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, 700 का 1700 हो जाता है। तो
0: जी कबीर भाई वहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी ऐसा ही होता था, वहाँ पे पार्किंग की फीस इंक्लूड होती थी, मगर बहुत सारे कस्टमर इतने अच्छे थे, 350 की पर्ची है वहाँ पे, और वो कैब वालों को आधा घंटा तो फ्री है, लगती ही नहीं।
1: अच्छा,
0: वो कस्टमर खुश होके देके जाता था 300-200 पार्किंग के पैसे।
1: नहीं, अभी ये मामला है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे आई डोंट नो कि कितना फायदा होता है, होप होता होगा, बट मैं जैसे आपने देसी बात छेड़ी, तो हमारे दिल्ली में तो मुझे इतना पता है कि बहुत फायदा होता है, लोग तो साइड बिजनेसेस में अब तो कैब चलवा रहे हैं, खुद के पास गाड़ी ना रख के वो कैब में दे रहे हैं कि भाई चलाओ एयरपोर्ट छोड़ गया लोगों को, तो वैसे भी कमाई हो रही है हमारे यहाँ। तो डिफरेंट
0: अच्छा है कबीर, कितने लोगों को रोजगार मिला है, देखो अच्छी बात है ना,
1: बेशक
0: जो बंदा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है वो भी आगे 2-3 बंदों को रोजगार दे सकता है कैब।
1: हाँ, ये चीज है, ये तो मैंने देखा है, और ये बहुत ही अंडररेटेड बिजनेस है जो कुछ सालों पहले शुरू हुआ और अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी है ऐसा, लोग हायर करते हैं उस तरीके से और दिलवाते हैं कि चलो तुम भी कैब में लग जाओ, बट हमारे यहाँ थोड़ा देसी मामला थोड़ा अलग राउट है, तो वो भी एक चीज़ है, मगर थैंक यू सो मच आपने डिस्कस किया।
0: अच्छा है बिजनेस, अच्छा है कबीर भाई, इसमें क्या है, पैसे की पूरी ट्रांसपेरेंसी है,
1: right.
0: पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, वीकली पेमेंट है,
1: और विन विन है ना भाई, विन विन सिचुएशन है इसमें, क्या है वो ऐसा नहीं है कि कुछ घाटा वाटा होगा, ये विन विन सिचुएशन ही है, हर हाल में चलनी चलनी है गाड़ी।
0: हाँ, बंदे का नहीं, रोजी रोटी चलता है कभी,
1: हाँ, चलता ही चलता है इसमें, मीटर ऑन रहेगा आपको कुछ भी हो जाए।
0: हाँ, मीटर ऑन, और अगर आप बैरियर क्रॉस करके एयरपोर्ट का, तो मजे ही मजे
1: भाई। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, अब मैं कहानी की तरफ बढ़ाऊँ तो वक्त मिले तो सुनिएगा, ठीक है?
0: बढ़िया मेरे भाई,
1: ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर भाई। के बाद एक मैसेज है, सलाम जी, वालेकुम, एक मैसेज है मलिक वक्का साहब का, लिखते हैं सलाम कबीर भाई, गुड इवनिंग, क्या हाल है? कल वाली बड़ी ट्विस्ट टर्न वाली थी, एकदम ट्विस्ट आया स्टोरी में, कमाल की कहानी, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं, बाकी आज टिप की बात चल रही है उसका तो पता नहीं, लेकिन टिप के बारे में एक टिप दूंगा कि जब रेस्टोरेंट में जाए तो टिप हमेशा पहले दें, जो भी देनी है यकीन करें उसके बाद वेटर आपके आसपास और बेहतरीन सर्विस देगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ कतर में और पाकिस्तान में टिप तो देते हैं ऑलमोस्ट सब, अगर आप पहले दे देंगे, अच्छा ये कह रहे हैं पहले दे दो ज़्यादा फ़ायदा है, एंड में टिप बस टिप ही होती है, लेकिन पहले दे दोगे तो आपको फ़ायदा होगा। हैक बता रहे हैं लोग भाई। खादिम भाई लिखते हैं, पेशावर में भी यही है ना, ये एयरपोर्ट वाली जो कैब्स हैं हमारी कंट्री में तो बहुत फ़ायदा है। एक में से, हाय कबीर भाई कैसे हो, अगर टिप में 200 रियाल एक साथ मिले, हैं चार्ली भाई 200 रियाल टिप, कहाँ चला रहे थे कैब? एक में से, अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुनना हमारी आदत है भाई, आदत बरकरार रखिएगा यूसुफ भाई। और एक भाई ने मुझे बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा है, इनको 50 रियाल मिले, मेरा भाई बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला ऐसे

0: बरकत दे आपके काम में, ये मोहम्मद कलीम भाई ने मैसेज किया, कलीम भाई थैंक यू। और अरबाज मैंने मैसेज किया है, सर मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, मुझे कस्टमर से टिप्स मिलती हैं, कभी ऐप के थ्रू टिप देते हैं और कभी कैश भी दे देते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे बना के रखे। लिखते हैं आज भी मुझे 10 रियाल टिप मिली। अक्सर इंडियन लोग टिप देते हैं और फॉरनर्स की तो बात ही और है भाजी, तो चंगी गल है, लोग और भी ज़्यादा टिप देते हैं और खुले दिल के हैं भाई, खुले दिल के लोग हैं हमारे वाले, बस बातें करते हैं भाई। एक मैसेज है, कैश 50 कतरियाल ऑनलाइन, 15 कतरियाल टिप, सेम कस्टमर सेम ऑर्डर। ऐसे कस्टमर को भाई अल्लाह ताला और दे भाई, ये जो ऐसे वाले खर्च कर रहे हैं ना इनको तो कामयाब रखे अल्लाह, मेरे दिल से दुआ है। और आ भाई, भाई का और आया, चार्ली भाई कह रहे हैं और आया भाई अपना 200 रियाल भाई और ही होगा, 200 रियाल ऐसे तो नहीं मिल रहा है चार्ली भाई। चार्ली भाई को और आया भाई कतर में, गाड़ी का नंबर बता दो कैसे मिला तुम्हें, हम भी बैठे हैं हमारी गाड़ी में भाई। बाकी ये मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन नहीं थी, मेरे सामने एक पोस्ट आ गया उसमें लिखा हुआ था कि कई मरतबा टिप्स जो थी वो डायरेक्टली नहीं जाती, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि कतर में क्या ऐसा ही है, कतर में जो ऐप्स हैं उनके जरिए जब टिप्स जाती हैं सो इट रीचेज यू डायरेक्टली या नहीं, बस एक जनरल नॉलेज का सवाल था, आज मेरे को क्लियर हो गया। क्या चार्ली भाई फेंक रहे हैं, चार्ली भाई कह रहे और भाई का और, अच्छा भाई का टोरा वो राइम करने के लिए बोल दिया सॉरी। तो मैं अभी कहानी शुरू कर रहा हूँ, ये स्टोरी थोड़ी स्लो बर्न है, अक्सर होता है कि ऐसा शुरुआत में जब कहानी जो होती है आपको पूरी तरह से पकड़ लेती है, ये कहानी हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे नहीं बट मेरे साथ रहेगा बिकॉज इस कहानी में एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि मुझे वो पेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो जो लफ्ज़ों की पेंटिंग करनी है इस कहानी में मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज टू टेल, बहुत कमाल की स्टोरी है ये, और कमाल की क्यों है ये आपको एंड में पता लगेगा बिकॉज इट इज़ जस्ट ऑफ द रूफ। एक मैसेज आया है, मुझे बाइक पे 100 ईदी 100 कार पे 100 टिप कैश मिली थी भाई, एक तो एक समझा नहीं, बाइक पे 100 ईदी और 100 कार पे 100 टिप 100 रियल, ये तीनों पे अलग अलग है ये, मतलब मेरे को ये थोड़ा सा आपका फ्लो चार्ट समझाएंगे उमेन भाई, मैं थोड़ा सा इधर उधर भटक गया हूँ टॉपिक से। ओके बाइक पे अच्छा 100, ओ ओके नाउ आई गॉट इट ठीक है बढ़िया, तो ईद में सही कमाई हो गई, बढ़िया भाई चंगा, और अल्लाह ताला ऐसे आपको कामयाब रखे मोमिन भाई, दिल से दुआ है। बाकी एक प्रोमो उसके बाद मैं आज की स्टोरी शुरू करता हूँ विच इज़ 100% डिफ़िकल्ट फॉर मी, सुनाने के लिए भी बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना देसी तरीके से समझा सकूँ सुना सकूँ ऐसे ही सुनाऊँ। सो जस्ट बी रेडी। एक मैसेज आया है, मेरा दोस्त ओके मैं कंपनी का नाम लूँगा काम करता है, उससे डेली 30 से 40 मिलते हैं और मैं दूसरी जगह काम करते हैं, हमको कभी कभी 5-10 मिल जाते हैं, चलो मिल रहे हैं ना, बस ये मीटर चलते रहना चाहिए। शेयर करना स्टोरी, कैसर साहब मिल जाएगी। एक मैसेज है, 1 टाइम हैं 301 कतरियाल मिले थे आपको, कृष्णा भाई बहुत बढ़िया भाई, क्या आप परेशान ना हो अच्छी ही सुना दे भाई, डर लगता है ना उमिन भाई, मैं भी थोड़ा सा प्रेशर में जाता हूँ। सर आपका ऑर्डर कब करोगे, आप कब टिप देंगे भाई। भाई घरवाली जो है ना धमकी देती है, घर बाहर का खाना मत खाया कर, तोंद आ गई थी ना भाई, इसलिए ऑर्डर करूँगा इंशाल्लाह। 2-3 भाई में जो मिल चुके हैं जो पता नहीं वो शायद नाम पढ़ लेते हैं ऐप पे और उन्हें लगता है कि एक ही कबीर होगा पूरे कतर में। एक बड़े भाई स्वीट है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मैंने पिछले किसी एक शो में भी लिया था नाम, मोहम्मद अहमद उनका नाम था, और वो आए थे, वो उन्होंने डिलीवरी करी उस दिन, शायद मैं कुछ तो मंगाया था मुझे याद नहीं, वो आए बड़े स्वीटली, उन्होंने बोला कि आप कबीर हैं, तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली। तो वो हंसने लगे, बोले नहीं आप वो रेडियो वाले कबीर हैं, मैंने कहा हाँ, तो ले अच्छा अच्छा, फिर वो बड़े स्वीटली मिल के गए वो बंदे यार। सो ऐसे मुलाकात होती है, कभी कभार हो जाती है मुलाकात, बट एनीवे कहानी की तरफ बढ़ते, जस्ट वन प्रोमो बिटवीन यू एंड द स्टोरी, सो ये लीजिए वो प्रोमो, उसके बाद शुरू।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत।

0: एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
1: अस्सलाम वालेकुम, वापस आ गया हूं मैं, चूंकि वादा ही एक ब्रेक का था भाई छोटे से. सो कहानी की तरफ बढ़ते हैं. मैंने ये पॉइंटर्स अपने ऑन कर लिए हैं और एक सेकेंड ना, तो ये कौन मैसेज कर रहा है मुझे. ओके, वी आर ऑल सेट. आप भी रेडी हो जाइए. कोई मैसेज आया क्या? ये तो हमारी भी ख्वाहिश है, हम आपके आसपास डिलीवरी के लिए आए. भाई मेरी ख्वाहिश है कि आपसे मिलने का मौका मिले. भाई मुझसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो खामखा मेरा हवा बना रखा है लोगों ने जैसे कोई बैटमैन हूँ. रात में गौतम सिटी बचाई, दोपहर में गायब. नहीं भाई कोई टेंशन नहीं, मिलेंगे ना भाई. चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने. आई होप कि आप भी तैयार हैं वॉल्यूम 22 पे रख के. सो एक डिस्क्लेमर, खाने का मकसद किसी की जज्बात को नहीं पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड काफ़ी हैरत अंगेज है एंड वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज. आई डोंट नो कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे या किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, बट मुझे सुनानी जरूरी है ये कहानी. काम भी आ सकती है बहुतों की. सो लेट्स बिगिन. अस्सलाम वालेकुम, दोहा वाला कबीर FM 107 पे. और जो आज का किस्सा है उसने के लिए पूरा का पूरा मौसम बदलने वाला हूं. तो अभी मैं जानता हूं कि गर्मी बहुत ज्यादा है कतर में, पर इस कहानी के लिए जरा ठंड में चलते हैं. और कोई ऐसी ऐसी ठंड में नहीं, बर्फीली पहाड़ियों पर चलते हैं. ये किस्सा शुरू होता है June 1992 से, June 1992. चौथा दिन था और चार दोस्त एक पहाड़ी पे चढ़े हुए थे. इन चारों का जरा नाम बता देता हूं. कोल्बी कोम्स, एक का नाम था रिट कैलॉग और तीसरे का नाम था टॉम वॉल्टर. ये जिस पहाड़ी के ऊपर थे ये था माउंट फोरेकर. ये पहुंच चुके थे 17,400 फीट पे, पिंक पैंथर समिट. और ये समिट ऐसा था जो किसी भी टीम ने पूरा नहीं किया था, जो कोई आसान काम नहीं था. जैसे मैंने कहा कि माहौल बदलना पड़ेगा, तो जिस पोजीशन पे थे 17,400 फीट पे, चारों तरफ बर्फ की चादर, ठंडी ठंडी हवाएं, एक दूसरे से कपकपाते हुए बात करनी पड़ी है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है. कोल्बी था 25 साल का लड़का. वो पढ़ाता था, बाकायदा पढ़ाई करवाता था विल्डरनेस सर्वाइवल की फॉर नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल. बहुत सीरियस है चीज इसको लेके, वो कोई शौकिया तौर पे टीचर नहीं बना था. ही वाज वेरी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग. उसके साथ जो इस पहाड़ पे था उसका नाम था रिट. वो 28 साल का था. रिट और कोल्बी जो थे ये दोनों दोस्त थे कॉलेज के जमाने से, जब से रूम शेयर करते थे तब से ये दोनों पहाड़ी पे चढ़ते आए. तो इन दोनों का जो ये शौक था इन दोनों को साथ में लेके आया. तीसरा जो बंदा था वो इन दोनों से अलग था लेकिन इनसे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, उम्र में ज्यादा थे. उनका नाम था टॉम, 34 साल के थे. टॉम जो थे वो तीन मरतबा 8,000 फीट की ऊंचाई को नाप चुके थे. ही वाज अ वेरी गुड माउंटेनियर. तो ये तीनों के तीनों इस वक्त इस पहाड़ की चोटी पे थे. बहरहाल अब चौथा दिन आ चुका था और तीनों के तीनों थोड़े से थक चुके थे, क्योंकि अब जाना भी तो है, वापस भी तो लौटना है. तो रिट ने एक चॉकलेट बार निकाली और ये बिल्कुल जम चुकी थी, बिल्कुल बर्फीली, एकदम कड़क. इसके टुकड़े किए उसने जिससे बर्फ को तोड़ते हैं. उस टूल से इस चॉकलेट के तीन टुकड़े करके तीनों ने खाए. टॉम ने इस वक्त ऑल्टीमीटर को चेक करा कि हम कितनी हाइट पर हैं, बिकॉज ये वापस लौट रहे थे. तो पता लगा कि 17,380 फीट पर हैं. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है. अभी हवाएं अच्छी खासी चल रही थी लेकिन तीनों कांपते हुए मुस्कुरा रहे थे कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है. जो टेक्निकल पार्ट था इस चढ़ाई का वो पूरा हो चुका था. अब बस सीधा सीधा सीधा सीधा जाना है. इन्हें नीचे उतरना है साउथ ईस्ट रिज से और फिर आ जाएगा इनका बेस कैंप 8 किलोमीटर कहल्टना ग्लेशियर से. कोल्बी ने फौरन रोप निकाली, रस्सी निकाली और तीनों तैयार हो गए, क्योंकि रस्सी क्या होती है, तीनों से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि एज अ टीम ही आप जा सकते हैं.

कोई अकेला जा ही नहीं सकता, इट हैज टू बी अ टीम, तीन चार पांच जो भी। तो फिलहाल ये तीन थे, रोप निकाली और तीनों ने एक दूसरे से जोड़ ली रोप, हाई फाइव दिया कांपते हुए हाथों से, और बस यही सोच रहे थे कि चलो हाथ ही निकल गया, पूंछ बाकी है, एवरीथिंग इज डन, बस लास्ट लेग बाकी है, बस नीचे चढ़ना है और फिर गरम गरम खाना, स्लीपिंग बैग्स सब मिल जाएगा। दे वर रियली रियली एक्साइटेड, क्योंकि इसके बाद एक अचीवमेंट होती है ना जब आप ऐसा कुछ पा लेते हैं जिंदगी में, किसी ने ना किया हो तो फिर बात ही कुछ और होती है, और इन तीनों ने वो पा लिया था and they were really happy। बस अब नीचे की तरफ जाना है, मगर यहां से चीजें अलग होने वाली थी। जब ये जा रहे थे, एक घंटे के अंदर अंदर पूरा मौसम जो था वो बदलने लगा धीरे धीरे, क्योंकि ये जगह कोई आम जगह नहीं थी, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस। जो मौसम अभी तक एकदम शांत था, ठंडा था, हवादार था, वो एकदम से ग्रे ग्रे सा हो गया। पूरी पहाड़ी के इर्द गिर्द कोहरा छा गया, एक मिस्ट, एक तूफान सा कहीं से निकल के आया। हवाओं की आवाजें तेज हो चुकी थी, विजिबिलिटी एकदम गायब हो चुकी थी, हवा के साथ अब उन पे आइस के जो चटके थे वो भी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब खुद के पांव को देखना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज नथिंग वॉज विजिबल। 13,200 फीट पर फुल वाइट आउट, जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक आउट के, बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ अंधेरा छा गया है, अब वाइट आउट हुआ था, एवरीथिंग वाज वाइट। नीचे देखना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ ही नहीं आ रहा कि जाना किस तरफ है, एवरीथिंग जस्ट डिसअपीयर्ड। ऐसा लगा कि किसी ने मिनटों में बस चुटकी बजाई और सब गायब हो गया। तीनों एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, तीनों के बीच में 50-50 फीट का गैप था। इनके साथ एंकर्स थे, आइस के स्क्रू लेके आए थे, स्नो पिकल्स लेके आए थे, वो छोटा सा जो फावड़ा टाइप होता है वो लेके आए थे ताकि गिरे ना, और बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जो बर्फ थी वो ताज़ा ताज़ा गिरी हुई थी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सॉफ्ट थी, तो अगर ये अपना आइस पिकल मारते, उस पर गाड़ने की कोशिश भी करते तो कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश करी, कोलबी ने भी कोशिश करी, लेकिन एक ही झटके में वो बाहर आ जा रहा था, क्योंकि उसमें कुछ गड़ नहीं पा रहा है, बहुत ताज़ी बर्फ गिरी है। अब तीनों ने जल्दी से फैसला लिया, क्योंकि यहां पे टाइम नहीं वेस्ट किया जा सकता, तीनों ने फैसला ये लिया कि हम बस आगे बढ़ते चले जाएंगे बिना एंकर के, एक दूसरे के भरोसे और एक दूसरे की स्किल्स पे भरोसे, क्योंकि अगर रुक गए इंतजार करने लगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे, हाइपोथर्मिया, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोल भी बीच में था रोप के, टॉम जो था वो उसके ऊपर था और उसके नीचे रिट था, इनके बीच की जो रोप थी वो भी नहीं दिख रही थी। हर एक कदम ये जो लोग उठा रहे थे, हर एक कदम पे डर लग रहा था। रस्सी तीनों के बीच एकदम से वाइब्रेट होना शुरू हुई, तीनों को समझ में नहीं आया कि वाइब्रेट क्यों हो रही है, और फिर एक वायलेंट सा झटका आना शुरू हुआ, और जो टॉम था वो कांपने लगा, एकदम से चिल्लाने लगा, और अगले ही सेकंड में एवरीथिंग वॉज गॉन। कोलबी ने सेकंड्स में जब ऊपर देखा तो समझ आया कि क्या हो रहा है, और बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से पूरी एक बर्फ की चादर, एक बड़ा सा टुकड़ा बिखरता हुआ टूटता हुआ उन पे बरस गया। दिस वॉज एन एवलेंच, और इससे पहले संभल पाते वक्त ही नहीं मिला। तीनों के तीनों वहां पे ऐसा लगा जैसे जमीन ने उन्हें आसमान में उछाल दिया हो, और उसके बाद ये लैंडस्लाइड के साथ, उसी के साथ रोल होते हुए, टकराते हुए, इधर से उधर गिरते हुए, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा कि कहां गिर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है, गिरते चले गए बस बर्फ के साथ। हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कुछ पत्थर पर हाथ लग जाए, कहीं कुछ पकड़ लें, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और जब जब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उतनी ही चोटें भी लग रही थी। कोलबी के हाथ में एक आइस एक्स था,
एक कुल्हाड़ी थी जो उसने गाड़ने की कोशिश करी नीचे गिरते हुए, लेकिन वो गाड़ने के बाद भी नहीं अटक पाई, माइक्रोसेकंड के लिए बस अटकी पर निकल गई, क्योंकि जो फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा थी और गिरने की स्पीड 100, 200, 500 बढ़ती चली जा रही थी एंड गिरते हुए बहुत चोटें लग रही थी। एकदम से कोल भी जब गिर रहा था, गिरते हुए एक बहुत सख्त चीज से वो टकराया और एकदम झटका खाया और नीचे गिरा। एक शार्प पेन रीढ़ की हड्डी में उसे महसूस हुआ और फिर अंधेरा छा गया। कोलबी ने जब आंख खोली अपनी तो वो एक लेज भी था, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो ये समझ लीजिए एक छोटा सा छज्जा, एक छोटा सा छज्जा वहां जाके वो गिरा था। अगर वो जरा सा भी एक दो इंच भी दूसरी तरफ होता तो सीधा नीचे जाता, 800 फीट नीचे गिरता और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बच जाता। कोलबी की जब आंख खुली तो वो उसी छोटे से छज्जे पर जाकर गिरा था। रोप का तो पता ही नहीं था कि रोप कहां किधर जुड़ी हुई है, he had no idea। उसने बस ये सोचा कि अब बच कैसे गया। उसका जो बैकपैक था जो साथ में लेके चला था, इसमें सप्लाईज थी, वो बैग भी जा चुका था। उसका हेलमेट जो उसने पहना हुआ था वो क्रैक हो गया था बीच में से। अगर ये हेलमेट नहीं होता तो हेलमेट की जगह उसका सर क्रैक हो जाता। मगर कुछ और भी चीजें हुई थी। उसके उल्टे पैर का जो एंकल था, एंकल पूरी तरह से टूट चुका था, जो भी जूते के अंदर था, एनी कुड फील इट, सूजन अच्छी खासी आ चुकी थी। उसका लेफ्ट शोल्डर जो था वो भी टूट चुका था और गर्दन में भारी दर्द था। उसने पैरों को मूव करने की जल्दी से शुरुआत करी, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो पैरालिटिक अटैक्स आ सकते हैं, पैरालाइज हो सकता है उसका पैर। उसके दो सर्वाइकल वर्टीब्रे जो रीढ़ की हड्डी के हिस्से होते हैं वो फ्रैक्चर हो चुके थे। एक गलत उसने झटका लिया और पूरी रीढ़ की हड्डी जवाब दे देगी। अगर वो यहां से हिला तो शायद मर जाएगा और यहां पक्का बैठा रहा तो पक्का मर जाएगा। वो इस दर्द से कराहता हुआ महसूस करते हुए कि मैं बस आंखें खोली रखूं अपनी, हो बेहोश हो गया। उसकी वापस जब कुछ देर बाद आंख खुली तो सुबह की हल्की सी रोशनी कोहरे को चीरते हुए उस पर पड़ी। तूफान तो टल चुका था पर एकदम सन्नाटा था, बस हवाओं की आवाज, एक हॉन्टिंग हाउलिंग, और वो उस वक्त इस छोटे से लेज पर बैठा हुआ था अपने पैर को पकड़े हुए। वो एक पहाड़ी पे था जो काफी रिमोट एरिया में थी, बहुत बुरी तरह से जख्मी था और इस पूरे एनवायरनमेंट पे वो एक्सपोज्ड था जो उसकी जान कभी भी ले सकता है कुछ दिनों में। किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है, और अगर रेस्क्यू वाली टीम को पता भी लग जाए कि वो कहां पर है तब भी उनका पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, उसमें भी वक्त लगेगा। वो बैठा रहा, उसे समझ में आ गया था मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। वो उठा, अपनी उंगलियों को चलाने लगा तेजी से कि बस किसी तरीके से जान रहे। उसने रस्सी को अपने कसके से पकड़ा हुआ था, जूते वो उतार नहीं सकता था, हालांकि उसकी रीढ़ जो उसकी एंकल की हड्डी थी वो टूट चुकी थी। उसे पता था कि अगर उसने अपने जूते को खोला तो पूरा जो एंकल है वो अंदर से लिटरली बिखर जाएगा। और फिर सबसे ज्यादा हॉन्टिंग चीज, उसने जब राइट हैंड की तरफ देखा थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो उसके दोस्त टॉम की बॉडी हवा में टंगी हुई थी, रस्सी से फंसी हुई। कोलबी ने उस बॉडी को नीचे खींचा, लेज पे जहां पे वो था वहां पे उसे उतारा और चेक करने लगा कि शायद कोई पल्स बाकी हो, लेकिन फिर कोलबी ने अपनी दबिया जुबान से उसकी आंखों को बंद करके बोला, गुड बाय मेरे दोस्त। उसका दिल ये कह रहा था कि उदास होने का वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। और जो रिट था जो उसका दूसरा दोस्त था वो नीचे था, उसे देखने की कोशिश वो कर रहा था लेकिन बहुत मुश्किल था, वो दर्द से नीचे झांक भी नहीं पा रहा था। 30 फीट नीचे वो आया जैसे तैसे इस रोप से अपने टूटे हुए एंकल के साथ। फिर अपना दोस्त रिट दिखा जो बर्फ में दफन हो चुका था बेजान।
उसने बोला I'm sorry, Rit. और अब कोल भी इस टूटे हुए

एंगल के साथ वापस ऊपर चढ़ा, क्योंकि रास्ता ऊपर से ही है। नीचे आना फिर भी आसान था। नाउ इट वॉज 10 times डिफिकल्ट टू अगेन क्लाइंब द माउंटेन। जहां पर टॉम की बॉडी थी वहां तक पहुंचा और साइड में जाके गिर गया। अब वो अकेला था, वो जोर से चिल्लाया एक ब्रेकडाउन, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहा था इतने सारे इमोशंस एक साथ। और वो अपने आप को बता रहा था कि वो जिंदा है तो कुछ फनी चाहिए। अगर वो दुनिया को नहीं बता पाया तो ये एक मिस्ट्री बन जाएगी कि तीन दोस्त गायब हो गए। और यही ख्याल उसे डरा रहा था। उसने डिसाइड किया कि नहीं, इस पहाड़ी से नीचे उतरूंगा और मैं उतर के रहूंगा, मैं बैठूंगा नहीं। धीरे धीरे धीरे धीरे दिन जा रहा था। एक ही रास्ता था जो उसको याद था, जो पता था, मगर वो रास्ता भी बदल चुका था। पहाड़ों के रास्तों की शक्ल बदल जाती है जब एवलेंच या तूफान वगैरह आता है। और जिस तरफ पहाड़ ने पटका था इन तीनों दोस्तों को, इट वॉज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक ही रास्ता है अब इसके पास नीचे जाने का, और वो रास्ता आसान नहीं है। उसे पूरा रास्ता क्रॉस करना है जो कई किलोमीटर्स लंबा है। फिर कहिल्टना ग्लेशियर जो है वहां पे उसका बेस कैंप है, जहां पर उसे पता था कि छोटे छोटे जहाज लैंड करते हैं, वहां शायद लोग भी मिल जाएंगे। तो पहले ही उसने जो है कदम अपने बढ़ाना शुरू किए। ऐसा लगा कि इस दर्द से वो बेहोश हो जाएगा। उल्टा पैर जैसे ही उसने जमीन पर रखा इस टूटे हुए एंकल के साथ, दर्द ऐसा कराया वो कि गिर गया। लेकिन उसने कहा नहीं, आई हैव टू स्टैंड अप। और वो सर अपना गर्दन जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट करके चल रहा था। माइंड में उसके आ रहा था कि इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, मगर वो खुद से लड़ रहा था। ये बता रहा था कि आई डोंट केयर, और चिल्ला रहा था अपने आप से बात करते हुए, आई डोंट केयर इफ माई फुट फॉल्स, आई विल मूव। और वो जैसे खुद से ही बात करके खुद को ही चुप करा रहा था, खुद से ही बात करे जा रहा था। एंड ही वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि गर्दन भी टूटी हुई है। एक कदम, हर एक कदम इनफैक्ट पिछले वाले कदम से दर्दनाक हो रहा था। पर उसे पता था ये रिज अगर उसने क्लियर नहीं करी तो हाइपोथर्मिया से डेफिनेटली मर जाएगा। उसे ये भी पता था कि जिस ग्लेशियर पे वो उतरेगा, अगर उतर पाया तो वहां पे आइस क्रेवेसिस है। बेसिकली आप चल रही हो, समझ लीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा बर्फीला रेगिस्तान है। अब आपको नहीं पता कि कौन सी जगह पे आप कदम रखेंगे और वहां से आप नीचे गिर जाएंगे। और जो जगहें होती हैं क्रेवेसिस, जो बर्फ के बीचों बीच ऐसे गड्ढे होते हैं जो नजर नहीं आते हैं, उसमें अगर कोई गिर जाए तो देर इज नो चांस कि आप बच सकते। और इस वक्त तो पूरा अकेला भी था। एक घंटा वो चला, एक गलत कदम अगर वो उठा ले तो बस काम खत्म। कोई भी मूव कर रहा था, कभी लंगड़ा था, कभी लेट के चल रहा था, कभी रेंग रहा था। अभी वो नीचे अपने पैर की तरफ भी नहीं देख सकता था क्योंकि उसकी गर्दन इजाजत नहीं दे। गर्दन जरा सी बैंड करता तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी सुइयां जो है उसकी गर्दन में कोई चुभा रहा हो, दर्द भरी। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करी गर्दन के साथ, और इसका जो उसके पास एक एक्स था उसे लेके वो गड़ा गड़ा के एक हाथ से आगे अपने आप को खींचता हुआ चला गया। ये जगह जहां पे मूव कर रहा था ये मैप में भी नहीं थी, अनमैप्ड थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वो जहां जा रहा है वो सही जगह है भी कि नहीं, मगर वो पहुंचा। 100 feet उसने क्रॉस किए। इस क्लिफ से कुछ नहीं दिख रहा था, गलत जगह पहुंच गया। फिर अपना रास्ता बदला, फिर वापस चढ़ाई करी और फिर से घंटों का सफर तय किया। मगर जब वो थक गया तो उसे नजर आया कि एक बड़ा सा पत्थर है और बीच में बर्फ की मोटी सी चादर है, टुकड़ा है बर्फ का। उसके बीच में जो उसके पास छोटा मोटा सामान था वो डाला अपने पैर को आराम देने के लिए, ठिठुरता हुआ ग्रिप बनाने के लिए वहां बैठ गया। वो रस्सी को जो उसके पास थी उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था बिकॉज हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे। उसने सोने की कोशिश करी लेकिन हर 20 minutes में ठंडी हवाएं उसे वापस जगा रही थी। और जब वो उठता था तो जाहिर सी बात है कि नींद में आपको एहसास नहीं होता कि गर्दन टूटी हुई है कि नहीं। वो एकदम से उठता और झटके उसकी गर्दन में और दर्द होने लगा। और बैठे बैठे वो अपने दोस्त जैसे बात कर रहा था जो अब दुनिया में नहीं रहे। उसे अपने दोस्तों की आवाजें आ रही थी कि कोलबी तो बहुत बढ़िया कर रहा है, और कोलबी ये सब बातें अपने आप से ही कर रहा था, अपने आप को ही सवाल, अपने आप से ही जवाब। और कोलबी इस बात पर हंस भी रहा था। उसे पता

वो खुद से बातें कर रहा है, मगर उसका ध्यान बट रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त जिंदा है। उसके बाकी जो गियर्स थे जो उसके साथ लेके वो चला था वो टूट चुके थे। इस टूटे हुए एंकल के साथ उठा और 3 घंटे और चला। उसे 3 घंटे लगे 200 फीट क्रॉस करने में। अब जब उस जगह पे पहुंच गया था जहां पे उसे गड़बड़ का अंदाजा हो सकता है, मतलब क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है, सो ही न्यू कि कहां पर बर्फ का जो रास्ता है वो कच्चा है, टूट सकता है, और कहां पे नहीं टूटेगा। तो वो हर क्रैक पे अपनी कुल्हाड़ी को मार मार के, जो कि बहुत छोटी सी थी, उसे मार मार के चेक कर रहा था और स्लो मोशन में आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे कदमों से। कोलबी फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंचा जो आपकी मेरी डिक्शनरी में सेफ जगह होगी, क्योंकि हमें लगेगा वाह चलो पहाड़ से तो उतर गए, मगर नहीं, वो सिर्फ पहाड़ के आधे रास्ते से बचा था। वो पहाड़ जो उसे हर मोड़ पे दफनाना चाहता था, और वो हर बार बचता गया। मगर अभी जो हालत थी वो बहुत बुरी हालत थी। अब कोलबी एक मुर्दे की तरह था, एक जॉम्बी की तरह चल रहा था, रेंगता, कभी गिरता, कभी लेट कर रेंग रहा था, कभी घुटनों के बल। एक दाना खाने का और एक बूंद पानी की भी उसने नहीं पी थी। वो पहुंचा माउंट फोरेकर के बिल्कुल फुट पे, मतलब जहां से शुरुआत होती है, और वहां से उसके सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान था, लाइक एन ओशन। यू समझ लीजिए कि अगर पैसिफिक ओशन को पूरी तरह से जमा दिया जाए तो क्या होगा। आपकी नजरों के सामने जहां तक आप देखें वहां पे, वहां तक बर्फ, और पूरा अकेला, कोई भी उसके साथ नहीं। सुकून और दर्द, ये दोनों फीलिंग 50-50% उसके दिमाग में थी, और दोनों को बराबर महसूस कर पा रहा था। सुकून इस बात का कि पहाड़ का वो मुश्किल रास्ता पार कर चुका है, और दर्द इतना ज्यादा चलने के बाद इस टूटे हुए फ्रैक्चर्ड बदन के साथ। अभी 8 किलोमीटर उसे ग्लेशियर क्रॉस करना था, उसके बाद उसे अपना बेस कैंप दिखता। वो जैसे तैसे रेंगता हुआ अपने आप से पागलों की तरह बात करता हुआ गया। उसे दूर से डॉट नजर आ रहे थे, कुछ तो नजर आ रहा था, एंड ही हैड नो क्लू कि ये डॉट्स क्यों नजर आ रहे हैं मुझे, क्या ये बेस कैंप कुछ तो है, पर ये 8 किलोमीटर 80 किलोमीटर जैसे लग रहे थे, और ऊपर से जो आइस के क्रेवेसेस थे वो बहुत गहरे थे। एक गलत कदम और अगर वो गड्ढे में नीचे गिरा तो कोई चांस नहीं कि वो वापस ऊपर आ पाएगा, कोई चांस नहीं। अमूमन ये रास्ता टीम्स के साथ पूरा किया जाता है, अकेला तो नामुमकिन है। उसे पता था कि इन क्रैक्स में से अगर वो गिरा तो 100 फीट नीचे जाएगा, और हाइपोथर्मिया से वापस आ भी नहीं पाएगा। 6 दिन कोलबी को यहां पे हो चुके थे। अब पूरा का पूरा वो रेंगने पे आ चुका था, जैसे तैसे कोशिश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर एक पॉइंट पर जब वो पहुंचा जहां से वो थोड़ा सा देख सकता था कि उसे जो सामने दिख रहा है वो क्या है, तो उसके लिए उसे गर्दन घुमानी पड़ेगी, और गर्दन उसे थोड़ी सी घुमाई कि मैं देखूं तो सही कि इधर क्या है और उधर क्या है, क्योंकि जल्दी जल्दी देखना होता ना। तो वो गर्दन अपनी घुमाने की कोशिश कर रहा था इस दर्द में, क्योंकि गर्दन भी टूटी हुई थी, सुइयों की तरह चुभ रहा था उसकी गर्दन में कुछ। उधर से उधर वो देखता रहा कि उसे कुछ नजर आ जाए। उसे नजर आया, सामने उसे एक कैंप दिखा, वो बेस कैंप था। 3 चीजें उसके दिमाग में एक साथ आई कि मैं पहाड़ से उतर चुका हूं, दूसरी चीज मैं खतरे में अभी भी हूं, ग्लेशियर का रास्ता अभी भी है, और माइंड में ये चल रहा था कि मैं कर सकता हूं, मगर जिस्म उसकी इजाजत नहीं दे रहा था, वो अकेला था। उसे पता था वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं आएगी उसके लिए। पर उसने एक ट्रिक अपनाई, उसने अपना जो एक्स था आइस वाला वो गाड़ा, और एक रिदम पकड़ के लंगड़ाता हुआ एक ही रिदम में चलता गया, चलता गया, चलता गया, अपने एक्स को बहुत जोर जोर से जमीन पे मारता हुआ कि कहीं अगर क्रैक होगा तो मुझे 2 कदम पहले ही पता चल जाएगा। और वो बस अपनी धड़कनों को संभालते हुए, क्योंकि अब उसकी धड़कनें वो खुद सुन पा रहा था, इट वॉज डेड साइलेंस, इंच बाय इंच वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने सोच लिया था कि जब तक मेरी सांस नहीं फूल जाती तब तक मैं बढ़ता रहूंगा। और फिर वो वक्त आया बहुत जब वो करीब पहुंच गया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप्स उसे नजर आने लगे, ऑरेंज ब्लू ग्रीन कैंप्स।
वो भागना चाहता था जल्दी से इस कैंप की तरफ, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो भागे। और वो आराम आराम से यहां पे पहुंचा। सुबह के 5 बज रहे थे, आसमान पूरा का पूरा ग्रे, चारों तरफ कोरा। उसे एक बड़ा सा टेंट दिखा जो जिप्ड अप था, बुरी तरह से अंदर से जिप हुआ हुआ था। वहां वो खड़ा रहा, वो चाहता तो अंदर वो चिल्ला सकता था कि खोलो कैंप को, मुझे अंदर, मैं दर्द में हूं, मेरी मदद करो, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। पता नहीं क्यों उसके अंदर इस वक्त भी एक आवाज आई और उसने कहा नहीं यार, मैं इन लोगों की नींद क्यों खराब करूं। वो स्टैंड के सहारे नीचे बैठ गया बस। फिर से नजर आया एक टेंट है जो आधा खुला हुआ है, उसके अंदर उसने झांका कोई है तो नहीं, और उसकी किस्मत ऐसी के अंदर कोई भी नहीं था। उस कैंप के अंदर उसने अपने आप को धक्का दिया और अंदर गिरा उस टेंट में, और गिरने के बाद वहां पे स्लीपिंग बैग को पकड़ के, क्योंकि भाई हिम्मत नहीं थी कि उस स्लीपिंग बैग में अपने आप को लिटा सके, तो स्लीपिंग बैग को पकड़ के ठिठिरते हुए, बुरी तरह से दांत उसके पूरी तरह से कांप रहे थे और कांपते उसे पकड़ के वो लेट गया, सोने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में सुबह के 6 बजे के अराउंड कैंपिंग की जो इस पूरे कैंप की मैनेजर थी एनी ड्यूकेट, वो आई। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ वियर्ड है, उन्हें थोड़ा ब्लड भी नजर आया, तो वो उसको ट्रेस कर रही थी कि व्हाट रियली हैपेंड। उन्होंने टेंट को जब खोला, शी सॉ एंड शी वाज स्केयर्ड। उन्होंने फॉरन कैंप की मेडिक्स को बुलाया, क्लाइंबर्स जो बहुत सारे थे वहाँ, उन्होंने टेंट से बाकायदा उसे निकाला और फिर जो है सवाल जवाब पूछने लगे। बट दे रियलाइज के अभी सवाल जवाब नहीं पूछ सकते, बिकॉज हालत ऐसी नहीं है कि इससे अभी सवाल जवाब किया जाए। एनी ने फॉरन रेडियो किया इवैक्यूएशन के लिए, और फिर जब ये चीज़ें टल रही थी, जो थोड़ा बहुत जो होश बाकी था कोलबी में, फिर उसे असली वजन का अंदाजा हुआ। वजन अपने दो दोस्तों को खोने का वजन, क्योंकि जिस वक्त उसने अपने दोस्तों को खोया था उस वक्त उसे अपनी जान बचानी जरूरी थी। एंड ही कुड नॉट इवन ग्रीव, वो था ना कि दुख मनाने का भी, शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। सो नाउ क्योंकि वो बच गया था, तो वो जो वजन था दो दोस्तों का अब उसे महसूस हो रहा था। हेलीकॉप्टर्स आए, डॉक्टर्स उसे लेके गए, वो भी बड़े शॉक थे कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। मल्टीपल स्पाइनल फ्रैक्चर्ड, शैटर्ड एंकल्स, लिटरली जो चूरा बन जाता है हड्डियों का, वैसा हाल हो गया था उसके एंकल्स का, और चोटें ऐसी जो नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खबर फैली एंड इट बिकेम अ मिरेकल। कोलबी 3 महीने गर्दन के ब्रेसेस और व्हील चेयर पर रहा, फिर आने वाले 3 महीने उसके बाद चलने की कोशिश उसे कराई गई, पर अपने उसी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने उसी रेजिलियंस के साथ जिसकी वजह से वो बचा था, उसी के साथ वापस चलना सीखा उसने। उसका जिस्म तो हील हो गया, लेकिन इमोशनली बहुत सारे जख्म लगे। सर्च टीम गई उन बाकी दोस्तों को वापस ढूंढने के लिए कि उनकी बॉडीज मिल जाएं, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। बर्फ में कहीं खो गए दोनों। बस वहां पे एक एक्स था जो पहाड़ के एक हिस्से में गड़ा हुआ था, जैसे जैसे कोई कब्र पे, कोई टूम पे वो निशान लगा हो। अनकोली बस यही सोचता रहा कि मैं क्यों यार। हॉस्पिटल में भी जब मॉर्फिन का जो असर था वो उतरा, तो दोस्तों की आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही थी, बट ही वॉज श्योर कि कुछ तो रीजन है उसके बचने का। 1996 में टेलकेटना अलास्का, 2 महीने था और तकरीबन 4 साल हो चुके थे इस किस्से को। कोलबी के सामने इस वक्त 12 स्टूडेंट्स थे। ये पहला सेशन था ऑफ अलास्का माउंटेनियरिंग कॉलेज, और ये प्रोग्राम शुरू करने वाला खुद कोलबी था अपनी वाइफ के साथ। वो यहाँ पर नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था जो कभी जाएंगे माउंटेन पे, तो सर्वाइवल ट्रेनिंग उन्हें दे रहा था। रूम में एकदम शांति थी, क्योंकि जब वो बता रहा था कैसे कैसे बचना चाहिए, उतने में एक लड़के ने अपना हाथ खड़ा किया और पूछा कोलबी से कि सर आप ये बताइए, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी आप फंसे हैं पहाड़ों पे मुश्किलों में, सर आपकी सर्वाइवल स्टोरी है कोई? कोलबी ने सोचा कि उसे सर्वाइवल स्टोरी अपनी बताए कि कैसे उसने अपने दोस्त खो दिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने नहीं, मैंने दो दोस्त अपने खोए हैं, मैं उस

से कमर्शलाइज नहीं कर सकता। मैं इस कहानी को बेचने के लिए नहीं बचा हूं, मैं सिखाने के लिए बचा हूं। और मैंने बताया तो ये ऑलरेडी डरे हुए तो होंगे, ऑर्डर जाएंगे।

कोलबी के बनाए हुए इस स्कूल से तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हुआ है 1996 से आज तक। कई सारे इसमें से जो सीख के गए हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और सर्वाइवल के तरीके, उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, उन लोगों ने बहुत सारे समिट में पार्टिसिपेट किया है, दुनिया भर में लोग इस स्कूल से निकलते हैं एंड पहुँचते हैं। और आज भी कोलबी कहते हैं कि जब वो माउंट फेरेकर पे पहुँचते हैं, उनकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, वो आज ही माउंट फेरेकर पे जाते हैं तो अपने दोस्तों को याद करते हैं, और आज भी अपने आप से ऐसे बात करते हैं जैसे अपने दोस्तों से वहाँ पे बात कर रहे हैं। ये था किस्सा कोलबी का, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग्स दैट हैपन। और ये सच में सर्वाइवल सिखाता है कि इट्स नॉट अबाउट बींग स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट डिफाइंग लॉजिक। कई मरतबा हमारा जहन हमें कुछ कह रहा होता है, बता रहा होता है कि लॉजिक दे रहा होता है, लॉजिक है, ये नहीं हो रहा क्योंकि ये है, बट उस लॉजिक के परे जाके कुछ कर दिखाना, दैट इज सर्वाइवल। ये थी कहानी, अब आपके हवाले। 666-22-107 666-22-107 आपके मैसेजेस के इंतजार में। मैं दो हवाला कभी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: भाई साहब 6:13 होलिए हैं और कहानी मैंने सुना दी है, अब आपके ऊपर भाई साहब कैसी लगी आप बता सकते हैं। 6:62107 पर आपके मैसेज का भी इंतजार कर रहा हूँ। एक जरा कॉल लेता हूँ मैं।
2: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1: हाँ मेरा भाई, क्या हाल है भाई के?
2: भाई बहुत बढ़िया, कहानी सुन के तो भाई मजा तो आया, टेंशन में भी आ गया था भाई। अच्छा? मैं यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये एंडिंग होगी। मैं सोचा कि वो एक मतलब सपना होगा और उड़ जाएंगे, बच जाएंगे तीनों।
1: अच्छा तो
2: एक ही बचा है,
1: एक ही बचा है। अब वो मेरा बजट नहीं था, मैं इसलिए तीनों को नहीं बचा पाया भाई।
2: तो सही है ना, एक को तो बचाया भाई आपने। खैर
1: हाँ तो वही वो जितना बजट था, बजट
2: मंडल आभारी
1: है
2: आपका, मंडल आभारी हूँ कि आपने एक को बचाया। लेकिन यार इतना कुछ हो जाने के बावजूद बंदे ने सर्वाइवल किया और उसको मतलब पता भी चल गया कि मैं मुझे ये चीज दूसरों को सिखानी पड़ेगी कि कैसे उस चीज में करना चाहिए।
1: नहीं ये इस स्कूल से बहुत सारे लोग निकले हैं, बड़े बड़ी हस्तियां निकली हैं जिन्होंने माउंट क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग जो भी कहते हैं वो क्या, हाइकिंग वगैरह भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ये बहुत अमेजिंग स्कूल है इनका, मैंने इनका आप देखिएगा इनका स्कूल की बहुत सर्विस भी है, कमाल का स्कूल है एंड इज़ वेरी वेरी डिलीजेंट। अभी भी वो जाते हैं, अभी भी वो खुद जाके सिखाते हैं एक्चुअल कंडीशंस में, तो अलग ही आदमी हो गया भाई वो सहने के बाद।
2: बिल्कुल, क्योंकि उसके उनके अंदर अब वो चीज आ गई ना कि उन्होंने अपने आंख के सामने अपने दोस्तों को खो दिया।
1: yes.
2: और उस टाइम वो कुछ कर नहीं पाए।
1: yes.
2: इसलिए अब उनका ये ही है कि अब जो है आगे कोई होना नहीं चाहिए उसके।
1: बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई बिल्कुल। तो मुझे
2: उनके सपने में आते हुए ना भाई दोस्त होते हैं यार।
1: बेशक भाई बेशक, मैं तो बता रहा हूँ मुझे ठंड लग गई थी कहानी ढूंढते हुए
2: यार एक तो बंदे को आपने कंबल नहीं उड़ाई, ऊपर से यार

0: स्लीपिंग बैग ना?
1: हाँ स्लीपिंग बैग,
0: वो भी लपेट के बंदा सोया यार,
1: बेचारे के पैर में लगी थी भाई,
0: उसके अंदर तो घुसवा देते हैं।
1: नहीं यार मैं तो मदद कर देता भाई, लेकिन क्या करेगा भाई, की हालत ही ऐसी थी। कभी पहाड़ी पे गए वैसे आप?
0: मूवी देखता तो वाकई में मुझे ठंड लग जाती मूवी देख के।
1: हाँ मैं बता रहा हूँ, ये इसका पूरा डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको, डॉक्यूमेंट्री नहीं सॉरी मॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको सच में ठंड लग जाएगी। वैसे गए कभी पहाड़ी पे? गए
0: पहाड़ी पे तो मैं गया हूँ, लेकिन ऐसे मतलब बर्फ वाली,
1: बर्फ वाली
0: होती है
1: ना,
0: चाय वाली, जो पुणे में, मतलब पुणे में है।
1: अच्छा अच्छा उस तरफ गए हैं, वहाँ
0: झरने वाली,
1: वो तो अलग है, वो तो अलग। कभी बर्फीले पहाड़ों पे गए हैं कभी? जब जब
0: ठंड नहीं, बर्फीलों पे नहीं गया, आज तक एक्सपीरियंस नहीं लिया हूँ। और ये देख के तो खैर मुनासिब नहीं है।
1: हाँ बस ठीक है, रेत की टीले पे चढ़ जाएंगे भाई, हमें नहीं जाना बर्फ की टीलों पे।
0: मेरे लिए बर्फ वाली पहाड़ी नहीं बनी भाई।
1: नहीं सही है भाई, हाई फाइव भाई, हाई फाइव। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत सारा प्यार और अच्छा ही गाने, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया।
0: कहानी सुन के तो अच्छी लगी, ऐसा कोई नहीं, आपने जो कहा था कि नॉर्मल है स्टोरी, ये नहीं, बहुत बढ़िया स्टोरी है भाई, बहुत बढ़िया स्टोरी।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत।
0: ये एक रियल स्टोरी है ना, इसलिए वो दिल में बैठ जाती है और थोड़ा छोटा सा घर कर लेती कि नहीं, इस चीजों से आदमी को क्या करना बहुत जरूरी है।
1: थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत।
0: सोचते नहीं कि नहीं भाई मैं तो कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा, जाओ
1: नहीं होता भाई, कहने की बातें हैं, किताबी बातें हैं, जब आती है ना, जब समझ में आता है सब, सब सीधा हो जाता है मामला।
0: प्रिपरेशन तैयारी बहुत जरूरी चीज है मेरा भाई।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली, जो भी मैं तो कहूंगा, जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं, जिनको बंजी जंपिंग फलाना फलाना फलाना फलाना करना है, करें प्लीज करें, मगर प्लीज जोशो करो उसके साथ ना करें, जस्ट लर्न हाउ टू बी सेफ इन दोज कंडीशन, उसके बाद भले ही आपकी जो मर्जी आए करें, तो यही है भाई सिस्टम।
0: बिल्कुल भाई, कुछ भी आप करने जा रहे हो, बस आप उसके बारे में जान ले, जानकारी ले ले और उस चीज को साथ में ले जाए।
1: हाँ बस वो इम्पोर्टेंट है भाई,
0: चाहे आप कितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो भाई।
1: एब्सोल्युटली मेरा भाई, एब्सोल्युटली,
0: क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ होगा तो शक्तिमान बचाने नहीं आएगा भाई।
1: सॉरी शक्तिमान कहने का टाइम भी नहीं मिलेगा वहाँ पे,
0: टाइम भी नहीं मिलेगा भाई साहब। उसकी इतनी हड्डी टूट गई भाई, इतनी हड्डी, फिर भी वो कोशिश कर रहा था।
1: हाँ भाई मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, उसके दर्द को महसूस करने की भी गुंजाइश नहीं है, इट वाज समथिंग एल्स। तो मुझे
0: इसलिए भाई, आपने बताया उसकी हड्डी चूरा हो गई, कौन गुंजाइश करेगा भाई वो दर्द।
1: इतना जोर दिया भाई ने यार, बहुत चला है वो, बहुत चला है। मैंने तो उसका डिस्टेंस को कम किया बता के, वो जितना चला है वही जानता है।
0: वाकई में यार, एक मतलब बहुत ही खतरनाक
1: सर्वाइवल था एकदम। थैंक यू भाई, बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया मेरा भाई, ख्याल रखिए
0: भाई।
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद चलेगा गाना, आपको तो पता ही भाई, इस टाइम ये गाना तो मैं चलाए बिना रह नहीं सकता भाई। बाकी मैसेज बहुत सारे इंशाल्लाह, अभी मैं एक मैसेज पढ़ूंगा, बट आपकी मोहब्बत क्या आपको कहानी अच्छी लगती है, ऐसा कि भाई भी कह रहे हैं आई लव सर्वाइवल स्टोरीज, सेम ईयर ब्रो, हाई फाइव हाई फाइव। बढ़िया गाना चलेगा भाई, इसमें शायरी गाने बहुत बढ़िया है। डांडा भाई गाना भाई जगाने, ओ मारे कोई ना ठिकाने, 6:18 होली हुई
2: जगाने, मारे कोई ना ठिकाने, बैठी चुप
1: न्योली वाला।

छह बज गया 21 मिनट होली है, हम भी आ जाए, थोड़ा हल्का बुलकर है हमारा भी है।

शाबाशी तो पूरी मिली है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे जो आपने मैसेजेस किए हैं उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एंड काफ़ी सारे मैसेज आए मेरे पास, एंड एक एक करके मैं सारे मैसेज पढ़ देता हूँ जल्दी से। तो एक मैसेज आया है अरबाज भाई का, लिखते हैं, दो दिन पहले हमारे गाँव का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर गया था, जब वो पहाड़ की चोटी से वापस नीचे उतर रहा था तो उसके पाँव फिसल गया। अरे भाई साहब, और वो गहरी खाई में गिर गया। अफसोस की बात यह है कि वो अरे रे रे रे, ये हाइकिंग के दौरान पेश आने वाले बहुत ही अफसोसनाक हादसा था भाई, 6,000 फीट। भाई मैं कह रहा हूँ दैट इज़ द रीज़न वाई भाई, शौकिया तौर पे हाइकिंग करने मत निकला करो, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लगती है। ये कहानी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग ना होती ना तो भाई ये भी हो लिया था, ये भाई बचाई ट्रेनिंग की वजह से है, समझ रहे हैं आप। अरुण भाई ने मैसेज किया, अरुण भाई कह रहे हैं कि उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगती है और उन्होंने बोला कि इट फील्स लाइक लिसनिंग टू अ मूवी। थैंक यू सो मच अरुण दे, गौतम भाई बहुत सारा प्यार आपको, एंड आई विल सेंड यू द स्टोरी मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन। एक मैसेज आया, गुड इवनिंग कबीर भाई, ख्याल बोल रहा हूँ, आपका नाम ख्याल है भाई, स्टोरी मिस कर दी प्लीज़ इफ़ यू कैन शेयर, ऑफकोर्स आपका नाम ख्याल है माशाल्लाह भाई। एंड मैंने मैसेज किया, मुझे बहुत पसंद है आइस माउंटेन, बहुत अच्छे होते हैं भाई, मुझे बहुत पसंद है लेकिन डर लग गया भाई। एक मैसेज आया है, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग कबीर भाई, ग्रेट नरेशन बट आई मिस द बिगिनिंग, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड यू द बिगिनिंग एंड द एंडिंग नॉवल साहब। एक मैसेज है, भाई ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच भाई, ये अब्दुल वहाब भाई ने मैसेज किया, लिखते हैं, हेलो सर, द स्टोरी वॉज रियली अमेजिंग एंड योर स्टोरी टेलिंग स्टाइल इज ट्रूली अनमैच्ड, सिमिलर इंसिडेंट हैपन्ड इन पाकिस्तान रिसेंटली, अ मैन हैज़ बीन ट्रैप्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 7,000 फीट फॉर द पास्ट फ्यू डेज, प्लीज प्रे दैट अ रेस्क्यू टीम इज एबल टू रिकवर हिज बॉडी सून। ये अभी की बात है वहाब भाई, भाई अल्लाह खैर कर, अल्लाहुम्मा हाफिज ना, मैं तो दुआ करता हूँ भाई, कर ये इतना रीसेंट है कि अभी भी रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है, तो मेरे भाई मेरी दिल से दुआ है। आई डोंट नो कि ये किस तरफ हुआ है, कोई एरिया है क्या पाकिस्तान में जहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि आपके माशाल्लाह पाकिस्तान में पहाड़ियों इलाके ही बहुत खूबसूरत हैं। भाई दुआ करें लोग जो बता रहे हैं ये हमारे ये वहाब भाई। और एक और मैसेज है यूसुफ भाई का, लेकिन कबीर अच्छी थी सर्वाइवल स्टोरी, वो शख्स की कितनी हिम्मत और बहादुरी होगी, हैट्स ऑफ, अगर कोई और होता तो अपनी जान खो बैठता, लेकिन ही मेड हिमसेल्फ एंड सर्वाइव्ड, तभी तो ये स्टोरी बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑफ कोर्स मेरे भाई, एब्सोल्युटली। जाहिद भाई वालेकुम अस्सलाम, तबसम बहन ने मैसेज किया, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बहन, अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरी, गूज बम्स, फील्स लाइक रियल, यू पेंटेड ईच एंड एवरी इंसिडेंट सो क्लियरली दैट आई थॉट आई वॉज देयर माई सेल्फ, आई फेल्ट इन माई एंकल। अरे बहना थैंक यू सो मच भाई, आपका नाम बड़ा यूनिक है भाई, ख्याल नाम है भाई का यार सही है भाई, सैड है बहुत प्यारा नाम है। अच्छा स्वात में ये किस्सा हुआ है, ये वहाब भाई ने बताया, भाई दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें बचाए, रेस्क्यू ऑपरेशन आई एम प्रीटी श्योर अभी भी ऑन होगा। एक मैसेज कहानी भेजिएगा, भेजेंगे। एक आया मैसेज, मेरे ख्याल से ये भाई जो बोल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मैं भी यही आदमी बता रहा हूँ, हाँ आपने भी शायद वही बताया है, पर आप कह रहे हैं कि हादसा हो चुका है, ये कह रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, तो आई डोंट नो

कि आप दोनों सेम बात करें या अलग बात करें, दैट आई डोंट नो. बट एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप जब कहानी सुनाते तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पर हूँ. आज मैं भी पहाड़ियों में खो गया था और डर भी गया था, अच्छा लगा. लेकिन थैंक यू सो मच कामरान अली साहब. वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और भाई आपके नाम पे बहुत शॉकिंग मैसेजेस आ रहे हैं. हाँ हाँ बहन, उनका नाम ख्याल है, तबस्सुम मेल भी हैरान है. ख्याल है, मुझे आज ये ख्याल आया है, वाह. भाई ये नाम किसने रखा होगा मुझे बताइएगा, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने बहुत इंटरेस्टिंग नाम शो करते हुए सुन लिए. एक भाई हमारे नेपाल से, उनका नाम कमकम है, वो भी बड़ा यूनिक नाम है. एक का नाम है बारकोड, जो हमारी सुम्बुल बहन ने बताया था. आज नाम मुझे सुनने को मिला ख्याल. भाई साहब एक नंबर है भाई, एक नंबर. मुझे सही बता रहा हूँ, बहुत प्यारा नाम लगा आपका. मतलब इट्स नॉट दैट आई एम ट्रोलिंग यू, आई एम लिटरली सेइंग दिस आउट लाउड. बहुत खूबसूरत नाम है. आपके नाम पे इकट्ठी शायरी मिल जाएंगी भाई लोगों को. पढ़ाने में इंशाल्लाह कुछ देर में मिलते हैं ब्रेक के बाद. छोटे से ब्रेक लेंगे उसके बाद. कहते हैं दादी ने रखा है नाम, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह. दादी को एक ख्याल आया है, वाह वाह बहुत खूबसूरत नाम है. मिलते हैं भाई कुछ देर में इंशाल्लाह. दान के बाद मुलाकात होगी. 666-22-107 नंबर है. कहानी के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो कह दीजिएगा. स्टेट

0: रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अमीर उलमोमिनीन थे। उस शख्स का मुकदमा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ। आपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देता हूं, तुम में से जिसने कभी कोई गुनाह किया हो वो यहां से चला जाए। सिर्फ वही लोग इसे बुरा कह सकते हैं जिन्होंने खुद कभी कोई बुराई ना की हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक एक करके सब के सब चले गए। इसी हुक्म है कि जब दूसरे का ऐब मालूम हो तो अपने ऐब को मत भूलो, बल्कि उसे एक यादहानी समझो। कुरान हकीम में इरशाद है कि हर वो शख्स जो दूसरे शख्स का ऐब निकालता है, बहुत जल्द वही ऐब उसमें भी जाहिर होगा। इसलिए ऐब जुई और तानाजनी से बचना चाहिए।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

पूरी शाबाशी मिलेगी। तबसुम बहन ने शाबाशी लिटरली दे दी है, थैंक यू सो मच बहन इतने प्यारा मिलने के लिए। वो लिखती हैं कि कबीर भाई माय हेड इज सो फुल एवरी टाइम बट व्हेनेवर आई लिसन टू योर प्रोग्राम मेक्स मी लाफ फॉर सम रीजन। कॉमेडी शो होता तो और बुरा हाल होता। बहन मैं तो बता रहा हूँ 6-7 घंटे का शो दे दो मुझे, मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ऐसे अवार्ड जो आप देते हैं आपने मैसेजेस करके, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। मोहम्मद इशाक साहब ने मैसेज किया, इशाक साहब ने थैंक यू सो मच भाई। बाकायदा उन्होंने एक पूरा बनाया, उसमें लिखा है बिगेस्ट फैन ऑफ आरजे कबीर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई को क्या। और भाई के बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त स्टोरी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सलमान भाई ने मैसेज किया, भाई सलमान को थैंक यू क्या। एंड एक सेकंड, मेरे से कोई मैसेज मिस ना हो जाए। ओके तो अब जरा मैं खबरों की तरफ बढ़ता हूँ। तो एक लिस्ट जारी हुई है, CNBC अरेबिया ने ये लिस्ट जारी करी है, इसमें टॉप 100 लीडर्स हैं, मतलब बिजनेस ओनर्स और लीडर्स जो हैं, इसमें गल्फ़ और इजिप्ट के लिए, मतलब पूरे गल्फ़ और इजिप्ट को मिला के ये लिस्ट आई है 2026 की। इसमें हाईलाइट किया उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने भाई साहब रीजन हिला दिया पूरा अपने काम से। इसमें कवर किया उन्होंने 7 किस्म की मार्केट को और 11 अलग अलग सेक्टर्स को, 11 सेक्टर्स इसमें, एनर्जी, बैंकिंग, रियल स्टेट, टेलीकॉम और फिनटेक। सो इसमें कतर का नाम है, इसमें लिस्ट में शामिल हैं कतर के बहुत सारे बैंक्स हैं एंड ग्रुप सीईओ ऑफ उरीदू, उनको भी बाकायदा बुलाया गया। सो ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसे हल्की फुल्की अचीवमेंट नहीं है। एंड इसके अलावा जो अभी की जो मौसम की खबर है वो भी आपको देना बड़ी ज़रूरी है। हालांकि गर्मी है ये तो, मतलब बिना टेम्परेचर का हाल देखे आपको बताया जा सकता है, कोई भी बता देगा। आजकल तो बात करने का जरिया यही है, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो वैसे ही है। 32 डिग्री फॉर लोएस्ट टेम्परेचर और 38 फॉर नाउ, मगर कल इस वक्त 44% ह्यूमिडिटी थी, अभी 45 है। अरे ह्यूमिडिटी के लेवल हमसे पूछो तो चश्मे लगा रहे हैं भाई, हम चश्मे लगा के बाहर जाते हैं, ऐसा फॉग आता है जिसकी कोई हद नहीं। मैं बता रहा हूँ इतनी चिड़ छूटती ना, इतनी चिड़, ये सिर्फ चश्मा लगाने वाले ही समझ सकते हैं। हमारा हाल गर्मियों में जो होता है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो गाड़ी के साइड मिरर्स एकदम से पूरी धुंध छा जाती है, प्लीज़ साफ करके चलाएं। आप अपने आप को गोस्ट राइडर मत समझिएगा, उससे दिक्कत हो सकती है। तो ड्राइव सेफली, इफ़ यू सी कि भाई गाड़ी फॉगिंग हो रही है तो डीफॉग करके चलाएं गाड़ी। और जो चश्मे लगाते हैं मेरी तरह, हम कुछ नहीं कर सकते, वाइपर तो लगा नहीं सकते चश्मे पे। अगर वाइपर मिलता है, वाइपर वाला चश्मा मिलता है तो मुझे सबसे पहले बताइएगा प्लीज़, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा आप चश्मा चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, है? और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, एक इंसान ने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने बताया इनका नाम, इनके वालिद साहब का नाम भी जो है, मोहम्मद साहब ने मैसेज किया था शायद, हाँ इनके वालिद साहब का नाम भी ख्याल है। क्या बात है भाई, मुझे तो मैंने पहली मरतबा सुना, मैंने किसी का नाम आज तक ख्याल नहीं सुना था। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है भाई, पहली मरतबा सुना है मैंने ये नाम। Anyway, आ रहे हैं प्रोफेसी कि नचर तेन दिल तेलु काकी नकिया। लव दिस ट्रैक यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिमिक्स अब्दुल करीम साहब, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, लेट्स गो।

इवनिंग। कोई कंपटीशन नहीं भाई, है ही नहीं। 6:50 सुंदर क्लॉक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 7 पे। क्या हाल है आपके? बढ़िया चल रहा भाई। घड़ी में देखो 6:51 हो लिया भाई। एक मैसेज आया, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाइए कैसे। और एक मैसेज स्टोरी भाई भेज देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। और एक भाई कह रहे हैं, अरबाज भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तो बर्तन वर्तन धोया आपने जब लेट खाना खाया? भाई मैंने पेपर प्लेट पे खाता हूँ भाई, मैं किसी घर जाता हूँ पेपर प्लेट पे। बर्तन धोने का पालना ही नहीं भाई, चक्कर ही चक्कर ही खत्म। अच्छा ऑन दैट नोट, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 7 बजे, आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन। तो ये बता दूं कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जरूर जरूर प्लीज हमसे जुड़िए, प्लीज लगा रहा हूं मैं FM 107 कतर, FM 107 कतर। और अगर आप मुझसे रब्ता कायम करना चाहें सो दोहा वाला कबीर FM 107 आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह 5 बजे, बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मां सलामा।

सिविल एविएशन अफेयर्स ने बताया है कि ईरान की जानिब से बहरीन के फिजाई मालूमाती खित्ते के सिविल एविएशन नेविगेशन सिस्टम्स को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। तहम इस हमले से फिजाई आमद और रफ्त और हवाई नेविगेशन के निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा बहरीन के दिफाई अफवाज ने भी ऐलान किया है कि उन्होंने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया है और ये वाज़ेह किया कि मुल्क के दिफा के लिए तमाम फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ मुसलसल नवे रोज़ भी फिजाई कार्रवाइयाँ जारी रखीं। बयान के मुताबिक इन हमलों में ईरानी फ़ौज कमांड मराकज़, फिजाई दिफाई निज़ाम, साहली निगरानी के मराकज़, बहरी सलाहियतों, मीज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स और मुआसलती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। गज़ा में इसराइली फजाई हमलों के नतीजे में 15 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे यह हमला गज़ा शहर की शारे अलजिला में एक शहरी गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया, जबकि शुमाली गज़ा के इलाके जबालिया अलबलद में वाक़ हलावा कैंप पर भी बमबारी की गई। और मकबूजा मगरबी किनारे में रामल्ला के मशरक में वाक़ कस्बे दीर जरीर पर इसराइली आबादकारों के हमले में 2 फिलिस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक इसराइली काबिज अफवाज ने एक ऐसे एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया जो जख्मियों को मुंतकिल कर रही थी। दूसरी जानिब अरब लीग ने मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी की सरगर्मियों और एक तरफ इकदाम के मुसलसल जारी रहने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अरब लीग का कहना है कि इकदाम 2 रियासती हल की बुनियाद पर सियासी तस्फीय तक पहुँचने की राह में मजीद रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। ये खबरें उर्दू रेडियो कतर एफ़ एम 107 से नशर की जा रही हैं। शाम में इसराइली हमलों के तसलसल के दौरान इसराइली काबिज अफवाज ने जुनूबी सूबा अल-क़नेतरा की देही इलाके में वाक़ तिल-ए-अहमर शर्की पर गोलाबारी की। इत्तलात के मुताबिक हमला खुले इलाकों पर किया गया, जिसके नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद घंटे कबल इसराइली अफवाज ने असमदानिया शर्किया और सदकोदना के अतराफ में पेशकदमी की थी, जबकि अल-क़नेतरा के नवाही इलाके में वाक़ गांव अल-हमीदिया की ज़रई ज़मीनों पर भी गोलाबारी की गई। सोमालिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के जनूब मशरक़ी इलाके में सोमाली फ़ौज की कार्रवाइयों के दौरान शिदत पसंद तंजीम शबाब के 10 अरकान हलाक हो गए हैं, जिनमें तंजीम का एक अहम कमांडर और उसके 9 मुहाफिज़ भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई दिगर्द अनासिर के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा थी। वाज़ेह रहे सोमाली फ़ौज गुज़श्ता कई हफ़्तों के दौरान भी शुबैली असफला सूबे में शबाब के ठिकानों के खिलाफ मादिद कार्रवाइयाँ कर चुकी है, जिनके नतीजे में तंजीम के सैकड़ों जंगजू हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आज जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम एसियान के वज़राए खारजा के 59वें इजलास और उससे मुतालिक राबता इजलासों का आगाज़ हो गया है। इस इजलास की सदारत फिलिपाइन कर रहा है। इजलास में आसियान के 10 रुकन ममालिक के वज़राए खारजा की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जबकि तंजीम के बैन अल-अक़वामी मुज़ाकराती शराकत दारों की भी नुमायाँ शिरकत है। इजलास में बिलखसूस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शरीक हैं, जहाँ मुख्तलिफ अहम स्ट्रेटेजिक उमूर और इलाकाई व आलमी मामलात पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल में यूक्रेनी हुक्काम ने ऐलान किया है कि खारकीफ के इलाके पर रूसी फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 48 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन की फ़िज़ाई दिफाई अफवाज ने बताया है कि उन्होंने रूस की जानिब से दागे गए 94 ड्रोन्स में से 81 को मार गिराया है। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों में यूक्रेन के 381 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। नशरिए के अख्ताम से कबल एक बार फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, उमान और उर्दन के वज़ीर

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: हाँ भी आ गए घूमने फिरने की बातें कर लें, थोड़ी सी बैठ जाइए आराम से बैठिए। आप कड़क वगैरह मंगा दें आपके लिए। वैसे बताऊं इस गर्मी में जो लोग कहते हैं कि इतनी गर्मी में चाय पीते हो, हाँ जी पीते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू कतर 2026 गर्मी स्पेशल। बिकॉज गर्मी में बहुत कुछ है करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि कतर में अरे गर्मी में तो ऐसा मामला ठप हो जाता है, मार्केट बैठ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, बस आपको वहां तक पहुंचने की दूरी है और वहां तक पहुंचाने का काम हमारा है। तो हम आपको बता देंगे कि कहां कहां क्या क्या है और हर किसी के टेस्ट के लिए हर एक चीज बनी हुई है मार्केट में।
4: कतर 2026।
3: सबसे पहले मैं अगेन मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि गर्मियां हैं, बार बार हर हफ्ते में

बारे में बात करता हूँ। स्टेकेशन का प्लान कर लीजिए, मौसम बदलेगा फिर भाई साहब स्टेकेशन का मतलब को नहीं भाई, यो ही है टाइम बढ़िया वाला। थमने तो बहरा है, जब गर्मी रहा करे ना भाई तो होटल बुक करने में अलग ही मौज आती है। तो अगर आप जो है कपल है, फैमिली है, सिंगल है, ग्रुप में जाना चाहते हैं, स्टेकेशन का बेस्ट टाइम है। एक दिन की छुट्टी भी मिले ना भाई, मिल बांट के रूम शूम बुक कर लो, मजे करो भाई। क्योंकि स्टेकेशन में एक तो होटल्स में ऑफर्स बहुत सारे हैं, और कतर की जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिएटिव है। ऐसे वैसे होटल नहीं है, सीधा सिंपल सिंपल है। ये लो जी ब्राउन कलर की दीवारें, व्हाइट चादर, ना जी ना, बहुत क्रिएटिव होटल्स हैं। अब जाके देखिए, कभी आपको बैम्बू रूफ्स मिलेंगे, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड इफ यू हैव अ फैमिली हियर, अगर आप गर्मियों की छुट्टी में कहीं नहीं जा पाए और आप बस इंतजार कर रहे हैं, अब तो बच्चे भी घर हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे मुझसे, अब तो बच्चे घर पे हैं कहाँ जाएं, जाने को नहीं, उनको लेके जाइए। दिस इज द राइट टाइम, राइट मोमेंट। किसी भी वीकेंड पे आप प्लान कीजिए, आसपास ही तो है, घर में कौन सी चीज दूर है। मैक्सिमम एक घंटा ड्राइव करनी पड़ेगी आपको बहुत दूर किसी रिजॉर्ट में, वरना तो सब कुछ आसपास ही है। सो प्लान दिस वन, स्टेकेशन इज ऑन द लिस्ट नंबर वन पे, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा पुश करता रहूंगा इस चीज के लिए जब तक गर्मी है, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि जाओ ठंड में कूद जाओ पूल में। बट आपके इर्द गिर्द कोई इवेंट है जो आप मुझे बताना चाहें, आप पूरे कतर को बताना चाहें, सो ये बात पेट में रख के कोई फायदा नहीं है, बता दीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस एंड बताइएगा अगर हमसे कुछ मिस हो जाए। वैसे मिस होगा नहीं, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जाके, एंड मैं एज अ प्रोफेसर काफी डिटेल रिसर्च करके देता हूँ आपको, लेकिन अगर मुझसे कुछ चूक हो जाए तो आप तो है ना है? चलो शुरू करते हैं पहले इवेंट से, जहाँ पर आपको जाना ही जाना चाहिए। तो जो पहला इवेंट है, ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट है और ये 31 जुलाई तक है। देखिए, जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो तारीख थोड़ी सी आगे हुई होगी। ये इवेंट जो है 10 तारीख को एक बार हो चुका है, 17 को है, 24 को है और 31 जुलाई को है, तो अभी भी है, मतलब हर फ्राइडे ये इवेंट है। एंड इसका जो हेडलाइन है मैं पढ़ देता हूँ, हेडलाइन लिखी है अंग्रेजी में, बिग इमेजिनेशंस डिजर्व अ मोमेंट टू शाइन। मतलब कि आपके बड़े बड़े ख्याल, बड़े बड़े जो इनोवेशन इमेजिनेशन है स्पेशली बच्चों के, उनको मोमेंट मिलना चाहिए टू शाइन। सो आईकिया लेके आया है आईकिया लिटिल स्टार्स, हर फ्राइडे जुलाई में, जुलाई में जितने फ्राइडे बचे हैं, हर जुलाई के फ्राइडे पे आएगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और सेंटर स्टेज को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, और ये बच्चों के लिए 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे पर सेशन और 5 एडिशनल वॉक इन पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ग्रैंड फिनाले जो है वो रखा गया है 7 अगस्त को, तो उसमें अभी टाइम है। इसका एज ग्रुप सुन लीजिए, क्योंकि घर में अगर आपके बच्चे हैं तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। सो 5 साल से 12 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कई सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। ये जो मकसद है ना, ये लिटिल हमारी घर की लिटिल लिटिल पर्सनैलिटीज, उनको सेलिब्रेट करने का है एवरी डे। बिकॉज बच्चों की इमेजिनेशन को जब आप एक स्टेज, एक सेंटर स्टेज दे देते हैं, देन इट जस्ट रॉकेट्स मैन। एंड बड़ा जरूरी है कि उनकी इस साइड को भी तवज्जो दी जाए व्हेन दे आर स्मॉल, बिकॉज बड़ों का इमेजिनेशन यू कांट गिव देम सेंटर स्टेज। तो बच्चों के लिए, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए ये स्पेशल इवेंट आईकिया लिटिल हार्ट्स, ये इन स्टोर होगा एक्टिविटी जोन आईकिया में कतर में, आप जानते हैं, आप जा सकते हैं, DFC के साइड में ही है। 10 जुलाई से 31 जुलाई, बेसिकली हर फ्राइडे को है, ये फोकस रखिएगा, हर फ्राइडे। और शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में, शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में। देखिए, इवेंट बड़े खास होते हैं ये वाले बच्चों के लिए, जो 5 साल से 12 साल के बीच में। मैं कोई नहीं होता बताने वाला, मगर फिर भी लेट मी जस्ट गिव माय ऑब्जर्वेशन। ये मैं सोचेगा ओ आ गए बड़ा ज्ञान देने, नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ये नोटिस किया है, मेरे साथ भी हुआ है, जब बच्चे छोटे होते हैं और उनको एक सेंटर स्टेज दे दिया जाता है, तो पब्लिक जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या अपने टैलेंट को आगे रखने की कोई अगर क्रिएटिविटी वाली स्किल है, तो उन्हें आगे आकर उसे शोकेस करने में दिक्कत नहीं आती। तो आप उनको एक ग्रोथ का रास्ता देते, चलना तो उन्हें ही, मगर उनको एक रास्ता दिखा देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब एज ज्यादा हो जाएगी, फिर आप उन्हें कहते रहिए बेटा जाओ पुश कर दो, और ना पुश करोगे आप, जाओ बेटा जाओ स्टेज पे जाओ, तब नहीं होने वाला है। ये पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप एंड इफ दे हैव अ टैलेंट, तो उन्हें शोकेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डू दैट फॉर देम एंड देयर फ्यूचर। ये बात मैं इतनी बड़ी साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी होता था यार, अगर हम ड्रामेटिक्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते तो खुलते नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का। भले आप मुझे देख नहीं सकते, बट एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं आपसे माइक पे बात कर सकता हूँ, तो ये भी वहीं से आया है। सो गिव देम अ चांस, अगर आपके घर में 5 से 12 साल के बच्चे हैं, आई के लिटिल हार्ट्स लिटिल स्टार्स में जरूर जरूर ले जाए। ऑलराइट,
लेट्स मूव ऑन टू अनदर इवेंट। अगला जो इवेंट है ये है कतारा में, दिस इज इन कोऑपरेशन विद द एमबी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इंडिया इंडियन एम्बेसी की तरफ से है और स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। ये 14 जुलाई को हो चुका है, देखिए जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो तारीख थोड़ी सी आगे हुई होगी। स्पेशल स्क्रीनिंग है इंग्लिश विंग्लिश की, ये पिक्चर मैं कभी नहीं बोल सकता। कुछ मूवीज ऐसी होती है वो जितने भी साल पुराने हो जाए बट व्हेन यू कम बैक टू देम दे जस्ट क्रिएट नॉट जस्ट नॉस्टैल्जिया लेकिन आपको लगता है ये पिक्चर भाई साहब दोबारा नहीं बन सकती, ये दोबारा नहीं बन पाएगी। इंग्लिश विंग्लिश उन्हीं में से एक है एंड टू सी द आइकॉनिक श्रीदेवी ऑन स्क्रीन वंस अगेन, इससे बढ़िया बात क्या है। इंग्लिश विंग्लिश ऐसी मूवी है जिस कैटेगरी में मैं क्वीन को भी रखूंगा, जिस कैटेगरी में मैं स्वदेश को भी रखूंगा। ये वो मूवीज हैं जो इम्पैक्ट लाती हैं एंड आपको ना हंसी ना दें तो मुस्कुराहट देती हैं। इट इज सो हार्ट वार्मिंग कि आप अंदर से इंस्पायर होते हैं, आप उस फिल्म को समझा नहीं पाते बट यू फील नाइस इनसाइड यू एंड एक सेल्फ डिस्कवरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है कई सारी चीजों को लेकर। एंड इंग्लिश विंग्लिश इज वन ऑफ दिस मूवीज जो बिल्कुल सही कॉर्ड पे स्ट्राइक करती है। सो इफ यू हैवंट सीन इट, ये चांस है आपके पास, इसको मत छोड़िएगा। सो एम्बेसी ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कतर, उन्होंने ये स्क्रीनिंग रखी है एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैं तो अगर कोई इंडियन एम्बेसी का सुन रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज इन मूवीज के लिए स्क्रीनिंग रखिए। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मैं 11th क्लास में था और स्क्रीनिंग हमारे स्कूल में रखी गई थी चक दे इंडिया की एंड वी वर सरप्राइज कि यार क्या इनिशिएटिव है एंड वी लव्ड इट। तो ये जो जो चीजें की जाती है ना और स्पेशली एम्बेसीज की तरफ से तो ये बहुत बड़ा कदम होता है और ये जो इंडियन एम्बेसी ने कदम उठाया है आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी। इसमें जितने लोग जुड़े मूवीज दिखाई जाएं वो मूवीज जो किसी प्रोपेगेंडा पे बेस्ड नहीं होती, वो मूवीज जो आपके दिल को एक एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा फील कराती है ऐसे ठंड की बिल्कुल सुबह में जो सूरज निकलता है वैसी वार्मथ। आहा क्या बात कह दी मैंने, तो वो जो वार्मथ है वो इन मूवीज के अंदर है एंड आई अर्ज आई रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी से कि ये चीज जारी रखिए एंड कीप शोइंग सच मूवीज। सो हाउ इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट शुडंट बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर एंटायरली। ठीक है बोलना जरूरी है, बोलनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करें, मार्केटिंग की भाषा अंग्रेजी ही है। वो एक एक बात है किसी ने कही थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें था कि हिंदी दोस्ती की भाषा है और उर्दू जो है वो मोहब्बत की भाषा है और इंग्लिश जो है वो मार्केटिंग की भाषा है। बट दैट डजंट मीन कि आप अंग्रेजी हर जगह यूज करें, बट इट्स ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हैंड्स डाउन। इंग्लिश विंग्लिश आप भी अपनी स्टोरी तो जरूर शेयर कीजिएगा और हमें टैग कर दीजिएगा। सो FM107 कतर, FM107 कतर, ये बड़ा जरूरी है। अब उस इवेंट के बारे में बात करते हैं जो हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। तो दोहा का सबसे बड़ा समर शॉपिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, दोहा समर ट्रेड फेयर। ये 30 जून से शुरू हुआ, 4 जुलाई को खत्म हुआ, फ्री एंट्री थी। इस एग्जीबिशन के जरिए कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डील्स और फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट लोगों को मिला अंडर वन रूफ। हर रोज हुआ ये एंड अर्ली मॉर्निंग से बिल्कुल मिडनाइट तक लोग पहुंच रहे थे, इसमें भर भर के जा रहे थे एंड ऐसे इवेंट कतर में आते रहेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बीता हुआ इवेंट ताकि आपके जहन में रहे कि ऐसा इवेंट छोड़ना नहीं है यहाँ पर ना। आप बस सोचिए, आपको टी शर्ट लेनी है, मान लो एक बुशर्ट लेके आनी है मुझे, यहाँ पर वो भी मिलेगी आपको, प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड इतने बढ़िया रेट में थे भाई जिसकी हद नहीं। ये एग्जीबिशन एक किस्म का मेन स्पॉट बन गया था लोगों के लिए कि भाई कुछ नहीं है करने को, चलो डीसीसी चलते, दोहा समर ट्रेड फेयर चलते हैं, लोग भर भर के जा रहे थे तादाद में। तो ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, विजिट कतर की वेबसाइट को आप जरूर चेक करते रहा करें। ये इवेंट फिलहाल हो चुका है, 23 जून से 4 जुलाई तक था एंड व्हाट एन इवेंट इट वाज, मार्वेलस मार्वेलस। सब कुछ था भाई, यहाँ पे गद्दे मिल रहे थे और वो क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत चीज मैं ऐसे लेके आया था, बैटमैन की घड़ी भाई, बैटमैन की घड़ी, मजा आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं उन इवेंट्स की तरफ जो होने वाले हैं। अब जो इवेंट है जो होने वाला है इसमें थोड़ा सा टाइम है, अभी 2 महीने हैं, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्योंकि सेम जगह पर है, दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन 22nd एडिशन। समझ रहे हैं आप, ये कोई हल्का फुल्का इवेंट नहीं है, मैं कई सालों से देख रहा हूं इसको, मुझे ही यहाँ पे 10 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट।
तो तब से ये इवेंट में देखता आ रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट. हमने कितने बड़े बड़े सितारों को इसका चेहरा बनते हुए देखा है, एंड इस बार मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बड़ा चेहरा चुना जाएगा इसकी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे. लेकिन इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो लोग नए हैं बता दूं, यू कैन एक्सपीरियंस मॉडर्न इमर्सिव एनवायरनमेंट जहां पर लग्जरी और एलिगेंस का मेल आपको नजर आता है. कई सारे कलेक्टर्स यहाँ पर पहुंचते हैं जो अपने कलेक्शन को शोकेस करते हैं. कई सारे रीजनल बायर्स यहाँ पर होते हैं और इंटरनेशनल विजिटर्स के तो यहाँ पे तांता लगा रहता है. तो अगर आप कभी भी इसका हिस्सा नहीं बने, दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली विजिट एंड एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ा और शानदार इवेंट होता है. स्टिल रिमेंबर कि यहाँ पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा था. मैंने पूछा था कि ये बताइए लग्जरी आपके लिए क्या है, एंड जब मैंने ये सवाल पूछा सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई, अरे ये क्या पूछ रहा है, बिकॉज जो सामने थे वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत ही मोहब्बत के साथ उन्होंने लोकल कतरी और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया. मैंने जब पूछा उनसे कि लग्जरी आपके लिए क्या है, तो बोले लग्जरी मेरे लिए वो है जिसमें मुझे सुकून मिले, जिसमें मुझे आराम मिले, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी. तो किसी ने बोला हाँ भाई जब पैसा होता तो ये जवाब देने में आसानी रहती, दैट इज ऑल्सो फैक्ट, मगर ये फैक्ट है भाई, बात तो सही है, जिसमें सुकून रहे आराम रहे वही लग्जरी है. और दूसरे टाइप की लग्जरी देख रहे हैं तो इस इवेंट में पहुंच जाएगा दोहा वॉचेस एंड एग्जीबिशन, ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन. और ये इस बार का 12th एडिशन है, सॉरी 12th एडिशन नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 12th नहीं, इनफैक्ट 22nd है, लेट मी कंफर्म, यस इट इज द कौन सा एडिशन है, 22nd है भाई, अरे बाप रे, तो 22 एडिशन हो चुके हैं. इस बार कौन फेस बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये मुझे देखना है. सो इस पे तो मेरी नजरें बनी हुई हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी. अब देखिए स्टोरी टेलिंग आप मुझसे तो करवाते रहते हैं, है ना, मैं आपको कहानी सुनाते रहता हूँ, लेकिन स्टोरी टेलिंग एक और जगह होती है. एक कहानी है जो सुनाई जाने वाली है, और ये जो कहानी है बड़ी खास होने वाली है. ये कहानी एक लिटिल गर्ल की, एक छोटी सी बच्ची की, जिसका नाम है लायला, जो एक विजिट पर जाती है अपनी दादी के, नानी के घर जाती है, और उनसे वो मिलने के रास्ते में मिलती है एक चालाक भेड़िए से जो धोखा देने की कोशिश करता है. द वुल्फ ट्राइज टू डिसीव हर कंप्लीटली. और स्टोरी जो है वो हाईलाइट करती है टेंशन बिटवीन इनोसेंस, यानी कि उसकी शराफत, और डिसेप्शन धोखा. इन दोनों के बीच का जो टेंशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है. ये कहानी एक टाइम टेलर टेल है, एंड जनरली बच्चों को बहुत पसंद आती है ये कहानी. और कई दफा ये कहानी अलग अलग भाषाओं में सुनाई गई है, दिखाई गई है, और अब तो बड़े भी इसे पसंद करते हैं. तो अगर आपने कभी भी ये कहानी नहीं सुनी है तो विजिट कीजिएगा थिएटर अपने बच्चों के साथ, और एक लास्टिंग फैमिली मेमोरीज आप क्रिएट करेंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है. लायला एंड मी, ये कहानी एक इस फॉर्मेट में भी, लेकिन इस बार इसका नाम रखा गया है लायला एंड द वुल्फ. ये रिकमेंडेड है 4 से 11 साल के बच्चों के लिए, एज ग्रुप में बता ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, 4 से 11 साल के बच्चों के लिए. और ये परफॉर्म की जाएगी इस बार अरेबिक में. सो अगर आपके बच्चे अरेबिक स्कूल्स में हैं एंड यू वांट टू मेक श्योर कि वो कुछ एक्सपीरियंस करें इन द लोकल लैंग्वेज, और इफ यू अंडरस्टैंड अरेबिक प्लीज गो. मैं तो ये कहूंगा आप भी जाइए, बच्चों के साथ तो आप जाएंगे ही जाएंगे, बट इफ यू वांट टू विजिट आप जा सकते हैं. बच्चों के लिए खैर एज ग्रुप है 4 से 11 साल की, एंड इट विल बी परफॉर्म्ड इन अरेबिक. एंड इन्होंने इस बार आफ्टरनून परफॉर्मेंसेज भी रखी हैं, तो उन पे भी नजर रखिएगा. ये 18 अगस्त से 22 अगस्त तक है, शाम को 4 बजे. ओके, ये दोहा प्लेयर्स कम्युनिटी थिएटर ग्रुप है जहां पर ही होने वाला है, 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में शाम को 4 बजे से. देखो स्टोरी टेलिंग की खास बात जो मुझे भी महसूस होती है, जब भी मैं भी आपको कहानी सुनाता हूं तो मेरे दिमाग में भी कहानी का इमेजिनेशन चलता रहता है. बहुत सारी कहानियां किस्से ऐसे होते हैं जो हम पहले सुना करते थे, अब तो बच्चों के पास विजुअली सारी कहानियां अवेलेबल हैं. बट देन टू बूस्ट देयर इमेजिनेशन, यू नो, एक चीज को 5 तरीके से दिखाने पर बहुत फायदा रहता है. मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं कहानी सुना रहा होता हूं, एंड इफ आई से कि कहानी के अंदर मैंने बोला कि एक आदमी एक बेंच पर बैठा हुआ था, तो आपके दिमाग में, आपके इमेजिनेशन में आना चाहिए कि वो बेंच कैसा होगा. क्या वो लकड़ी का बेंच है, या वो लोहे का बेंच है, या किसी और मटेरियल का बेंच है, या वो बेंच पत्थर का बना हुआ है. बिकॉज यू हैव गुड इमेजिनेशन स्किल्स, और आप सोचते भी होंगे कहानी को सुनते सुनते. तो बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे जब एक कहानी कहीं से सुन लेते हैं तो एक एस्टेब्लिश्ड
इमेजिनेशन होता है और उस इमेजिनेशन को अलग अलग रंग मिलते हैं जब वो अलग अलग तरीके से उसे सुनते हैं देखते हैं। और इस बार जो विजुअल दिखाया जाएगा लाइला एंड द वुल्फ, आई एम प्रीटी श्योर देयर इमेजिनेशन विल रन वाइल्ड। नॉट ओनली दैट, एक मोटिवेशनल कहानी है और बहुत बहुत बढ़िया कहानी है जो सही गलत नॉट जस्ट

व्हाइट एंड ब्लैक, बट जो ग्रे शेड होता है जिंदगी का उसे भी बहुत अच्छे से दिखाती है, जो आई थिंक बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत बहुत फर्क लाता है. सो आपके बच्चे अगर अरेबिक स्कूल्स में पढ़ते हैं तो प्लीज प्लीज उन्हें जरूर ले जाएगा. मैं फिर से बता दूं, 4 से 11 साल के बच्चों के लिए है और बहुत बहुत जरूरी है. जरूरी इसलिए बिकॉज आई मीन इट देर इज नो इसलिए मैंने बता दिया. सो दोहा प्लेयर्स कम्युनिटी थिएटर ग्रुप 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, ठीक है. अब अगला जो है कतर कैलेंडर पे जब मार्क हुआ था तो मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल वाज ऑफ द रूफ. मैं भाई साहब ऐसे चिल्लाया था जैसे ना वाओ फाइनली. सो टॉय कतर टॉय फेस्टिवल, इसके लिए आप तैयार हो चुके थे, वो ऑलरेडी चल रहा है. और क्या चल रहा है भाई, ये रनिंग इवेंट है, इस पे अगर आपने आपका ध्यान अभी तक नहीं गया तो दीजिए ध्यान. इसमें एक्साइटिंग एक्टिवेशंस हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं. बट इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ कतर टॉय फेस्टिवल इससे पहले, आप बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे अगर इस बार भी आपने छोड़ दिया. तो आलस नहीं करना भाई साहब, यहाँ पे पहुंचना है बच्चों को लेकर. बड़े भी जाएं. ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है, बहुत टाइम है आपके पास. दैट डजंट मीन कि आप लास्ट में चले जाएंगे, अभी तक भीड़ होगी ये मत सोच के जाना, क्योंकि बहुत सारे हाइलाइट्स हैं इसमें. मिस्टर बीन है, समर फन विद टेडी एंड बीन, ये एक्टिवेशन की एक डिटेल में लिखा हुआ नाम है जिसके सुन के बड़ा एक्साइटेड हुआ था मैं. तो ये अल हजम मॉल में रखा गया है. फिर बारबी है, समर इज मोर कलरफुल विद बारबी, इसकी लोकेशन है सिटी सेंटर. ये वीकडेज में 2 बजे से 10 बजे तक है रात के, और वीकेंड्स पे दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक. एंड इसके अलावा फिर मुआना है, और मुआना सेट सेल ऑन समर एडवेंचर विद मुआना, इसकी लोकेशन है दोहा फेस्टिवल सिटी. और इसके बाद है पिक्सार, योर फेवरेट पिक्सार वर्ल्ड्स इन वन समर, और ये है सेकंड फ्लोर पे प्लेस वेंडोम में. वीकडेज में 12 बजे से 10 बजे और वीकेंड्स पर 1 बजे से 12 बजे तक, मतलब रात के. सो बेसिकली क्या है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो मार्क किए जाते हैं ऑन द कैलेंडर बिकॉज उनका क्या कहते हैं, उनका जो रनिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है. इसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा टाइम है अभी. सो अगर आप अभी नहीं जा पाए, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, तो आप अभी भी जा सकते हैं. एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट. And I don't know कि आप वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे. इफ यू आर फॉलोइंग द वर्ल्ड कप, जरूर बताइएगा कि आप कहां पर जाने वाले हैं भाई साहब. फाइनल कहां देखने का प्लान है, अरे हमें भी बता दो भाई साहब, क्या दिक्कत होगी. तो हम भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या प्लान है, किधर जाना चाह रहे हैं आप. एंड वी वुड ऑल्सो लव टू ज्वाइन यू इफ वी कैन. बाकी कोई भी ऐसा इवेंट है, मैं आप फिर से कहूंगा, कोई ऐसा इवेंट है जो हमसे मिस हो जाए, आप बना चाहें तो जरूर बता दीजिएगा. एंड अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आप नजर बना सकते हैं, नजर अपनी गड़ा सकते हैं, और वो चीजें हैं जो समर फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई हैं. जैसे मैंने कहा, पहली तो स्टेकेशन ही है, उसके बाद समर एक्टिविटीज हैं जो कतर का वाटर स्पोर्ट्स है. अगर आप अभी तक किसी भी वाटर स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपको बनना चाहिए. मैं अगर आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया ना अभी तक कतर आ गए और आपने कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया है, सो यू आर मिसिंग ऑन अ बिग बिग थिंग. तो आपको इसका हिस्सा तो बनना चाहिए बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ एनीथिंग एट ऑल. तो पहुंचिए एंड हमें भी जरा इत्तला कीजिएगा कि कोई ऐसा वाटर स्पोर्ट्स हमसे रह गया हो, हमें भी तो पता लगे. और अब जरा बात कर लेते हैं एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट की और एक बहुत बहुत बड़े इवेंट की. कतर में वैसे तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स ऑलरेडी कतर ने स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में पूरे कर लिए हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस और हाई प्रोफाइल गेम जो है वो भी कतर में आ रहा है, इंटरनेशनल मेंस बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, जो ग्लोबली जाना माना है, फर्स्ट एवर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप. समझ रहे हैं आप, ये पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटीना में हुआ था 1950s में, 1950 में हुआ था भाई सबसे पहला वाला. और जो फाइनल था होस्ट ने हरा दिया था भाई, यूएसए के अगेंस्ट था. अब जो है आगे बढ़ गया है मामला, अब बड़ा हो चुका है. और 2027 का जो एडिशन है इसका, वो कतर होस्ट करने जा रहा है. इसमें 32 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इट इज सच अ ह्यूज ऑनर, क्योंकि जब वर्ल्ड कप की बात हुई थी वी वर सो एक्साइटेड. हमने मतलब एज अ नॉर्थ इंडियन, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने फुटबॉल में कभी इतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं था, मगर कतर ने जब वर्ल्ड कप कराया ना तो फिर ऐसी आदत लग गई है, अभी फुटबॉल की न्यूज ही फॉलो करता हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग लगती है. एंड नाउ आई काइंड ऑफ फेल इन फॉर इट, नहीं देखना भाई मैच तो देखना है. और वैसा ही हाल अभी होने वाला है, लोग अभी बास्केटबॉल में शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज कतर
कोई भी इवेंट जब करता है स्पोर्ट्स का, तो वो उस लेवल पे ले जाके करता है कि फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज फीकी पड़ जाती। मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ, एक बार ये कतर में हो गया ना, बाकी कंट्रीज करा ही नहीं पाएंगे इनके जैसे। लिख के दे रहा हूँ, सबके लिए ऐसा होगा, अरे कहाँ कॉम्पिटिशन होता रहेगा ये लोग। कतर का इस मामले में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और इसीलिए कतर को ग्लोबली इज्जत दी जाती है हर मामले में, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। सो 2027 का एडिशन कतर होस्ट करेगा एंड जो क्वालिफाइड टीम्स होंगी वो डायरेक्टली एलए 2028 ओलंपिक गेम्स का हिस्सा भी बनेंगी थ्रू फीबा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस वर्ल्ड वाइड आने वाले हैं। यस अगेन एक्साइटमेंट ऑफ रोड टू कतर शुरू हो चुका है भाई, काउंटडाउन। अभी तो जुलाई है, आधा साल जा चुका है, अभी देखिए आप फटाफट जा जाएगा 2028 ये खड़ा, आगे 2027 ये खड़ा, मैं 28 ला रहा हूँ, 27। तो 80 नेशनल टीम्स ऑल फोर फीबा रीजन्स कम्पीट करने वाले हैं इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफायर्स 15 महीने के इस वक्फे में। और जो क्वालिफायर्स होंगे दे विल शोकेस ओवर 2000 प्लेयर्स अक्रॉस 420 नेशनल टीम एंड इंटेंस बास्केटबॉल एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो टोटल 80 नेशनल टीम्स होंगी फ्रॉम फोर फीबा रीजन्स ऑफ अफ्रीका, जहां से 16 टीम निकलेंगी, फिर अमेरिका 16 टीम, फिर एशिया एंड ओशनिया तो 16 टीम्स, एंड फिर यूरोप की 32 टीम्स, ये सारी की सारी मिला के दे विल प्ले इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफायर्स, दो गेम्स पर विंडो। एंड ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि टिकट्स की भी विंडो जब ओपन होगी तो वो कतर में कैसे ओपन होती है आपको ऑलरेडी पता है वैसे तो, पर फिर भी बता दूं, जब कतर में ओपन होगी तो ये मत सोचिएगा आलस में, कह रहे टिकट ले लेते हैं बाद में ले लेंगे, पहली फुर्सत में मैंने अभी से आगाह कर दिया, आधे साल में अभी से जनवरी के लिए, तो तैयार रहिएगा भाई साहब। रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन बाकी चीजों की जल्दी आ जाएगी, कहाँ पे मैच होने वाले हैं ये भी जल्दी पता लगेगा। जो क्वालिफाइंग विंडोज हैं हर रीजन की वो इस तरीके से हैं कि नवंबर की 24 से पहली विंडो है 2 दिसंबर तक, फिर फरवरी में हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब 2025 चलती हुई आ रही है, और अब जो आने वाली है वो नवंबर की 23 तारीख से है, उससे पहले अगस्त से, अगस्त में भी है 24 से 1, फिर 23 से 1 दिसंबर नवंबर, और फिर फरवरी 22 से 2 मार्च तक। सो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, मगर फीबा इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कतर, और इससे बड़ी फखर की बात होनी चाहिए। सो वेरी वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू अनाउंस दिस। वैसे तो आपको पता है ये खबर बहुत ही प्रेवलेंट इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रिवेल करेगी और भी ज्यादा लोगों तक और भी पहुंचेगी और बहुत बड़ी होती चली जाएगी, एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कब क्या हो गया। एंड लास्टली, क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं आने वाले बड़े बड़े इवेंट की, तो एक और इवेंट है जो बहुत बड़ा है और जो आने ही वाला है। कौन सा इवेंट है पता है ना? ये इवेंट है मोटो जीपी कतर एयरवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026 और फॉर्मूला 1 कतर एयरवेज ग्रैंड प्री 2026। एक तो आएगा मोटो जीपी, वो 6 से 8 नवंबर है, और फॉर्मूला 1 27 से 29 नवंबर के बीच में। सो इन पे भी नजर जरा बना के रखें, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग हेयर ओनली। बाकी एक और इवेंट है, मेजर इवेंट, किसी ने मुझसे कुछ दिनों पहले पूछा था हमारे ऑफिस में ही, एनो पूछा था कब है भाई, क्या हैंस ज़िमर कब आ रहे हैं, तुम कब से कह रहे हो हैंस ज़िमर परफॉर्म करने वाले हैं? अरे भाई मैं खुद देखने जाऊंगा हैंस ज़िमर को, ये 6 नवंबर को आ रहे हैं, फ्राइडे का दिन है ठीक है, और रात को 8 बजे परफॉर्म करेंगे। मुझे आपका नहीं पता, मैं हैंस ज़िमर का बहुत ही बड़ा फैन हूँ भाई, बहुत ही बड़ा फैन हूँ हैंस ज़िमर का, एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इफ नॉट द बेस्ट, ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन 974 स्टेडियम, और ये परफॉर्म करेंगे 6 नवंबर को, दैट इज अ फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गेट रेडी फॉर समथिंग वेरी वेरी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग रियली अमेजिंग। एंड बाकी अगेन सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर। इन इवेंट्स के जरिए मकसद ये भी रहता है कि आप भी इन इवेंट्स का हिस्सा बने, और अगर कुछ ऐसा इवेंट है जो हमसे चूक जाए तो आप भी हमें बताएं, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होना, हमसे जुड़ना, इट इज इम्पोर्टेंट। एंड एक और चीज, ये रिसेंटली मैंने अभी फोन खोला तो मेरे सामने ही आ गया, कतर कल्चर एंड हेरिटेज फेस्टिवल, इस पे भी नजर रखिए, बिकॉज दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंडे को है, अगस्त की 31 तारीख को सुबह के 10 बजे से, अभी दिन है, अच्छे खासे दिन है, मगर ये जो कतर कल्चरल और हेरिटेज फेस्टिवल होता है बड़ा ही वाइब्रेंट इवेंट होता है, बहुत ही रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशंस इसमें कतर के दिखाए जाते हैं, और कोई नया नया भाई कतर में आया ये आप मिस नहीं कर सकते। यू कैन

0: कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस वन. इसके वेन्यू, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे पास आती चली जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा. एंड इसके साथ इंटरनेशनल फूड एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस भी आपको जल्द मिलेगा. ये आने वाले इवेंट है जिनके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है ऊपर से, तो ऊपरी ऊपरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ आपको. बाकी जब जैसे जैसे होता चला जाएगा, जैसे कि कतर T100 ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो दिसंबर में होगी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जब आ जाएगी तो आपको मिलेगी. ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, तो अगर आपके जहन में कोई इवेंट्स हैं और आप हम तक पहुंचाना चाहें तो बेझिझक मोस्ट वेलकम. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं. क्योंकि क्या होता है, सुनते सुनते आपको लगता है कि ये बात तो सुन ली इसकी, अब जरा आवाज को चेहरा दे दिया जाए, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं. दोहा वाला कबीर के नाम से मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको मिल जाऊंगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप अगर कतर में नए आए हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है आपकी. ये तो कुछ इवेंट है जो गर्मियों में हो रहे हैं, आने वाले वक्त में बहुत सारे इवेंट है. सो प्लीज पुश योरसेल्फ, नए आए हैं आप तो पुश योरसेल्फ एंड गो टू मैक्सिमम इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस. क्योंकि ये मौका जो कुछ इवेंट अभी हो रहे हैं ये वापस यानी अगले गर्मी तक वेट करना पड़ेगा आपको. तो प्लीज प्लीज निकले कहीं ना कहीं किसी इवेंट में जाएं, एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ कतर. ऑन दैट नोट, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
1: कतर 2026, कतर 2026.
2: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है. इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों. ये इकदामात कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।
2: अल्लाहू अकबर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा, और आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में जानकर आप थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा क्यूरियस जरूर होंगे। साथियों, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ रोमानिया के एक शहरी इलाके के करीब, जो कि हरियाली से घिरे हुए धीमे उतरते चढ़ते पहाड़ी दामन में मौजूद है, जहाँ पर मिलते हैं कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग पत्थर जिनको लोकल लोग ट्रोवेंट्स कहते हैं। इन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पत्थर जिंदा हों। कभी आप उन्हें देखें तो वो आपको गोल और स्मूथ नजर आती हैं, और कभी कभी उनकी सतह पर टाइनी सी टेंगल नॉट्स नजर आती हैं। कभी कभी तो लोगों को इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों ने अपनी बैग पर छोटा बच्चा उठाया हुआ है। लोग कहते हैं ये पत्थर बढ़ते हैं, बारिश के बाद इनकी सतह पर नई परत आ जाती है, जैसे पत्थर ने कुछ वेट गेन कर लिया हो। मगर ये जिंदगी बायोलॉजिकल नहीं, जियोलॉजिकल है। साथियों, ट्रोवेंस असल में सीमेंटेड सैंडस्टोन कॉन्क्रीशंस हैं, यानी रेतीली मिट्टी और छोटे छोटे जर्रात जो जमीन के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर पत्थरी मास बन जाते हैं। वक्त के साथ पानी की रवानी और केमिकल रिएक्शन इनकी सतह पर नई लेयर्स जमा करती रहती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पत्थर पर नई जड़ों वाला पौधा उगाया हो, और इसी प्रोसेस को लोग ग्रोथ समझ लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हम रोमानिया के इन लिविंग रॉक्स की साइंस, रिवायात, मकामी कहानियां और फील्ड ऑब्जर्वेशन समझेंगे। आप और मैं मिलकर ये समझे कि कैसे एक सिंपल सा रेत का ढीला केमिकल दुनिया की एक छोटी सी लेबोरेटरी में तब्दील होकर ऐसे पत्थर बनाता है जो हमें हैरान कर देते हैं। साथियों, रोमानिया जहां कार्पेथियन माउंटेन्स एक बड़े कॉस की शक्ल में मुल्क को घेरे हुए हैं, उन्हीं के सब कार्पेथियन फुट हिल्स के दरमियान वलेसिया कंट्री का इलाका आता है। कॉस्टेसी गांव के करीब रोड पर आपको एक छोटा सा जियोलॉजिकल रिजर्व मिलता है, जिसे लोग म्यूजियल त्रोवेंटिलो यानी टॉरवेंट म्यूजियम नेचुरल रिजर्व कहते हैं। ये खुली हवा का म्यूजियम एक ऐसा मकाम है जहां जमीन के ऊपर बिखरे हुए डजंस ऑफ कंक्रीट दिखाई देते हैं, छोटे बड़े गोल, कुछ बिल्कुल बन जैसे स्मूथ और कुछ पर गुठलियां जैसी निकली हुई होती हैं। इस इलाके की बुनियादी मिट्टी पुराने मायोसिन दौर के सैंडी पत्थरों पर मुश्तमिल है। ये वो जमाना था जब यहाँ के क्लाइमेट और पानी ने रेत और चूनो को मिलकर सीमेंटेड लेयर्स बनाई। जमीन के नीचे से गुजरने वाला मिनरल रिच ग्राउंड वाटर जब किसी नुक्ते पर रुकता या धीमा होता तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जमा होना शुरू हो जाता, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके केटल में भी वक्त के साथ साथ स्केल जमा होता जाता है। मगर यहाँ ये जमा होने वाला नक्शा गोल या एलिप्टिकल शक्ल बनाता, और यूं एक नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीशन की शक्ल इख्तियार कर लेता। बारिश, हवा, धूप, तमाम वेदर फैक्टर्स फिर उन पत्थरों को जमीन के रेस्ट से अलग करके ऊपर कर देते हैं। जैसे जैसे ऊपर की मिट्टी बह जाती है, ये पथरीले गोले सबसे पहले जमीन सतह पर नजर आने लगते हैं। इसीलिए आज आप इन्हें खुली जमीन पर देखते हैं। हालांकि इनकी पैदाइश की कहानी जमीन के नीचे की कीमियाती दुनिया से शुरू होती है। साथियों, आप अगर पहली दफा कॉस्टेस्टी के रिजर्व में जाएं, तो आपको ये पत्थर फोटोजेनिक लगेंगे। धूप पड़ते ही हल्की सी चमक, बरसात के बाद रंग थोड़ा सा गहरा, और कुछ पत्थरों पर तो बिल्कुल सैटेलाइट जैसी छोटी गुठलियां चिपकी हुई होती हैं। लोकल लोगों का ये मानना है कि ये पत्थर जिंदा होते हैं क्योंकि इन पर बडिंग नजर आती है। ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी बड़ी सी शय से कोई छोटी सी शय निकल कर आई हो। लोकल लोगों के मुताबिक कुछ रिवायात ये कहती हैं कि बरसात के बाद ये पत्थर बढ़ गए या जरा फूल गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कभी कभी पत्थर हिल भी जाते हैं यानी अपनी जगह

का से थोड़ा सा सरक कर दूसरी जगह पर होते हैं। हालांकि इसकी वजह ज्यादातर सॉइल इरोजन या इंसान का इन्हें कहीं ना कहीं हिला देना होता है या कभी स्लोप पर धीमा धीमा सरकना। जियोलॉजिस्ट की नजर में ये तमाम औरों यानी गोल पत्थरों की कहानियाँ दरअसल एक कीमियाई नशोनुमा की कहानी है। जब मादनियात से भरा हुआ पानी जो कि अक्सर औकात कैल्शियम कार्बोनेट वाला होता है इन पत्थरों की सतह तक पहुंच जाता है तो वहां कार्बोनेट जमा होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दही जमता है। हर बारिश के बाद जब पानी खुश्क हो जाता है तो एक नाजुक सी तह पीछे रह जाती है। सालों और दहाइयों में ये तहें इकट्ठी होकर एक नुमाया उपहार की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर आप इनमें से किसी पत्थर को क्रॉस सेक्शन से काट कर देखें, जो कि सिर्फ रिसर्च परमिट से मुमकिन होता है, तो इसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग नजर आएगी जो कि बिल्कुल दरख्त की ग्रोथ रिंग की तरह होती है। ये रिंग्स सालाना कैलेंडर नहीं होती लेकिन ये बताती हैं कि ग्रोथ एपिसोडिक यानी वक्फे वक्फे से हुई, यानी जब जब पानी और कार्बोनेट की सप्लाई मिली तब तक नई लेयर बनी। कुछ रिवायतों में इन पत्थरों को नजर से बचाने, घर की हिफाजत या फार्मिंग के लिए खुशहाली लाने की चीज समझा गया। कुछ लोग तो छोटे ट्रोवेंट्स को दरवाजे के करीब रख देते थे कि वो बुरी नजर से महफूज रखेंगे। साथियों आजकल क्योंकि ये इलाका प्रोटेक्टेड है इन्हें उठाना, तोड़ना या घर ले जाना गलत समझा जाता है ताकि ये नेचुरल लेबोरेटरी अपनी असल सूरत हाल में कायम रहे। साथियों ग्रोथ से मुराद कार्बोनेट लेयर्स का जमा होना है जो बरसात और मिनरलाइज्ड पानी की वजह से प्रेसिपिटेट होती रहती हैं। कभी कभी ये ग्रोथ मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में जज की जा सकती है जो कि बहुत लंबी मुद्दतों में होती है। साथियों एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्रोथ कंडीशंस पर डिपेंड करती है, पानी का अवेलेबल केमिस्ट्री, फ्लो पाथ्स, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट्स की कंपोजिशन। कुछ कंक्रीशंस मुकामी तौर पर इनएक्टिव भी रहती हैं। अगर सीधी जबान में समझाया जाए तो ट्रोवेंट्स इज इक्वल्स टू कंक्रीशंस यानी रेड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की सेमेंटेशन से बनने वाले गोल या अंडे नुमा सांचे। कॉन्सेंट्रिक लेयर यानी अंदर की हिस्ट्री बुक जो कि बताती है एपिसोडिक ग्रोथ का चैप्टर। बडिंग शेप्स जिससे सरफेस पर लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन से छोटी गुठलियां नुमा निकल आती हैं, जिसे लोग इन पत्थरों के बच्चे भी कहते हैं। और फिर बात आती है एरोजन्स और एक्सपोजर्स की, यानी ऊपर की मिट्टी हटती गई, कंक्रीशंस जमीन पर नुमाया होते गए। तो साथियों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने मिट्टी के लड्डू पर उंगली से हल्के से निशान बना दिए हों। करीब झुककर देखने पर आपको रेत के जर्रात, बीच बीच में चूने की हल्की चमक और कैल्साइट की नरम सी झलक नजर आती है और यही वो लम्हा है जब जमीन की कहानी सांस लेती महसूस होती है, जहाँ केमिस्ट्री और वक्त मिलकर एक ऐसी शक्ल तख्लीक करते हैं जो इंसानी आंख को जिंदा लगती है। चलिए साथियों, अब हम थोड़ा साइंटिफिक नजर से इन टॉरमेंट्स को देखते हैं। ये पत्थर सिर्फ सरफेस पे अजीब नहीं बल्कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हैरत अंगेज है। टॉरमेंट्स मोस्टली सैंड और सीमेंटेड मिनरल्स से बने हुए होते हैं, लेकिन उनका अंदर का कॉम्पोजिशन उनको यूनिक बनाता है। साइंटिस्ट ने लैब टेस्ट और थिन सेक्शन माइक्रोस्कोपी के जरिए उनके अंदर के लेयर्स और रिंग्स को स्टडी किया है। बिल्कुल ऐसे जैसे पेड़ के रिंग्स हमें उनकी एज बताते हैं, वैसे ही टॉरमेंट्स के कॉन्सेंट्रिक लेयर्स उनकी ग्रोथ हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के बारे में क्लूज देते हैं। लैब टेस्ट्स ये दिखाते हैं कि ये स्टोन्स मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हैं और उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जहाँ से पानी और मिनरल्स इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन उनके ग्रोथ रिंग्स को बनाती है और ये लेयर्स रिकॉर्ड करती हैं क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस का वक्त के साथ बदलना। तो अब सवाल ये है साथियों कि टॉरमेंट्स बढ़ते कैसे हैं भाई? इसका जवाब हाइड्रोकेमिस्ट्री में छुपा है। जब बारिश होती है या ग्राउंड वाटर पत्थरों के पोर्स से गुजरता है तो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं और फिर प्रेसिपिटेट करते हैं। ये कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन कहलाता है। और साथियों एक और प्रोसेस है कैपिलरी एक्शन, जहां पानी पत्थर के अंदर छोटे छोटे चैनल्स से मूव करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और नए लेयर्स क्रिएट करता है। और इस सब में कहीं ना कहीं क्लाइमेट का भी असर होता है। वार्म और वेट सीजन ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं जबकि ड्राई पीरियड्स ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन सालों में टॉरमेंट्स विजिबली बड़े लगने लगते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक नेचुरल सीमेंटिंग मशीन है जो सैंड और मिनरल्स को ग्रेजुअली नई लेयर में ट्रांसफॉर्म करता है। साथियों टॉरमेंट्स रोमानिया के लिए यूनिक हैं, लेकिन दुनिया में और भी सिमिलर फिनोमिनास पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोइराकी बोल्डिस की, जो कि न्यूजीलैंड पाए जाते हैं, ये भी राउंडेड कॉन्क्रीशंस हैं, लेकिन उनका साइज और फॉर्मेशन अलग है। ये मोस्टली मड और सिल्ट से बनते हैं और उनका सरफेस स्मूथ और पॉलिश्ड लगता है। और ऐसी ही एक चीज कजाकिस्तान में भी पाई जाती है जिसे कॉरियश कहा जाता है। ये स्टोन्स डेजर्ट्स में स्कैटर्ड हैं और टॉरमेंट्स की तरह अनयूजुअल शेप्स और ग्रोथ रिंग्स शो करते हैं। यूएसए में भी उताह कॉन्क्रीशंस पाए जाते हैं। ये ज्यादा हार्ड और डेंस होते हैं और मोस्टली सैंडस्टोन और कैल्साइट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इन सब स्टोन्स का एक कॉमन पॉइंट है मिनरल डिपोजिशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, लेकिन हर रीजन का सॉइल क्लाइमेट और ग्राउंड वाटर का बिहेवियर उनकी फॉर्मेशन और ग्रोथ का अलग स्टाइल देता है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरमेंट्स के फ्यूचर रिसर्च और उनके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के बारे में। ये स्टोन्स सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी हैं। उनके ग्रोथ रिंग्स और इंटरनल लेयर्स क्लाइमेट चेंज, सॉइल कॉम्पोजिशन और मिनरल इंटरैक्शंस को समझने के लिए एक नेचुरल रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम इन्हें स्टडी करें तो पलायोक्लाइमिक कंडीशंस का आइडिया मिल सकता है, यानी कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले का एनवायरनमेंट कैसा था हमें ये पता चल सकता है। ये स्टोन्स एक तरह से जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल्स हैं। साथियों अगर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस के बारे में बात की जाए तो चलिए जरा एडवांस इमेजिनेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, यानी मॉडर्न टूल्स जैसे स्कैन और 3D एक्सरे टोमोग्राफी, जिनसे टॉरमेंट्स के अंदर के स्ट्रक्चर और मिनरल्स डिपोजिशन पैटर्न्स को और क्लियरली स्टडी किया जा सकता है। चाहे तो हम केमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, इससे उनके बढ़ने की रेट और फैक्टर्स का एग्जैक्ट एस्टिमेशन पॉसिबल है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का असेसमेंट भी हो सकता है। और तो और कंपैरिजन स्टडीज भी हो सकती हैं, जो कि हमें बताएंगी कि डिफरेंट कंट्रीज के लिविंग स्टोन्स जैसे मोइराकी बिल्डर्स

टॉरिश के टॉर्मेंट से कंपेरिजन करके फॉर्मेशन मैकेनिज्म और एनवायरमेंटल इफेक्ट समझे जा सकते हैं। साथ ही टॉर्मेंट्स रोमानिया की एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज हैं और लोग यहाँ आकर इन स्टोन्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स और लोकल अथॉरिटीज ये वार्न करते हैं कि इन्हें टच या मूव करना उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। साथियों, इन जगहों पर कंजर्वेशन मेजरमेंट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जिससे ये नेचुरल वंडर्स सेफ रहें और फ्यूचर जेनरेशन के लिए प्रिजर्व रहें। ये स्टोन्स हमें ये भी सिखाते हैं कि नेचर कितनी क्रिएटिव और मिस्टीरियस हो सकती है। एक सिंपल सैंड और मिनरल का कॉम्बिनेशन सदियों के इंटरेक्शन के बाद एक ऑब्जेक्ट को बढ़ाता हुआ और ऑलमोस्ट लिविंग बनाता है। ये सिर्फ जियोलॉजिकल फिनोमेना नहीं बल्कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर हम टॉरेंट्स को ऑब्जर्व और स्टडी करते हैं तो फ्यूचर में और भी अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ अनकवर कर सकते हैं। हर नई डिस्कवरी हमें नेचर के इंट्रिकेट प्रोसेस को समझने और रिस्पेक्ट करने का मौका देती है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरेंट्स के उन मिस्ट्रीज और पब्लिक फैसिनेशन के बारे में जो प्योरली नेचुरल और साइंटिफिक हैं। रोमानिया के टॉरेंट्स लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए एक यूनिक क्यूरियोसिटी पॉइंट हैं। लोग यहाँ आते हैं, इन स्टोन्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बढ़ने की फिनोमिना से हैरान होते हैं। साथ ही जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंस का ताल्लुक है, टॉरेंट्स का ग्रोथ नेचुरल केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से होता है, लेकिन उनकी अजीब शेप्स और ग्रोथ पैटर्न्स ने लोकल्स को इमेजिनेटिव स्टोरीज क्रिएट करने पर मजबूर किया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि स्टोन्स मूव करते हैं या बढ़ते हैं और ये फैसिनेशन सेंचुरी से चली आ रही है। ये स्टोरीज प्योरली क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं और नेचर के वंडर्स को सेलिब्रेट करती हैं। साथ ही टॉरेंट्स जियोलॉजी और अर्थ साइंसेस को समझने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स के लिए यहाँ आते हैं और हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ये स्टोन्स लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो जियोलॉजी, हाइड्रोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करें। रोमानिया के टॉरेंट्स नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड साइट्स में लोकेटेड हैं, जहां कंजर्वेशन मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। विजिटर इंटरेक्शन कंट्रोल्ड होता है ताकि उनके नेचुरल और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ये अप्रोच ये डेमोंस्ट्रेट करती है कि ह्यूमंस और नेचर का बैलेंस मेंटेन करना बिल्कुल पॉसिबल है। साथियों, साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट के लिए टॉरेंट सिर्फ एक नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि रिसर्च का गोल्ड माइन है। उनके ग्रोथ पैटर्न्स, मिनरल कॉम्पोजिशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन हमेशा नए क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस रेज करते हैं। ये स्टोन्स हमें ये सिखाते हैं कि अर्थ के सिंपल एलिमेंट्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक फिनोमिना क्रिएट कर सकते हैं जो सेंचुरीज तक स्टडी और ऑब्जर्वेशंस के लायक होते हैं। साथियों, टॉरेंट्स की यूनिकनेस और उनकी नेचुरल ग्रोथ के फिनोमिना लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनकी स्टडी से एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने का मौका मिलता है। ये स्टोन्स हमें क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाते हैं और ये इस बात का सबूत है कि नेचर में अभी भी भाई बहुत कुछ है ऐसा जिसको हमें अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं टॉरवेंस के फ्यूचर और उनके कंजर्वेशन के बारे में। ये स्टोन्स सिर्फ एक नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जियोलॉजिकल हेरिटेज का पार्ट हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर केयर ना करें तो उनकी यूनिक ग्रोथ पैटर्न्स और साइंटिफिक वैल्यू फ्यूचर जनरेशंस के लिए लूज हो सकती है। रोमानिया के टॉरवेंस अब ऑफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया में इंक्लूड हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनके आसपास कंस्ट्रक्शन या माइनिंग एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। ये इन स्टोन्स को ह्यूमन इंटरेक्शन से बचाता है। और तो और, यहाँ जो टूरिस्ट्स आते हैं उन टूरिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि स्टोन्स को टच या मूव ना करें। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफी अलाउड है। गाइडेड टूर्स और ओरिजिनल पैनल्स के जरिए लोगों को ये एक्सप्लेन किया जाता है कि उन पत्थरों का बढ़ना नेचुरल केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से होता है और किसी भी डिस्टर्बेंस से ये प्रोसेस रुक सकता है। साथियों, साइंटिस्ट्स और यूनिवर्सिटीज के बीच कोलैबोरेशन प्रमोट किया जा रहा है ताकि टॉरवेंट्स के ग्रोथ रेट, मिनरल कॉम्पोजिशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस का डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट हो सके। इससे स्टोन्स की लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और मॉनिटरिंग पॉसिबल है। साथियों, टॉरवेंट्स सिर्फ एक लोकल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि ग्लोबल जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी वैल्यूएबल हैं। इन स्टोन्स को स्टडी करके क्लाइमेट चेंज, सॉइल कॉम्पोजिशन और हाइड्रोकेमिकल प्रोसेस का आइडिया मिलता है। फ्यूचर रिसर्च

में इन्हें मुख्तलिफ कंपेरिजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ग्लोबल जियोलॉजिकल पैटर्न्स और मिनरल फॉर्मेशन प्रोसेसेस को समझा जा सके। साथियों इनके मुतालिक पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती। इनकी कंजर्वेशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पब्लिक अवेयरनेस है। लोकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज यहाँ फील्ड ट्रिप्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जहाँ स्टूडेंट्स और विजिटर्स हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस करते हैं। ये अप्रोच टॉरवेंस को सिर्फ नेचुरल वंडर नहीं बल्कि एजुकेशनल टूल भी बनाता है। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन की तो भाई क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंज का टॉरवेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। साइंटिस्ट्स रेकमेंड करते हैं कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और केमिकल एनालिसिस कंडक्ट की जाए ताकि उनकी ग्रोथ और इंटीग्रिटी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझा जा सके। इससे फ्यूचर जनरेशन भी इन लिविंग रॉक्स की ब्यूटी और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को एंजॉय और स्टडी कर सकेगी। साथियों टॉरवेंट्स रोमानिया की एक यूनिक नेचुरल ट्रेजर हैं। उनका स्टडी और प्रिजर्वेशन हमें जियोलॉजी मिनरोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस का डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। ये स्टोन्स नेचर की क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है और उनकी मिस्ट्रीज हमेशा क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। टॉरवेंट्स रोमानिया के लिए एक लिविंग नेचुरल वंडर हैं। उनका ग्रोथ स्ट्रक्चर और इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ हमें दिखाता है कि जियोलॉजी सिर्फ रॉक्स की स्टडी नहीं बल्कि डायनेमिक और एवर इवॉल्विंग सिस्टम है। ये स्टोन्स क्यूरियोसिटी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। और साथियों इसी के साथ हमारी जर्नी यहीं पे खत्म होती है यानी स्टोन्स दैट ग्रो। रोमानिया के मिस्टीरियस लिविंग रॉक्स का फैसिनेटिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए। साथियों नेचर के हर कॉर्नर में अभी भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी को चैलेंज करते हैं। साथियों रोमानिया की ये मिस्टीरियस लिविंग रॉक्स जिनको लोकल लोग टॉरेंट्स भी कहते हैं सिर्फ एक जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जिंदगी और वक्त के बेहतरीन सबूत भी हैं। ये पत्थर ना सिर्फ देखने में इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि इनके अंदर छुपी केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोसेसेस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हमने ये जाना कि इनका वजूद किसी भी आम पत्थर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता सालों और दहाइयों का सफर करते हैं, अपनी शक्ल और साइज को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रोसेस को समझना इंसानी क्यूरियोसिटी और साइंस दोनों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि टॉरवेंस का वजूद मिनरलाइज्ड वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट के इंटरप्ले का नतीजा होता है। जब बारिश का पानी इन पर पड़ता है तो ये केमिकल्स सैचुरेट होते हैं और छोटी छोटी लेयर्स बनाते हैं, यानी बिल्कुल दही जमाने के तरीके की तरह। हर बारिश के बाद ये लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होती हैं और वक्त के साथ साथ ये लेयर्स इतनी थिक और सॉलिड हो जाती हैं कि इंसानी आंख को ये एक जिंदा शय लगने लगती हैं। इस फिनोमिना को देखकर ये समझ आता है कि नेचर का पेशेंस और कंसिस्टेंसी कितना पावरफुल है। एक प्रोसेस जो सालों तक चलता है और आखिरकार हमें एक ग्रोइंग स्टोन के रूप में नजर आता है। साथियों टॉरवेंट्स का ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ उनकी ग्रोथ तक महदूद नहीं होता। उनकी सरफेस पर छोटे छोटे उभार रेत की जर्रात और हल्की चमक वाले कैल्साइट के पार्टिकल्स इन्हें एस्थेटिक तौर पर भी बहुत दिलचस्प बनाते हैं। जब सुबह की हल्की धूप इन पर पड़ती है तो ये पत्थर जिंदा लगते हैं, यानी एक तरह की नेचुरल स्कल्पचर जो नेचर और टाइम के मिलने का सबूत है। ये रॉक्स हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अर्थ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो कि अक्सर हमारे लिए इनविजिबल होते हैं कितने गहरे और मीनिंगफुल रिजल्ट्स ला सकते हैं। साथियों इंसानी पर्सपेक्टिव से ये टॉरवेंट्स सिर्फ रॉक्स नहीं बल्कि एक स्टोरी कहते हैं, टाइम केमिस्ट्री और पेशेंस की स्टोरी। ये हमें सिखाते हैं कि हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है और ग्रोथ हमेशा इंस्टेंटली नहीं होती। ये रॉक्स एक मेटाफॉर भी हैं इंसानी जिंदगी के लिए। जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं वैसे ही इंसानी स्किल्स नॉलेज और एक्सपीरियंसेस भी वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं। आखिर में रोमानिया के ये मिस्टीरियस लिविंग स्टोन्स हमें नेचर की क्रिएटिविटी और पावर का एहसास

0: दिलाते हैं। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम पेशेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ दुनिया को देखें और हर छोटी चीज में भी ग्रोथ और लाइफ के सबूत तलाश करें। टॉरवेंट्स सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं बल्कि जिंदगी और वक्त के नेचुरल लेसन्स भी हैं, जो हमेशा हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि लर्निंग और ग्रोथ कभी नहीं रुकती, चाहे वो रॉक्स हों या इंसानी जिंदगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.a।
5: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग न सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।

0: हुशुमा एक्सप्रेस।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।
4: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, जब बात करेंगे यूनिस अली के बारे में, जी हां, यूनिस अली 43 ईयर ओल्ड कतरी फुटबॉल कोच हैं और मुल्क के कामयाब तरीन मकामी टैक्टिशियंस में शुमार किए जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी अल अरबी फुटबॉल क्लब के साथ आई जब उन्होंने 2023 में अमीर कप जीतकर क्लब का तकरीबन 30 साल का टाइटल ड्रॉट खत्म कर दिया। 2021 से 2024 के दरमियान अल अरबी क्लब की कोचिंग करते हुए उन्होंने टीम को 2023 का अमीर कप और 2024 का कतरी अमीरती सुपर कप जितवाया, जबकि 2022-2023 सीजन के लिए उन्हें QFA नहीं कतर फुटबॉल एसोसिएशन का बेस्ट कोच का अवार्ड से भी नवाजा गया। बाद में यूनुस अली ने अल अहली की कोचिंग एक डेढ़ साल के कॉन्ट्रैक्ट पर संभाली और AFC चैंपियंस लीग में टीम को शानदार परफॉर्मेंस दिलाई, जहां उन्होंने अपने ग्रुप में टॉप मकाम हासिल किया। 2024-2025 सीजन में उन्होंने अर्रयान जैसे कतरी जायंट्स की भी कोचिंग की और अपनी टैक्टिकल सोच का मुजाहरा किया। दोस्तों, मैनेजमेंट में आने से पहले यूनुस अली एक नुमाया सेंट्रल मिडफील्डर थे। उन्हें गार्डियोला का टाइटल भी दिया गया क्योंकि उन्होंने अल अहली में मशहूर खिलाड़ी, मशहूर कोच पेप गार्डियोला के साथ खेला। अपने प्लेइंग करियर के दौरान उन्होंने अल अहली, अर्रयान और सलाल की नुमाइंदगी की और कतर की कौमी फुटबॉल टीम के लिए भी खेलकर अपना नाम रोशन किया। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम और उन गिजाओं की जो हमारी बोन्स को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैल्शियम जिस्म का एक नहायत अहम जुज्व है। हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जखीरा होता है। अगर खुराक से मुनासिब मकदार में कैल्शियम ना मिले तो जिस्म अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए फिर हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिससे फिर हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों, नौजवानों और हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और बुज़ुर्ग अफराद को ख़ास तौर पर कैल्शियम की मुनासिब मकदार की ज़रूरत होती है। आइए आज हम जानते हैं कि कैल्शियम किन गिज़ाओं से हासिल किया जा सकता है। दूध और दूध से बनी अशिया जैसे दही, पनीर, लबन कैल्शियम के बेहतरीन ज़राए हैं। रोज़ाना उनका इस्तेमाल बोन्स की मजबूती में मदद देता है। सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, ब्रोकली है और साग भी कैल्शियम फ्राहम करती हैं। इनमें और भी बहुत से मुफीद गजाई अज्जा भी मौजूद होते हैं जो मजबूत सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह एलमंड्स, तिल और जो दूसरे बीज हैं वो कैल्शियम के अच्छे ज़राए हैं। इसी तरह चने, दालें और लोबिया जैसी गजाएँ भी बोन्स को सेहतमंद रखती हैं। फिश, ख़ास तौर पर वो फिश जिसकी जो नरम हड्डियाँ भी खाई जा सकती हैं, कैल्शियम और वाइटामिन डी दोनों फ्राहम करती हैं। वाइटामिन डी के बगैर जिस्म कैल्शियम को मौसर तरीके से जज्ब नहीं कर सकता, इसलिए मुनासिब धूप लेना और वाइटामिन डी वाली गिजाओं का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादा नमक, फास्ट फूड, मीठे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बोन्स की सेहत पर मनफी असर डाल सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम कीजिए। इसी तरह वालदैन को चाहिए कि बच्चों की गिजा में शुरू ही से दूध, दही, फल, सब्जियां और दीगर सेहतमंद गजाएँ शामिल करें ताकि उनकी जो बोन्स हैं वो मजबूत बन सकें। याद रखिए, मजबूत बोन्स के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि जो बैलेंस डाइट है, वाइटामिन डी है और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी भी बेहद ज़रूरी है। तो सेहतमंद गजा अपनाइए, अपनी बोन्स को मजबूत बनाइए और एक एक्टिव जिंदगी गुजारिए।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को बड़े इम्पैक्ट देती हैं। आज का टॉपिक है साथियों DIY रीयूजेबल बैग्स, यानी खुद से बनाए गए रीयूजेबल बैग्स जो हम शॉपिंग, स्कूल, ट्रैवलिंग या डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। साथियों प्लास्टिक बैग्स का टाइम जल्दी, इजी और फ्री होता है, लेकिन उनका एनवायरनमेंट कॉस्ट बहुत लंबा और हैवी होता है। देखें, इको स्विच हमें ये सिखाता है कि थोड़े से एफर्ट से आप लॉन्ग टर्म में प्लैनेट को सेफ बना सकते हैं। जरा सोचिए, आप सुपरमार्केट गए और बिलिंग पर जो काउंटर होता है बिलिंग का, वहाँ पर कैशियर आपसे पूछती है या पूछते हैं कि भाई बैग चाहिए आपको, और आप ऑटोमेटिकली बोल देते हैं हाँ। देखिए, वो देखने में तो आपको एक छोटा सा प्लास्टिक बैग लगता है, लेकिन अगर आप उसे यूज करते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, फिर वो या तो फिर डस्टबिन में चला जाता है या किसी ड्रॉअर में आप उसे डालकर भूल जाते हैं। अब इको स्विच एंगल से अगर इसे देखा जाए तो सिर्फ एक प्लास्टिक बैग बनने में पेट्रोलियम यूज होता है और उसे डिग्रेड होने में 20 से 200 साल तक लग सकते हैं। मतलब एक 10 मिनट का कन्वीनियंस 100 का प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, दुनिया भर में हर मिनट लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं। सिर्फ एक प्लास्टिक बैग को बनाने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है ना, वो होती है तकरीबन 60 वॉट बल्ब को 10 से 15 मिनट चलाने के बराबर। ग्लोबली सिर्फ 1-3% प्लास्टिक बैग्स ही रिसाइकल होते हैं साथियों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स को खाना समझकर इंजेस्ट कर लेते हैं, जो उनकी डेथ का मेन रीजन बन जाती है। अब आप पूछेंगे कि सफा, हाउ इको स्विच हेल्प्स इन दिस थिंग? तो देखिए, DIY बैग्स इज इक्वल्स टू जीरो वेस्ट सॉल्यूशन। देखिए भाई, इको स्विच का आइडिया यहाँ बहुत सिंपल है। अगर हम रीयूजेबल बैग्स खुद बना लें या यूज करें, तो हम डायरेक्ट प्लास्टिक डिपेंडेंसी रिड्यूस कर देते हैं। DIY बैग्स का सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कस्टमाइज भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। एक कॉटन रीयूजेबल बैग अपनी लाइफ टाइम में 500 से ज्यादा प्लास्टिक बैग्स रिप्लेस कर सकता है। मतलब एक छोटा सा बैग एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बर्डन कम कर सकता है। जरा सोचिए ना साथियों, आपके घर में एक पुरानी जीन्स या टी शर्ट है जो अब आप नहीं पहनते। इको स्विच अप्रोच कहती है कि उसे आप फेंकने के बजाय उसे रीयूज कर लेना। उसे क्या करें, उसके टोटे टोटे काट कर आप उससे एक बहुत ही प्यारा सा बैग बना सकते हैं। अब वो कपड़ा जो वेस्ट में जाने वाला था, वो एक यूजफुल इको प्रोडक्ट बन चुका है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी चीजों को सेकेंड लाइफ दे देते हैं बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इसी के साथ अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, वो भी मैं आपको दे देती हूँ। पहली तो ये कि हमेशा अपना रीयूजेबल बैग कैरी करें, स्पेशली व्हेन गोइंग आउट। दूसरा ये कि कार या बैग में एक एक्स्ट्रा फोल्डेबल बैग रखें, जस्ट इन केस यूज के लिए अपने आप रख सकते हैं। तीसरी चीज ये कि प्लास्टिक बैग्स को पोलाइटली रिफ्यूज कर दे। मैं भी अक्सर ये कहती हूँ, मुझसे जब दुकानदार पूछते हैं, बकाला में पूछते हैं, छोटी मोटी चीजें लेते हैं, तो वो पूछते हैं भाई आपको शॉपर चाहिए? मैं कहती हूँ नहीं, शॉपर नहीं चाहिए, क्योंकि वो शॉपर मुझे पता है कि मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने एक

0: से दो आइटम लिए मैं हाथ में उसको उठाकर जा सकती हूँ। चौथा, घर में DIY बैग मेकिंग एक्टिविटी फैमिली के साथ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइट वेट कॉटन या जूट मटेरियल प्रेफर करें क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथियों, इको स्विच का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि हम सिर्फ कंज्यूमर्स ना रहें बल्कि क्रिएटर्स भी बने। जब हम खुद रियूजेबल बैग्स बनाते हैं तो हम सिर्फ वेस्ट रिड्यूस नहीं कर रहे होते बल्कि अवेयरनेस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। स्टडीज ये शो करती हैं कि जो लोग DIY इको हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं उनकी लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी एंगेजमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है साथियों कि प्लास्टिक बैग जो रिफ्यूज करते हैं या रिप्लेस करते हैं वो एनवायरमेंट के लिए एक छोटी सी विक्ट्री होती है। DIY रियूजेबल बैग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है कि हम अपनी चॉइसेस से प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई, अगली बार जब आप शॉपिंग के लिए निकलें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर याद रखें। कैन आई कैरी माई ओन बैग इंस्टेड। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर बैग सिर्फ कैरिंग आइटम नहीं होता बल्कि एक ग्रीन कमिटमेंट होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे वादा निभाने की अहमियत के बारे में। वादा निभाना एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान की पहचान होती है। जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो असल में हम उसका भरोसा हासिल करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने वादों को पूरा करना चाहिए। वादा खिलाफी ना सिर्फ दूसरों को डिसअपॉइंट करती है बल्कि इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाती है। अक्सर लोग छोटी बातों को आम समझकर वादे तोड़ देते हैं, लेकिन असल में हर वादा अहमियत रखता है। जो शख्स अपने वादे निभाता है उस पर लोग भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। आज का मतलब यह है कि सिर्फ वही वादा करें जो आप निभा सकते हैं, और जो वादा कर लिया है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है वर्चुअल दुनिया की इकोनॉमी, या द मेटावर्स इकोनॉमी। मेटावर्स एक ऐसे डिजिटल दुनिया है जहाँ लोग वर्चुअल स्पेसेस में इंटरैक्ट करते हैं, काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं और अपनी लाइफ का एक हिस्सा गुजारते हैं। ये सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है और बन चुका है, जहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मेटावर्स, पहले तो मैं आपको बताऊं कि है क्या। मेटावर्स बेसिकली इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल है। यहाँ लोग अवतार्स के थ्रू एंटर करते हैं, जो का डिजिटल वर्जन होता है। ये अवतार्स मीटिंग्स अटेंड करता है, शॉपिंग करता है और सोशल इवेंट्स का हिस्सा भी बनता है। जैसे आज हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फ्यूचर में हम 3D वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करेंगे, जहां सब कुछ रियल जैसा लगेगा। डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी यहां से निकल के आता है। अब देखिए, मेटावर्स में एक पूरी वर्किंग इकोनॉमी, इसका मतलब है लोग वहां जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वर्चुअल शॉप्स जहां डिजिटल क्लोथ्स या फिर आइटम्स बिकते हैं, रियल स्टेट जहां लोग वर्चुअल लैंड खरीदते हैं और बेचते भी हैं और पैसे कमाते हैं। वहीं गेमिंग इकोनॉमी, प्लेयर्स रिवॉर्ड्स कितना कमा रहे हैं इसके बारे में तो आपको पता ही है। लोग डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल कॉइन्स यूज करते हैं जो रियल मनी से कनेक्टेड है। अब इसमें वर्चुअल जॉब्स और करियर ऑप्शंस भी होंगे। जी हाँ, मेटावर्स में नई टाइप्स की जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसमें वर्चुअल डिजाइनर्स हैं, लोग अवतार्स के लिए क्लोथ्स डिजाइन कर रहे हैं भाई। वहीं पर गेम डेवलपर्स जो कि वर्चुअल वर्ल्ड और एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। वहीं बात की जाए डिजिटल आर्किटेक्ट्स की, वर्चुअल बिल्डिंग्स, सिटीज, ये सब कुछ डिजाइन किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं डिजिटल आर्किटेक्ट के अलावा इवेंट मैनेजर्स की, तो ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। टीचर्स, जी हाँ, वर्चुअल क्लासरूम में टीचर्स टीच कर रहे हैं। ये जॉब्स रियल दुनिया की जॉब्स की तरह इम्पोर्टेंट होती जा रही है और फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगी। जी हाँ, वर्चुअल आइडेंटिटी, डिजिटल पहचान भी बनाई जा रही है। मेटावर्स में हर इंसान का एक उसकी अपनी डिजिटल आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी उसका अवतार, उसका प्रोफाइल और उसकी रेपुटेशन है। लोग अपनी आइडेंटिटी कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना लुक चेंज करना, अपनी पर्सनालिटी दिखाना, अपने स्किल्स रिप्रेजेंट करना। कुछ लोग अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा कर कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी बना रहे हैं, इस पर काम जारी है। वही अगर मैं बात करूं बिजनेस और ट्रेड की, तो बिल्कुल मेटावर्स जो है यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस भी हो रहे हैं और लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। कैसे, ये मैं कल आपको बताती हूँ। जब कल वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे किस तरह से बिजनेस और ट्रेडिंग का काम यहाँ चल रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे लिए समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें भी तो फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करना है, इन चीज़ों को जानना है, समझना है, जिससे हम भी इन्हें अडॉप्ट करके इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, आज के लिए तो मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लूँगी। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, हर हफ्ते मैं एक नया फ्रॉड का एक ऐसा स्कैम लेकर आता हूँ, एक ऐसा फ्रॉड लेकर आता हूँ जो हमारी और आपकी आंखें खोलेंगी। जैसे हम हर रोज नए स्कैम के बारे में जान रहे हैं, वैसे स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स हर हफ्ते एक नया स्कैम लेकर भी आ रहे हैं जिसमें हम कभी फंस सकते हैं और हमारे जो जमा पूंजी, हमारे जो पैसे हैं वो एक बार में गायब हो सकते हैं। ऐसे में हमें हमेशा पता होना चाहिए कि क्या सही स्कीम है, क्या सही प्रोडक्ट है, क्या सही बात है, या क्या ऐसा फोन कॉल है, कौन सा ऐसा फोन कॉल है जो हमें फ्रॉड या स्कैम कर सकता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक स्कैम के बारे में जो अब प्रोडक्ट तक आ गया है। मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद अब जब घर आते हैं आपको उस प्रोडक्ट पे दिखता है कि यार मुझे कुछ और भी पैसे मिल सकते हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। कई बार दुकानदार या फिर रेलवे स्टेशन पे या कहीं बाहर जाते हुए या बस अड्डे पे जाते हुए या बस स्टेशन पे, बस अड्डा अगर नहीं समझ में आ रहे तो कहीं आप बाहर जाते तो आपको एहसास होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। और आप चेक करते हैं, सामने वाला आपको चेक कराता है, सामने वाला आपको एक ऑफर भी देता है कि इसे खरीदने के बाद एक अंदर QR कोड है जिसे आप स्कैन करेंगे तो आराम से आपको 700, 500, 1000 रुपए या कुछ और पैसे भी मिल जाएंगे। आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं उस QR कोड को स्कैन करने के बाद। आपको लगता है सही है, ये प्रोडक्ट भी ठीक है, सस्ता भी है और पैसे भी मिलेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है। आप वो प्रोडक्ट लेकर आते हैं, हो सकता है किसी वेबसाइट से खरीदे, किसी फेक वेबसाइट से खरीदे या किसी ऐसे वेबसाइट से खरीदे जहां से आपको स्कैम होने का डर हो, या ऐसे वेबसाइट से खरीदे जहां आपको लगता हो कि ये सही वेबसाइट है। आप वो प्रोडक्ट घर लेकर आते हैं, खोते हैं, वो प्रोडक्ट जो होता है वो सही होता है लेकिन उसमें एक वारंटी कार्ड होता है। शुरू होता है खेल अब यहां पर, जहां आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं, एक लिंक ओपन होता है और वो लिंक आपको दूसरे किसी फेक लिंक पर ले जाता है और फिर एक पेमेंट करने वाली ऐप ओपन होती है। इंडिया में ऐसी कई ऐप है जिससे आप फ्रेंड्स को, फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हैं पेमेंट। वो ऐप ओपन होती है और उस QR कोड को ओपन करने के बाद आपके पास वो पेमेंट का ऑप्शन आता है जहां पर आप स्क्रैच करेंगे, आपको दिखाएगा कि 790 रुपीज या 800 रुपीज या 1000 रुपीज या 1200 रुपए जो है वो आपको मिल जाएंगे और आपको लगता है कि ये सही तरीका है कि पैसे निकाल ले। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं वहां पर एक स्कैम आपका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको लगता है ये पेमेंट आपके बैंक में आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पेमेंट उल्टा आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। मुझे ऐसी बात पे भरोसा बिल्कुल नहीं था कि इस तरीके से कौन करेगा कि बाकायदा एक प्रोडक्ट बनाए, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करे, अंदर एक वारंटी या गारंटी कार्ड डाले, फिर उसको आप स्कैन करें। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा, सोशल मीडिया पर देखा, एक दो लोगों से बात भी हुई कि इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। तो ऐसे में बचा कैसे जाए? देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है स्कैम से बचने का, लेकिन टफ भी है। आसान तरीका यह है कि किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना किया जाए। मिसाल के तौर पे आपको अगर सस्ता प्रोडक्ट दिखता है तो बिल्कुल मत खरीदें। दूसरा ऑप्शन यह है किसी फेक वेबसाइट से ना खरीदें। तीसरा ऑप्शन यह है बस अड्डे पे, ट्रेन स्टेशन पे, उसके अलावा ऐसी जगह पे जहां पर आप, जिसने आपको बेचा है वो प्रोडक्ट, जिसने सेल किया है, आप उसके पास ना जा सकें। तो ऐसे में ऐसी जगहों से प्रोडक्ट लेने से जरा घबराएं। उसके अलावा कई बार आपको ये प्रोडक्ट दुकानदार बेचते हैं, तो दुकानदार जब आपको ये बेच रहे हैं तो अगर आपके साथ स्कैम हुआ तो आप दुकानदार के पास पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। और आजकल के दौर में फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, कई बार तो हम और आप जान भी नहीं पाते और हमारे साथ फ्रॉड हो चुका होता है। तो आपको और हमें सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए स्कैम, एक नए फ्रॉड को रिवील करते हुए ओनली ऑन दिस शो जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। सुनते रहे FM 107, मुझे फजील को दीजिए इजाजत, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पर ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन हो जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार कहानियां भी सुनने को मिले। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से N107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों आज जब हम मीडिया का नाम लेते हैं तो फौरन स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिमाग में आ जाते हैं। हर चीज एक क्लिक पर मिलती है। लेकिन अगर हम वक्त की घड़ी को पीछे घुमाएं और 1960 के दौर में चले जाएं तो उस वक्त कतर

भी तरक्की की मंजिल की तरफ ही बढ़ रहा था और उस वक्त सबसे पावरफुल और सबसे पहला जरिया जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता था वो था रेडियो। जी हाँ, कतर का सबसे पहला रेडियो स्टेशन 1968 में ब्रॉडकास्टिंग पर आया। उस वक्त इसे रेडियो कतर कहा जाता था और ये मीडियम वेव फ्रीक्वेंसीज पर ब्रॉडकास्ट होता था। प्रोग्रामिंग सिर्फ चंद घंटों की ही होती थी, लेकिन उसमें अरेबिक म्यूजिक होता था, लोकल न्यूज होती थी और कल्चरल प्रोग्राम्स भी सुनाए जाते थे। और सबसे खास बात ये थी दोस्तों कि बहुत से सुनने वालों के लिए ये पहली दफा था जब उन्होंने एक असली कतरी वॉइस को एयरवेव से सीधा अपने आप से मुखातिब होते सुना। ये एक नए दौर का आगाज था, एक आवाज जो दिलों को जोड़ रही थी और कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही थी। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वाले से, कतर का पहला रेडियो स्टेशन कतर रेडियो। दोस्तों, कतर की एयरवेव्स पर जो सबसे पहली आवाज गूंजी वो उन्हीं पायनियरिंग प्रेजेंटर्स और टेक्नीशियंस की थी जो दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि रेडियो सिर्फ एक ख्याल ना रहे बल्कि हकीकत बन जाए, और ये सब कुछ मैनुअली ही किया जाता था। जी हाँ, वो न्यूज बुलेटिन रिकॉर्ड करते, कल्चरल शोज और रिलीजियस प्रोग्राम तैयार करते, और वो भी बिना उस टेक्नोलॉजी के जो आज के दौर में हम बिना किसी परेशानी के यूज कर लेते हैं। और ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, रेडियो पूरी कम्युनिटी के लिए एक लाइफलाइन बन गया था। जरूरी ऐलानात सुनाए जाते, पब्लिक सर्विस की अपडेट्स दी जाती, फिशरमैन के लिए वेदर रिपोर्ट्स आती और कभी कभी लीडर्स की स्पीचेस भी सुनाई देती। एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसके जरिए पूरे कतर की आवाज एक साथ जुड़ी हुई थी। कतर रेडियो ने सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी बल्कि लोगों को एक नई दुनिया से कनेक्ट किया, एक ऐसी दुनिया जहां आवाज ही आवाम को जोड़ने का पुल था। दोस्तों, ये रेडियो स्टेशन जो पहली दफा ब्रॉडकास्टिंग के लिए जून 25, 1968 को हवाओं पर आया, असल में एक नई अरब वॉइस का आगाज था। शुरू में इसका ट्रांसमिशन सिर्फ चंद घंटों के लिए होता था, लेकिन वक्त के साथ ये धीरे धीरे बढ़ता गया और आज ये 24 घंटे सातों दिन ब्रॉडकास्टर बन चुका है। इस लगातार सफर के दौरान स्टेशन ने अपने लिसनर्स के साथ एक खास रिश्ता बनाया और हर नए मॉडर्नाइजेशन प्लान के साथ हर डिपार्टमेंट और स्टाफ ने मिलकर प्रोग्रेस की। सब कुछ मुमकिन हुआ अनलिमिटेड एम्बिशन और बेमिसाल डिटर्मिनेशन के साथ। यानी ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि एक मिशन है जो आवाजों को एक साथ जोड़ता रहा और हर नए दौर के साथ अपनी पहचान और भी मजबूत करता गया। दोस्तों, पिछले चंद डिकेड्स में कतर रेडियो ने सिर्फ कतर की आवाज को दुनिया तक नहीं पहुंचाया बल्कि एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन गया जो नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत करने, लोगों में बिलोंगिंग का एहसास बढ़ाने और कतरी सोसाइटी की असली वैल्यूज को हाईलाइट करने में मददगार साबित हुआ। शुरू से ही ये स्टेशन मुल्क की खिदमत में हर तरह के प्रोग्राम्स के जरिए सेंट्रल रोल अदा करता रहा, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, कल्चरल सेलिब्रेशंस या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। कतर रेडियो हमेशा साथ रहा, लोगों को अवेयर किया और नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया। दोस्तों, ये स्टेशन सिर्फ आवाज नहीं बल्कि कतर की अचीवमेंट्स, इवेंट्स और इनिशिएटिव्स का गवाह भी है। चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो या इंटरनेशनल अरीनाज में, हर इम्पोर्टेंट स्टेज पर ये स्टेशन लोगों के साथ रहा, उनके डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लम्हों में उनका हमसफर बना रहा। और सबसे खास बात, ये हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म बना रहा, लॉयल टू द मिशन ऑफ कॉन्शियस एंड कमिटेड जर्नलिज्म। कतर रेडियो ने आवाजों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि आवाजों के जरिए एक पूरी कौम को जोड़ने की एक पहचान दी। दोस्तों, शुरू से ही कतर रेडियो ने कमिटमेंट की है कि हर तरह के लिसनर्स के लिए डाइवर्स कंटेंट प्रोवाइड करे जो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही कतरी डायलेक्ट को भी शामिल करता है ताकि आवाज और भी ज्यादा अपनी और करीबी में।

महसूस हो। कतर रेडियो ने सोसाइटल कोहिजन को भी मजबूत बनाने में किरदार अदा किया और सिटीजन्स तक बहुत से इम्पोर्टेंट मैसेजेस पहुंचाए, चाहे वो एजुकेशनल हो, हेल्थ रिलेटेड हो या एनवायरमेंट प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस। और यही नहीं, स्टेशन ने ब्रॉडर अरब ऑडियंस को भी टारगेट किया, अरब नेशंस के दरमियान कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को प्रमोट किया, न्यूज कवरेज को भी काफी एक्सपेंड किया गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स और कल्चर के हर पहलू को कवर किया। बहुत से न्यूज प्रोग्राम लॉन्च किए गए, बुलेटिन, टॉक शोज और एनालिटिकल सेगमेंट्स तक। कतर रेडियो ने अरब और इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस के साथ कोलैबोरेशन भी किया, न्यूज और प्रोग्राम्स के एक्सचेंज किए, रीजनल और इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंसेज और इवेंट्स में हिस्सा लिया और अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी ऑर्गेनाइज किए। साथ ही गल्फ और अरब वर्ल्ड के सिस्टरली और फ्रेंडली रेडियो स्टेशंस के साथ जॉइंट मीटिंग्स होस्ट की, ताकि हर तरह के प्रेसिंग इश्यूज पर डिस्कशन हो सके। दोस्तों, ड्रामा के रैम में भी कतर रेडियो ने अपना अलग ही किरदार अदा किया है। बहुत से रेडियो प्लेज और सीरीज प्रोड्यूस किए गए जो ऑडियंस ने बहुत पसंद की। रेडियो ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, बल्कि अवेयरनेस और एजुकेशन को स्प्रेड करने में भी बहुत अहम साबित हुआ। ये नेशनल यूनिटी और सोशल विजन को मजबूत करने में भी मददगार साबित हुआ। और ये सिर्फ मॉडर्न कंटेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहा, कतर रेडियो ने फॉक हेरिटेज को प्रिजर्व और रिवाइव करने में भी अपना हिस्सा डाला। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, चैंट्स और फोक टेल्स को रिकॉर्ड और ब्रॉडकास्ट किया। साथ ही कतरी आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस को सपोर्ट दिया गया, उनके काम को शोकेस किया गया और उन्हें वाइडर ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी कतर रेडियो ने ड्रामा और आर्ट के जरिए सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि एक कल्चरल और सोशल ब्रिज भी बनाया जो आवाजों के जरिए लोगों को जोड़ता रहा। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। तो सामाइन, कतर रेडियो ने अपनी पुरानी कामयाबी और मीडिया अचीवमेंट्स पर कभी रुक कर आराम नहीं किया, बल्कि ये हमेशा एक कंटिन्यूस जर्नी पर है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर, ताकि मीडिया और टेक्नोलॉजी के हर नए स्टेप्स के साथ पेस बनाए रखे और अपनी पोजीशन एक लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर मजबूत करे। जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर आया, कतर रेडियो ने इस इवोल्यूशन को बहुत तेजी से अपनाया। स्टेशन ने अपने तमाम टेक्निकल सिस्टम्स को अपग्रेड किया, लेटेस्ट रेडियो प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज शामिल की। इसमें स्टूडियोज का मॉडर्नाइजेशन, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना और ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना शामिल था। और जब न्यू मिलेनियम शुरू हुआ, कतर रेडियो ने एक बहुत बड़ा कदम फ्यूचर की तरफ उठाया, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की तरफ ट्रांजिशन की। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं था, बल्कि एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन था इस बात का कि रेडियो सर्विसेज लोगों तक कैसे पहुंचती हैं और स्टेशन अपने ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ख्वातीनो हजरात, ये जर्नी सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड्स की नहीं, बल्कि कतर रेडियो के हर लिसनर के साथ एक नई कनेक्शन और इंटरेक्शन का सफर भी है। जैसे जैसे इंटरनेट ने अपनी रीच बढ़ाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने तेजी से तरक्की की, कतर रेडियो ने समझा कि डिजिटल प्रेजेंस कितनी जरूरी है। इसलिए एक सोफेस्टिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां लिसनर्स लाइव कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, प्रोग्राम आर्काइव्स एक्सेस कर सकते हैं और कंटेंट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरते सबसे अहम कदम था स्मार्ट एप्लीकेशंस का लॉन्च करना, मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स के लिए। इस मूव के जरिए कतर रेडियो ने अपनी ऑडियंस को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। अब कोई भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट या मोबाइल एप्स के जरिए कतर रेडियो के प्रोग्राम्स सुन सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था, बल्कि एक नए एरा का आगाज था, जहां आवाज हर जगह पहुंच सकती थी और हर लिसनर कतर रेडियो का हिस्सा बन सकता था। तो दोस्तों, कतर रेडियो ने हमेशा अपने एम्बिशियस प्लान्स के जरिए कतर की आवाज को सिर्फ मुल्क तक ही नहीं, बल्कि नॉन अरेबिक स्पीकर्स तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में 1971 में इंग्लिश लैंग्वेज सर्विस लॉन्च की गई, जहां शुरू में ये सिर्फ एक घंटे के लिए ब्रॉडकास्ट होती थी, लेकिन 2004 तक ये 19 घंटे तक बढ़ गई। वहीं 1980 में उर्दू सर्विस शुरू की गई थी, जो कतर और वाइडर गल्फ में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए बहुत पसंदीदा साबित हुई, जो शुरू में सिर्फ एक घंटे के डेली ब्रॉडकास्ट पर थी, लेकिन 1989 तक ये 3 घंटे तक बढ़ा दी गई। और दोस्तों, फिर 1985 में एक यूनिक फ्रेंच लैंग्वेज सर्विस लॉन्च हुई, जो अपने वक्त में पूरे रीजन में अनमैच्ड थी और 3 घंटे डेली मीडियम वेव पर ब्रॉडकास्ट होती थी। वक्त गुजरा और 1992 में कतर रेडियो ने कुरान रेडियो सर्विस शुरू की, जो कुरानिक रिसाइटेशन, रिलीजियस स्टडीज, हदीस और इंटरप्रिटिव

0: टेक्स्ट पर फोकस करती थी और कंटेम्पररी इश्यूज को भी रिलीजियस लेंस के जरिए एड्रेस करती थी। इस सर्विस को पब्लिक से बहुत वाइड अप्रूवल मिला और सबसे रिसेंट 2022 में कतर रेडियो ने स्पेनिश रेडियो स्टेशन लॉन्च किया ताकि और भी ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। ये सिर्फ लैंग्वेजेस का एडिशन नहीं था बल्कि कतर रेडियो के विजन का हिस्सा था जिसमें डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और ग्लोबल रीच को सबसे अहम समझा गया। तो दोस्तों, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि रेडियो अपनी यूनिक चार्म और पावरफुल प्रेजेंस हमेशा बरकरार रखेगा अपनी नर्म और फैमिलियर ह्यूमन वॉइसेस के साथ। ये ऐसे दिलों और दिमाग को छूता है जो कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। जहां आज के सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की पावर कम नहीं हुई, ये लाइव, लोकल और पर्सनल है। कतर रेडियो ने उस रास्ते की बुनियाद रखी जहां आज मीडिया इकोसिस्टम लातादाद लोगों को इन्फॉर्म और यूनाइट करता है और बहुत से लोगों के लिए वो पहली रेडियो ब्रॉडकास्ट एक चेरिश्ड मेमोरी है, एक यादगार लम्हा जो कनेक्शन और प्रोग्रेस का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें आपको मिलेंगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। दोस्तों, इसी के साथ कतर फर्स्ट प्रोग्राम से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107। दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Absolute cinema.
4: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, मैं हूँ ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
5: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है. जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है. सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए. सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें. वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
6: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक. मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा.
7: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम.

हमको बचा लोगे? वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहां एक हाल में हैं और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। फिर ये दोजख में पड़े हुए लोग जहन्नुम के अहलकारों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे आजाब में बस एक दिन की तख़फीफ कर दे। वो पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल बय्यनात लेकर नहीं आते रहे थे? वो कहेंगे, हाँ। जहन्नुम के अहलकार बोलेंगे, फिर तो तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ अकारत ही जाने वाली है।

तुम किधर से बहकाए जा रहे हो। इसी तरह वो सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे।

वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाय करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम हैं तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है। वो कायनात का रब, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयात में झगड़े करते हैं, कहां से वो फिराए जा रहे हैं? ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुटलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे और फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे? वो जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों का गुमराह होना मुतहक्किक कर देगा। उनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे और फिर उस पर इतराते थे। अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है। बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का।

उन पर पहुंच सको, उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? फिर क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इनको उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वो इनसे तादाद में ज्यादा थे, इनसे बढ़कर ताकतवर थे और जमीन में इनसे ज्यादा शानदार आसार छोड़ गए हैं। जो कुछ कमाई उन्होंने की थी आखिर वो उनके किस काम आई? जब उनके रसूल उनके पास बय्यनात लेकर आए तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके अपने पास था और फिर उसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा आजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वहदहु ला शरीक को और हम इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम उसका शरीक ठहराते थे। मगर हमारा आजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफे न हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाबिता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा है। और उस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए।